0: को सर्व समाज में बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से विरोधी पार्टियों के संकीर्ण और छलावे की राजनीति से खुद को बचाने की अपील की। इस बैठक में पार्टी महासचिव आकाश आनंद, भाई आनंद कुमार और पार्टी के सीनियर लीडर सतीश मिश्रा मौजूद रहे। मायावती चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें आकाश आनंद, उनके भाई आनंद और पार्टी से सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ ये बैठक को उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ बुलाई गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ग्राउंड पर हालात को समझने के लिए, देखने के लिए, ग्राउंड पर जिस तरीके से पार्टी की स्थितियां हैं उसको समझने के लिए ये बैठक बुलाई है और पूरे प्रदेश में समझने के लिए कि कैसे अब आगे रणनीति अपनाई जाएगी ये तय होगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर सियासत तेज है। एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में यह बयान दिया कि एक साल के भीतर पीएम मोदी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह आर्थिक असंतोष बढ़ा है उनका विदाई का कारण बनेगा।
2: कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में बात होनी थी अल्पसंख्यकों की, मगर बात हो गई सरकार की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अपने बड़े दावे को 4 पॉइंट से पुख्ता किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष को वजह बताया।
3: जनता जवाब नहीं दे रही, जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकल रही है। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, चूंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही। हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई। अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी।
2: अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिसके साथ अन्याय हो कांग्रेस को खुलकर उसके साथ खड़े होना चाहिए। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश में है, जिसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम देती रही है।
4: क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं, कांग्रेस साजिश करती रहती है।
2: अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआत है। आज तक ब्यूरो।
0: देश की राजधानी दिल्ली में जहां टेम्पो स्टैंड पर एक गार्ड को एसयूवी सवार ने कुचल कर मार डाला, हत्या की जो तस्वीरें सामने आई हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एसयूवी सवार ने जानबूझकर गार्ड को अपनी गाड़ी से कुचल कर मार डाला।
2: देश की राजधानी दिल्ली से दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहले एक शख्स यहां गार्ड को डंडे से पीट रहा है, इसके बाद एसयूवी सवार गाड़ी आगे बढ़ाता है और गार्ड पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब तक गार्ड जिंदा था, इसके बाद ये एसयूवी सवार दोबारा गार्ड पर गाड़ी चढ़ाता है। इस तरह से जानबूझकर ये लोग गार्ड को गाड़ी से कुचलकर मार डालते हैं।
5: 60 वर्ष के सिक्योरिटी गार्ड विजेंदर जब कल रात को अपने घर से ये बोल करके निकले होंगे कि मैं काम पर जा रहा हूं, तो उनके घर वालों को यह एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि आज उनसे उनकी आखिरी मुलाकात है। कल करीब 2:30 बजे इसी जगह पीड़ागढ़ी पे जहां मैं खड़ा हूं, सिक्योरिटी गार्ड विजेंदर यहीं पर तैनात थे। जब गाड़ी में दो लोग आते हैं, पहले बहस होती है, फिर लाठी डंडों से उन पर हमला होता है और उसके बाद उनके ऊपर बेरहमी से दो बार गाड़ी चढ़ाकर यहां से फरार हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहां तस्वीरों में दिखाऊं तो यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे ये पूरी वारदात हुई है।
2: तस्वीरें पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी में टेम्पो स्टैंड की है, जहां 60 साल के गार्ड विजेंद्र को कुचलकर मारा गया। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
0: बात ट्विशा केस की, दिल्ली एम्स की टीम ने दोबारा ट्विशा का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया। उधर पति समर 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने समर से सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है।

0: त्रिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री बेहद पेचीदा है। कई उलझे सवाल हैं, कई गंभीर आरोप हैं और घेरे में है त्रिशा का पति समर्थ सिंह, जो करीब 10 दिनों की फरारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर है। समर्थ से लगातार पूछताछ चल रही है, जिसके जरिए केस की कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने समर्थ सिंह से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट बनाई है। समर्थ सिंह से ज्यादातर सवाल जवाब त्रिशा से उसके रिश्ते, त्रिशा की मौत और उसके फरार रहने को लेकर हो रहे हैं। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि 12 मई यानी जिस दिन त्रिशा की मौत हुई वो कहां था, क्या उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सवाल ये भी हुआ कि जब उसे त्रिशा के साथ रहना था तो आखिर वो फरार क्यों हो गया। इसके बाद 10 दिनों तक वो कहां कहां गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस का अहम सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान उसकी अपनी माँ गिरिबाला से भी बातचीत होती रही। ये सारे सवाल त्रिशा शर्मा की मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं।
1: कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी की पत्नी चली जाए और वो लगातार फरार रहे, कहीं ना कहीं उनके कंडक्ट को दिखाता है। जिस तरीके से किसी की पत्नी शांत हो गई, वो एम्स में है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो फरार चल रहे हैं और शुरू से कोशिश करी जा रही है आरोपियों द्वारा मिलके कि किस तरीके से जांच को प्रभावित करा जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड है वो दिखाता है। वो कितना कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं, खुद वकील रहे, उससे पहले उनकी जो मदर है वो डीजे रही, लेकिन किस तरीके से उनका कंडक्ट रहा वो मीडिया में भी सबने देखा।
0: त्रिशा के परिवार वाले लगातार समर्थ पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और उसे त्रिशा का मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। एक दिन पहले जब भोपाल की अदालत में समर्थ सिंह की पेशी हुई, तब त्रिशा के भाई ने कहा कि उसके चेहरे पर कोई गम, कोई दर्द नहीं दिख रहा था, उल्टा वो कोर्ट में मुस्कुरा रहा था।
2: जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है। तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड। और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक।
0: समर्थ सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि उसकी पत्नी त्रिशा और गिरिबाला सिंह के बीच संबंध कैसे थे, क्या कभी गिरिबाला सिंह ने ऐसा कहा कि त्रिशा उसे पसंद नहीं है, क्या त्रिशा रोजाना अपने परिवार से बातचीत में तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र करती थी। इसके साथ जो चैट्स दिखाकर त्रिशा के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर उसका क्या कहना है।
3: जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
0: त्रिशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी करीब 5 महीने पहले हुई थी। 5 महीनों में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी, तनाव बढ़ा और त्रिशा की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि क्या इस मौत के पीछे उसके पति समर्थ या ससुराल के किसी और शख्स की तो कोई भूमिका नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: त्रिशा केस की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, आरोपियों से पूछताछ चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है।
5: अगर आप देखें तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये डॉक्टरों की टीम है।
0: त्रिशा शर्मा की मौत को लेकर उसका परिवार जो गंभीर आरोप लगा रहा है, क्या वाकई उसमें कोई सच्चाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने पहले शादी करने वाली त्रिशा की जिंदगी में अचानक सब कुछ बदल गया। बात इतनी बिगड़ी कि त्रिशा की मौत तक हो गई और ससुराल वाले आरोपों के घेरे में आ गए। त्रिशा केस की जांच जारी है। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिससे त्रिशा के परिवार को इंसाफ की नई उम्मीद जगी है।

0: को न्याय पे भरोसा बनेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने सीबीआई को के लिए प्रेषित किया हमारा केस और हमारे दुख को समझा।
1: उधर खबर है कि जांच अधिकारी तुषार की मौत से ठीक पहले के आखिरी कुछ दिनों के घटनाक्रम को दोबारा रिक्रिएट यानी रिकंस्ट्रक्ट करने की तैयारी में है, ताकि उस दिन असल में क्या हुआ इसका सुराग मिल सके। इस बीच भोपाल के कटारा हिल्स स्थित तुषार के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली थी। दावा किया जा रहा है कि तुषार ने यहीं पर सुसाइड किया था, यही वो जगह है कि जहां वो फंदे में लटकी मिली। लेकिन सवाल ये है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में किए जाते हैं ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके, लेकिन तुषार ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था, जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर तुषार ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी घटना स्थल पर दोबारा जा सकते हैं ताकि केस से जुड़े कुछ और सबूत जुटाए जा सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: इस पूरे मामले में तुषार की सांस भी सवालों के घेरे में, जिस पर लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है।
3: गिरीवाला सिंह, तुषार शर्मा की सांस जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरीवाला सिंह भले ही कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
4: स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई का। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
3: जिस ब्यूटी पार्लर में तुषार गई थी, वहां तुषार की सांस को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। 12 मई को तुषार ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसके अगले दिन यानी 13 मई को सुबह 11:30 बजे तुषार की सांस गिरीवाला सिंह का फोन आया। किरण का दावा है कि इस दौरान गिरीवाला ने बार बार पूछा क्या तुषार पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई, कितने बजे गई और पेमेंट कैसे किया गया।
5: कि जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा?
6: मुझे पता चला जब गिरीवाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि तुषार कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि तुषार कब आई और कब गई।
5: ये कब कॉल आया था आपके पास?
6: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है।
5: 13।
6: फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम तुषार मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी, इतने बजे गई थी।
3: इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले का अहम सबूत सीसीटीवी तुषार की सांस ले गई, लेकिन पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर तक नहीं पहुंच सकी।
6: पुलिस तो नहीं आई
5: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज
6: नहीं आई?
5: नहीं,
6: कोई नहीं आया।
5: आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा फुटेज के अलावा?
6: नहीं, कुछ भी नहीं।
3: 11 दिन पहले भोपाल में हुई तुषार की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है।
4: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए?
7: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
8: पीड़ित परिवार कहता है,
7: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है।
4: स्वागत है सीबीआई जांच का।
3: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 11 दिन बाद भी पता न लगा सकी, उससे भी सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ।
9: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए,

0: समर्थ सिंह को न ही उनकी मदर गिरिवाला जी को। और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
1: इस बीच एमपी पुलिस त्रिशा के साथ गिरिवाला के घर हाईकोर्ट का नोटिस लेकर पहुंचे।
2: आप बता दीजिए जो भी
3: जो काम के लिए इन्फॉर्मेशन सर,
2: जो भी
4: इन्फॉर्मेशन हाईकोर्ट का नोटिस है,
3: हाईकोर्ट का नोटिस गिरिवाला को गिरिवाला की गिरफ्तारी।
1: अब त्रिशा का ससुराल सवालों के घेरे में है जिसमें सास की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
5: मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी ने जान सुखा रखी है। दिन में सूरज की तपिश लोगों को जला रही है, तो वहीं इसी बीच में पहाड़ों पर बर्फ का टूटता हुआ पहाड़ देखने को मिला है।
6: जब बर्फ का पहाड़ दरकता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बद्रीनाथ में कंचन जंगा घाटी पर बर्फ का तूफान आया है। पहाड़ से बर्फ के गोले बरस रहे हैं, पानी की तरह बर्फ बह रही है। तस्वीरें देखने में जितनी अद्भुत लग रही हैं, असलियत उतनी ही खौफनाक है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसी दौरान कंचनजंगा के ऊपर का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे की ओर बहने लगा। हालांकि ग्लेशियर यात्रा मार्ग तक नहीं पहुंचा और ऊपरी हिस्से में ही रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आज तक ब्यूरो।
5: तो क्या दुनिया को राहत भरी खबर मिलने वाली है, और वो खबर जिसके लिए अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए था। खबर यह है कि ईरान ने यूरेनियम छोड़ने की तैयारी कर ली है, जिस मुद्दे को लेकर ईरान अड़ा हुआ था और अमेरिका भी टस से मस नहीं हो रहा था।
6: आठ देशों के असरदार लीडर्स के साथ ट्रंप की कॉल के बाद क्या कुछ ही घंटों में युद्ध विराम का ऐलान होने वाला है? अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज और यूरेनियम को लेकर सहमति अंतिम दौर में है। ट्रंप से लेकर तमाम खाड़ी देश सोशल मीडिया पर खुशी जता रहे हैं कि दोनों देश समझौता होने के बेहद करीब हैं। लेकिन ईरान के आधिकारिक चुप्पे से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि 30 दिन हॉर्मुज से आवाजाही को सुगम बनाने और 60 दिन एटमी मुद्दे पर बातचीत के लिए दिए जा सकते हैं। पहले ही दौर में ईरान की फ्रीज संपत्तियों को छोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, लेबनान में भी हमले रोकने और ईरानी तेल पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियां हटाना इसमें शामिल है। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि जब तक समझौते पर मुहर नहीं लगती तब तक ईरान के लिए किसी ऑफर या छूट का सवाल ही नहीं।
7: U.S. offer Iran oil sanctions relief during the peace talks, as Iranian state media has reported?
8: No, I haven't heard that. I'm not doing any relief until they sign an agreement. When they sign an agreement, we can get that place built up again and have something that's really a good country for the people. But no, we haven't offered anything.
6: लेकिन ईरान का संदेश बेहद साफ है। कोई कितनी ही बात कर ले, कितने ही दावे कर ले, ईरान एक भी शर्त ना तो आंख मूंद कर मानेगा और ना ही अपने सर्वोच्च लीडर की अनुमति के बिना कोई भी फैसला लेगा। आज तक ब्यूरो।
5: रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला किया। मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हुए। हमले में रिहायशी इमारतों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। एक इमारत का वीडियो भी सामने आया जहां धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया।
6: एक बार फिर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम बरसाए। एक बार फिर कीव पर रूस ने किया है मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला। ये तस्वीरें देखिए, भयानक आग का गोला है, धुएं का गुबार है। रूस की ओर से रिहायशी इलाके में बारूद बरसाया गया है। इस हमले में ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस की ओर से 6000 ड्रोन और 90 मिसाइल दागे गए। इस हमले में कीव और आसपास के हिस्से में 4 लोगों के मौत की खबर है। रूस रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन के कई इलाकों में जवाबी कार्रवाई हुई है। इसके तहत यूक्रेन के मिलिट्री कमांड फैसिलिटी और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। रूस की माने तो यह हमला कीव के हमले के जवाब में किया गया है। आज तक ब्यूरो।
5: अब खबर व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, उसी वक्त बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास एक चेक पॉइंट पर लगभग 20 राउंड फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें हमलावर मारा गया।
9: President Trump has said a deal is close, only for the two.
6: गोलियों की गूंज से दहल उठा है व्हाइट हाउस। संवाददाता रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी ताबड़तोड़ गोलियां बरसी। व्हाइट हाउस के पास इस हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग सुनकर पहले तो रिपोर्टर भौचक्की रह जाती है और फिर अपनी जान बचाने के लिए नीचे छिप जाती है।
9: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
6: व्हाइट हाउस परिसर में भगदड़ मच जाती है। वहां मौजूद हर शख्स अपनी जान बचाकर तेजी से भागता है। सुरक्षा कर्मी उन्हें अलर्ट करते दिखे। सभी रिपोर्टर्स को व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में दौड़कर जाने के लिए अलर्ट किया गया। देखते ही देखते इस इलाके में FBI और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। घटना अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 6 बजे हुई। व्हाइट हाउस के पास 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वानिया एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट के पास ये गोलीबारी हुई। हमलावर का नाम नासिर वेस्ट बताया जा रहा है। 21 साल के इस हमलावर को लेकर खबर है कि शनिवार की शाम वो व्हाइट हाउस के पास अजीबोगरीब ढंग से इधर उधर घूमता दिखा। उसके बाद ही उसने चेक पॉइंट पर गोलीबारी की। उसने रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और कुछ ही गोलियां चला पाया कि वो सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। आज तक ब्यूरो।
5: खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के क्वेटा में एक ट्रेन को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला हुआ और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सुसाइड अटैक में जिम्मेदारी BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। BLA के दावों की माने तो इस आत्मघाती हमले में 30 लोगों की मौत हुई है जबकि 70 लोग जख्मी हैं।
6: पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से एक ट्रेन दहक रही है। ये तबाही की तस्वीरें हैं। बोगियां जल रही हैं, कारें राख हो गई हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर जोरदार आत्मघाती धमाका हुआ है जिसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस आ गई और रेल की बोगियां धधक उठी। ट्रेन क्वेटा कैंट की ओर जा रही थी, अचानक धमाका हुआ और रेल की बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियां राख हो गईं, इमारतों के शीशे टूट गए। इस आत्मघाती धमाके की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया है। बताया जा रहा है कि धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख पैसेंजर ट्रेन है। ये बलूचिस्तान समेत कई संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। ये ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है वहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी का दबदबा है, इसीलिए इसके पहले भी इस ट्रेन को कई बार निशाना बनाया गया था। आज तक ब्यूरो।
5: राजस्थान ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया और इसके साथ ही कोलकाता और पंजाब की टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं।
6: मुंबई से जीत गया राजस्थान, प्लेऑफ में पहुंचा राजस्थान। टूट गए पंजाब और कोलकाता के अरमान। अपने आखिरी लीग मुकाबले में जीत के साथ ही राजस्थान ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब ना तो किसी दूसरे टीम के नतीजे को देखना है और ना ही रन रेट के लफड़े में पड़ना है। मुंबई की टीम आखिरी मैच में बिना बुमराह के पहले गेंदबाजी करने मैदान में उतरी थी और शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन राजस्थान को जीतने से नहीं रोक सकी। अब IPL के सीजन की टॉप चार टीमें यानी प्लेऑफ में पहुंचने वाली चारों टीमें भी तय हो गई हैं। पहले पायदान पर 9 जीत और 18 अंकों के साथ है डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु, जबकि गुजरात और हैदराबाद की टीमें भी 18 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज राजस्थान ने भी 8वीं जीत हासिल कर 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही कल रात लखनऊ को हराने वाली पंजाब की टीम को जो आस जगी थी वो अब खत्म हो गई है।
10: अब 15 अंकों के साथ वो पांचवें पायदान पर आ गई है। अब कोलकाता की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। आज शाम होने वाले दूसरे मैच में अगर वो दिल्ली को हरा भी देती है तो भी वो टॉप चार में जगह नहीं बना पाएगी। आज तक ब्यूरो।
5: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज तक से खास बातचीत में कहा अंतिम दौरे में है व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ लाइव फोन पर जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं मैं, भारत कर सकता है भरोसा। ममता के गढ़ में बीजेपी का बोलबाला, फलता में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से प्रचंड जीत, शुभेंदु ने कहा बदनाम हार्बर मॉडल घाटे के मॉडल में बदला, ममता बोली ईवीएम में छेड़छाड़, कार्यकर्ताओं को सेंटर से निकाला। दिशा केस में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज के आरोप, आज सुनवाई, भोपाल वाले घर से एम्स फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका, ईरान ने कहा फ्री संपत्तियां जारी करने तक नहीं होगा अंतिम फैसला, ट्रंप ने कहा हड़बड़ी में नहीं होगा फैसला।

नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। सूरज की तपिश से बेहाल उत्तर भारत पर अब लू का कहर टूटने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक लू यानी गर्म हवा के थपेड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। यूपी के बांदा के बाद अब महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। रविवार को ब्रह्मपुरी में पारा 47 डिग्री को पार कर गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी तापमान 47 डिग्री के करीब बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के अंत तक पूरे उत्तर भारत में लू चलेगी। पूर्वी यूपी में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का तापमान रविवार को 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के साथ ही पश्चिम से आने वाली हवा के थपेड़ों के साथ साथ धूल भरी आंधी, जिसके चलते आज आपको दिल्ली एनसीआर में एक घना हेज दिखाई देगा और जाहिर है इसके चलते वायु गुणवत्ता में भी गिरावट हुई है, क्योंकि बीती रात डस्ट स्टॉर्म का असर, जो धूल भरी आंधी थी, उसका असर अभी भी दिल्ली एनसीआर में बरकरार है। उधर महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी अब देश का सबसे गर्म शहर है। लगातार यहां तापमान 46 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जो कि 47 डिग्री भी पार कर चुका है। तो उत्तर प्रदेश का बांदा, महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी और इसी के साथ साथ लू से बेहाल दिल्ली, जहां 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पूरी उत्तर प्रदेश की। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, पारा चढ़ता जा रहा है। लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए अलग अलग जतन भी कर रहे हैं। इसी गर्मी में बिजली कटौती लोगों का जीना मुश्किल कर रहा है। इसीलिए बिजली कटौती के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, आदेश भी दिया कि प्रदेश में निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई की जाए।

0: उत्तर भारत में आग बरस रही है, मई मार डालने पर उतारू है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और आदमी तड़प रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में बिजली कटौती तबाही मचा देने वाली है। इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाए, गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाए, बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाए, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार भले ही बता रही हो कि वो बिजली कटौती के खिलाफ एक्शन में है, मगर सच्चाई यही है कि कई शहरों और गांवों में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है और आदमी परेशान है, इसीलिए विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है।
1: देखिए, 9 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी गर्मी बढ़ती, जब भी ठंड बढ़ती, जब भी बिजली की मांग बढ़ती है, बिजली व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा जाती है। चाहे लखनऊ राजधानी की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, बिजली कब आती, कब जाती, कब जाती, फिर आती नहीं।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें बिजली कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अगर साल 2026 में हम हैं और उसके बाद भी देश के किसी हिस्से में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। खबर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की भी। इसे लेकर बीएसपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से पार्टी जो विरोधी पार्टियों के संकीर्ण और छलावे की राजनीति है उससे खुद को बचाने की अपील की है। इस बैठक में पार्टी महासचिव आकाश आनंद, भाई आनंद कुमार, पार्टी के सीनियर लीडर सतीश मिश्रा मौजूद थे। मायावती चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश में जुटी हुई हैं।
3: 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें आकाश आनंद, उनके भाई आनंद और पार्टी से सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ ये बैठक को उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ बुलाई गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ग्राउंड पर हालात को समझने के लिए, देखने के लिए, ग्राउंड पर जिस तरीके से पार्टी की स्थितियां हैं उसको समझने के लिए ये बैठक बुलाई है और पूरे प्रदेश में समझने के लिए कि कैसे अब आगे रणनीति अपनाई जाएगी ये तय होगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।
2: एक तरफ मायावती की सियासत है, दूसरी तरफ दिल्ली में राहुल गांधी का एक ऐसा बयान आया जिसको लेकर के भी सियासत तेज हो गई। एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में बोलते हुए राहुल गांधी ने यह दावा किया कि एक साल के भीतर मोदी सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह आर्थिक असंतोष बढ़ रहा है वो सरकार की विदाई का कारण बनेगा।
0: कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में बात होनी थी अल्पसंख्यकों की, मगर बात हो गई सरकार की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अपने बड़े दावे को 4 पॉइंट से पुख्ता किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष को वजह बताया।
4: जनता जवाब नहीं दे रही, जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकल रही है। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही। हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई। अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी।
0: अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिसके साथ अन्याय हो कांग्रेस को खुलकर उसके साथ खड़े होना चाहिए। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश में है, जिसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती रही है।
5: क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं, कांग्रेस साजिश करती रहती है।
0: अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआत है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबरें राजधानी में कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। दिल्ली में एक टेम्पो स्टैंड पर एक गार्ड को एसयूवी सवार ने कार से कुचलकर मार डाला। हत्या की जो तस्वीरें सामने आई वो हिला देने वाली हैं, क्योंकि एसयूवी सवार ने जानबूझकर गार्ड को अपनी गाड़ी से कुचल करके मार डाला। ये तस्वीरें इतनी भीषण थी जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
0: राजधानी दिल्ली से दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहले एक शख्स यहां गार्ड को डंडे से पीट रहा है, इसके बाद एसयूवी सवार गाड़ी आगे बढ़ाता है और गार्ड पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब तक गार्ड जिंदा था, इसके बाद ये एसयूवी सवार दोबारा गार्ड पर गाड़ी चढ़ाता है। इस तरह से जानबूझकर ये लोग गार्ड को गाड़ी से कुचलकर मार डालते हैं।
6: साठ वर्ष के सिक्योरिटी गार्ड विजेंदर जब कल रात को अपने घर से ये बोल करके निकले होंगे कि मैं काम पर जा रहा हूं, तो उनके घर वालों को ये एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि आज उनसे उनकी आखिरी मुलाकात है। कल करीब 2:30 बजे इसी जगह पीड़ागढ़ी पे जहां मैं खड़ा हूं, सिक्योरिटी गार्ड विजेंदर यहीं पर तैनात थे जब गाड़ी में दो लोग आते हैं। पहले बहस होती है, फिर लाठी डंडों से उन पर हमला होता है और उसके बाद उनके ऊपर बेरहमी से दो बार गाड़ी चढ़ाकर यहां से फरार हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहां तस्वीरों में दिखाऊं तो यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे ये पूरी वारदात हुई है।
0: तस्वीरें पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी में टेम्पो स्टैंड की है, जहां 60 साल के गार्ड विजेंद्र को कुचलकर मारा गया। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
2: और खबर तुषा केस से जुड़ी हुई। दिल्ली एम्स की टीम ने दोबारा तुषा का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद तुषा का अंतिम संस्कार किया गया। पति समर्थ 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने समर्थ से सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है।

0: त्रिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री बेहद पेचीदा है। कई उलझे सवाल हैं, कई गंभीर आरोप हैं और घेरे में है त्रिशा का पति समर्थ सिंह, जो करीब 10 दिनों की फरारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर है। समर्थ से लगातार पूछताछ चल रही है, जिसके जरिए केस की कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने समर्थ सिंह से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट बनाई है। समर्थ सिंह से ज्यादातर सवाल जवाब त्रिशा से उसके रिश्ते, त्रिशा की मौत और उसके फरार रहने को लेकर हो रहे हैं। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि 12 मई यानी जिस दिन त्रिशा की मौत हुई वो कहां था, क्या उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सवाल ये भी हुआ कि जब उसे त्रिशा के साथ रहना था तो आखिर वो फरार क्यों हो गया। इसके बाद 10 दिनों तक वो कहां कहां गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस का अहम सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान उसकी अपनी माँ गिरिबाला से भी बातचीत होती रही। ये सारे सवाल त्रिशा शर्मा की मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं।
1: कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी की पत्नी चली जाए और वो लगातार फरार रहे, कहीं ना कहीं उनके कंडक्ट को दिखाता है। जिस तरीके से किसी की पत्नी शांत हो गई, वो एम्स में है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो फरार चल रहे हैं और शुरू से कोशिश करी जा रही है आरोपियों द्वारा मिलके कि किस तरीके से जांच को प्रभावित करा जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड है वो दिखाता है। वो कितना कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं, खुद वकील रहे, उससे पहले उनकी जो मदर है वो डीजे रही, लेकिन किस तरीके से उनका कंडक्ट रहा वो मीडिया में भी सबने देखा।
0: त्रिशा के परिवार वाले लगातार समर्थ पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और उसे त्रिशा का मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। एक दिन पहले जब भोपाल की अदालत में समर्थ सिंह की पेशी हुई, तब त्रिशा के भाई ने कहा कि उसके चेहरे पर कोई गम, कोई दर्द नहीं दिख रहा था, उल्टा वो कोर्ट में मुस्कुरा रहा था।
2: जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से।
0: समर्थ सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि उसकी पत्नी त्रिशा और गिरिबाला सिंह के बीच संबंध कैसे थे, क्या कभी गिरिबाला सिंह ने ऐसा कहा कि त्रिशा उसे पसंद नहीं है, क्या त्रिशा रोजाना अपने परिवार से बातचीत में तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र करती थी। इसके साथ जो चैट्स दिखाकर त्रिशा के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर उसका क्या कहना है।
3: जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
0: त्रिशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी करीब 5 महीने पहले हुई थी। 5 महीनों में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी, तनाव बढ़ा और त्रिशा की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि क्या इस मौत के पीछे उसके पति समर्थ या ससुराल के किसी और शख्स की तो कोई भूमिका नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: त्रिशा केस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आरोपियों से पूछताछ चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है।
5: अगर आप देखें तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये डॉक्टरों की टीम है।
0: त्रिशा शर्मा की मौत को लेकर उसका परिवार जो गंभीर आरोप लगा रहा है, क्या वाकई उसमें कोई सच्चाई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने पहले शादी करने वाली त्रिशा की जिंदगी में अचानक सब कुछ बदल गया? बात इतनी बिगड़ी कि त्रिशा की मौत तक हो गई और ससुराल वाले आरोपों के घेरे में आ गए। त्रिशा केस की जांच जारी है। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिससे त्रिशा के परिवार को इंसाफ की नई उम्मीद जगी है।
6: मेरा कोटि कोटि धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब का कि जिन्होंने स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर के और एक बहुत बड़ी नजीर सेट की है, लोगों को न्याय पर भरोसा बनेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने CBI को के लिए प्रेषित किया हमारा केस और हमारे दुख को समझा।
0: उधर खबर है कि जांच अधिकारी त्रिशा की मौत से ठीक पहले के आखिरी कुछ दिनों के घटनाक्रम को दोबारा रिक्रिएट यानी रिकंस्ट्रक्ट करने की तैयारी में है, ताकि उस दिन असल में क्या हुआ इसका सुराग मिल सके। इस बीच भोपाल के कटारा हिल्स स्थित त्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। दावा किया जा रहा है कि त्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है कि जहां वो फंदे में लटकी मिली। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में किए जाते हैं ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके, लेकिन त्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था, जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे जो कि कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर त्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। बताया जा रहा है कि जांच अधिकारी घटना स्थल पर दोबारा जा सकते हैं ताकि केस से जुड़े कुछ और सबूत जुटाए जा सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और सप्ताह के पहले कार्यकाल के इस दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आज सुबह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी अब तक 4 बार 10 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 10 दिन में 4थी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें। अगर आप दिल्ली में हैं तो पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 61 पैसे बढ़ाई जा चुकी है, जबकि डीजल की कीमतों में 2 रुपया 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यानी दिल्ली में जो पेट्रोल अब तक 99.5 रुपए था उसकी कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। बड़ी खबर सप्ताह के पहले कार्यकाल के दिन। अगर आज आप अपने घर से निकल रहे हैं, पेट्रोल टैंक फुल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बता दें पेट्रोल की कीमतें पहली बार 100 रुपए के पार हो चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतों ने दिल्ली में 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगाया है। ये लगातार सरकार हवाला दे रही है तेल कंपनियों को हो रहे घाटे का, वहीं डीजल की कीमत अब 2.71 रुपए बढ़कर 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। तो आज फिर महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल, 10 दिन में 4थी बार यह बढ़ोतरी। और डीजल की कीमतें राजधानी दिल्ली में 92.49 रुपए से बढ़कर अब 95.20 रुपए हो चुकी है और 2.71 रुपए की यह बेतहाशा बढ़ोतरी है। अब ये जोर का झटका धीरे से नहीं है, बल्कि जोर का झटका जोर से है। इसका सीधा सा मतलब है महंगाई आसमान पर होगी, सीधे सीधे रोजमर्रा की चीजें जो है उनकी कीमतें बढ़ेंगी, अस्थिरता जो है कीमतों में देखने को मिलेगी, खासकर डीजल की कीमतें जो लगभग 2.75 रुपए बढ़ी हैं। और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो सीधे सैकड़ा लगा चुकी है, यानी पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगा लिया है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के जाहिर है सियासत होगी, विपक्ष सवाल उठाएगा, इस पूरी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। लेकिन त्रिशा की खबर में आखिर हुआ क्या? त्रिशा की सास भी सवालों के घेरे में है, लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल करने का उस पर आरोप लग रहा है। तो आखिर इस केस में अब तक क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
7: गिरिबाला सिंह त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरिबाला सिंह भले ही कुछ न बोले लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
8: स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जाँच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
7: जिस ब्यूटी पार्लर में त्रिशा गई थी वहां त्रिशा की सास को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। 12 मई को त्रिशा ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसके अगले दिन यानी 13 मई को सुबह 11:30 बजे त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह का फोन आया। किरण का दावा है कि इस दौरान गिरिबाला ने बार बार पूछा क्या त्रिशा पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई, कितने बजे गई और पेमेंट कैसे किया गया।
9: कि जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा?
10: मुझे पता चला जब गिरिबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि त्रिशा कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्विशा कब आई और कब गई।
11: ये कब कॉल आया था आपके पास?
10: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है।
11: 13।
10: फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी इतने बजे गई थी।
7: इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले का अहम सबूत सीसीटीवी ट्विशा की सांस ले गई, लेकिन पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर तक नहीं पहुंच सकी।
10: पुलिस तो नहीं आई
9: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं आई?
10: नहीं, कोई नहीं आया।
9: आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा फुटेज के अलावा?
10: नहीं, कुछ भी नहीं।
7: 11 दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये मामला सिस्टम रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है।
12: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए? कोई कानून है ऐसा?
13: 3 नोटिस जारी हो चुके हैं अभी तक। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
12: पीड़ित परिवार पूछिए,
14: पीड़ित परिवार कहता है
13: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
14: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। आप
12: स्वागत है सीबीआई जांच का।
7: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 11 दिन बाद भी पता न लगा सकी, उससे भी सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ।
15: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को। और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
7: इस बीच एमपी पुलिस त्रिशा के सास गिरिवाला के घर हाईकोर्ट का नोटिस लेकर पहुंचे।
14: आप बता जो, जो भी
16: हाईकोर्ट
17: का नोटिस है,
7: अब ट्विशा का ससुराल सवालों के घेरे में, जिसमें सास की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी ने जान सुखा रखी है। दिन का सूरज शोले बरसा रहा है। अगर आपको कहीं बर्फ का पहाड़ टूटा गिरता दिखे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ बद्रीनाथ में हुआ। देखिए रिपोर्ट।
0: जब बर्फ का पहाड़ दरकता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बद्रीनाथ में कंचनजंगा घाटी पर बर्फ का तूफान आया है। पहाड़ से बर्फ के गोले बरस रहे हैं, पानी की तरह बर्फ बह रही है। तस्वीरें देखने में जितनी अद्भुत लग रही हैं, असलियत उतनी ही खौफनाक है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसी दौरान कंचनजंगा के ऊपर का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे की ओर बहने लगा। हालांकि ग्लेशियर यात्रा मार्ग तक नहीं पहुंचा और ऊपरी हिस्से में ही रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
19: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट। right before it ends.
16: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our Big Breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
17: मुख्य द्वार पर क्या रखें कि घर में धन और संपन्नता आए? मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो? पर क्या रखें कि घर में धन और संपन्नता आए? मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो? और मुख्य द्वार पर ऐसा कौन सा चिन्ह बनाएं जिससे घर में शुभता बनी रहे? मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं, ऐसा क्या रखें जिससे जीवन में मिले संपन्नता? जानिए मेरे साथ सिर्फ
19: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल. We wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
16: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our Big Breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Presented by पतंजलि गाय का घी. लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.

महंगाई की एक और किश्त, पेट्रोल की कीमतों ने लगाया शतक। 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार हुआ ईंधन की कीमतों में इजाफा। भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज तक से खास बातचीत में कहा अंतिम दौर में है व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ लाइव फोन पर जुड़े ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं मैं, भारत कर सकता है भरोसा। विशा केस में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज के आरोप, आज सुनवाई, भोपाल वाले घर से एम्स फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। और ईरान अमेरिका के बीच समझौतों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, ईरान ने कहा फ्री संपत्तियां जारी करने तक नहीं होगा अंतिम फैसला, ट्रंप ने कहा हड़बड़ी में नहीं होगा फैसला।

0: ब्रेक के बाद आपका आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आज सोमवार है और अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर ये कि ईंधन की कीमतों में एक बार फिर महंगाई का तड़का लग चुका है। तेल के दाम फिर बढ़ गए हैं। आज सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा हो गया है तो डीजल की कीमतों में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार तेल के दाम में बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ पेट्रोल की कीमतों ने एक बार फिर 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद खड़े हुए वैश्विक संकट के बीच ये पहला मौका है जब पेट्रोल की कीमतों ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिकेगा तो डीजल की कीमत भी अब बढ़ चुकी है, जिसके बाद डीजल की कीमत अब 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जिसकी पहले कीमत 92 रुपए 49 पैसे थी। यानी डीजल की कीमतें भी पेट्रोल के साथ साथ ही चल रही हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क है। और अगर ये बढ़ोतरी जारी रही, जिसको लेकर अंदेशा लगातार बना हुआ है कि अभी ये धीरे धीरे एक जोर का झटका लग रहा है, लेकिन क्या ये यहीं पर रुक जाएगा ये कोई नहीं जानता। सरकार हवाला दे रही है ऑयल कंपनियों को हो रहे नुकसान का, इसकी भरपाई अब जनता की जेब से होगी, हमारी आपकी जेब से होगी। महंगाई का झटका पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होने के चलते सीधी मार महंगाई पर, यानी महंगाई का चौतरफा अटैक देश की आवाम पर, आम आदमी को बड़ा झटका। जाहिर है पेट्रोल महंगा होने के चलते रोजमर्रा के लिए जो अपनी गाड़ियों से यातायात करते हैं, चाहे वो 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो, उनकी जेब पर सीधा असर। तो डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद महंगाई का भी डबल बम फूटेगा, जाहिर है, जिससे सार्वजनिक यातायात महंगा होगा। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के चलते खाने पीने की वस्तुओं में भी इजाफा देखने को मिलेगा। यानी महंगाई बम बस दस्तक दे चुकी है। 10 दिनों में चौथी बार तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी। तो करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब मेयर सुनीता दयाल ने 2 नाबालिग बच्चों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। आरोप यह है कि बच्चे हिंडन नदी में मीट से भरी बोरी फेंकने जा रहे थे। मौके से गुजर रहे मेयर ने कार रोकी, पूछताछ शुरू कर दी और देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। फोन करके पुलिस को बुलाया गया। हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मेयर पुलिस को धमकाती नजर आ रही है कि अगर उन दोनों लड़कों को छोड़ा गया तो पूरा थाना सस्पेंड होगा।
1: नहीं जा तू, अगर ये छोड़ देगा तो सस्पेंड करवा दूंगी। थे उसका नाम देख ले क्या है बात सुनो। हाँ हेलो, थाना सस्पेंड करा दूंगी तू अगर गड़बड़ हो गई। मैं अभी कमिश्नर से बात कर रही हूँ, पुलिस कमिश्नर से। मास्क फेंकने बच्चों को भेजा है, भेजा किसने, कौन है मदरसे में, कौन है, बात सच सच बता दे बेटा। उस्ताद कौन है तेरा,
2: नाम बता।
1: उसने कह के भेजा भाई तो बच्चे
3: कारिश्मीन
1: नंबर बताया, इसका नंबर होगा तुझे सब याद है। मार्च भेजने फेंकने भेजा, इसका मतलब उसने जान के भेजा है।
0: मेयर साहब के मिजाज में गर्मी है। उधर पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, पारा चढ़ता जा रहा है, लोग भीषण गर्मी से बचने के अलग अलग जतन कर रहे हैं और इस गर्मी में बिजली कटौती लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भयंकर बिजली कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। तो अब जब दबाव बढ़ा है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, आदेश दिया कि प्रदेश में निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई की जाए।
4: उत्तर भारत में आग बरस रही है, मई मार डालने पर उतारू है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और आदमी तड़प रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में बिजली कटौती तबाही मचा देने वाली है। इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाए, गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाए, बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाए, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार भले ही बता रही हो कि वो बिजली कटौती के खिलाफ एक्शन में है, मगर सच्चाई यही है कि कई शहरों और गांवों में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है और आदमी परेशान है, इसीलिए विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है।
2: देखिए, 9 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी गर्मी बढ़ती, जब भी ठंड बढ़ती, जब भी बिजली की मांग बढ़ती है, बिजली व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा जाती है। चाहे लखनऊ राजधानी की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, बिजली कब आती, कब जाती, कब जाती, फिर आती नहीं।
4: सियासत अपनी जगह है, मगर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें बिजली कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो सिर्फ वातावरण में तापमान नहीं बढ़ रहा है, यूपी में सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर के बीएसपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से विरोधी पार्टियों के संकीर्ण और छलावे की राजनीति से खुद को बचाने की भी अपील की। इस बैठक में उनके महासचिव आकाश आनंद, उनके भाई आनंद कुमार, पार्टी के वरिष्ठ लीडर सतीश मिश्रा भी मौजूद थे। मायावती चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंकने की कोशिश में जुटी हैं, ताकि यूपी में एक बार बीएसपी को फिर से खड़ा किया जा सके।
5: 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें आकाश आनंद, उनके भाई आनंद और पार्टी से सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ ये बैठक को उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ बुलाई गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ग्राउंड पर हालात को समझने के लिए, देखने के लिए, ग्राउंड पर जिस तरीके से पार्टी की स्थितियां हैं उसको समझने के लिए ये बैठक बुलाई है, और पूरे प्रदेश में समझने के लिए कि कैसे अब आगे रणनीति अपनाई जाएगी ये तय होगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: तो सियासी तापमान सिर्फ लखनऊ में नहीं बढ़ा है, उसका असर तो अब दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के भी सियासत तेज हो गई। एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में बोलते हुए यह कह दिया कि 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय है, यह सरकार गिर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में जिस तरह आर्थिक असंतोष बढ़ रहा है वो मोदी सरकार की विदाई का कारण बनेगा।
4: कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में बात होनी थी अल्पसंख्यकों की, मगर बात हो गई सरकार की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अपने बड़े दावे को 4 पॉइंट से पुख्ता किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष को वजह बताया।
6: जनता जवाब नहीं दे रही, जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकल रही है। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही। हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई। अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी।
4: अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिसके साथ अन्याय हो कांग्रेस को खुलकर उसके साथ खड़े होना चाहिए। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश में है, जिसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम देती रही है।
7: क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है, और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं, कांग्रेस साजिश करती रहती है।
4: अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआत है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर राजधानी दिल्ली की, जहां टेम्पो स्टैंड पर एक गार्ड को एसयूवी सवार ने कार से कुचलकर मार दिया। हत्या की जो तस्वीर सामने आई वो हिला देने वाली है, क्योंकि एसयूवी सवार ने जानबूझकर गार्ड को अपनी गाड़ी से कुचल के मार डाला।
4: देश की राजधानी दिल्ली से दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहले एक शख्स यहां गार्ड को डंडे से पीट रहा है, इसके बाद एसयूवी सवार गाड़ी आगे बढ़ाता है और गार्ड पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब तक गार्ड जिंदा था, इसके बाद ये एसयूवी सवार दोबारा गार्ड पर गाड़ी चढ़ाता है। इस तरह से जानबूझकर ये लोग गार्ड को गाड़ी से कुचलकर मार डालते हैं।
8: 60 वर्ष के सिक्योरिटी गार्ड विजेंदर जब कल रात को अपने घर से ये बोल करके निकले होंगे कि मैं काम पर जा रहा हूं, तो उनके घर वालों को यह एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि आज उनसे उनकी आखिरी मुलाकात है। कल करीब 2:30 बजे इसी जगह पीड़ागढ़ी पे जहां मैं खड़ा हूं, सिक्योरिटी गार्ड विजेंदर यहीं पर तैनात थे जब गाड़ी में दो लोग आते हैं। पहले बहस होती है, फिर लाठी डंडों से उन पर हमला होता है और उसके बाद उनके ऊपर बेरहमी से दो बार गाड़ी चढ़ाकर यहां से फरार हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहां तस्वीरों में दिखाऊं तो यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे ये पूरी वारदात हुई है।
4: तस्वीरें पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी में टेम्पो स्टैंड की है, जहां 60 साल के गार्ड विजेंद्र को कुचलकर मारा गया। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: देश के मैदानी इलाकों में जहां झुलसा देने वाली गर्मी ने जान सुखा रखी है, दिन का सूरज शोले बरसा रहा है। ऐसे में अगर आपको कहीं बर्फ का पहाड़ टूटता गिरता दिखे तो आप क्या कहेंगे? आखिर बद्रीनाथ के।
4: जब बर्फ का पहाड़ तरकता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को

0: देखने में जितनी अद्भुत लग रही हैं, असलियत उतनी ही खौफनाक है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसी दौरान कंचनजंगा के ऊपर का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे की ओर बहने लगा। हालांकि ग्लेशियर यात्रा मार्ग तक नहीं पहुंचा और ऊपरी हिस्से में ही रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर पश्चिम एशिया से, जहां ये उम्मीद थी कि क्या दुनिया को अब राहत भरी खबर मिलने वाली है, वो खबर जिसके लिए अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए था। तो खबर ये है कि ईरान ने यूरेनियम छोड़ने की तैयारी कर ली है, जिस मुद्दे को लेकर के ईरान अड़ा हुआ था। अमेरिका भी टस से मस नहीं हो रहा था, अब उस पर सहमति बनती दिखाई दे रही है।
0: देशों के असरदार लीडर्स के साथ ट्रंप की कॉल के बाद क्या कुछ ही घंटों में युद्ध विराम का ऐलान होने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज और यूरेनियम को लेकर सहमति अंतिम दौर में है? ट्रंप से लेकर तमाम खाड़ी देश सोशल मीडिया पर खुशी जता रहे हैं कि दोनों देश समझौता होने के बेहद करीब हैं, लेकिन ईरान के आधिकारिक चुप्पे से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि 30 दिन हॉर्मुज से आवाजाही को सुगम बनाने और 60 दिन एटमी मुद्दे पर बातचीत के लिए दिए जा सकते हैं। पहले ही दौर में ईरान की फ्रीज संपत्तियों को छोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, लेबनान में भी हमले रोकने और ईरानी तेल पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियां हटाना इसमें शामिल है। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि जब तक समझौते पर मुहर नहीं लगती, तब तक ईरान के लिए किसी ऑफर या छूट का सवाल ही नहीं।
2: U.S. offer Iran oil sanctions relief during the peace talks, as Iranian state media has reported?
3: No, I haven't heard that. I'm not doing any relief until they sign an agreement. When they sign an agreement, we can get that place built up again and have something that's really a good country for the people. But no, we haven't offered anything.
0: लेकिन ईरान का संदेश बेहद साफ है। कोई कितनी ही बात कर ले, कितने ही दावे कर ले, ईरान एक भी शर्त ना तो आंख बूंद कर मानेगा और ना ही अपने सर्वोच्च लीडर की अनुमति के बिना कोई भी फैसला लेगा। आज तक ब्यूरो।
1: उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला कर दिया। मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में रिहायशी इमारतों, स्कूलों को नुकसान पहुंचा। एक इमारत का वीडियो भी सामने आया जहां धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा। पूरी इमारत तबाह हो गई।
0: एक बार फिर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम बरसाए। एक बार फिर कीव पर रूस ने किया है मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला। ये तस्वीरें देखिए, भयानक आग का गोला है, धुएं का गुबार है। रूस की ओर से रिहायशी इलाके में बारूद बरसाया गया है। इस हमले में ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस की ओर से 6000 ड्रोन और 90 मिसाइल दागे गए। इस हमले में कीव और आसपास के हिस्से में 4 लोगों के मौत की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन के कई इलाकों में जवाबी कार्रवाई हुई है। इसके तहत यूक्रेन के मिलिट्री कमांड फैसिलिटी और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। रूस की माने तो यह हमला कीव के हमले के जवाब में किया गया है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में उस समय मौजूद थे जब बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास एक चेक पॉइंट पर करीब 20 राउंड फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया।
4: President Trump has said a deal is close, only for the two.
0: गोलियों की गूंज से दहल उठा है व्हाइट हाउस। संवाददाता रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी ताबड़तोड़ गोलियां बरसी। व्हाइट हाउस के पास इस हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग सुनकर पहले तो रिपोर्टर भौचक्की रह जाती है और फिर अपनी जान बचाने के लिए नीचे छिप जाती है।
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: व्हाइट हाउस परिसर में भगदड़ मच जाती है। वहां मौजूद हर शख्स अपनी जान बचाकर तेजी से भागता है। सुरक्षा कर्मी उन्हें अलर्ट करते दिखे। सभी रिपोर्टर्स को व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में दौड़कर जाने के लिए अलर्ट किया गया।
5: Evacuate, Chudy. We have to evacuate, Chudy. Evacuate, Chudy. We have to evacuate.

0: Shooting.
1: देखते ही देखते इस इलाके में FBI और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। घटना अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 6 बजे हुई। व्हाइट हाउस के पास 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वानिया एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट के पास ये गोलीबारी हुई। हमलावर का नाम नासिर वेस्ट बताया जा रहा है। 21 साल के इस हमलावर को लेकर खबर है कि शनिवार की शाम वो व्हाइट हाउस के पास अजीबोगरीब ढंग से इधर उधर घूमता दिखा। उसके बाद ही उसने चेक पॉइंट पर गोलीबारी की। उसने रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और कुछ ही गोलियां चला पाया कि वो सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। आज तक ब्यूरो।
2: अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के क्वेटा में एक ट्रेन को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। सुसाइड अटैक की जिम्मेदारी BLA ने ली है। BLA के दावों की माने तो इस आत्मघाती हमले में 30 लोगों की मौत हुई है, 70 लोग जख्मी हुए हैं।

0: पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से एक ट्रेन दहक रही है, ये तबाही की तस्वीरें हैं। बोगियां जल रही हैं, कारें राख हो गई हैं, चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर जोरदार आत्मघाती धमाका हुआ है, जिसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस आ गई और रेल की बोगियां धधक उठी। ट्रेन क्वेटा कैंट की ओर जा रही थी, अचानक धमाका हुआ और रेल की बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियां राख हो गईं, इमारतों के शीशे टूट गए। इस आत्मघाती धमाके की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया है। बताया जा रहा है कि धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख पैसेंजर ट्रेन है। ये बलूचिस्तान समेत कई संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। ये ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है वहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी का दबदबा है, इसीलिए इसके पहले भी इस ट्रेन को कई बार निशाना बनाया गया था। आज तक ब्यूरो।
1: खबर आईपीएल से जुड़ी हुई, राजस्थान ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया है। इसके साथ ही कोलकाता और पंजाब की टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हैं।
0: मुंबई से जीत गया राजस्थान, प्लेऑफ में पहुंचा राजस्थान, टूट गए पंजाब और कोलकाता के अरमान। अपने आखिरी लीग मुकाबले में जीत के साथ ही राजस्थान ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब ना तो किसी दूसरे टीम के नतीजे को देखना है और ना ही रनरेट के लफड़े में पड़ना है। मुंबई की टीम आखिरी मैच में बिना बुमराह के पहले गेंदबाजी करने मैदान में उतरी थी और शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन राजस्थान को जीतने से नहीं रोक सकी। अब आईपीएल के सीजन की टॉप चार टीमें यानी प्लेऑफ में पहुंचने वाली चारों टीमें भी तय हो गई हैं। पहले पायदान पर 9 जीत और 18 अंकों के साथ है डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु, जबकि गुजरात और हैदराबाद की टीमें भी 18 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज राजस्थान ने भी 8वीं जीत हासिल कर 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही कल रात लखनऊ को हराने वाली पंजाब की टीम को जो आस जगी थी वो अब खत्म हो गई है। अब 15 अंकों के साथ वो 5वें पायदान पर आ गई है। अब कोलकाता की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। आज शाम होने वाले दूसरे मैच में अगर वो दिल्ली को हरा भी देती है तो भी वो टॉप चार में जगह नहीं बना पाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: के द्वार पर क्या रखें कि घर में धन और संपन्नता आए, मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो, और मुख्य द्वार पर ऐसा कौन सा चिन्ह बनाएं जिससे घर में शुभता बनी रहे। मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं, ऐसा क्या रखें जिससे जीवन में मिले संपन्नता, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

महंगाई की एक और किश्त, पेट्रोल की कीमतों ने लगाया शतक। 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार हुआ ईंधन की कीमतों में इजाफा। भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, आज तक से खास बातचीत में कहा अंतिम दौर में है व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ लाइव फोन पर जुड़े ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं मैं, भारत कर सकता है भरोसा। विशा केस में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज के आरोप, आज सुनवाई, भोपाल वाले घर से एम्स फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। और ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, ईरान ने कहा फ्री संपत्तियां जारी करने तक नहीं होगा अंतिम फैसला, ट्रंप ने कहा हड़बड़ी में नहीं होगा फैसला।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर के मुख्य द्वार से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, सौभाग्य आता है, इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज लगानी या रखनी चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां आएं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं, ऐसा क्या रखें जिससे आपके जीवन में खुशियां आएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:07 तक, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक, पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आप क्या लगाएं या क्या रखें जिससे जीवन में संपन्नता आए और खुशियां आएं। सबसे पहले जानते हैं कि मुख्य द्वार का महत्व क्या है। देखिए, घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। आपके घर के मेन डोर से ही घर में संपन्नता और समृद्धि आती है, और इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। मुख्य द्वार अगर ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। घर में तनाव रहेगा, घर में निरंतर बीमारियां बनी रहेंगी। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए लोग अपने मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर तमाम वस्तुएं लगाते हैं। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से लोग अपने घर के मेन डोर पर फूल, स्वस्तिक, देवी देवता के चित्र, ये सब लगाते हैं। सोच समझकर बुद्धिमानी से लगाएंगे तो लाभ अवश्य होगा। सबसे पहले मुख्य द्वार पर लगाया जाता है ज्यादातर मंगल कलश। इसको मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर कैसे स्थापित करें, तरीका क्या है? कलश का अर्थ होता है संपन्नता, यानी प्रॉस्पेरिटी। ये शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है। कलश की स्थापना घर में
मुख्य रूप से दो जगह पर की जा सकती है, एक अपने मुख्य द्वार पर और दूसरा अपने पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर जो कलश रखा जाता है उस कलश का मुख चौड़ा होना चाहिए और खुला होना चाहिए और कलश में पर्याप्त पानी भर करके रखना चाहिए। कलश ना भी रख पाए तो चौड़े मुंह का बर्तन जिसमें थोड़ा पानी आ सके उसमें भी पानी भरकर रख सकते हैं और हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डाल करके रखनी चाहिए। रोज पानी बदलते रहिए, नया पानी भर करके मुख्य द्वार पर रखते रहिए। अगर मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश या जल से भरा पात्र रखेंगे तो घर में संपन्नता आएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। कलश नहीं रख पाते, आजकल चौड़े चौड़े मुंह के पीतल के स्टील के बर्तन आते हैं उसको रखिए मेन डोर पर सुबह सुबह सफाई के बाद और उसमें पंखुड़ियां डाल दीजिए। अगले दिन सुबह सफाई करते समय पुराने पानी को बदल करके सफाई के बाद उसमें नया पानी और फूल की पंखुड़ियां डालकर छोड़ दीजिएगा। मुख्य द्वार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, सर्दी जुखाम हो सकता है, बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मुख्य द्वार पर सबसे ज्यादा जो भारत में लगाया जाता है, हमारी परंपरा में लगाते हैं, वो है वंदन वार।
वंदन वार को मुख्य द्वार पर कैसे स्थापित करें? किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पहले मुख्य द्वार पर वंदन वार लगाया जाता है। आजकल बहुत सारे तरीके के वंदन वार आते हैं, तमाम तरह के वंदन वार लगाए जाते हैं, पर आम के पत्तों का वंदन वार सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। और आम के पत्तों के वंदन वार को मौली में या सुतली में लपेट करके मेन डोर पर लटकाते हैं। आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में कोई त्योहार होगा, कोई उत्सव होगा तभी लगेगा। आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं। मंगलवार को मुख्य द्वार पे वंदन वार लगाना सबसे अच्छा है। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है और पत्ते टूटने के बाद भी ऑक्सीजन देते रहते हैं, इसीलिए इसको मेन डोर पर लटकाया जाता है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता दूर होती है, इसीलिए आम के पत्तों से बना वंदन वार घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का वंदन वार भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। वंदन वार मंगलवार को लगाइए और अगले मंगलवार को पुराना वंदन वार बदल करके नया वंदन वार टांग दीजिए। अगर नियमित रूप से घर के मेन डोर पर वंदन वार लगाए रखेंगे तो आपके घर में शुभता बनी रहेगी, खुशियां आती रहेंगी। मुख्य द्वार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न भीम सिंह ने हमें लिखा है, बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1996, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है बाड़मेर राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भीम सिंह जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और बहुत प्रबल संभावना है कि साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। बाड़मेर के आसपास में ही कहीं 100-200 किलोमीटर के अंदर इनकी शादी होने की संभावना दिखाई देती है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वंदन वार के बाद सबसे ज्यादा जो चीज मेन डोर पे लगाई जाती है वो है स्वस्तिक का चिन्ह। स्वस्तिक को मुख्य द्वार पर कैसे स्थापित करेंगे? स्वस्तिक 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है और आम तौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक अगर टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे, गलत तरीके से स्वस्तिक लगाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं और स्वस्तिक का सही प्रयोग करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं। वैसे तो स्वस्तिक किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन लाल और नीले रंग का जो स्वस्तिक है ये विशेष प्रभावशाली माना जाता है, ये बहुत ताकतवर माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, मेन डोर के दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष और दिशा दोष दूर होता है। घर के मेन डोर के ऊपर बीचों बीच नीले रंग का स्वस्तिक आप लगा सकते हैं और ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन मेन बात जो समझने की है वो ये है कि आपको घर के मेन डोर पर लाल रंग का स्वस्तिक जरूर लगाना चाहिए, ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। मुख्य द्वार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, नए काम की शुरुआत होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। घर के मुख्य द्वार पर बहुत सारे लोग देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति लगाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा चित्र या मूर्ति लगाई जाती है भगवान गणेश की। तो गणेश जी का चित्र या मूर्ति कैसे लगाएं? घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र लगाएं या मूर्ति लगाएं बिना नियम और जानकारी के न लगाएं, क्योंकि बिना नियम और जानकारी के लगाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता होती है। इसीलिए जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएं उन्हें अंदर की तरफ लगाएं, उनका चेहरा अंदर हो, पेट अंदर हो, पीठ बाहर की तरफ हो। अगर आप बाहर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएंगे तो उनका पेट बाहर होगा, पीठ अंदर की तरफ होगी, और बाहर की तरफ लगाने से घर में धन का अभाव होगा और दरिद्रता बढ़ेगी। अंदर की तरफ दरवाजे के अंदर जब आप घुसते हैं मेन एंट्री के ऊपर अंदर की तरफ गणेश जी लगाने से बाधाओं का नाश होगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप चित्र या मूर्ति गणेश जी की लगा रहे हैं ये पीले रंग का लगाएं तो बहुत ही सुंदर होगा और घर से निकलते समय मेन डोर पे तो दिख ही जाएंगे आपको अंदर लगे हुए हैं। तो नमस्कार करके उन्हें घर से निकलें, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवाद हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
नारंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोग नया घर बनते समय या बड़ा सुंदर घर बन जाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर कोई खराब सी शक्ल, राक्षस का चित्र या खराब सी कोई मटकी लटका देते हैं ताकि घर को नजर ना लगे। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, घर का मेन डोर शुभता का स्थान है। वहां पर घर बन रहा हो तो भी और घर बन जाए तो भी राक्षस का चित्र या कोई बुरी शक्ल मटके पे बनी हो वो टांगना या लटकाना नहीं चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। घर को अगर नजर दोष से या निगेटिव एनर्जी से बचाना है तो बनते समय या बन जाने के बाद भी घर के मेन डोर पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें। ऐसा करने से भी आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है,
चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

शुभ होगा सिंह राशि के लिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, सेहत बिगड़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, इसलिए इस समय नए कार्य की शुरुआत ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

तेल के दाम में फिर महंगाई का तड़का लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा हो चुका है तो डीजल की कीमतें 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार तेल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिन दामों में करीब करीब पूरे देश में 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया तो कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 51 पैसे तो डीजल 99 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। तेल के दामों में नए उछाल के बाद मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे तो डीजल 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में भी ईंधन महंगा हो चुका है, पेट्रोल 107 रुपए 77 पैसे डीजल 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। 10 दिनों में 7 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में अमेरिकी स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में फोन पर लाइव जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर लाइव जोड़ा। ट्रंप ने भारत से विशेष लगाव और पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। प्रधानमंत्री मोदी को शानदार नेता बताते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत 100% मुझ पर भरोसा कर सकता है, कभी मदद चाहिए तो हम साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्को रूबियो को बेहतरीन विदेश मंत्री बताया। बोले, पीएम मोदी को मेरा हेलो कहना, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। भारत अमेरिका के गहरे रिश्ते की चर्चा करते हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का हाल पूछते हैं। आज तक विशेष बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का करीबी सहयोगी बताया और कहा भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर मार्को रूबियो ने कहा कि अंतिम चरण में बातचीत है, जल्दी ही समझौता भी हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा संकेत भी दिया है, निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक और मौजूदा हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन के क्षेत्र में क्वाड देश मिलकर सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के दौरे का तीसरा दिन है। सुबह 9 बजे वो आगरा के लिए रवाना होंगे। मार्को रूबियो आगरा कार्यक्रम के बाद दोपहर 1 बजे जयपुर भी जाएंगे। मिडल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव के समझौते को लेकर के बातचीत भी जारी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान की बातचीत अब प्रगति पर है। ट्रंप ने ईरान से रिश्ते पर अधिक पेशेवर सकारात्मक होने का भी दावा किया। अपनी शर्तों पर उन्हें सहमति का इंतजार भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, किसी भी गलती की अब गुंजाइश नहीं बची है। तो इस समझौते को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर नियंत्रण अब ईरान का कानूनी अधिकार बन चुका है। अमेरिका ईरान तनाव में मारे गए लोगों की याद में समारोह किए गए झंडे और पोस्टर के साथ बड़ी संख्या में लोग तेहरान में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कमजोर प्रधानमंत्री कहा है। कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर डील की है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को नुकसानजनक बताया। कहा कि सरकार का यह फैसला किसान और उद्योगों पर बुरा असर डाल सकता है। पीएम मोदी पर विदेश नीति को लेकर के विपक्ष हमलावर दिखा। इमरान मसूद ने कहा कि अमेरिका से समझौते भारत के हितों में नहीं है, महंगाई बढ़ने से आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। राहुल गांधी के पीएम मोदी वाले विदाई के बयान पर बीजेपी भड़क चुकी है। मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को गिराकर देश में अराजकता लाना चाहते हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के बयान को ख्याली पुलाव बताया। कहा, दिन में ही सपने देख रहे कांग्रेस के सांसद। आज दोपहर 3 बजे संसद की स्थायी समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें पश्चिम एशिया संकट के भारत के समुद्री व्यापार के प्रभाव पर भी चर्चा हो सकती है। पोत बंदरगाह जलमार्ग मंत्रालय के सचिव बैठक में हिस्सा लेंगे। समुद्री व्यापार, शिपिंग ढांचा और नाविकों की सुरक्षा पर जो असर है उस पर भी चर्चा होगी। पश्चिम एशिया संकट से भारत के ऊर्जा व्यापार पर जो असर हुआ उसकी चर्चा भी होगी। हॉर्मुज में तनाव के बीच शिपिंग पर पड़ रहे प्रभाव पर भी स्थायी समिति की बैठक में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 से पहले बीएसपी की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। मायावती ने समीक्षा बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। कल हुई बीएसपी की इस बैठक में आकाश आनंद, आनंद कुमार, सतीश मिश्रा मौजूद रहे। मायावती ने विपक्ष पर छलावे की राजनीति का आरोप लगाया। नीट पेपर लीक मामले में सियासत गर्मा चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता यह आंदोलन जारी रहेगा। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। नीट पेपर लीक मामले के बाद राजस्थान के झुंझुनू में आत्महत्या करने वाले छात्र के परिजनों से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुलाकात की, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा। सीबीएसई रिजल्ट पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिली। रिजल्ट के बाद पोर्टल में ब्लर पेज की दिक्कतें सामने आई।
सीबीएसई ने मामले पर प्रतिक्रिया दी, कहा आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की मदद ली जाएगी, पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। देवांशु पांडा ने 109,021 वोटों से चुनाव जीत लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव की किसी भी सीट पर बीजेपी की दर दर जज की गई है, सबसे बड़ी जीत है। चौथे नंबर पर टीएमसी रही, जहां पार्टी को सिर्फ 8,500 वोट मिले। चुनावी नतीजों पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा बीजेपी ने फिर से वोटों की चोरी की है, केंद्रीय बलों ने बीजेपी एजेंट की तरह काम किया। फलता में बीजेपी की जीत पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये महिलाओं, युवा, लोकतंत्र की विजय है, हम एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुभेंदु सरकार पर धावा बोला, कहा मुझे बैठक करने को नहीं इजाजत दी जा रही, 2,500 पार्टी कार्यालयों पर कब्जा भी कर लिया गया। बिहार में आरजेडी की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल अब बीजेपी में शामिल होंगी। 26 मई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सदस्यता दिलाएंगे। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने यूपी की राजनीति पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। भागलपुर के बाद बिहार के एक और पुल के स्पैन में गैप आ चुका है। गोपालगंज में जादोपुर मंगलपुर महासेतु पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पटना के मोकामा में अनंत सिंह के समर्थक पर फायरिंग करने वाले सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी बिहार पुलिस, समर्थकों ने पुलिसकर्मियों की ही तलाशी ले ली। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। पानी की समस्या को लेकर के आरडब्ल्यूआर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है, लोगों को धूप से बचने की सलाह दी जा रही है, जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 27 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। यूपी के बदायूं में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजारों में सन्नाटा पसर चुका है, घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। उधर कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला, आंधी तूफान से भारी तबाही हुई है लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन तालाब बन गया, शेर से झरने की तरह पानी गिरते नजर आया। दिल्ली में कल की मामूली राहत के बाद फिर से दिन गर्म होने लगा है। दोपहर में कड़ी धूप के बीच अब घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली की तपती गर्मी में खुले काम करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिक्शा चालक स्टेशन पर कुलियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बनाने में जुटी है गर्मी, राजधानी लखनऊ में भी तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। हीटवेव के संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, कहा कि राहत बचाव को लेकर के उन्हें सतर्क रहना होगा। लखनऊ में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए रेड सिग्नल पर ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, कूलिंग वाटर स्प्रिंकलर की भी व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा के ऊपर ग्लेशियर टूट गया, पानी की तरह बहते हुए बर्फ वहां दिखाई दी। हालांकि इस ग्लेशियर पिघलने की घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधर चमोली के जंगलों में आग लगने का भी सिलसिला जारी है, तेज हवाओं के चलते आवासीय बस्तियों तक आग पहुंच रही है, वन विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इम्फाल में कोकुमी संगठन ने युवा बाइक रैली निकाली, सेव मणिपुर का संदेश दिया। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों और पुलिस ने पेश की मिसाल, पब्लिक टॉयलेट में बच्चे की जान बचाई। जूनागढ़ में युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया, युवती ने कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। गुजरात के भावनगर में नहाते वक्त समुद्र में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, स्थानीय तैराकों ने उनका शव बरामद किया। चकराता के फेडलानी जंगल में भीषण आग लगी, जंगल की आग की चपेट में कई दुकानें आ गई, फायर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जैसलमेर की डंपिंग साइट पर बड़ी संख्या में मृत गायों के शव मिले हैं, जांच में राजस्थान पुलिस जुटी है। नागपुर में फॉर्चुनर कार से 30 लाख रुपए का डोडा पोस्त बरामद किया गया है, होम डिलीवरी के लिए तस्कर जा रहे थे। पंजाब के मोगा में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता अमनदीप सिंह की लाश मिली है, परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। चित्तौड़गढ़ में प्राइवेट बस गहरी खाई में पलट गई, 25 यात्री घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्कॉर्पियो ने शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी, सीसीटीवी में घटना कैद हुई, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने ट्रैफिक होमगार्ड पर हमला कर दिया, पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। बिहार के सुपौल में गश्ती के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया, एक एएसआई और महिला होमगार्ड जवान घायल हुए, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। अमृतसर में ड्यूटी पर जा रहे पंजाब पुलिस के एएसआई जोगा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग पर प्रहार, 3 शार्प शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, हिस्ट्री शीटर नीरज कादिया के हत्यारे काबू में पिए गए, 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वाराणसी में 10 साड़ी और 16,000 रुपए के लिए मां ने एक बच्ची का सौदा कर दिया, खरीदार और ऑटो चालक गिरफ्तार हुए।
ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी हुई। जबलपुर के युवक शादी जिस युवती से कराई गई वो पहले से ही शादीशुदा निकला। ग्वालियर में इंस्टा क्रिएट पलक रजक सुसाइड केस में पति का आरोप, शादी के बाद भी पत्नी का अफेयर था, ननद का दावा, अश्लील वीडियो मेरे पास है। बुलंदशहर के खुर्जा में अफेयर के शक में झोला छाप डॉक्टर ने पिता और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ रिजर्व में बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। उड़ीसा के झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में श्राद्ध के दौरान भोज खाने से 4 लोगों की मौत, 17 से ज्यादा बीमार पड़े। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत हुई। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके दिल्ली लौट रहा था परिवार। राजस्थान रॉयल्स का बड़ा धमाका, मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में शानदार जगह बनाई। वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान का तूफान, 205 रन के विशाल लक्ष्य के आगे मुंबई इंडियंस पूरी तरह बेबस नजर आई। आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। आरसीबी, गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान ने टॉप 4 में जगह बना ली है। क्वालिफायर 1 में आरसीबी और गुजरात के बीच महामुकाबले की टक्कर होगी। एलिमिनेटर में राजस्थान और हैदराबाद आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ खिताब की ओर कदम बढ़ा लिया है। मुंबई इंडियंस की हार से अब ये सफर टूट चुका है।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
5: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
9: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
10: एक हिंट तो देते।
11: हिंट बड़े आराम से।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
14: बस 2000
15: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
16: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
17: आगे आगे,
18: अरे उधर उधर यार,
17: करेक्ट करेक्ट।
19: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: Character, the taste of success.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: पेचीदा है, कई उलझे सवाल हैं, कई गंभीर आरोप हैं और घेरे में है त्रिशा का पति समर्थ सिंह, जो करीब 10 दिनों की फरारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर है। समर्थ से लगातार पूछताछ चल रही है, जिसके जरिए केस की कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने समर्थ सिंह से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई है। समर्थ सिंह से ज्यादातर सवाल जवाब त्रिशा से उसके रिश्ते, त्रिशा की मौत और उसके फरार रहने को लेकर हो रहे हैं। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि 12 मई यानी जिस दिन त्रिशा की मौत हुई वो कहां था, क्या उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सवाल ये भी हुआ कि जब उसे त्रिशा के साथ रहना था तो आखिर वो फरार क्यों हो गया। इसके बाद 10 दिनों तक वो कहां कहां गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस का अहम सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान उसकी अपनी माँ गिरिबाला से भी बातचीत होती रही। ये सारे सवाल त्रिशा शर्मा की मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम से जुड़े हैं।
1: कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी की पत्नी चली जाए और वो लगातार फरार रहे, कहीं ना कहीं उनके कंडक्ट को दिखाता है। जिस तरीके से किसी की पत्नी शांत हो गई, वो एम्स में है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो फरार चल रहे हैं और शुरू से कोशिश करी जा रही है आरोपियों द्वारा मिलके कि किस तरीके से जांच को प्रभावित करा जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड है वो दिखाता है, वो कितना कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं। खुद वकील रहे, उससे पहले उनकी जो मदर है वो डीजे रही, लेकिन किस तरीके से उनका कंडक्ट रहा वो मीडिया में भी सबने देखा।
0: त्रिशा के परिवार वाले लगातार समर्थ पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और उसे त्रिशा की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। एक दिन पहले जब भोपाल की अदालत में समर्थ सिंह की पेशी हुई, तब त्रिशा के भाई ने कहा कि उसके चेहरे पर कोई गम, कोई दर्द नहीं दिख रहा था, उल्टा वो कोर्ट में मुस्कुरा रहा था।
2: जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक।
0: समर्थ सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पर पूछताछ चल रही है। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि उसकी पत्नी त्रिशा और गिरिबाला सिंह के बीच संबंध कैसे थे, क्या कभी गिरिबाला सिंह ने ऐसा कहा था कि त्रिशा उन्हें पसंद नहीं है, क्या त्रिशा रोजाना अपने परिवार से बातचीत में तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र करती थी। इसके साथ जो चैट्स दिखाकर त्रिशा के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन पर उसका क्या कहना है।
3: जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
0: त्रिशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी करीब 5 महीने पहले हुई थी। 5 महीनों में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी, तनाव बढ़ा और त्रिशा की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि क्या इस मौत के पीछे उसके पति समर्थ या ससुराल के किसी भी शख्स की कोई भूमिका तो नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
9: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
10: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
11: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
12: विक्रम, एक हिंट तो देते।
13: विक्रम!
12: हिंट
11: बड़े आराम से।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
18: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही।
17: आप कैसे कर लेते हो?
19: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
18: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
19: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं,
18: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।

0: दिल्ली में कांग्रेस का आलिशान दफ्तर इंदिरा भवन, यहीं पर हुई कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक और सबके केंद्र में रहे राहुल गांधी। उनके सामने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे और फिर आया वो बयान जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच नई जंग छेड़ दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अपने बड़े दावे को 4 पॉइंट से पुख्ता किया। राहुल गांधी ने इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष को वजह बताया।
1: जनता जवाब नहीं दे रही, जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकल रही है। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही। हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई। अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी।
0: बंद कमरे में राहुल गांधी का ताजा बयान राजनीति के बाहरी गलियारे में बवंडर बनकर घूमने लगा। बीजेपी ने इसको साजिश, पीएम की लोकप्रियता का डर और देश में हिंसा फैलाने की मंशा से जोड़कर पलटवार किया। राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस ने फुल स्टॉप लगाया। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी की बैठक में सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस की राजनीति की दिशा पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा, जिसके साथ अन्याय हो कांग्रेस को खुलकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश में है, जिसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम देती रही है।
2: क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं, कांग्रेस साजिश करती रहती है।
0: अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआत है? क्या कांग्रेस आर्थिक असंतोष और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नई जमीन तलाश रही है? क्या राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने एनडीए में असमंजस पैदा करने के लिए ताजा बयान दिया? या फिर बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के नैरेटिव से राहुल गांधी के बयान को कमजोर कर देगी? राहुल गांधी का दावा कितना सच होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल ने मोदी सरकार के जाने का जो समय तय किया है उसका टेस्ट 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधानसभा समेत कई राज्यों के चुनाव में हो जाएगा, जहां मुद्दे भी होंगे, मजहब भी होगा, विकास भी होगा और सत्ता विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा भी। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

देश को महंगाई की एक और किश्त की करंट, पेट्रोल की कीमतों का शतक 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा, डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा।

आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत के साथ अंतिम दौर में है व्यापार समझौता। पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। रूबियो आज जाएंगे आगरा।

दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ लाइव फोन पर जुड़े ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं मैं, भारत कर सकता है भरोसा। आशुषा केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान, पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, भोपाल वाले घर से एम्स फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका, ईरान ने कहा फ्री संपत्तियां जारी करने तक नहीं होगा अंतिम फैसला, ट्रंप ने कहा हड़बड़ी में नहीं होगी डील।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और इस खास बुलेटिन सुपर 8 में तमाम अहम खबरों पर नजर हमारी होगी। आपको बताएंगे कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल आज कितना महंगा हो गया है, वहीं भारत अमेरिका में क्या क्या डील हो रही है, इससे क्या बदल जाएगा ये भी आपको दिखाएंगे। कि बीच इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कॉल आया तो उन्होंने क्या कहा, भारत पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वहीं ईरान अमेरिका के बीच डील फिर से क्यों फंस गई है। आप देखेंगे कि ट्रिशा के दूसरे पोस्टमार्टम के बाद आज क्या क्या होगा इस पूरे केस में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बकरीद पर सियासत काफी गर्मा गई है, कौन कहां खड़ा है, भीषण गर्मी पर क्या है पुनरानुमान और कहां कहां खतरे का अलर्ट जारी किया गया है, इस खबर पर भी होगी बात। साथ ही आईपीएल प्लेऑफ टीमों का टिकट कंफर्म हो गया है, कौन किससे भिड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर। आज जब आप घर से दफ्तर के लिए निकलेंगे तो एक बार फिर से महंगाई से आपका सामना होगा, क्योंकि देश में तेल अब फिर से महंगा हो गया है। जी हां, तेल कंपनियों ने इस महीने चौथी बार तेल की कीमत बढ़ाई है और आज पेट्रोल का भाव 2.61 रुपए और डीजल का भाव 2.71 रुपए महंगा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में भी पेट्रोल अब शतक के पार चला गया है। राजधानी में पेट्रोल का भाव अब 102 रुपए 12 पैसे हो गया। नई दर के मुताबिक दिल्ली में अब डीजल 95 रुपए 20 पैसे मिल रहा है। बात मुंबई की करें तो वहां पर पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे बिक रहा है। तो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से महंगे हो गए हैं, 2 रुपए से ज्यादा महंगे हो गए पेट्रोल डीजल के दाम। कहां पर कितने रेट बढ़े हैं चलिए अब आपको वो बता देते हैं। दिल्ली में पहले 99 रुपए 51 पैसा पेट्रोल था और अब जो कि शतक पार कर चुका है, 102 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली की बात कर रहे हैं डीजल की, जहां पर पहले 92 रुपए डीजल था और अब वहां पर डीजल भी बढ़ गया है और 97 रुपए पहुंच गया है। यहां पर पेट्रोल 102 रुपए पहुंच गया है, दिल्ली में डीजल 95 रुपए हो गया है। तो आप समझिए एक बार फिर से दिल्ली में कितने दाम बढ़ गए हैं, 100 शतक पार कर चुका है पेट्रोल के दाम। अब मुंबई का हाल आपको बताते हैं, पहले जो कि 108 रुपए था वो 111 रुपए 21 पैसे हो गया है। डीजल के दाम जहां 95 रुपए 2 पैसे थे वहां 97 रुपए 83 पैसे हो गए हैं। तो आप अंतर समझिए कितने बढ़ गए हैं। वहीं कोलकाता की बात करें, यहां पर भी महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल के दाम 110 रुपए थे अब वो बढ़ गए हैं, डीजल के दाम भी बढ़ गए, 99 रुपए अब हो चुके हैं जो कि पहले कोलकाता में 96 रुपए 98 पैसे थे। तो वहीं चेन्नई का हाल आपको बताते हैं, पेट्रोल जहां पर पहले 105 रुपए 36 पैसे था वहीं अब पेट्रोल के दाम 107 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गए हैं। चेन्नई में डीजल की बात करें तो 99 रुपए और 55 पैसे डीजल पहुंच गया है। तो दाम अब फिर से बढ़ गए, महंगाई की मार एक बार फिर से आम आदमी झेलने वाला है। चौथी बार तेल महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल लगभग 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल 90 पैसे लीटर महंगा हुआ है, चौथी बार ये दाम बढ़े हैं। 23 मई की बात करें तो पेट्रोल 87 पैसे डीजल 91 पैसे लीटर महंगा हुआ था। वहीं 25 मई पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली का हाल आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा, देखिए।
1: पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से वृद्धि हो गई है। अगर हम आज के दामों की बात करें तो आज सुबह 2 रुपए 71 पैसे डीजल के दामों में वृद्धि हुई है प्रति लीटर की, और वहीं पेट्रोल की अगर प्रति लीटर की बात करें तो वो 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि पेट्रोल में हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली एनसीआर के एक पेट्रोल पंप पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज के दाम है वो 100 रुपए पार कर चुके हैं, यानी कि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 102.12 रुपए प्रति लीटर जो है वो आपको पेट्रोल मिलेगा। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल का रेट आज के दिन हो गया है 95 रुपए 56 पैसे। तो ये कहीं ना कहीं बता रहे कि कैसे जो वृद्धि हुई है पेट्रोल और डीजल की वजह से, उसके बाद जो प्रति लीटर का जो दाम है वो भी बढ़ गया है और 2 रुपए 71 पैसे 2 रुपए 61 पैसे डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कहीं ना कहीं लोगों के जेबों पर जरूर असर डालेगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगभग 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो चुकी है और इससे लगातार कहीं ना कहीं और बाकी चीजों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का यह मानना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी देश भर में नहीं है और ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वेस्ट एशिया में लगातार स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। हालांकि ईरान और यूएस के बीच में बातचीत जरूर हुई है लेकिन उसका असर होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।
0: और अब चलिए खबर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, क्योंकि आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले मार्को रूबियो पिछले दो दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके भारत अमेरिका संबंधों को संभालने की गंभीर कोशिश करते दिखाई दिए। रूबियो ने भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। रूबियो का कहना है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अंतिम दौर में है। उन्होंने व्यापार से लेकर रक्षा और आतंकवाद तक मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। कल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। इसके पहले उन्होंने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात की और अब आज रूबियो थोड़ी देर बाद आगरा के लिए रवाना हो रहे हैं और फिर दोपहर में जयपुर भी जाने वाले हैं। तो वही आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मार्को रूबियो ने ईरान से लेकर पाकिस्तान तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। साथ ही ये भी बताया है कि भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए कितने जरूरी है।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिनों के भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज तक से खास बातचीत में भारत अमेरिका व्यापार समझौते, ईरान युद्ध सहित कई अहम मसलों पर खुलकर बात की। रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है और अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द ही पीएम मोदी के साथ के द्विपक्षीय बैठक करना चाहते हैं।
3: हम एक व्यापार समझौते की कगार पर हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इससे दोनों देशों को फायदा होगा। इससे अमेरिका का निवेश और भारत का निवेश दोनों बढ़ेगा।
2: ईरान पर अमेरिका का रुख काफी सख्त है। रूबियो ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार किसी कीमत पर नहीं हो सकते। रूबियो ने साफ किया कि कूटनीति से बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है।
3: कि ईरान को तीन विषयों पर गंभीरता से बातचीत शुरू करनी होगी, परमाणु हथियार न रखने का उनका वादा, उनकी संवर्धन क्षमताओं पर दीर्घकालिक प्रतिबंध और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का क्या किया जाए।
2: रूबियो डोनाल्ड ट्रंप के चीन यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ वैश्विक मुद्दों पर चीन की सहमति जरूरी है।
3: ये दौरा इस मायने में अहम था कि हमारे देशों को एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि कुछ ऐसे विशिष्ट मुद्दे हैं जिन पर हम सहमत नहीं होंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा जो शायद उन्हें पसंद न हो।
2: रूबियो ने माना कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद गंभीर खतरा है।
3: मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर इन बेहद खतरनाक समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो न सिर्फ देश के लिए खतरा है बल्कि आने वाले समय में क्षेत्रीय लोगों और संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए भी खतरा है।
2: अपनी भारत यात्रा को लेकर रूबियो काफी उत्साहित है। आज वो जयपुर और आगरा में कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो विदेश मंत्री रूबियो के दौरे के बीच कल शाम दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लाइव कॉल पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के इस जश्न में ट्रंप ने कहा, आई लव इंडिया। उन्होंने पीएम मोदी का अपना दोस्त भी पीएम मोदी को बताया और खुद को उनका प्रशंसक बताया। प्रोग्राम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को ट्रंप ने कॉल किया और कहा कि भारत अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है।
4: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi.
0: और अब एक खबर ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर जारी सस्पेंस की। खबर है कि दोनों देश डील के बेहद करीब है लेकिन इसे फाइनल होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है कि दोनों पक्ष हॉर्मूज को फिर से खोलने पर सहमत है लेकिन गतिरोध बना हुआ है। अभी दोनों देशों के नेताओं ने डील पर साइन नहीं किए हैं और एक मुद्दा ईरान की यूरेनियम भंडार का भी है जिसे लेकर कोई ठोस नतीजे पर दोनों देश नहीं पहुंचे हैं। तो ईरान कह चुका है कि जब तक उसकी फ्रीज संपत्ति रिलीज नहीं की जाती तब तक वो अमेरिका कोई समझौता अमेरिका के साथ नहीं करने वाला। और हॉर्मुज को लेकर भी दोनों देशों ने तनातनी तेजी से बढ़ रही है। दोनों देश अपनी शर्तें रखे हुए हैं जिससे डील पर सस्पेंस बना हुआ है।
2: ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी बैंकों में तेहरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका समझौते के शुरुआती चरण में ही ईरान की कुछ ब्लॉक की गई संपत्तियों को जारी करने पर सहमत नहीं होता तब तक किसी अंतिम समझौते की संभावना नहीं है। आरोप ये भी है कि अमेरिका बातचीत के दौरान लगातार अपना रुख बदल रहा है और मुख्य शर्तों में अड़चन पैदा कर रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, अमेरिका ने बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा है कि वह समझौते में जल्दबाजी ना करें। हॉर्मुज को लेकर भी ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सुरक्षा सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि हॉर्मुज प्रबंधन ईरान का कानूनी अधिकार है।
5: اما مهمتر از این بهتون عرض میکنم ممکنه ما از انتیجی خارج بشیم میدونید این تهدید یعنی چی؟ که اگر ما از انتیجی خارج شدیم چه بلایی به سر شما میاد؟
2: ईरान ने अपना यह संदेश पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के उन देशों तक भी पहुंचा दिया गया है जो बैक चैनल कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ पुराने के अनुभवों को देखते हुए केवल कागजी गारंटी पर्याप्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर के शोपियां से जो आ रही है, जहां पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एक छापेमारी जामिया सिराजुल उलूम नाम के एक शिक्षण संस्थान पर हो रही है जिसे जमात इस्लामी चलाता है। इस संगठन पर इसी साल शुरुआत में बैन लगा दिया गया था और अब एनआईए ने इस संगठन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए छापेमारी शुरू कर चुका है। इस पूरे मामले में अब एक्शन पर एनआईए है। जमात इस्लामी से जुड़े ठिकाने पर रेड की जा रही है। और अब खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, जहां एक बार फिर से बीजेपी ने दीदी को उनके ही गढ़ में शिकस्त दे दी है। फलता विधानसभा सीट पर हुई रीपोलिंग में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,00,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। तो फलता में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और इस सीट पर हिंसा के वजह से चुनाव टल गया था। दोबारा 21 मई को मतदान हुआ था और अब फलता का परिणाम आ चुका है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे तो ममता बनर्जी ने कल फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। और अब खबर यूपी की, जहां पर बकरीद से पहले यूपी सरकार ने कह दिया है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस रहेगा।
6: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
2: यूपी में ना तो सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत होगी ना ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की आजादी। योगी सरकार ने कहा है कि सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के फरमान के बाद पुलिस एक्शन में। यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन ही छुट्टी रहेगी। पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी, लेकिन दो दिन पहले ही शुभेंदु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके मुताबिक बंगाल में 28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी। कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती है। अदालत से इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने की गुहार लगाई गई। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अब ट्रिशा की मौत मिस्ट्री की खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सर्वोच्च अदालत आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और कल ट्रिशा का अंतिम संस्कार किया गया और इसके बाद अब परिवार ने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए कमर कस ली है। परिवार का आरोप है कि न्यायिक दखल होने की वजह से जांच प्रभावित हो रही है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब स्वतः संज्ञान लिया है।
7: त्रिशा शर्मा की मौत के 12 दिन बाद आखिरकार भोपाल में अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली के एम्स के विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए दूसरे पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। डॉक्टरों की टीम ने आज नया पोस्टमार्टम पूरा किया और त्रिशा का पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया। अंतिम संस्कार के दौरान त्रिशा के माँ और परिवार के सदस्य स्मशान घाट पर फूट फूट कर रोए। अंतिम संस्कार की रस्में त्रिशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने की। अंतिम संस्कार समाप्त होते ही मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में रखे गए नोट में मानसिक प्रताड़ना, दहेज से जुड़ी मांगों और संस्थागत कवर अप के आरोपों का उल्लेख है। त्रिशा के परिवार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। परिवार ने यह आरोप भी लगाया है कि न्यायपालिका से ससुराल पक्ष के गहरे संबंध होने के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी आज त्रिशा केस में सुनवाई होनी है। इस बीच एम्स की फॉरेंसिक टीम जांच के लिए भोपाल के उस घर पर पहुंची जहां त्रिशा मृत पाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है और सूरज की तपिश से बेहाल देश पर अब लू का कहर टूटने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक गर्म हवा के थपेड़े लोगों की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। यूपी के बांदा के बाद अब महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। रविवार को यहाँ पारा 47 डिग्री को पार कर चुका, वही यूपी के बांदा में भी तापमान 47 डिग्री के करीब बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के अंत तक लू चलेगी। तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में तो पिछले 3 दिनों से लू का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है। कहां पर कितना पारा बढ़ा है वो आपको बताते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी है जो कि आया नगर में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस है, यानी सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि 40 के पार दिल्ली में पारा पहुंच गया है, गर्म हवा चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा सबसे ज्यादा गर्म माना जा रहा है, 46.8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सभी जगह पर 55 पार कर चुकी है उत्तर प्रदेश में गर्मी। वहीं ये चुपती गर्मी हरियाणा में भी है क्योंकि सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है, जहां सबसे ज्यादा सिरसा माना जा रहा है हरियाणा का सबसे गर्म। वहीं सभी जगह पर 40 के पार पहुंच गया है। राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर में 46 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे ज्यादा गर्म राजस्थान में श्रीगंगानगर है, लेकिन सभी जगह पर 40 से ज्यादा पारा पहुंच चुका है। तो 8 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जैसलमेर, रांची, दिल्ली, नैनीताल जहां पर लोग पर्यटक पहुंचते थे और ठंड का लुत्फ उठाने के लिए, वहां पर भी अभी काफी गर्मी बढ़ गई है। तो पारा चढ़ता जा रहा है, लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए अलग अलग जतन कर रहे हैं, मगर इसी गर्मी में बिजली कटौती लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। जो यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई के आदेश जारी किए हैं।
8: उत्तर भारत में आग बरस रही है, मई मार डालने पर उतारू है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और आदमी तड़प रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में बिजली कटौती तबाही मचा देने वाली है। इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाए, गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाए, बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाए, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार भले ही बता रही हो कि वो बिजली कटौती के खिलाफ एक्शन में है, मगर सच्चाई यही है कि कई शहरों और गांवों में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है और आदमी परेशान है, इसीलिए विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है।
9: देखिए, 9 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी गर्मी बढ़ती, जब भी ठंड बढ़ती, जब भी बिजली की मांग बढ़ती है, बिजली व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा जाती है। चाहे लखनऊ राजधानी की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, बिजली कब आती, कब जाती, कब जाती, फिर आती नहीं।
8: सियासत अपनी जगह है, मगर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें बिजली कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर खेल जगत से जुड़ी। आईपीएल के मुकाबले में प्लेऑफ के 4 टीमों की रेस अब खत्म हो गई है। एक दिन पहले राजस्थान ने चौथी टीम के रूप में जगह बना ली। वहीं मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर राजस्थान रॉयल्स ने अपनी जगह पक्की की है। पहले खेलते हुए राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 205 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट पर 175 रन ही बना पाई। और अब तय हो गया है कि टॉप 4 टीमों में बेंगलुरु, गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान है। और अब 26 मई को क्वालिफायर 1 में बेंगलुरु और गुजरात की टक्कर होगी, तो 27 मई को एलिमिनेटर में हैदराबाद और राजस्थान की टीम की भिड़ंत होगी। चलिए अब देखते हैं सुपर 8 में फटाफट न्यूज। अंबिकापुर में महिला ने 90 साल के बुजुर्ग को 9 किलोमीटर पीठ पर ढोया, पेंशन निकालने के लिए बैंक तक पहुंचाने की मार्मिक तस्वीर आई सामने। पटना में रेड से पहले आरोपियों के रिश्तेदारों ने पुलिस की तलाशी ली, मामले में 2 स्टेशन इंचार्ज सस्पेंड किए गए। गोपालगंज में जादोपुर मगलपुर पुल पर बड़ी दरार पड़ी, रोजाना हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में नदी में डूबने की वजह से 8 लोगों की मौत, मृतकों में 7 लड़कियां शामिल, इलाके में मार। अमृतसर के मजीठा में ट्रैफिक पुलिस एएसआई की हत्या, सुबह सुबह हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत। गुजरात के भावनगर में नहाते वक्त समुद्र में डूबने से वजह से 3 बच्चों की मौत, स्थानीय तैराकों ने बरामद किया उनका शव। मुजफ्फरनगर में गर्मी से बिजली उपकरणों को बचाने की नई पहल, 9 सबस्टेशंस पर पंखे और कूलर लगाए गए। अलीगढ़ में 2 सीटों वाले विमान के इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, तकनीकी दिक्कत के बाद पायलट ने सुरक्षित उतारा विमान। और चलिए आ वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मन जाएगा, देखते रहिए आज।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
15: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
16: कुछ है जो बनाता है इसे complete banking app.
17: PNB One app, banking का captain.
18: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
19: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
20: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना ले।
21: और वही कहाँ गए थे घूमने?
22: जीके मैक्स।
23: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
22: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
23: जेके वॉल मैक्स
22: बेस्ट पेंट,
23: जेके मैक्स।
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
24: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
25: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
24: आप कैसे कर लेते हो?
26: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
25: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
27: नहीं
25: और म्यूचुअल फंड्स है
27: सही।
28: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
29: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
30: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
31: Like I said before, we better own the sins.
32: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
33: सोच बदलो और बैंक भी।
34: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
6: Secretary and I therefore welcomed the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities. An American delegation was recently in India. We hope to realize the potential of cooperation in the nuclear domain, and I also raised with Secretary some issues, regulatory issues we have on the American side.
7: But there are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them. Which is what adds the finishing touches on the importance of this strategic alliance. As we have a strategic alliance between the United States and India, it's a strategic alliance between two countries that have global influence and the ability to influence global events. And that distinguishes it from other relationships.
8: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

देश को महंगाई की एक और किश्त का कारण पेट्रोल की कीमतों का शतक 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा भारत के साथ अंतिम दौर में है व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप, रूबियो आज जाएंगे आगरा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ लाइव फोन पर जुड़े ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं मैं, भारत कर सकता है भरोसा।

दाम में फिर से महंगाई का तड़का लगा। पेट्रोल और डीजल के दाम आज चौथी बार बढ़े। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा हुआ, वहीं डीजल की कीमतें 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 दिन में ये चौथी बार तेल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दामों में करीब पूरे देश में पार किया 100 रुपए का आंकड़ा। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। तेल के दामों में नए उछाल के बाद मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए और डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। तो वहीं दिल्ली में अमेरिका स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में फोन पर लाइव जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी राजदूत गोर मार्को रूबियो और विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद। कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से राष्ट्रपति को फोन पर लाइव जोड़ा गया। ट्रंप ने भारत से विशेष लगाव और पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। प्रधानमंत्री मोदी को शानदार नेता बताते हुए ट्रंप ने कहा, भारत 100% मुझ पर भरोसा कर सकता है। भारत को कभी मदद चाहिए तो हम साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्को रूबियो को बेहतरीन विदेश मंत्री बताया। बोले, पीएम मोदी को मेरा हेलो कहना, मैं उनका बहुत बड़ा फैन। भारत अमेरिका के गहरे रिश्ते की चर्चा करते हुए बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, कहा, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का हाल पूछते हैं। आज तक से खास बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का करीबी सहयोगी बताया। कहा, भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर बोले मार्को रूबियो, कहा, अंतिम चरण में है बातचीत, जल्द हो सकता है समझौता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा संकेत दिया। निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी बढ़ाने पर जोर। मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक की और मौजूदा हालात और इस ओर इशारा किया कि समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन के क्षेत्र में क्वाड देश मिलकर सहयोग बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज तीसरा दिन सुबह 9 बजे आगरा के लिए रवाना होंगे मार्को रूबियो। आगरा कार्यक्रम के बाद दोपहर 1 बजे जयपुर जाएंगे। मिडल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव के समझौते को लेकर बातचीत जारी। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और ईरान की बातचीत प्रगति पर है। ट्रंप ने ईरान से रिश्ते अधिक पेशेवर और सकारात्मक होने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, समझौते में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। समझौते को लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर ने के सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज पर नियंत्रण ईरान का कानूनी अधिकार। अमेरिका ईरान तनाव में मारे गए लोगों की याद में समारोह, झंडे और पोस्टर के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। पीएम मोदी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कमजोर प्रधानमंत्री। कहा, पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर डील की। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को नुकसानजनक बताया। कहा, सरकार का ये फैसला किसानों और उद्योगों पर बुरा असर डाल सकता है। पीएम मोदी पर विदेश नीति को लेकर हमलावर दिखा विपक्ष। इमरान मसूद बोले, अमेरिका से समझौते भारत के हित में नहीं है। राहुल गांधी के पीएम मोदी की विदाई वाले बयान पर भड़की बीजेपी। मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, सरकार को गिराकर देश में अराजकता लाना चाहते हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल के बयान को बताया ख्याली पुलाव। कहा, दिन में ही सपने देख रहे हैं कांग्रेस के साथ। आज दोपहर 3 बजे संसद की स्थायी समिति की बैठक। बैठक में पश्चिम एशिया संकट के भारत के समुद्री व्यापार पर प्रभाव पर चर्चा। पोत बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव भी बैठक में लेंगे हिस्सा। समुद्री व्यापार, शिपिंग ढांचा और नाविकों की सुरक्षा पर असर पर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया संकट से भारत के ऊर्जा व्यापार पर असर की होगी समीक्षा। हॉर्मूज में तनाव के बीच शिपिंग पर पड़ रहे प्रभाव पर भी होगी चर्चा। यूपी चुनाव 2027 से पहले बीएसपी की बड़ी तैयारी। मायावती ने समीक्षा बैठक में संगठन को मजबूत करने और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर दिया जोर। बीएसपी की बैठक में आकाश आनंद, आनंद कुमार और सतीश मिश्रा रहे मौजूद। मायावती ने विपक्ष पर छलावे की राजनीति का आरोप लगाया। नीट पेपर लीक मामले में गरमाई सियासत। राहुल गांधी बोले, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते आंदोलन जारी रहेगा। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है और प्रधानमंत्री मौन है। नीट पेपर लीक मामले के बाद राजस्थान के झुंझुनू में आत्महत्या करने वाले छात्र के परिजनों से मिले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। सीबीएसई रिजल्ट पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी। रिजल्ट के बाद पोर्टल में ब्लर पेज की दिक्कतें सामने आई। सीबीएसई ने मामले पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की मदद ली जाएगी। पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू। बंगाल के फलता विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत। दिव्यांशु पांडा ने 1,09,021 वोट से जीता चुनाव। बंगाल विधानसभा चुनाव की किसी भी सीट पर बीजेपी ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। चौथे नंबर पर रही टीएमसी पार्टी को मिले करीब 7,500 वोट। चुनावी नतीजों पर ममता बनर्जी का बयान। कहा, बीजेपी ने फिर से की वोटों की चोरी। केंद्रीय बलों ने बीजेपी एजेंट की तरह किया था। फलता में बीजेपी की जीत पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये महिलाओं, युवा और लोकतंत्र की विजय है। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुभेंदु सरकार पर बोला धावा। कहा,
मुझे बैठक करने की भी नहीं मिल रही है इजाजत, हमारे 2500 पार्टी कार्यालयों पर किया गया कब्जा। बिहार में आरजेडी की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल होंगी बीजेपी में शामिल, 26 मई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी दिलाएंगे सदस्यता। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने यूपी की राजनीति पर दिया बड़ा बयान, कहा तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। भागलपुर के बाद बिहार के एक और पुल के स्पैन में आया गैप, गोपालगंज में जादोपुर मंगलपुर महासेतु पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। पटना के मुकामा में अनंत सिंह समर्थक पर फायरिंग करने वाले सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ, पानी की समस्या को लेकर हुआ प्रदर्शन। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी, लोगों को धूप से बचने की दी जा रही है सलाह। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। बदायूं में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव, आंधी तूफान से मची भारी तबाही। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेड से झरने की तरह पानी गिरते आया नजर। दिल्ली में कल की मामूली राहत के बाद फिर से गर्म हुआ दिन, दोपहर में कड़ी धूप के बीच घर से निकलना मुश्किल। दिल्ली की तपती गर्मी ने खुले में काम करने वाले लोगों की बढ़ाई मुश्किल, रिक्शा चालक और स्टेशन पर कूलियों को करना पड़ रहा है दिक्कत का सामना। यूपी के कई जिलों में रिकॉर्ड बनाने में जुटी गर्मी, राजधानी लखनऊ में भी तापमान पहुंचा 45 डिग्री के पार। हीट वेव के संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा राहत बचाव को लेकर रहे सतर्क। लखनऊ में लोगों को गर्मी से बचाने की शानदार पहल, रेड सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, कूलिंग वाटर स्प्रिंकलर की भी व्यवस्था। चमोली में कंचन गंगा के ऊपर टूटा ग्लेशियर, पानी की तरह बहते हुए दिखा बर्फ। ग्लेशियर पिघलने से नहीं हुआ कोई भी नुकसान, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। चमोली के जंगलों में जारी आग का सिलसिला, तेज हवाओं के चलते आवासीय बस्तियों तक पहुंची आग, वन विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इम्फाल में कोकोमी संगठन ने निकाली युवा बाइक रैली, से मणिपुर का दिया संदेश। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों और पुलिस ने पेश की मिसाल, पब्लिक टॉयलेट में मिले बच्चे की बचाई गई जान। जूनागढ़ में एक युवती ने की आत्महत्या का प्रयास, युवती ने कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। गुजरात के भावनगर में नहाते वक्त समुद्र में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत, स्थानीय तैराकों ने बरामद किया उनका शव। चक्राता के फेडोलानी जंगल में भीषण आग लगी, जंगल की आग की चपेट में आई दुकानें। जैसलमेर की डंपिंग साइट पर मिले बड़ी संख्या में मृत गायों के शव, जांच में जुटी राजस्थान पुलिस। नागपुर में फॉर्चूनर कार से 30 लाख रुपए का डोडा पोस्ट बरामद, होम डिलीवरी के लिए जा रहे थे तस्कर। मोगा में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता अमनदीप सिंह की मिली लाश, परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हुआ। चित्तौड़गढ़ में प्राइवेट बस गहरी खाई में जाकर पलटी, 20 यात्री घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्कॉर्पियो ने शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने ट्रैफिक होमगार्ड पर किया हमला, पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया।

कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, नए काम की शुरुआत होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवाद हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
5: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
6: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
5: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
8: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
9: नहीं,
8: और म्यूचुअल फंड्स है
9: सही।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
11: In association with
12: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
13: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
11: Hint, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
14: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
15: Summer Cool Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Summer Cool Cooler, life बनाए wonderful.
16: देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, चूंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही, हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई।
17: राहुल गांधी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सलाहकार समिति की बैठक में जिस तरह की भाषा बोली है, एक तो उन्होंने कहा माइनॉरिटी नहीं मुस्लिम बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है, और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री के लिए बोला है, इस सरकार के लिए बोला है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस साजिश करती रहती है, और जिस तरह का बयान पहले भी राहुल गांधी ने बोला था कि वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तो जलजला आ जाएगा, हुआ कुछ नहीं। अभी वो देश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं।

लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लोगों ने सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है। मेरठ में जनता मेयर आवास तक पहुंच गई। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। यूपी के बांदा में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ निर्देश दिए हैं कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली आपूर्ति की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को देर रात तक फील्ड में तैनात किया गया है। लखनऊ में 22 अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को रात 9 बजे से 1 बजे तक अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण और फॉल्ट होने पर तुरंत बिजली बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल ने भी बिजली व्यवस्था पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। गाजियाबाद और मेरठ के 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर भीषण गर्मी के बीच यूपी की जनता को राहत कब मिलेगी और क्या सरकार के आदेश जमीन पर असर दिखा पाएंगे? आज तक ब्यूरो।

0: नौकरी की सुरक्षा और करियर के सुनहरे सपने दिखाने वाला आईटी सेक्टर इन दिनों खौफ के साए में। कल तक जो कंपनियां टैलेंट की तलाश में रहती थी, वही आज अपने दफ्तरों के दरवाजे बंद कर रही हैं। ये संकट किसी एक कंपनी का नहीं है, ये दिक्कत पूरी टेक इंडस्ट्री में है, जो बदलाव के ऐसे दौर से गुजर रही है जहां इंसान से ज्यादा एआई की अहमियत बढ़ गई है। इस साल की शुरुआत ही ग्लोबल टेक मार्केट के लिए किसी बुरे सपने की तरह हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही टेक सेक्टर के 92,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। अकेले अप्रैल में 45,000 कर्मचारियों की छंटनी हुई है, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां लगातार अपने स्टाफ में कटौती कर रही है। कंपनियां इस छंटनी की वजह कोरोना के समय हुई ज्यादा भर्ती और एआई से बढ़ती एफिशिएंसी को बता रही है। लेकिन हकीकत यह है कि मशीनी दिमाग अब तेजी से वर्कफोर्स की जगह ले रहा है। यही वजह है कि ब्लॉक इंक, अमेजॉन, मेटा, स्नैप, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियां कर्मचारियों की छुट्टी कर रही हैं। इसकी वजह है कोडिंग में कर्मचारियों की जगह एआई लेता जा रहा है। एक तरफ टेक कंपनियां मिडिल क्लास कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमा रही हैं, तो दूसरी तरफ एआई पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। डेटा के मुताबिक गूगल, मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट इस साल एआई पर $674 अरब खर्च करने वाले हैं। ये खर्च 2 साल पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। एआई पर बढ़ता निवेश और कर्मचारियों की घटती संख्या सब बताती है कि कंपनियां वर्कफोर्स का ढांचा बदल रही हैं। इस पूरी उथल पुथल का असर कर्मचारियों के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ा है। ग्लासडोर की रिपोर्ट के मुताबिक टेक सेक्टर में काम करने वाले लोगों का भरोसा गिरकर 47% पर आ गया है। एट्रिशन रेट कम होने की वजह से कंपनियां परफॉर्मेंस के नाम पर लोगों को बाहर निकाल रही हैं। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे एआई टूल्स पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर रहे हैं। कंपनियां फायदे में होने के बावजूद छोटे और फोकस्ड एआई आधारित टीम के साथ काम करना चाहती हैं। आईटी सेक्टर में आया ये बदलाव इशारा करता है कि आने वाले वक्त में डिग्री नहीं, एआई के साथ तालमेल बिठाने की कला ही करियर बचा पाएगी। आदित्य खेराना, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट, पेट्रोल कीमतों का शतक 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा, डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। आश्रय से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा भारत के साथ अंतिम दौर में है व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप, रूबियो आज जाएंगे आगरा। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ लाइव फोन पर जुड़े ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, भारत कर सकता है भरोसा। आत्मरक्षा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान, पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, भोपाल वाले घर से एम्स फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका, ईरान ने कहा फ्रीज संपत्तियां जारी करने तक नहीं होगा अंतिम फैसला, ट्रंप ने कहा हड़बड़ी में नहीं होगी डील।

0: बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। नया दिन नई शुरुआत, बिना ब्रेक का आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या भारत अमेरिका में जल्द होने वाली है ट्रेड डील? ट्रंप का फोन कॉल और मोदी की तारीफ, क्या है इसके मायने? बकरीद पर यूपी के सीएम योगी का सख्त फरमान, नमाज और कुर्बानी को लेकर जारी की गाइडलाइंस में क्या कुछ है ये भी बताएंगे। गर्मी की छुट्टी में पहाड़ों में उमड़ा सैलानियों का सैलाब और लगने लगा है सड़कों पर जाम। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आपकी जेब से जुड़ी खबर के साथ, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और आप दिन की जब शुरुआत कर रहे हैं तो महंगाई की नई किश्त आ चुकी है। देश में पेट्रोल और डीजल आज से महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने इस महीने चौथी बार तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। आज से पेट्रोल 2.61 रुपए, डीजल 2.71 रुपए महंगा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में भी पेट्रोल अब शतक के पार पहुंच चुका है। राजधानी में पेट्रोल का भाव अब 102.12 रुपए हो गया है। नई दर के मुताबिक दिल्ली में अब डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल 111.21 रुपए में बिक रहा है, जबकि डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल का भाव 113.51 रुपए है। वहीं कोलकाता में डीजल की नई दर 99.82 रुपए हो गई है। चेन्नई की बात करें तो वहां पेट्रोल 107.77 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चौथी बार एक महीने में बढ़ोतरी है, एक एक करके कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। महंगाई की ये चौथी किश्त सरकार ने आपको तोहफे में दी है, 90 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं मुंबई से। लेकिन सबसे पहले पीयूष आपका रुख करते हुए, अगर तेल की कीमतों में इजाफा करना ही है और अगर आपको तेल कंपनियों की भरपाई करनी है तो एक बार में कीमतें बढ़ा दीजिए, ये धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में क्यों आ रही है?
1: जी बिल्कुल, ये सवाल हमने कई बार सरकार के जो नुमाइंदे उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी होती है उसी का असर जो है वो भारत की कीमतों में होता है, और इसीलिए सरकार ने कोशिश भी की है कि लगातार इनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब बढ़ोतरी होती है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ाए भी जाते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो डीजल की प्राइसेस में लगभग 2.71 रुपए का इजाफा हुआ है, वहीं पेट्रोल जो है वो 2.61 रुपए के आसपास महंगा हो चुका है। इस वक्त में दिल्ली के जनपथ के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और यहां के अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे जो पेट्रोल है वो 102.12 रुपए प्रति लीटर अब आपको मिलेगा, और डीजल की बात करें तो वो 95.20 रुपए जो है वो अब जो है वो आज के रेट्स की अगर बात करें तो वो अब हो गया, जो बता रहा है कि कैसे लगातार जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। और दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के दाम शतक को पार कर चुके हैं, 102.12 रुपए जो है वो अब आपको पेट्रोल की दिल्ली में मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बाकी और चीजों पर भी असर डाल सकते हैं, यानी महंगाई और कई चीजों में आपको दिखाई देगी, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, दूध भी हमने देखा था पिछले 2 हफ्ते पहले उसके दामों में वृद्धि हुई थी, ऐसे ही सब्जियां और बाकी अलग अलग चीजें उनमें कहीं ना कहीं क्योंकि उनके दामों में बढ़ोतरी देखी कि उसका कारण ये
0: है। इसका असर अब सीधे तौर पर कई सामानों पर भी पड़ सकता है, ढुलाई की कीमत बढ़ सकती है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये बढ़ोतरी प्रत्याशित थी या फिर चौथी बार दामों का बढ़ना एक सरप्राइज के तौर पर आया?
2: देखिए, सरप्राइज के तौर पर है क्योंकि पेट्रोल जब सुबह उठकर कोई काम के लिए जाता है, ऑफिस जाता है या स्टडी के लिए कोई पढ़ने जाता है तो फ्यूज स्टेशन ऐसी जगह होती है जहां सबसे पहले होता है। चंडीगढ़ में भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है पेट्रोल ने और एक सेंचुरी लगा दी है, 101.94 रुपए पेट्रोल और 89.70 रुपए डीजल हुआ है। और आप देखिए लंबी कतारें यही बयां करती हैं और लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स है, कुछ कह रहे हैं कि मजबूरी है समय की, कुछ कह रहे हैं कि डलवाना तो पड़ेगा ही पेट्रोल, और कुछ के लिए नेशनल इंटरेस्ट है कि अगर फैसला सरकार ने लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, और ऐसे ही मिला जुला रिस्पॉन्स है। लेकिन ये कि फ्यूल कंजप्शन ने एक ऐसी चीज है क्योंकि सारा डिपार्टमेंट, सरकारी अमला हो या प्राइवेट, इस पर डिपेंड करता है और ट्रांसपोर्टेशन या हर सेक्टर इससे महंगाई का असर पड़ता है। कुछ से बात भी करेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इसको, जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं आप ही कतार में? सही बोलना क्या, तो आप क्या कहेंगे इस पर जो रेट बढ़े हैं पेट्रोल के?
3: बड़े हैं वो मजबूरी भी है गवर्नमेंट की। हाँ, पीछे से जो लड़ाई लगी थी वो उसकी वजह से तेल कम हो गया है, तो उस वजह से आ नहीं रहा।
2: पर जो दो दो रुपए करके बढ़ता है, आप पर कैसे असर पड़ता
3: रहा है? एक बार उसे बढ़ाना चाहिए, प्यार प्यार से चपेट मार रहे, कभी एक बार बढ़ा दिया कभी, ये तो पता ही था बढ़ाना, और आगे बढ़ाएंगे, और भी बढ़ाएंगे। अभी ये प्यार प्यार से कर रहे हैं और आराम से मार रहे हैं, एकदम न मारने के बजाय आराम से मार रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्विस हूँ।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास विद्या, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, कई पेट्रोल स्टेशंस पे अक्सर कंज्यूमर्स ये कंप्लेन करते हैं कि डीजल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है कई जगहों पर।
3: मैं गवर्नमेंट सर्विस हूँ।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास विद्या, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, कई पेट्रोल स्टेशंस पे अक्सर कंज्यूमर्स ये कंप्लेन करते हैं कि डीजल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, कई जगहों पर होर्डिंग की भी शिकायतें आती हैं कि जब दाम बढ़ेंगे तो बढ़े हुए कीमतों पर उन्हें बेचा जाएगा। क्या मुंबई में ऐसी शिकायतें हैं?
4: जी देखिए, मुंबई में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी सारे रूरल एरियाज में खासतौर से डीजल की अनअवेलेबिलिटी की बातें आई हैं काफ़ी समय से, पिछले कुछ एक डेढ़ हफ्ते से। आप समझ लीजिए कि डीजल नहीं मिल रहा है और डीजल की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, और जहाँ जहाँ पर डीजल मिल रहा है वहाँ लोग लाइन में कैंस में भर रहे हैं। तो होर्डिंग हो रही है ऐसा दिखता है ज़रूर, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी ज़रूरत के अनुसार वो अपने ले रहे हैं। जहाँ तक मुंबई की बात करें तो हमने जब लोगों से यही बात किया था, उनसे यही पूछा था कि आखिरकार जब ये दाम, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये जोर का झटका धीरे से लगे वैसा वाला टाइप का है, तो लोगों का यही कहना था कि ये दाम और बढ़ेंगे ज़रूर लगता है। और जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में बाकी देशों में बढ़ता रहा है, उसके कंपेरिजन में इंडिया में तो ढाई महीने तकरीबन बढ़ाया नहीं सरकार ने, दो महीना, और उसके बाद जब बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग इसके लिए प्रिपेयर है। देश भर से लोगों, बाहर से खबरें आ रही थी लोगों को कि बढ़ रहा है, यहाँ ही नहीं बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू हुआ।
0: मैं आपके पास इस बीच पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है लगभग, तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, उनकी आपत्ति है, और ये कहना है कि तेल कंपनियां भारी कमाई कर रही है लेकिन आम जनता दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले फिस रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक्स पर लिखा, सरकारी तेल कंपनियों ने 2025-26 से भारी मुनाफा कमाया, यहां तक कि चौथी तिमाही में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब तीनों का लाभ 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% ज्यादा था। जब ये OMCs इतना भारी मुनाफा कमा रही हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना धीरे धीरे क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जहां OMCs भारी कमाई कर रही हैं, वहीं आम जनता दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है। क्या यही सुशासन है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्या भारत और अमेरिका का रिश्ता नई रंगड़ाई ले रहा है? जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कल शाम दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। वहीं आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री ने जल ट्रेड डील का संकेत दिया है।
5: दिल्ली में मौका था अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की मौजूदगी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियां बन गई। अमेरिकी राजदूत गोर ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया और फिर ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत के बारे में क्या कुछ कहा वो खुद देखिए और सुन लीजिए।
6: And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi.
7: Great to see you again.
5: ये दोस्ती खास है, ये बात तो दुनिया जानती है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर भारत अमेरिका के बीच हुई तनातनी और ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम पर ट्रंप की निरंतर बयानबाजी से इस दोस्ती पर जो सवाल उठ रहे थे, कल एक फोन कॉल ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। ट्रंप का कॉल ऐसे वक्त में आया है जब आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री जल्द ट्रेड डील और पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के संकेत दे रहे हैं।
8: हम एक स्वतंत्र यात्रा चाहते थे, जाहिर है। हम दिसंबर में फ्लोरिडा में G20 के लिए उनकी मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हम इसके अलावा एक बैठक भी करना चाहेंगे और उन्होंने आने का संकेत दिया है, तो जाहिर है हम उचित समय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें अगले हफ्ते ही देखना चाहें। उन्हें एक बड़े देश का संचालन करना है और हम समय की उपलब्धता के हिसाब से काम करेंगे।
5: साफ दिख रहा है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। ट्रंप को समझ आ गया है कि दुनिया में तेजी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था से टकराव मोल लेने की जगह साथ चलने में ही अमेरिका का हित है। वैसे भी अमेरिका ईरान से जंग कर बुरी तरह घिरा हुआ है, ऐसे में ट्रंप को चाहिए एक मजबूत साथी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा और फिर वो फोन कॉल, साफ दिख रहा है कि ट्रंप कड़वाहट दूर करने के लिए रीसेट बटन दबा चुके हैं। दिल्ली से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, बीते वक्त में ट्रंप ने क्या कुछ कहा भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो रिश्तों की कड़वाहट थी उसे अब ठीक करने के ये संकेत मिल रहे हैं, या फिर G7 मुलाकात से पहले ट्रंप ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए ताकि मुलाकात एक अनुकूल एनवायरमेंट में हो सके।
9: देखिए, यहाँ बहाना कोई भी हो, लेकिन जो बयान आया है उसे निश्चित रूप से एक सकारात्मक बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति यदि सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं और कई बार कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री के बिग फैन हैं, वो उनकी दोस्ती का एहतराम करते हैं, भारत को वो पसंद करते हैं, इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि भारतीय 100% उन पर भरोसा कर सकते हैं, तो इस बयान को सकारात्मकता से देखने के साथ साथ ये उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि जो वो कह रहे हैं क्या वो एक्शन में उतरेगा। क्योंकि भारत ने बीते 2.5 दशकों के अंदर अमेरिका की इस दोस्ती में काफी इन्वेस्ट किया है। भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, कामकाज के सिलसिले में जाते हैं। उनकी वीजा में जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या वो दिक्कतें दूर हो पाएंगी? भारत और अमेरिका ने अगले 5 सालों के अंदर, इनफैक्ट 2030 तक, यानी 4 साल में, अपने द्विपक्षीय कारोबार को, जो इस समय करीब 132 करोड़ का है, उसे 132 अरब डॉलर का है, उसको 500 अरब डॉलर बनाने का फैसला किया है। बहुत एंबिशियस टारगेट है, वो कैसे टारगेट पूरा होगा ये देखना होगा। इसके अलावा जो ट्रेड के इश्यूज हैं, जो टैरिफ के इश्यूज हैं, इसके अलावा जो बीते कुछ समय में हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, क्या उन उतार चढ़ावों पर ब्रेक लगेगा, क्या एक स्टेडीनेस इसके अंदर मिल पाएगी? जहां तक प्रधानमंत्री की यात्रा का सवाल है, निश्चित रूप से इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर माना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में आते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और ये संकेत भी देते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के अंदर इसका एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है कि वो जल्द ही अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। उम्मीद है कि वो जो ट्रेड डील जो बीते करीब 1.5 साल से अटकी हुई है, लटकी हुई है, वो जल्दी से पूरी हो पाएगी। इसके साथ साथ एक क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही भारत की जो कोशिशें चल रही हैं अर्थव्यवस्था को संभाले रखने की, उसके अंदर अमेरिका एक दोस्त की तरह, एक रणनीतिक साझेदार की तरह, एक मददगार की तरह साथ में भी खड़ा नजर आएगा और साथ ही वो भारत के विकास में निवेश करेगा। जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात भोपाल के ट्रिशा मौत मामले की करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। ट्रिशा के साथ गिरिवारा सिंह को अग्रिम जमानत के खिलाफ ये याचिका आज MP हाई कोर्ट में भी सुनवाई के तहत होगी। कल दिल्ली एम्स से पहुंची 4 डॉक्टर्स की टीम ने ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया। उधर ट्रिशा के पति समर सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस ट्रिशा से उसके रिश्ते, मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम पर सवाल जवाब कर रही है। साथ ही सवाल गिरिवाला सिंह और ट्रिशा के रिश्तों को लेकर भी पूछे जा रहे हैं।

0: परिवार को कभी ना खत्म होने वाले दर्द के साथ तुषा शर्मा की अंतिम विदाई हो गई। भोपाल एम्स में दूसरे पोस्टमार्टम के बाद तुषा का अंतिम संस्कार हुआ और तुषा के खोने के गम में पूरा परिवार बिलख पड़ा। अब इस परिवार की मांग इंसाफ की है, उम्मीद सीबीआई से है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से, जहां आज इस केस की सुनवाई होगी। भोपाल की तुषा शर्मा ने खुदकुशी की या फिर उसकी मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? ससुराल वालों पर गंभीर आरोपों के बीच ये सवाल बीते 13 दिनों से उलझा हुआ है। परिवार वालों की आस है कि दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वो सबूत सामने आएंगे जो इस केस की जांच में अहम कड़ी बनेंगे।
1: वो तथ्य फाइंडिंग्स इनकम्प्लीट थी, उसमें जो है काफ़ी चीज़ें नहीं थी, जिसका हमने बारंबार आपको मीडिया को सूचित किया कि क्या क्या कमी थी। टेक्निकल पॉइंट्स भी हमने जो मिले हमको एक्सपर्ट से, वो भी हमने सामने रखे। तो अब उम्मीद है कि क्योंकि प्रोटोकॉल में होता है कि मेडिकल टीम आई, उन्होंने हमें बताया, पूरा प्रोसीजर बताया कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब शुरू से शुरुआत करेंगे, उनको मतलब नहीं पीछे क्या हुआ था, और उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करके और रिपोर्ट फाइनल करके देंगे हमको। हमारा विश्वास है, देखिए हमारा पहले भी विश्वास था, हर चीज में हमारा विश्वास है, हम अविश्वासी नहीं है, सत्य सामने आना चाहिए।
0: उधर तुषा के पति समर्थ सिंह से पुलिस की पूछताछ जारी है। समर्थ से ज्यादातर सवाल जवाब तुषा से उसके रिश्ते, तुषा की मौत और उसके फरार रहने को लेकर हो रहे हैं। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि 12 मई यानी जिस दिन तुषा की मौत हुई वो कहाँ था, क्या उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सवाल ये भी हुआ कि जब उसे तुषा के साथ रहना था तो आखिर वो फरार क्यों हो गया। इसके बाद 10 दिनों से वो कहाँ कहाँ गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस का अहम सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान उसकी अपनी माँ गिरबाला से भी बातचीत होती रही। केस की जांच के बीच पुलिस की टीम एक बार फिर गिरबाला सिंह के घर पहुंची, उस जगह का मुआयना किया जहां तुषा फंदे से लटकी मिली थी। तुषा शर्मा और समर सिंह की शादी करीब 5 महीने पहले ही हुई थी। 5 महीने में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी, तनाव बढ़ा और तुषा की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि क्या इस मौत के पीछे उसके पति समर्थ या ससुराल के किसी और शख्स की कोई भूमिका तो नहीं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अनीशा माथुर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अनीशा, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, स्वतः संज्ञान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, किन बातों का महत्वपूर्ण माना जाए और साथ ही तुषा के वकील किस तरीके से अपना पक्ष रखने वाले हैं?
3: देखिए नेहा, सुप्रीम कोर्ट में तुषा के वकील तो शायद नहीं पेश होंगे, अभी हमें देखना होगा कि किस तरह से वहां पर सुनवाई होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो स्वतः संज्ञान लिया है वो प्रोसीजरल लैप्सेस और अलेज्ड इंस्टीट्यूशनल बायस के टाइटल से लिया है, यानी कि जो हम इतने दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आज तक के पटल पर भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से ये आरोप लगा है कि गिरिबाला सिंह ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, किस तरह से एंटिसिपेटरी बेल गलत दी गई, जो कि दलील मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के सामने भी रखी है, तो ये किस तरह से समर्थ सिंह को इतने दिन तक भागा रहा, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, और खास तौर से जो हमने फ्राइडे को पूरा ड्रामा देखा, इतने घंटों तक हमारे चैनल पर भी चला, कि किस तरह से समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, फिर वो जबलपुर पहुंचा, वहां पर 2 घंटे तक कोर्ट में इधर से उधर घुमा, उसके बाद जाकर उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। तो ये सारे जो प्रोसीजरल लैप्सेस इस केस में अब तक हुए हैं, और जो आरोप लगा है कि जो पहला पोस्टमार्टम था वो भी ठीक से नहीं हुआ, उस सब पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। अभी अब सुप्रीम कोर्ट जब ये मैटर सुनेगी तब पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली कोर्ट कहना चाहती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, 10:30 बजे गिरिबाला सिंह के जो एंटिसिपेटरी बेल है उसको रद्द करने की जो याचिका मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई है, उसकी भी सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने है।
2: ठीक है अनीशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात राजनीतिक खबरों की करेंगे। बकरीद को लेकर दिल्ली से यूपी तक बयानबाजी तेज है, तमाम राज्यों में सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी ने साफ कर दिया कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी और सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी।

0: यूपी में सीएम योगी का फरमान, बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, बकरीद में सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर अपना इरादा साफ कर दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी, सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होगी। सड़क बाधित कर नमाज पढ़ने पर योगी पहले भी आपत्ति जता चुके हैं। पिछले हफ्ते इसे लेकर उनका सख्त बयान सामने आया था।
1: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके कर। लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
0: सरकार का असर दिखने लगा है। झांसी में कल पीस कमेटी की बैठक हुई जिसमें दोनों धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नमाज और कुर्बानी को लेकर सरकार का सख्त निर्देश बता दिया।
2: स्थानीय ईदगाहों में जो भी नमाज संपन्न होती है, यदि वहां क्षमता पूर्ण हो चुकी है तो आसपास की जो मस्जिदें जहां नमाज हो रही है वहां वो लोग जाकर समय से अपना नमाज पढ़ लें, लेकिन किसी भी दशा में नमाज स्थल मस्जिद या ईदगाह उसके बाहर नमाजी नहीं बैठेंगे, वो उसके अंदर ही रहकर अच्छे से अपनी नमाज को संपन्न करेंगे।
0: यूपी के साथ साथ बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन ही 28 मई को छुट्टी रहेगी। पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी। इससे पहले शुभेंदु सरकार बकरीद पर गायों की कुर्बानी पर रोक लगा चुकी है। बकरीद को लेकर हलचल दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
3: बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0: कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती हैं। अदालत से इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करने की गुहार लगाई गई है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और बात पश्चिम बंगाल की करेंगे जहां पर एक बार फिर बीजेपी ने ममता को उन्हीं के गढ़ में शिकस्त दी है। फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,00,000 वोट से हरा दिया।
5: फलता तो ऐसे ही होता है। फलता में कॉमन में पीपल आके वोट दिया और वो गणतंत्र का उत्सव हुआ और वोट में हम लोग 1,09,666 में जीता। ये फलतावासी का जीत है, ये सब भारतीय जनता पार्टी जीता है, फलतावासी का जीत है।
6: आज समझ में आ रहे हैं, बंगाल भी देख रहे हैं और भारत भी देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा वोट में 7,00,000 के ऊपर वोट से किस तरह से जीते थे, आज वो स्पष्ट हो गया है। और जो पुष्पा बोल रहे थे कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा झुकते झुकते पता नहीं चूहा का बिल में घुस गया। तो हम लोग पुलिस में खबर दिए है कि पुष्पा निरुद्देश है, पुष्पा को नहीं मिल रहा है, तो किसी पुष्पा का दरकार नहीं है।
4: अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये तो फलता में प्रत्याशित ही था और शायद यही वजह थी कि टीएमसी के उम्मीदवार ने विड्रॉ कर लिया था।
7: जी बिल्कुल, जिस नॉर्मली देखिए जहां पर सत्ता की आती है उसके बाद तुरंत बोल होता है उससे की जीत होती है, नॉर्मल ये इतिहास बताता है। और यहाँ पर तो कई बातें हुई। सबसे बड़ी बात हुई कि जहांगीर खान जो एक तरह से बाहुबली नेता माने जाते थे फलता के, उन्होंने चुनाव से 2 दिन पहले ही अपने को विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे में कोई प्रतिद्वंदिता थी नहीं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने जो रीपोल हुआ उसमें कैंपेन तक नहीं किया, तो ऐसे में चुनावी माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में था और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग आए। 1,09,000 वोट अब तक की सबसे बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल विधानसभा 2020 के इस चुनाव में, तो ये बहुत बड़ी जीत है। हालांकि इसके बाद ममता बनर्जी ने फिर से वही आरोप लगाए हैं कि वोट लूट किया गया है, तो लेकिन अब जो हकीकत है वो है जीत तो बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग।
4: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फालता में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को अब इंडिया गठबंधन की याद आ गई है। ममता ने फेसबुक लाइव संबोधन में कल कहा कि इंडियन अलायंस की जून से पहले सप्ताह में बैठक की संभावना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी खेमा एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। ये भी कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार है, हम अंत तक हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं गाली गलौज हो रहा है और जितना अत्याचार बंगाल में होगा बीजेपी को उतना ही नुकसान दिल्ली में होगा।
8: हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे सबको साथ बातचीत करके और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए व्हेयरएवर वी हैव टू गो वी आर रेडी टू गो। प्लीज सी दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन आवर हेड। चोर की माए जोर से बोले, मदर ऑफ थीप्स आर साउथ मोस्ट, एवरीवेयर यू आर एक्यूजिंग अस, अब्यूजिंग अस विदाउट द एविडेंस। कितना जेल बनाओगे आप? बनाओ, हम देखने चाहता है देश भर कितना जेल है। आप जितना अत्याचार बंगाल में करेंगे इतना आपको नुकसान दिल्ली में होगा। कि अभी आप बंगाल से फ्री हो गया, आपने मेरे को वोट लूट लिया जबरदस्ती।
4: और अब बात आगरा की करेंगे जहां के ताजगंज में एडवेंचर गेम के दौरान हादसा हो गया जिसमें 16 साल के एक बच्चे की जान चली गई। आगरा के ताजगंज में एडवेंचर पार्क बना है जिसमें जिपलाइन है, उसी जिपलाइन से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जिपलाइन पर आगे बढ़ते ही पुली का लॉक अचानक खुल गया और लड़का सीधे नीचे आ गिरा। चीख पुकार मच गई, वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। माता पिता बदहवास हालत में बेटे की ओर दौड़े लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले कुणाल ने दम तोड़ दिया।
9: अब इनकी लापरवाही की वजह से मेरा तो बच्चा चला गया।
10: 16 साल का बेटा, बड़ा बेटा
9: था, उसको घुमाने के लिए लाया था, मैं उसको कैसे लेके जाऊंगा पूरे। मेरा बच्चा चला गया।
4: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, तब लापरवाही का जो मामला चलेगा वो इस पूरे संचालन पर चलेगा या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम भी सामने आया है?
11: देखिए, फिलहाल तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है आगरा से, संचालन के खिलाफ भी जांच हो सकती है क्योंकि शायद ये घटनाएं पहले भी इस तरह की हुई हो या होने से बची हो, इस वजह से इसको लेकर प्रशासनिक लेवल पर फिलहाल पड़ताल जारी है। अगर मामले की बात करें तो ये ताजगंज क्षेत्र पड़ता है जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है और कुल मिलाकर फिरोजाबाद से घूमने आए एक चूड़ी कारोबारी के 16 वर्षीय बेटे की जिप लाइन में गिरकर मौत हो गई है जिसमें बेटे को माता पिता मुस्कुराते हुए एडवेंचर कराते दिख रहे हैं। कुछ ही सेकंड बाद वही बेटा उनकी आंखों के सामने 45 फीट नीचे गिर जाता है। इस हादसे ने चौपटी में मौजूद हर व्यक्ति को वहां पर उस वक्त झकझोर दिया है। फिरोजाबाद निवासी पंकज अग्रवाल है जो घूमने आए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल में जुट गई है। करीब 120 मीटर लंबी और लगभग 45 फीट ऊंची जिपलाइन पर कुणाल को भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक जिपलाइन पर आगे बढ़ते ही पुली का लॉक अचानक खुल गया और कुणाल सीधे नीचे आ गिरा। चीख पुकार मच गई, वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। माता पिता बदहवास हालत में बेटे की ओर दौड़े लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुणाल ने दम तोड़ दिया।
4: बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ तमाम जानकारी के लिए आपका। बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

देश को महंगाई की एक और किश्त का करण, पेट्रोल कीमतों का शतक 2.61 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा भारत के साथ अंतिम दौर में व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप, आगरा और जयपुर जा रहे हैं रूबियो। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ लाइव फोन पर जुड़े ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने स्वतः लिया संज्ञान, पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, भोपाल वाले घर से एम्स फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका, ईरान ने कहा फ्रीज संपत्तियां जारी करने तक का होगा अंतिम फैसला, ट्रंप ने कहा हड़बड़ी में नहीं होगी डील।

तेल के दाम में फिर महंगाई का तड़का, पेट्रोल डीजल के दाम आज चौथी बार बढ़ गए। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा, डीजल कीमतों में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी। पिछले 10 दिन में चौथी बार तेल के दाम बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम करीब पूरे देश ने पार किया 100 रुपए का आंकड़ा। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए, डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तेल के दामों में नए उछाल के बाद मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में ईंधन महंगा। दिल्ली में अमेरिकी स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में फोन पर लाइव जुड़े राष्ट्रपति, अमेरिकी राजदूत गौर, मार्को रूबियो, विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद। कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर लाइव जोड़ा। ट्रंप ने भारत से विशेष लगाव और पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। प्रधानमंत्री मोदी को शानदार नेता बताते हुए ट्रंप ने कहा, भारत 100% मुझ पर भरोसा कर सकता है, भारत को कभी मदद चाहिए तो हम साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्को रूबियो को बेहतरीन विदेश मंत्री बताया, बोले पीएम मोदी को मेरा हेलो कहना, उनका बहुत बड़ा फैन हूं। भारत अमेरिका के रिश्तों की चर्चा करते हुए बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर, कहा राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा पहले प्रधानमंत्री मोदी का हाल पूछते हैं। आज तक से खास बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का करीबी सहयोगी बताया, कहा भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी है। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते भी बोले मार्को रूबियो, का अंतिम चरण में है बातचीत, जल्द हो सकता है समझौता। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दिया जोर, निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी बढ़ाने पर जोर। मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक में और मौजूदा हालात पर इशारा करते हुए कहा, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन के क्षेत्र में क्वाड देश मिलकर सहयोग बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज तीसरा दिन, आगरा कार्यक्रम के बाद दोपहर 1 बजे जयपुर जाएंगे। मिडल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव के समझौते को लेकर बातचीत जारी, ट्रंप ने कहा अमेरिका और ईरान की बातचीत प्रगति पर है। ट्रंप ने ईरान से रिश्ते अधिक पेशेवर और सकारात्मक होने का दावा, अपने ही शर्तों पर सहमति का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा समझौते में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। समझौते को लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर सलाहकार मोहसिन रजाई का बयान, कहा हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान का कानूनी अधिकार है। अमेरिका ईरान तनाव मारे गए लोग की याद में समारोह, झंडे और पोस्टर के साथ बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। पीएम मोदी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कमजोर प्रधानमंत्री, कहा पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर डील की। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को नुकसानजनक बताया, कहा सरकार का यह फैसला किसानों और उद्योग पर बुरा असर डाल सकता है। पीएम मोदी पर विदेश नीति को लेकर हमलावर दिखा विपक्ष, इमरान मसूद बोले अमेरिका से समझौते भारत के हित में नहीं, महंगाई बढ़ने से आम लोगों पर पड़ेगा असर। राहुल गांधी के पीएम मोदी की विदाई वाले बयान पर भड़की बीजेपी, मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, सरकार को गिराकर देश में अराजकता लाना चाहते हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के बयान को बताया ख्याली बुलाव, कहा दिन में ही सपने देख रहे हैं कांग्रेस के सांसद। आज दोपहर 3 बजे संसद की स्थायी समिति की बैठक में पश्चिम एशिया संकट के भारत के समुद्री व्यापार पर प्रभाव पर चर्चा। पोत, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव भी बैठक में लेंगे हिस्सा, समुद्री व्यापार, शिपिंग ढांचा और नाविकों की सुरक्षा पर असर पर चर्चा होगी। पश्चिम एशिया संकट से भारत के ऊर्जा व्यापार पर असर की होगी समीक्षा, हॉर्मुज में तनाव के बीच शिपिंग पर पड़ रहे प्रभाव पर चर्चा होगी। यूपी चुनाव 2027 से पहले बीएसपी की बड़ी तैयारी, मायावती ने समीक्षा बैठक में संगठन को मजबूत करने और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर दिया जोर। बीएसपी की बैठक में आकाश आनंद, आनंद कुमार और सतीश मिश्र रहे मौजूद, मायावती ने विपक्ष पर छलावे की राजनीति का लगाया आरोप। नीट पेपर लीक मामले में गरमाई से आसत राहुल गांधी, बोले जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे आंदोलन जारी रहेगा। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष का पीएम मोदी पर हमला, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, प्रधानमंत्री मौन है। नीट पेपर लीक मामले के बाद राजस्थान के झुंझुनू में आत्महत्या करने वाले छात्र के परिजनों से मिले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सीबीएसई रिजल्ट पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, रिजल्ट के बाद पोर्टल में ब्लर पेज की दिक्कतें आई सामने। सीबीएसई ने मामले पर दी प्रतिक्रिया, कहा आईटी मद्रास और आईटी कानपुर की मदद ली जाएगी, पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू। बंगाल के फलता विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, देवांशु पांड्या ने 1,09,021 वोट से जीता चुनाव। बंगाल विधानसभा चुनाव की किसी भी सीट पर बीजेपी ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत, चौथे नंबर पर रही टीएमसी, पार्टी को मिले करीब 7,500 वोट। चुनावी नतीजों पर ममता बनर्जी का बयान, कहा बीजेपी ने फिर से वोटों की चोरी की है, केंद्रीय बल ने बीजेपी एजेंट की तरह काम किया है। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुभेंदु सरकार पर बोला धावा, कहा मुझे बैठक करने की नहीं मिल रही इजाजत, हमारे 2,500 पार्टी कार्यालय पर किया था कब्जा। आठ उषा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान, पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी तूफान का मौसम विभाग ने जताया अनुमान।
उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। बदायूं भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजार में पसरा सन्नाटा, घर से निकलना हुआ मुश्किल। कटिहार मौसम में बदलाव, आंधी तूफान से तबाही, कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेड से झरने की तरह पानी गिरता दिखाई दिया। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे हैं नैनीताल का रुख, सुहाने मौसम का जमकर ले रहे हैं आनंद। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम। चमोली में मौसम ने ली करवट, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। चमोली में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने यात्रियों से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, लाल चौक से सामने आई तस्वीरें। महाबलेश्वर में स्कॉर्पियो कार करीब 700 से 800 फीट गहराई में गिरी, कार सवार सभी 8 की मौत। महाबलेश्वर हादसे में रेस्क्यू में 2 शव बरामद, अंधेरे और दुर्गम रास्तों के बीच शव निकालने की कोशिश तेज। कानपुर में मामूली विवाद में मृता पुत्र की रोड पर हत्या, भाई घायल, 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सोनीपत में बुजुर्ग महिला की हत्या, लूट के इरादे से हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में 10 महीने की मासूम की हत्या कर सेप्टिक टैंक में फेंका, बेटी होने से नाराज पिता गिरफ्तार। लखनऊ की मलिहाबाद में नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद ने पकड़ा तूल, किला और शिव मंदिर को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पासी किला विवाद में तनाव बढ़ता जा रहा है, लाखन आर्मी प्रमुख सूरज पासी ने पुलिस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए बड़े आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में कई स्थानों पर एनआईए की छापेमारी, जमात इस्लामी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान जामिया सिराज उल उलूम में भी हो रही है छापेमारी। अलीगढ़ में महिलाओं से लूट करने वाले 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, कई वारदात को दे चुके हैं अंजाम। साबरकांठा में एक मैदान में लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर हुई दुर्घटना, बाल बाल बच्चे पर्यटक, हादसा सीसीटीवी में कैद। मेहसाणा के मोतीपुरा के पास भीषण सड़क हादसा, 2 की गई जान। खेड़ा के वेद हॉस्पिटल में आईसीयू में एसी में लगी आग, 3 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण तेज, जल्द बहाल हो गया था, ब्रिज से ट्रैफिक सुचारू करने की कवायद तेज। बगहा में खाली ट्रॉली के नीचे से मिला शराब का जखीरा, 302 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सोनीपत में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी, शख्स ने पति पत्नी और महिला को तेज धारदार हथियार से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बुलंदशहर में खुर्जा में अफेयर के शक में छोले छाप डॉक्टर ने पिता और पत्नी की गोली मारकर हत्या की, दोनों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ रिजर्व बाघ के हमले में एक महिला की मौत, 3 घायल। उड़ीसा के झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में श्राद्ध कर्म के दौरान भोज खाने से 4 की मौत, 17 से ज्यादा लोग बीमार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक में पीछे से घुसी कार, 3 महीने की मासूम की मौत, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके दिल्ली लौट रहा था परिवार। जूनागढ़ में युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, युवती ने कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। गुजरात के भावनगर में नहाते वक्त समुद्र में डूबने से 3 की मौत, स्थानीय तैराकों ने शव किया बरामद। चक्राता के फेंडोलोनी जंगल में भीषण आग, जंगल की आग की चपेट में आई दुकानें। जैसलमेर की डंपिंग साइट पर मिली बड़ी संख्या में मृत गायों का शव, जांच में जुट गई है राजस्थान पुलिस। नागपुर में फॉर्चुनर कार से 30 लाख रुपए का डोडा पोस्त बरामद, होम डिलीवरी के लिए जा रहे थे तस्कर। आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 131 में से 66 पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगी पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर 1 पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण कुमार। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया ने बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तकाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तकाराम भील ने अलगोजा वादन को दी ग्लोबल पहचान, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म। राजस्थान रॉयल्स का बड़ा धमाका, मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह। वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान का तूफान, 205 रन के विशाल लक्ष्य के आगे मुंबई इंडियंस बेबस। आईपीएल 2026 के

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
8: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
10: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
11: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
12: Character, the taste of success.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर।

पर हर सुबह आपके मोबाइल में और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: त्रिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री बेहद पेचीदा है। कई उलझे सवाल हैं, कई गंभीर आरोप हैं और घेरे में है त्रिशा का पति समर्थ सिंह, जो करीब 10 दिनों की फरारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर है। समर्थ से लगातार पूछताछ चल रही है, जिसके जरिए केस की कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने समर्थ सिंह से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई है। समर्थ सिंह से ज्यादातर सवाल जवाब त्रिशा से उसके रिश्ते, त्रिशा की मौत और उसके फरार रहने को लेकर हो रहे हैं। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि 12 मई यानी जिस दिन त्रिशा की मौत हुई वो कहां था, क्या उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सवाल ये भी हुआ कि जब उसे त्रिशा के साथ रहना था तो आखिर वो फरार क्यों हो गया। इसके बाद 10 दिनों तक वो कहां कहां गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस का अहम सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान उसकी अपनी माँ गिरिबाला से भी बातचीत होती रही। ये सारे सवाल त्रिशा शर्मा की मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम से जुड़े हैं।
1: कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी की पत्नी चली जाए और वो लगातार फरार रहे, कहीं ना कहीं उनके कंडक्ट को दिखाता है। जिस तरीके से किसी की पत्नी शांत हो गई, वो एम्स में है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो फरार चल रहे हैं और शुरू से कोशिश करी जा रही है आरोपियों द्वारा मिलके कि किस तरीके से जांच को प्रभावित करा जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड है वो दिखाता है। वो कितना कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं, खुद वकील रहे, उससे पहले उनकी जो मदर है वो डीजे रही, लेकिन किस तरीके से उनका कंडक्ट रहा वो मीडिया में भी सबने देखा।
0: त्रिशा के परिवार वाले लगातार समर्थ पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और उसे त्रिशा की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। एक दिन पहले जब भोपाल की अदालत में समर्थ सिंह की पेशी हुई, तब त्रिशा के भाई ने कहा कि उसके चेहरे पर कोई गम, कोई दर्द नहीं दिख रहा था, उल्टा वो कोर्ट में मुस्कुरा रहा था।
2: जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहां पे अपना वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से।
0: समर्थ सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पर पूछताछ चल रही है। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि उसकी पत्नी त्रिशा और गिरिबाला सिंह के बीच संबंध कैसे थे, क्या कभी गिरिबाला सिंह ने ऐसा कहा था कि त्रिशा उन्हें पसंद नहीं है, क्या त्रिशा रोजाना अपने परिवार से बातचीत में तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र करती थी। इसके साथ जो चैट्स दिखाकर त्रिशा के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन पर उसका क्या कहना है।
3: जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
0: त्रिशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी करीब 5 महीने पहले हुई थी। 5 महीनों में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी, तनाव बढ़ा और त्रिशा की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि क्या इस मौत के पीछे उसके पति समर्थ या ससुराल के किसी भी शख्स की कोई भूमिका तो नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली में कांग्रेस का आलिशान दफ्तर इंदिरा भवन, यहीं पर हुई कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक और सबके केंद्र में रहे राहुल गांधी। उनके सामने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। और फिर आया वो बयान जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच नई जंग छेड़ दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अपने बड़े दावे को चार पॉइंट से पुख्ता किया। राहुल गांधी ने इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष को वजह बताया।
1: जनता जवाब नहीं दे रही, जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकल रही है। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही। हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई। अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी।
0: बंद कमरे में राहुल गांधी का ताजा बयान राजनीति के बाहरी गलियारे में बवंडर बनकर घूमने लगा। बीजेपी ने इसको साजिश, पीएम की लोकप्रियता का डर और देश में हिंसा फैलाने की मंशा से जोड़कर पलटवार किया। राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस ने फुल स्टॉप लगाया। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी की बैठक में सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस की राजनीति की दिशा पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा, जिसके साथ अन्याय हो कांग्रेस को खुलकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश में है, जिसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम देती रही है।
2: क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस साजिश करती रहती है।
0: अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआत है? क्या कांग्रेस आर्थिक असंतोष और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नई जमीन तलाश रही है? क्या राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने एनडीए में असमंजस पैदा करने के लिए ताजा बयान दिया? या फिर बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के नैरेटिव से राहुल गांधी के बयान को कमजोर कर देगी? राहुल गांधी का दावा कितना सच होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल ने मोदी सरकार के जाने का जो समय तय किया है उसका टेस्ट 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधानसभा समेत कई राज्यों के चुनाव में हो जाएगा, जहां मुद्दे भी होंगे, मजहब भी होगा, विकास भी होगा और सत्ता विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा भी। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट। पेट्रोल की कीमतों का शतक, 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। आज तुषा केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान। पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, भोपाल वाले घर से एम्स फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, शोपियां में कई जगहों पर छापेमारी, जमाते इस्लामी के शिक्षण संस्थान निशाने पर। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, भारत के साथ अंतिम दौर में है व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आगरा पहुंचे मार्को रूबियो। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ लाइव फोन पर जुड़े ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, भारत कर सकता है भरोसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सुबह की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से जैसलमेर से आई विचलित करने वाली तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसने गौ संरक्षण और सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसलमेर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में 500 से ज्यादा गायों के शव मिलने के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। उधर विवाद गहराने के बाद जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें, जिसमें देख सकते हैं कि 500 से ज्यादा इस तरह के कंकाल वहां पड़े नजर आ रहे हैं, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं।
1: ये हमारे जैसलमेर के डंपिंग यार्ड की स्थिति है। यहाँ पर एक बिजनेस की तरह बिजनेस चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप पीछे हड्डियाँ देख रहे हैं गौ माता की। यहाँ पर ये जब गौ माता सूखेगी, इनको जब इनका चमड़ा सूखेगा फिर इनको काटा जाएगा, फिर उसके बावजूद इनकी हड्डियों को वितरण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चुनौती का जरिया चल रहा है। और जैसलमेर के नगर परिषद में जितनी बड़ी लापरवाही है, इन्हें जितना बोला जाए इतना कम है। भ्रष्टाचार के नाम पर जो ये लोग बहुत बड़ी ये जो साजिशें कर रहे हैं, अभी आप लाखों की तादाद में गौ माताओं को देख सकते हैं। यहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई यहाँ पर इनके जो गौ माता है जो मृतक पशु लेकर आते हैं, ना वो कोई ठेकेदार है, ना यहाँ पर कोई कर्मचारी दिख रहा है, ना कोई स्टाफ दिख रहे हैं। और जैसलमेर को गुमराह करके सिटी के अंदर स्वच्छ भारत का अभियान बहुत बड़ा नाम मिसाल देने के बावजूद भी आयुक्त की सबसे बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर आयुक्त साहब को यहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मृतक पशु है, उनको बदबू आती है। ऐसे अकाल में यहाँ पर कौन आए ऐसी भीषण गर्मी में। और यहाँ आगे आपको दिखाते हैं, आगे हजारों गाय घायल भी पड़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं जल्दी।
0: सोचिए, सरकार का डंपिंग यार्ड और उसमें मिल रहे हैं इस तरह से ये शव, तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो कई सवाल पूछ रहे हैं, और यही सवाल हम आपको अब दिखाना चाहते हैं। तो नजर डालिए क्या क्या है सवाल। सबसे पहला सवाल, डंपिंग यार्ड में 500 से ज्यादा शव आखिर वहां कैसे पहुंच गए? बड़ी तादाद में गायों की मौत की आखिर वजह क्या हो सकती है? साथ ही सवाल ये भी है, क्या घायल गायों को यहां पर छोड़ दिया गया था? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर ऐसे हुई कैसी? क्या कोई इसकी जांच भी की गई है सरकार की तरफ से या नहीं? डंपिंग यार्ड में 500 से ज्यादा शवों के मिलने पर अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं, जो कि लाजमी है। तो आइए अब नजर डालते हैं कि जब इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने जांच करने की कोशिश की है तो शरद कुमार ने क्या कहा है, सुनिए। शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सरकार है वो ये कह रही है कि हमने रिपोर्ट मांग ली है, लेकिन 500 से ज्यादा शव का मिलना, अभी वहां आपको क्या पता चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है?
2: अंजलि, देखिए वाकई विचलित करने वाली तस्वीर है। अभी अभी हमारी प्रशासन से बात हुई है तो उसमें उन्होंने कहा है कि गोपाराम ये ठेकेदार है बाड़मेर का, जो मृत पशुओं को बटोरने का काम करता है, उसका टेंडर हमने निरस्त कर दिया है और मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि डंपिंग यार्ड भी नहीं है अंजलि, ये बड़ा बाग है जो शहर के नज़दीक एक जगह है, ये डंपिंग यार्ड पर ले जाने के बजाय यहाँ फेंक देता है और इन गायों को सुखाकर फिर इसके चमड़े और हड्डियां गुजरात सप्लाई करता था। इसको डिस्पोज करना था मगर इसने बिजनेस शुरू कर दिया था। अब प्रशासन ने इसके ऊपर सख्ती की है, मगर वही बड़ा सवाल है जो अंजलि जो आप उठा रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में गायें आखिर मर क्यों रही है? क्या पानी की कमी है, क्या चारा की कमी है, तेज गर्मी की वजह से मर रही है? प्रशासन का कहना है कि प्राकृतिक मौतें हैं, फिर भी गोपालन विभाग इस मामले की जाँच कर रहा है। जो पशु पालन के डॉक्टर हैं विभाग के, वो भी उन्हें भी निर्देश दिया गया है पता करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में गाय मर क्यों रही है। मगर ये ठेकेदार गोपाराम लंबे समय से यहाँ पर एकत्रित कर रहा था और तेज गर्मी में ये गायों को छोड़ देता था इस तरह से मृत गायों को बटोर के, और जब ये सूख जाते थे तो उनके चमड़े निकालकर और हड्डियों को तोड़ के वो गुजरात फैक्ट्री में सप्लाई करता था, ये कहानी सामने आ रही है। पर ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जैसलमेर में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। इसलिए बड़ा सवाल है कि देश में सबसे पहले गाय मंत्रालय बनाने का दावा करने वाली राजस्थान सरकार को अगर इस तरह के हालात देखने पड़ रहे हैं तो बड़ा सवाल है कि गो टैक्स राजस्थान में वसूला जाता है, बड़ा बजट है गोपालन विभाग का, गोपालन मंत्रालय है।
0: इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं इसी मामले से जुड़ी हुई, जिस ठेकेदार की बात शरद कर रहे हैं, खबर यह है कि उसका लाइसेंस अब प्रशासन ने रद्द कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ लाइसेंस रद्द करने कर देना ही इस बात का कोई एक्शन हो सकता है? ठेकेदार को शव को डिस्पोज भी करने के लिए अब आदेश दिया गया है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो सब खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि जो काम इसे दिया गया था, यानी कि इस इनके शवों को डिस्पोज करना, वो उसने नहीं किया और अब लाइसेंस रद्द है। एक बार फिर से शरद का रुख करते हैं। शरद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ठेकेदार जिसकी बात आप भी कर रहे थे, लापरवाही उसने की है, लेकिन इस तरह के मामले पहले भी आए हैं, तो निगरानी इन ठेकेदारों के ऊपर क्यों नहीं बनी रहती सरकार की?
2: अंजलि, यही बड़ा सवाल है कि इसी ठेकेदार गोपाराम को, जो बाड़मेर को ठेका मिला है, कुछ दिन पहले ही कलेक्टर ने नोटिस दिया था कि तुम डंपिंग यार्ड छोड़कर शहर के पास, यानी इसी जगह पर बड़ा बाग में क्यों लाकर मृत गायों को, पशुधन को फेंक रहे हो, मगर गंभीरता से नहीं लिया गया। और अब जब ये जो वीडियो वायरल हुए विचलित करने वाले, तो कल आनंद
0: जी, जी शरद, तो लगता है शरद के साथ हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी खबर इसमें यही थी कि पहला उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और साथ ही में ये डंपिंग यार्ड है भी नहीं, ये एक ऐसा ही कोई खास पार्क है जहां पर जाकर उसने ये शव फेंक दिए थे। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। अब बात भोपाल की तुषा शर्मा मौत मामले की, और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। और बड़ी खबर यह आ रही है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ एक याचिका लगाई गई है और उस पर आज एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कल दिल्ली एम्स से पहुंची चार डॉक्टरों की टीम ने त्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम भी किया है। उधर त्विशा के पति समर सिंह ने से भी लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस त्विशा से उसके रिश्ते, मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम पर सवाल जवाब कर रही है। साथ ही सवाल गिरिबाला सिंह और तुषा के रिश्तों को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। तो ये चार तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहला, जैसा कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और वो ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या किसी तरह के इन्फ्लुएंस या बायस का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। साथ ही समर से पूछताछ की तस्वीरें भी हैं जिसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया। जांच तेज करने के लिए वहां पर पोस्टमार्टम दोबारा किया गया है, जिसके लिए एम्स की टीम भी पहुंची थी और फोरेंसिक की टीम ने एक बार फिर से जो भोपाल का मकान है वहां से सबूत जुटाए हैं। तो ये सारा जो काम है वो किया गया है। अब इस जांच के तौर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी अनीशा माथुर जुड़ गई हैं। अनीशा, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो कि स्वतः संज्ञान लिया गया है, ये जांच को लेकर नहीं बल्कि जांच किस तरह से की गई इस पर फोकस रहेगा, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए।
3: जी अंजी, अगर आप ये देखें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है उसका टाइटल किस तरह से दिया गया है कि अलेज्ड इंस्टीट्यूशनल बायस एंड प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटीज, यानी कि आपने इंस्टीट्यूट जो जो हमने आज तक के पटल पर भी दिखाए हैं कि त्विशा की जो मृत्यु हुई उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो ढंग से नहीं की गई, उसको सुसाइड का करार करके ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, पोस्टमार्टम में जो खामियां त्विशा के परिवार ने निकाली थी, उसके अलावा जिस तरह से उसकी मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह को एंटिसिपेटरी बेल बहुत जल्द दी गई, जिस पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी सुनवाई करनी है जिस मुद्दे पर, उसके अलावा काफी और आरोप लगे हैं इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स को लेकर कि पुलिस ने क्या गड़बड़ियां की, इन्वेस्टिगेशन ढंग से की गई कि नहीं की गई, गिरिबाला सिंह ने अपने जो कनेक्शन है उनका किस तरह से आरोप है कि गलत इस्तेमाल किया गया, समर सिंह जब सरेंडर करने के लिए जबलपुर कोर्ट पहुंचे तब जिस तरह का हमने देखा कि वो जबलपुर पहुंचे भोपाल पहुंचने की बजाय, उसके अलावा वहां पे जज नहीं थे, उसके अलावा वहां पे बार एसोसिएशन उनकी मदद करता पाया गया, तो इन सब को लेकर जो इंस्टीट्यूशनल बायसेस और प्रोसीजरल कंसर्न्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कि पुलिस ने जिस तरह से काम किया, कोर्ट ने जिस तरह से काम किया, पोस्टमार्टम किस तरह से हुआ, डॉक्टरों ने किस तरह काम किया और बार एसोसिएशन ने किस तरह काम किया, ये सब चीजें जो है एक तरह का इंस्टीट्यूशनल बायस दर्शा रही है कि एक लड़की की मृत्यु हुई उसपे ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय, और किस तरह से उसके ऊपर जो आरोप लगाए उसकी मदर इन लॉ ने मीडिया में आकर भी, किस किस तरह से उसको उसके ऊपर अलग अलग उसकी गई। तो
0: जी
3: जब इंस्टीट्यूशनल बायसेस की बात होती है तो ये मुद्दा जो है अब सुप्रीम कोर्ट में, अब
0: जी
3: देखना ये रहेगा कि चीफ जस्टिस की खंडपीठ किस तरह से इसको देखती है। तो ये कुछ ही समय में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है।
0: जी बिल्कुल, इस पर रहेगी हमारी नजर और जांच ये होगी कि क्या रसूख वाले लोगों ने कानूनी प्रक्रिया पर असर डाला। और इसी के साथ जुड़ी बड़ी खबर ये भी है कि तुषार शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के खिलाफ लगाई गई याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। उन्होंने पहले ही अग्रिम जमानत ले ली थी और अब उसे खारिज करने के लिए एक याचिका लगाई गई है जो आज मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में आएगी, जिस पर सुनवाई होगी। इसमें गौरतलब यह है कि त्रिशा का परिवार लगातार ये मांग करता आया है कि उनकी अग्रिम जमानत खारिज की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जांच करता है वो इस तरह की मांग नहीं उठाते रहे, इसीलिए आसानी से गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। अब इसी बेल पर, इसी जमानत पर सवाल उठाते हुए एक याचिका एमपी के हाईकोर्ट में दायर की गई है जिसकी सुनवाई है। और बात हो रही है महिलाओं और उनके प्रताड़न की, इसी से जुड़ी हुई बीते महीने जयपुर की एक और बड़ी खबर जिसमें अनु मीणा कथित सुसाइड केस सामने आया था। इस केस में मिले नए सीसीटीवी फुटेज ने पूरे केस की जांच को नया मोड़ दे दिया है। फुटेज ने अनु मीणा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम उसे बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मामला बीते महीने 7 अप्रैल का है जब अनु मीणा ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अब अनु के मोबाइल से कुछ अहम वीडियो और सबूत मिलने के बाद परिवार वालों ने पति के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई है। अनु के भाई नीरज मीणा ने आरोप लगाया कि गौतम लगातार उसकी बहन को प्रताड़ित करता था।
4: रात को आ जाती तो मेरे पैर पकड़ के अलमेर ले जाता, उसको नहीं करूंगा आज के पास मैं कभी नहीं करूंगा, पैर पकड़ देते थे आगे। मैं कहती अनु ये रोज का काम है, मत जाए तू। अरे यार मम्मी आप तो माफी मांग रही।
5: आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई?
4: आखिरी चौथ के व्रत के दिन आई थी, वो घूमने गया था। 3 दिन पहले आई थी, आके मेरे को खाना बनवा के ले गई भाभी के पास, भाभी मेरे को खाना बना दे चौथ का व्रत मैं वहीं खोलूंगी। बच्चों को लेके गई थी, बच्चे यहीं थे मेरे, बच्चों को लेके गई थी। फिर दूसरे दिन सोमवार को भी बात हुई थी, मेरी बात होती रही, उस दिन नहीं हुई मेरी बात। मैंने फोन करा था, मेरा फोन ही नहीं उठाया उस दिन। तो उसी दिन के बाद मेरी बेटी को पता ना उसने क्या कैसा करा, उसके बोलने नहीं दिया। ऐसे ही बोलती थी मम्मी, मैं सोची कि वही 8 बजे बात करी, मैं सोची कि बाद में करेगी मम्मी, ये टॉर्चर करता है मेरी साथ में कि तेरी मारा ऐसी है उससे बात करती है ऐसे करती। तो मैंने ये सोचा कि भाई फोन करने के बाद वो चले जाएगा ऑफिस जब कर लेगी, मैं नहीं पता मेरी बेटी को ये कर देगा पीछे। तो मेरी बेटी के साथ है।
0: और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बेहद दिल दहला देने वाली तस्वीर है और जो दुखद बात है कि बच्चा भी वहीं खड़ा है जिसके सामने ये मारपिटाई हो रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच ने कोई नया रुख लिया है?
2: बिल्कुल, कल लगातार हमने पुलिस वालों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये नया वीडियो आया है, उसके बाद हम नए सिरे से मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए हुआ क्या कि ये 7 अप्रैल के मरने के बाद पंच पटेलों और समाज के दबाव में इन्होंने समझौता कर लिया और कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, मगर जब भाई ने अपने बहन का मोबाइल फोन का लॉक खुलवाया तो मोबाइल में ये सब सीसीटीवी के फुटेज जो है वो अनु रखी हुई थी, उसको देखने के बाद इन्हें लगा कि ये तो बहुत अत्याचार हुआ है हमारी बहन पर। देखिए ऐसे दुष्टों से और राक्षसों से बचाने के लिए समाज में जो बेटियां हैं उनके घर वालों को भी पहल करनी पड़ेगी। 2022 से ये मारपीट की शिकायत आ रही थी, 2022 में इनका कहना है कि हमने 20 लाख रुपए दिए भी थे, लेकिन बार बार समझा के ये भेज दे रहे थे उसी दुष्ट के पास, पति के पास, जो इतनी बेरहमी से मारपीट कर रहा है। उसका गुस्सा पर इतना काबू नहीं है कि वो घर में छोटे बच्चे के सामने टीवी तोड़ दे रहा है। तो आप समझिए कि ऐसे लोगों के पास अपनी बेटी को समझा बुझाकर सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव में भेजना भी गलत है। इसके लिए भी जन जागृति हमें चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा तो मिलेगी मगर अनु मीणा जैसी बेटियों की जान चली जाती है जब समाज के दबाव में बार बार उन्हें घर भेज दिया जाता है, जब वो मायके चली आती है तो, और मरने के बाद फिर अफसोस हो जाता है। अब पुलिस इस मसले पर नए जो प्रूफ मिले हैं उसके आधार पर नए सिरे से मुकदमा दर्ज कर ली है और कार्रवाई की जाएगी। ये पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है और उस समय इनको कहना था कि 2015 में हमने 7 लाख रुपए खर्च करके सरकारी
0: जाहिर तौर पर परिवार को भी सोचना होगा और उन पंचों को भी जिन्होंने एक बेटी के अपराधी को खुला छोड़ दिया। और आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यह खबर आगरा से आ रही है। ताजगंज में एडवेंचर गेम के दौरान एक हादसा हो गया जिसमें 16 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। आगरा के ताजगंज में एडवेंचर पार्क बना हुआ है जहां जिप लाइन भी है और उसी जिप लाइन से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जिप लाइन पर आगे बढ़ते ही पुली का लॉक अचानक से खुल गया और लड़का सीधे नीचे आ गिरा। वहां पर चीख पुकार मच गई, वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। माता पिता बदहवास हालत में बेटे की ओर दौड़े लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुणाल ने दम तोड़ दिया।
1: अब इनकी लापरवाही की वजह से मेरा तो बच्चा चला गया।
6: 16 साल का बेटा, बड़ा बेटा
1: था, उसको घुमाने के लिए लाया था, मैं उसको कैसे लेके जाऊंगा पूरे। मेरा बच्चा चला गया।
0: और बात करते हैं आम आदमी पर महंगाई की मार की। तेल कंपनियों ने इस महीने चौथी बार तेल की कीमत बढ़ाई है। आज से पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए महंगा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में भी पेट्रोल अब शतक के पार चला गया है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव अब 102 रुपए 12 पैसे हो गया है। नई दर के मुताबिक दिल्ली में अब डीजल 95 रुपए 20 पैसे मिल रहा है। बात अगर मुंबई की करें तो वहां पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे पर बिक रहा है जबकि डीजल 97 रुपए 83 पैसे हो गया है। तो कोलकाता में पेट्रोल का भाव 113 रुपए 51 पैसे हो गया है। वहीं कोलकाता में डीजल की नई दर अब 99 रुपए 82 पैसे हो गई है। चेन्नई की बात करें तो वहां पेट्रोल 107 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है जबकि डीजल 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो गया है।

0: तो चलिए एक नजर डालने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से महानगरों में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर तेल के दाम लगातार इस तरीके से धीरे धीरे किश्तों में बढ़ाए जाते हैं तो उसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर 99.51 रुपए में भी अब दो रुपए बढ़ करके शतक पार कर चुका है, 102 रुपए तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं दिल्ली में ये पेट्रोल के दाम हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त दिख रहे हैं, अब डीजल के दाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो कहां 92 था, 92.5, अब 95 के पार हो चुका है। अब नजर डालते हैं मुंबई की, मुंबई में पहले से ही 108 रुपए के पार था, अब 111 रुपए के पार चला गया है। तो जाहिर तौर पर लोगों को झटका लग रहा है। मुंबई में डीजल के दाम भी देख लीजिए, 95 के पार थे, अब 97 के पार, लगभग 98 तक पहुंच चुके हैं। कोलकाता, जहां पहले से ही दाम काफी ज्यादा थे, 110 रुपए वहां उसके पार था, और अब और ज्यादा बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। कोलकाता में डीजल भी अब लगभग शतक के पास पहुंच चुका है। तो कोलकाता में पेट्रोल का दाम जो 113 रुपए आपको दिखा रहे हैं, उसने भी लोगों को झटका दिया, और यह झटका चुनाव के बाद आया है। चेन्नई की भी बात कर लें, 105 रुपए के पार था, और अब उसमें भी करीब 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो चेन्नई में डीजल भी अब लगभग शतक के पास पहुंच रहा है। तो ये चिंता है लोगों की, सिर्फ महानगर ही नहीं है जिसमें लोगों की पॉकेट पर असर पड़ेगा, ये सभी शहर आप देखिए, कई शहरों में पेट्रोल शतक के पार है और डीजल लगभग पहुंचने वाला है। तो ऐसे में चिंता सबकी बढ़ती जा रही है कि आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां एक बार फिर से बीजेपी ने ममता बैनर्जी को उनके ही गढ़ में शिकस्त दे दी है। फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। और आज सुबह में अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: आज तक में बात मौसम की, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बाद गर्मी से बचाव के लिए लोगों ने बाहर का रुख करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट फुटी
13: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
14: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
15: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
16: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड से
16: सही।
17: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
18: Like I said before, we better hold the sins.
19: बस 2000
20: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा,
21: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
22: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
23: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
24: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
25: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
23: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
26: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
24: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
23: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
27: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
29: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
0: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
30: सेक्रेटरी एंड आई देयरफॉर वेलकम द एक्सपेंशन इन आवर एनर्जी ट्रेड इन रीसेंट मंथ्स। डाइवर्सिफाइड सप्लाईज आर एट द हार्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया। We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities. An American delegation was recently in India. We hope to realize the potential of cooperation in the nuclear domain. And I also raised with Secretary some issues, regulatory issues we have on the American side.
31: There are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them, which is what adds the finishing touches on the importance of this strategic alliance. As we have a strategic alliance between the United States and India, it's a strategic alliance between two countries that have global influence and the ability to influence global events. And that distinguishes it from other relationships.

0: दुनिया की राजनीति में अक्सर तस्वीरें सिर्फ औपचारिकता का हिस्सा होती हैं। नेता मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कैमरे फ्लैश करते हैं और फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी लगभग हर मुलाकात
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट, पेट्रोल की कीमतों का शतक, 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा पेट्रोल, डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। आज ट्रिशा केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान, पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, भोपाल वाले घर में एम्स फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, शोपियां में कई जगहों पर छापेमारी, जमाते इस्लामी के शिक्षण संस्थान निशाने पर। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, भारत के साथ अंतिम दौर में है व्यापार समझौता, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आगरा पहुंचे मार्को रूबियो। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर्ड के साथ लाइव फोन पर जुड़े डोनाल्ड ट्रंप, कहा आई लव इंडिया, पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं मैं, भारत कर सकता है भरोसा।

0: आज तक की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन ये वो इंटरव्यू है जो ये तय करेगा, ये निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में विश्व क्या देखेगा और क्या रूप में विश्व होने वाला है। आज हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मिस्टर मार्को रूबियो। सेक्रेटरी, वेलकम टू इंडिया। पिछले दो दिनों से आप भारत में हैं और आपने मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ। क्या बता सकते हैं आप इन मीटिंग्स के बारे में हमें?
1: ये सभी मुलाकातें शानदार रही। सबसे पहले तो भारत एक शानदार देश है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। हालांकि अभी मैं यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन रहा हूँ, पर मैं यहाँ चार हफ्ते भी रहूँ तो भी सब कुछ नहीं देख पाऊंगा। ये सचमुच इतना बड़ा देश है जहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, पर साथ ही अमेरिका और भारत के बीच ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध भी है। ये एक रणनीतिक गठबंधन है। दुनिया भर में कई देशों के साथ हमारे संबंध हैं, लेकिन हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन है और भारत उनमें से एक है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें समानता है और जिनमें भारत और हमारी साझा रुचि है और जिनमें हम दोनों योगदान दे सकते हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है और इसलिए हम यहाँ वास्तव में उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि हर नए युग में दुनिया भर में नए अवसर और नई चुनौतियाँ सामने आती हैं और भारत उन देशों में से एक है जिसके साथ हमने इन सभी मामलों में बेहद करीबी से काम किया है।
0: आपने ये अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री अब अमेरिका के दौरे पे जाएंगे, ये स्पष्ट नहीं है कि वो G20 के समय जाएंगे या उससे पहले जाएंगे। क्या कुछ आप हमें बता सकते हैं कि कब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे, बायलेटरल दौरे पे जाएंगे?
1: जी हाँ, हम इसे एक अलग बैठक बनाना चाहते हैं। हम एक स्वतंत्र यात्रा चाहते थे, जाहिर है। हम दिसंबर में फ्लोरिडा में G20 के लिए उनकी मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हम इसके अलावा एक बैठक भी करना चाहेंगे और उन्होंने आने का संकेत दिया है, तो जाहिर है हम उचित समय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें अगले हफ्ते ही देखना चाहें। उन्हें एक बड़े देश का संचालन करना है और हम समय की उपलब्धता के हिसाब से काम करेंगे। ये कब होगा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये बैठक जितनी जल्दी हो सके बेहतर होगा। जो भी उनके शेड्यूल में फिट बैठता है हम उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे।
0: भारत और अमेरिका के जो संबंध है, जिसमें थोड़ा सा एक ठहराव आ गया था जनवरी में एम्बेसडर गौर के बाद, काफी चीजें फास्ट ट्रैक हुई है और उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ट्रेड और ट्रेड डील। आपने आज कहा कि अगले महीने एक डेलीगेशन आने वाला है अमेरिका से। क्या हम ये समझे कि अगले महीने शायद जो ये ट्रेड डील है ये साइन हो सकती है?
1: मैं फिलहाल इसे लेकर अभी कुछ नहीं कह सकता। हमें उम्मीद है कि ये शायद अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह तक हो जाएगा, लेकिन हम अभी अंतिम विवरणों पर काम कर रहे हैं। हम एक व्यापार समझौते की कगार पर हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इससे दोनों देशों को फायदा होगा। इससे अमेरिका का निवेश और भारत का निवेश दोनों बढ़ेगा। टैरिफ जैसी चीजें व्यापक संबंधों पर असर डालती हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हम दोनों देशों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते के जरिए इन मुद्दों को सुलझा लेंगे, उतने ही बेहतर अवसर सभी को मिलेंगे।
0: क्या कोई टैरिफ नंबर आप हमें बता सकते हैं कि क्या परसेंटेज ऑफ टैरिफ भारत पे लागू करेगा अमेरिका?
1: देखिए, मैं टैरिफ वार्ताकार नहीं हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप इसमें बहुत सक्रिय रूप से शामिल हैं, लेकिन देखिए टैरिफ पर बहुत ध्यान दिया जाता है, पर ये इतने तक ही सीमित नहीं है। उत्पादों तक पहुंच भी एक बड़ा मुद्दा है। हर व्यापार समझौते, हर व्यापार संबंध को हर 10 से 20 साल में आधुनिक बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि नए क्षेत्र उभरते हैं, नए असंतुलन पैदा होते हैं और कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिन पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया गया था। तो मुझे लगता है कि बाकी सब चीजों के साथ साथ ये सिर्फ टैरिफ के बारे में नहीं है।
0: आपने क्वाड का जिक्र बहुत बार किया है, जब आप अमेरिका से निकले तब भी आपने क्वाड की बात की, यहाँ पे भी। ऐसे कौन से पॉसिबल आउटकम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मीटिंग से जो ट्यूजडे को होने वाली है?
1: मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रियों के साथ हुई दूसरी बैठक में हमने जिन चीजों पर चर्चा की उनमें से एक ये थी कि हम नहीं चाहते कि क्वाड सिर्फ अर्धवार्षिक बैठक हो जिसमें समान विचारधारा वाले देश हों। हम चाहते हैं कि यह वास्तव में एक ऐसा मंच हो जिस पर हम विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी शुरू कर सकें, और इसलिए जाहिर तौर पर इनमें से एक है समुद्री सुरक्षा, यानी समुद्री सुरक्षा के लिए मौजूद खतरे। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण खनिजों और सप्लाई चेन को लेकर भी क्वाड देशों की जबरदस्त रुचि है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्वाड में शामिल सभी चार देश बहुत रुचि रखते हैं और इसमें योगदान देने की क्षमता भी रखते हैं। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुझे लगता है कि हम कुछ ठोस कदम उठाना शुरू कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हम क्वाड नेताओं यानी चारों देशों के नेताओं के बीच एक सफल बैठक के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह बैठक इसी साल होगी, हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल हम चारों नेताओं के लिए एक साथ मिलने का समय निकाल लेंगे।
0: ईरान को लेके काफी ज्यादा थ्योरीज चल रही है, जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसको लेके, कि ईरान शायद यूरेनियम जो है वो नहीं छोड़ेगा और देने पे वो अपनी मंजूरी नहीं देगा, और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके भी काफी चीज चल रही है। आप क्योंकि नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं आप हमें कि कहां तक पहुंचा है नेगोशिएशन?
1: मेरा मानना है कि इसके दो पहलू हैं। देखिए, इसे आपको अलग अलग करके देखना होगा। पहला मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जो कर रहे हैं वह अवैध, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और अस्वीकार्य है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को यह कहना चाहिए और दुनिया के अधिकांश देश ये कह भी रहे हैं। भारत कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, हर कोई यही कह रहा है। यहां तक कि चीन ने भी पिछले हफ्ते जब हम वहां थे तब हमसे यही कहा था कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कब्जा कर ले, उन जहाजों को उड़ा दे जो उन्हें टोल देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह से खोला जाना चाहिए, तो यह इसका पहला चरण है। दूसरा यह है कि ईरान को तीन विषयों पर गंभीरता से बातचीत शुरू करनी होगी। परमाणु हथियार न रखने का उनका वादा, उनकी संवर्धन क्षमताओं पर दीर्घकालिक प्रतिबंध और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का क्या किया जाए। 60% संवर्धित यूरेनियम रखने का कोई कारण नहीं है जब तक कि आप इसे 90% संवर्धित यूरेनियम में परिवर्तित करके हथियार बनाना न चाहें। इन विषयों पर अभी विचार करना होगा। ये अत्यधिक तकनीकी मुद्दे हैं, इन पर काम करने में समय लगेगा और जाहिर है ईरान को इससे लाभ होगा। जाहिर है ये बातचीत कठिन होने वाली है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे जरूरी और तत्काल कदम यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाए। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें वो टोल वसूलें और वाणिज्यिक जहाजों को उड़ाने की धमकी दें, ये जारी नहीं रह सकता।
0: इस सीज फायर को लेकर अमेरिका में भी थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म हुआ है, मिला है, जहां तक कि जो लिंडसे ग्रहम है, सेनेटर लिंडसे ग्रहम, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रस्टेड एडवाइजर माने जाते हैं, उन्होंने भी इस सीज फायर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे लिंडसे ग्रहम को इस सीज फायर को लेकर?
1: देखिए, आखिरकार युद्ध विराम का असली मुद्दा यह है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोलें और ईरान को उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से निपटने के लिए एक गंभीर बातचीत में कैसे शामिल करें। माना जाता है कि उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, राष्ट्रपति ने इसे एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा बना दिया है। उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे और राष्ट्रपति के पास आज उन्हें परमाणु हथियार रखने से रोकने के लिए जो भी विकल्प उपलब्ध हैं वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी उपलब्ध रहेंगे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हम अन्य देशों के साथ अपने मतभेदों को कूटनीतिक रूप से सुलझाएं बातचीत के माध्यम से। कुछ देशों के साथ बातचीत करना दूसरों की तुलना में आसान होता है। अगर वास्तव में इस मामले में कूटनीति विफल हो जाती है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका या खाड़ी में हमारे सहयोगियों की गलती नहीं होगी।
0: क्योंकि आपने चाइना की बात की, कैसे देखते हैं आप अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को? आप अभी अभी चाइना जाकर आए हैं, क्या बता सकते हैं आप हमें?
1: दरअसल बात यह है कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और हमारे पास शक्तिशाली सेनाएं भी हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और चीन शायद इतिहास में सबसे तेजी से और सबसे बड़े सैन्य निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि हमारे देशों के बीच संबंध होने चाहिए, हमें बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और जुड़ाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट था यात्रा से पहले और यात्रा के बाद भी, दोनों देशों के बीच असहमति के कुछ मजबूत मुद्दे होंगे और उन्हें संभालना होगा, क्योंकि अगर उन्हें नहीं संभाला गया और वे और अधिक टकराव में बदल गए तो यह न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए यह दौरा इस मायने में अहम था कि हमारे देशों को एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ ऐसे विशिष्ट मुद्दे हैं जिन पर हम सहमत नहीं होंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा जो शायद उन्हें पसंद न हो, जैसे कि महत्वपूर्ण खनिजों और सप्लाई चेन के लिए उन पर हमारी जरूरत से ज्यादा निर्भरता। लेकिन चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दो देशों के लिए संवाद करना और एक दूसरे से संवाद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जहां तक हो सके ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहते हैं।
0: स्टेट डिपार्टमेंट, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है, उसकी ओसैक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उसमें इजाफा हुआ है। वहां पे ऐसा कहा गया कि 35% 35% तक इजाफा हुआ है। आपने काउंटर टेररिज्म को एक सेंट्रल थीम बनाया है इस मीटिंग में, समिट में, क्या कुछ ऐसा अमेरिका कर सकता है या करना चाहिए अमेरिका को ताकि ये जो टेररिज्म पाकिस्तान से एमिनेट होता है, निकलता है, उस पे जो है लगाम लगा सके?
1: देखिए, हम आतंकवाद से निपटना चाहते हैं, चाहे वह कहीं से भी हो रहा हो। मेरा मतलब है, अगर सशस्त्र समूह लोगों को मारना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं।

0: ईरान के मामले में भी राष्ट्रपति 1985 में ईरान और ईरान से उत्पन्न खतरों के बारे में बात कर रहे थे जब वह एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, और जो वह 1985 में कह रहे थे वही वह अब कह रहे हैं। इसलिए इस मामले में जबरदस्त निरंतरता है। वह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कहे पर कायम रहते हैं, और अगर वह कहते हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मैं उन्हें गंभीरता से लूंगा।
1: सेक्रेटरी, आप जो है काफी फिट हैं, और अंग्रेजी में जैसे हम अमेरिका में बात करते हैं, कहते हैं कि इफ यू रन यू रिमेन फिट, और पॉलिटिकली भी कहा जाता है कि व्हेन यू रन फॉर एन ऑफिस। क्या 2028 में हम देख सकते हैं कि आप या तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हों, रन फॉर द ऑफिस, और वुड यू बी रनिंग फॉर एनीथिंग इन 2028?
0: 2028 में आप चुनाव की बात कर रहे हैं? मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता। नहीं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का विदेश मंत्री बनकर खुश हूं। ये एक शानदार नौकरी है।
1: हमसे बात करने के लिए और आज तक पे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
11: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: बस दो हजार
15: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा,
16: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
17: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।
18: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
19: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
20: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
18: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
21: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
19: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
18: जहां खबर वहां खबरदार।
3: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लोगों ने सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है। मेरठ में जनता मेयर आवास तक पहुंच गई। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। यूपी के बांदा में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ निर्देश दिए हैं कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली आपूर्ति की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को देर रात तक फील्ड में तैनात किया गया है। लखनऊ में 22 अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को रात 9 बजे से 1 बजे तक अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। एक 912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण और फॉल्ट होने पर तुरंत बिजली बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल ने भी बिजली व्यवस्था पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। गाजियाबाद और मेरठ के 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर भीषण गर्मी के बीच यूपी की जनता को राहत कब मिलेगी और क्या सरकार के आदेश जमीन पर असर दिखा पाएंगे? आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: देश को महंगाई के कौर किश्का करें, पेट्रोल की कीमतों का शतक, 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा, डीजल के दाम में 2.71 रुपए का इजाफा, 10 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी।
1: आज ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान, पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, भोपाल वाले घर से एम्स फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत।
0: टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, शोपिया में कई जगहों पर छापेमारी, जमात इस्लामी के शिक्षण संस्थान निशाने पर।
1: आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप, लाइव इवेंट में राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर की बात, आई लव इंडिया ट्रंप ने कहा, भारत कर सकता है भरोसा।
0: जैसलमेर के डंपिंग ग्राउंड में सैकड़ों मृत गायों के मिलने से सनसनी, आज तक पर खबर चलने के बाद जागा प्रशासन, रद्द हुआ ठेकेदार का लाइसेंस, क्रेन से शुरू हुई कार्रवाई।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11, आपके साथ हूं मैं निहावत।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। समय शतक आज तक है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको राजस्थान के जैसलमेर से देते हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है, जैसलमेर के ग्राउंड से अब गायों के शव को हटाया जा रहा है। सुबह 10 बजे हमने खबर चलाई दिखाई और अब जाके प्रशासन हरकत में आया है।
0: गायों के शवों को जेसीबी की मदद से दफनाया जा रहा है। जैसलमेर के ग्राउंड में सैकड़ों गायों के शव फेंके जाने से सनसनी फैल गई, बवाल मचा और अब प्रशासन हरकत में आया है।
1: तो खबर दिखाए उसके बाद जाकर प्रशासन हरकत में आया है और एक के बाद इस पूरे ग्राउंड पर गायों के शव ही शव दिखाई दिए।
0: वक्त हो गया है शतक आज तक का।

0: ताजमहल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, बोले ये दुनिया के अजूबों में से, कहा कि भारत का इतिहास बेहद समृद्ध है। मार्को रूबियो ने भारत की संस्कृति और इतिहास के सराहने के ताजमहल दौरे को बताया सम्मान का प्रतीक। दोपहर 1 बजे जयपुर भी पहुंचेंगे रूबियो। मार्को रूबियो का ईरान पर भी बयान, परमाणु मुद्दे पर समयबद्ध बातचीत का प्रस्ताव, कूटनीति को दी प्राथमिकता। रूबियो बोले ईरान से समझौते की कोशिशें जारी लेकिन नाकामी पर, दूसरे विकल्पों पर भी विचार संभव। आज तक से खास बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का करीबी सहयोगी बताया, कहा कि भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी। तेल के दाम फिर से महंगाई बढ़ी, इनमें लगा तड़का, पेट्रोल और डीजल के दाम चौथी बार बढ़ गए। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा हो गया, डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार तेल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दामों ने लगभग पूरे देश में अब 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए, डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर, तो कोलकाता में 113.51 रुपए, वहीं डीजल 99.82 रुपए प्रति लीटर। तेल के दामों में नए उछाल के बाद मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, तो डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में ईंधन महंगा, पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर।
1: बिहार में हरे गमछे पर गरमाई सियासत, सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, कहा सम्राट चौधरी के बयान पर हंसी आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एआई समिट के दौरान हरे गमछे वाले को लेकर कहा था, अगर हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो एआई कैमरे उसे तुरंत पकड़ लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार का खजाना खाली है और ये लोग हरा और नीला गमछे की बात कर रहे हैं, बिहार को बांटने का काम कर रहे हैं, सबको सिर्फ ठगा है। खड़गे आवास पर होगी अहम बैठक, सीएम सिद्धारमैया समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया, विपक्ष का विरोध। पीएम मोदी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बताया कमजोर प्रधानमंत्री, कहा पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर की डील। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को नुकसानजनक बताया, कहा सरकार का यह फैसला किसानों और उद्योगों पर बुरा असर डाल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पर विदेश नीति को लेकर हमलावर दिखा विपक्ष, इमरान मसूद बोले अमेरिका से समझौते भारत के हित में नहीं, महंगाई बढ़ने से आम लोगों पर पड़ेगा असर। राहुल गांधी के पीएम मोदी की विदाई वाले बयान पर भड़की बीजेपी, मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, सरकार को गिराकर देश में अराजकता लाना चाहते हैं राहुल। महाराष्ट्र के सीएम ने राहुल के बयान को बताया ख्याली पुलाव, कहा दिन में ही सपने देख रहे हैं कांग्रेस के सांसद।
0: आज दोपहर 3 बजे संसद की स्थायी समिति की बैठक, बैठक में पश्चिम एशिया संकट के में भारत के समुद्री व्यापार पर प्रभाव पर चर्चा। पोत, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव भी इस बैठक में लेंगे हिस्सा, समुद्री व्यापार, शिपिंग ढांचा और नाविकों की सुरक्षा के असर पर चर्चा। पश्चिम एशिया संकट से भारत के ऊर्जा व्यापार पर असर की समीक्षा, होर्मुज तनाव के बीच में शिपिंग पर पड़ रहे प्रभाव की भी चर्चा होगी। यूपी चुनाव 2027 से पहले बीएसपी की तैयारी, मायावती ने समीक्षा बैठक के संगठन को मजबूत करने और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया। बीएसपी की बैठक में आकाश आनंद, आनंद कुमार, सतीश मिश्रा भी रहे मौजूद। मायावती ने विपक्ष के छलावे की राजनीति विपक्ष पर लगाया। नीट पेपर लीक मामले में गरमाई सियासत, राहुल गांधी बोले जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते आंदोलन जारी रहेगा। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर और प्रधानमंत्री मौन है। नीट पेपर लीक मामले के बाद से राजस्थान के झुंझुनू में आत्महत्या करने वाले छात्र के परिजनों से मिले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। सीबीएसई रिजल्ट पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, रिजल्ट के बाद पोर्टल में ब्लर पेज की दिक्कतें सामने आई हैं। सीबीएसई ने मामले पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की मदद से अब ली जाएगी पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया भी शुरू।
1: आज त्रिशा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान, पति सास पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप। त्रिशा दीपिका के बाद अब जयपुर की अनु की मौत का मामला आया सामने, सीसीटीवी में अनु के पति को बुरी तरह से उसे पीटते हुए देखा जा सकता है। राजस्थान के जैसलमेर से आई विस्फोट करने वाली तस्वीर, गौ संरक्षण और सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल। जैसलमेर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में 500 से ज्यादा गायों के शव बरामद, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी। आगरा चौपाटी में बड़ा हादसा, जिप लाइन से गिरकर 16 साल के युवक की मौत, सिस्टम की लापरवाही पर उठे सवाल। महाबलेश्वर में स्कॉर्पियो कार करीब 700 फीट गहरी खाई में गिरी, कार सवार सभी 8 लोगों की मौत। महाबलेश्वर हादसे में रेस्क्यू में 2 शव बरामद, अंधेरे और दुर्गम रास्तों के बीच शव निकालने की कोशिश तेज। कानपुर में मामले विवाद में पिता पुत्र की रोड पर हत्या, भाई घायल, तीन बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सोनीपत में बुजुर्ग महिला की हत्या, लूट के इरादे से हत्या की आशंका, जांच में जुट गई है पुलिस। दिल्ली में 10 महीने की मासूम की हत्या कर सेप्टिक टैंक में फेंका, बेटी होने से नाराज था पिता।
0: लखनऊ के मलिहाबाद में नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद ने पकड़ा तोल किला और शिव मंदिर को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। पासी किला विवाद पर तनाव बढ़ता जा रहा है, लाखन आर्मी प्रमुख सूरज पासी ने पुलिस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कई स्थानों पर एनआईए की छापेमारी, जमात इस्लामी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान जामिया सिराज उल उलूम में छापेमारी। अलीगढ़ में महिलाओं से लूट करने वाले दो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े और मुठभेड़ में ढेर हो गए, कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। साबरकांठा में एक मैदान में लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। नवसारी हिल स्टेशन के पास में टोल बूथ पर हुई दुर्घटना, बाल बाल बच्चे पर्यटक, हादसा घटना सीसीटीवी में कैद। मेहसाणा के मोतीपुरा के पास में भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की दर्दनाक मौत। खेड़ा के वेद हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी में लगी अचानक आग, तीन मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु में वैली ब्रिज निर्माण तेज, जल्द बहाल होगा यातायात और ब्रिज से ट्रैफिक सुचारू करने की भी तैयारी। बगा में खाली ट्रॉली के नीचे से मिला शराब का जखीरा, 302 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, दो गिरफ्तार।
1: सोनीपत में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी, शख्स ने पति पत्नी और एक महिला को तेज धारदार हथियार से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। झांसी में सवारियों से भरी शताब्दी बस में लगी भीषण आग, मची चीख पुकार, बस चालक की सतर्कता से सवारियों ने बस से उतरकर बचाई जान। मधुबनी सदर अस्पताल में युवक की मृत घोषित किए जाने पर बवाल, परिजनों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में सुंदरगढ़ में श्राद्ध कर्म के दौरान भोज खाने से चार की मौत, 17 बीमार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक के पीछे से घुसी कार, 3 महीने की मासूम की मौत। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी तूफान का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। बदायूं भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजार में पसरा सन्नाटा, घर से निकलना मुश्किल। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव, आंधी तूफान से मची तबाही। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेर से झरने की तरह पानी गिरता आया नजर।
0: भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं, सुहाने मौसम का जमकर आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। मनाली में भी पर्यटकों की भारी भीड़, इसके चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम, वाहनों की लंबी कतार। चमोली में मौसम ने बदली करवट, हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी। चमोली में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है, प्रशासन ने यात्रियों से मौसम देखकर ही यात्रा करने की अपील की। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, लाल चौक से सामने आई तस्वीर। आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 131 में से 66 पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर वन पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण कुमार। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता था और पूरी दुनिया में बढ़ाया था देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगुजाबादन के लिए यह सम्मान मिलेगा। तगाराम भील ने अलगुजाबादन को ग्लोबल पहचान दी, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और अमेरिका में परफॉर्म कर चुके हैं।
1: वाराणसी में गंगा दशहरा पर गंगा किनारे सुबह से भक्तों का लगा मेला, श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से की पूजा पाठ। वाराणसी में गंगा दशहरा पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने मां गंगा का किया जलाभिषेक, विधि विधान से पूजा। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था के सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हापुड़ में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, भक्तों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, घाटों पर गोताखोर तैनात। राजस्थान रॉयल्स का बड़ा धमाका, मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्ले ऑफ में बनाई जगह। वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान का तूफान, 205 रन के विशाल लक्ष्य के आगे मुंबई इंडियंस बेबस नजर आई। आईपीएल के प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ, आरसीबी गुजरात हैदराबाद राजस्थान ने टॉप फोर में बनाई जगह। क्वालिफायर वन में आरसीबी और गुजरात के बीच होगी महामुकाबले में टक्कर, एलिमिनेटर में राजस्थान और हैदराबाद आमने सामने। राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ बढ़ाया खिताब की ओर कदम, मुंबई इंडियंस की हार से टूटा सफर।
0: फिल्म धुरंधर 2 ने 66वें दिन भी दिखाया दम, 1800 करोड़ के क्लब से चंद कदम दूर, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1799 करोड़ 61 लाख। अक्षय कुमार के भूत बंगला भी बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रहे हैं। 37 दिनों में अब तक दुनिया भर में 279 करोड़ रुपए की कमाई की। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी ने भी 23वें दिन 1,37,00,000 की कमाई की और कुल कलेक्शन अब 111,47,00,000 के पार। 17वें दिन माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 ने लगाई चलान। ग्रॉस कलेक्शन 31,69,00,000 पहुंचा। पति पत्नी और वो दो ने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर दिखाई है मामूली बढ़त और फिल्म ने 46,27,00,000 का कारोबार किया। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय कुमार अब नए जॉनर में रखने वाले हैं कदम और नए एलियन से भिड़ेंगे। सम्मुख में करेंगे हॉलीवुड स्टाइल हॉरर साइंस फिक्शन में। रणबीर कपूर को रामायण पार्ट 1 की बदल सकती है रिलीज डेट और इस दिवाली से एक हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को आ सकती है फिल्म। 40 फिल्मों के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास। निर्माता निर्देशक करण जौहर हुए इमोशनल। अमीषा पटेल ने शेयर की ऋतु के साथ कहो ना प्यार है की शूटिंग के दौरान की तस्वीर। कहा कि बॉलीवुड में को स्टार्स के बीच में ऐसी असली रिश्ते नहीं देखने को मिलते। अपने और वर्ल्ड टूर में शानदार गीतों का जलवा बिखेर रहे सिंगर दिलजीत दोसांझ और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कॉन्सर्ट में उमड़े फैंस।
1: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के मुद्दे पर बातचीत करने वाले प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि जल्दबाजी में समझौता ना करें। ईरान के साथ समझौता करता हूं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर सहमत है कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा तेहरान के वार्ताकार देश की गरिमा से समझौता नहीं करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता सैन्य सलाहकार मोहसेन रजाई ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन तेहरान का कानूनी अधिकार है। तुर्की के प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के हजारों कार्यकर्ता राजधानी अंकारा की सड़कों पर उतरे। पूर्वी कांगो के खनन शहर मोंग ब्ला वालू में इबोला के दुर्लभ बंदीबुगियो स्ट्रेन मिलने से हड़कंप। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहले रविवार को 16,00,000 तीर्थयात्री जुटे। 48 डिग्री तापमान के बावजूद धार्मिक रस्मों को निभाते नजर आए। ब्रिटेन के ज्यादातर इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की वजह से भीषण गर्मी। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री तियांगयोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के रवाना। 1 साल तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर करेंगे शोध। सर्बिया के साथ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में। पहले दौर में सामने खिलाड़ी जियोवानी पेरिकार्ड को 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 से दी मात।

0: इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां तुषार शर्मा मौत मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया है और अब सुनवाई जारी है।
1: तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह जांच में अड़चने डाल रही हैं, टीवी में गलत इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। और सॉलिसिटर जनरल साथ ही कहा कि गिरिबाला को तो तुरंत जमान भी मिल जाती है और वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। गिरिबाला पिशा की सास हैं, जांच के लिहाज से उनका मोबाइल मांगा गया तो उसमें भी कठिनाई हुई।
0: संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, क्या सुनवाई शुरू हो गई है?
2: अभी फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ये दलीलें दे रहे हैं कि किस तरह से जो आरोपी पक्ष है, जिन पर आरोप है, वो सारे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच एजेंसी के सामने बयान दर्ज होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान के साथ ही सुनवाई इस मामले में किस दिशा में आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कोर्ट के तेवर अभी काफी सख्त हैं और कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष जांच पर जोर दे रहा है।
1: संजय, सॉलिसिटर जनरल की जो टिप्पणियां हैं बहुत तल्ख, वो भी गिरिबाला को लेकर, उनके रसूख को लेकर, जांच में सहयोग न करने को लेकर रही हैं अभी तक,
2: क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं न्यायपालिका, पिछली न्यायपालिका है जिसमें पेशा के जो पति हैं वो इस मामले में आरोपी हैं और इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट इस मामले में सख्ती बरत रही है और सॉलिसिटर जनरल इसीलिए काफी सख्त बयान दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इनके घर वाले, त्रिशा के ससुराल वाले, इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जब जांच के लिए उनका मोबाइल मांगा गया तो मोबाइल नहीं दिया जा रहा, सवालों के सही से जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया इसमें क्या रहता है ये देखना दिलचस्प होगा।
0: इसके अलावा अगर गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं करती हैं तो और क्या तरीके हैं जिससे पूर्णतः सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब त्रिशा की मौत हुई उसके बाद उन्होंने कई रसूखदार लोगों को फोन किए, ये सब डिटेल्स और साथ ही उनका बयान कब तक?
2: यही जांच एजेंसी को यही जरूरी है कि इस मामले में किन किन को फोन किए गए, इससे पहले किन लोगों के फोन आए, पूरा घटनाक्रम पे जो कनेक्ट द डॉट्स होता है वो डॉट कनेक्ट कर लिया जाए, तो ये जांच एजेंसी इसमें लगी हुई है। लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिए जाने से अब ये जरूरी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए जो भी चीजें आवश्यक होंगी, बुनियादी चीजें, वो सारी चीजें की जाएंगी, वो सारे उपाय किए जाएंगे।
1: संजय, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को केस ट्रांसफर करने के लिए भी कहा गया, ये क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? मीडिया के लिए क्या नई गाइडलाइंस है, परिवार वालों के लिए क्या गाइडलाइंस है, ये भी बताएं।
2: जी हाँ, बिल्कुल, अभी गाइडलाइंस तो तय नहीं हुई है, गाइडलाइंस बस तय हो रही है। तो इसमें ये तो जरूर होगा कि जो आरोपी हैं उन सारे लोगों से पूछताछ और इसमें जांच, जैसे भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो वो की जाए और बहुत उम्मीद है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जा रही है और सीबीआई अब इस मामले को अपने हाथ में लेगी, फिर सीबीआई अपने तरीके से जो उनके जांच के तरीके होते हैं वो जांच के तरीके अपनाए जाएंगे, तो पुलिस की जांच अब सीबीआई जांच में तब्दील हो जाएगी।
0: संजय, क्या इसमें यह भी मुमकिन है कि कोर्ट जो दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट मांग सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि दोनों पोस्टमार्टम इसलिए कराए गए हैं कि दोनों की तुलना की जा सके और दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या चीजें अलग हैं। अलग हैं तो फिर उस पर जांच का एंगल क्या होगा, इन तमाम चीजों पर तो मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि कोर्ट दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहेगा ताकि जो जांच एजेंसी है वो एक सही नतीजे पर पहुंचे।
1: ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से देते हैं। त्रिशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस केस को सनसनी केस न बनाया जाए, परिजनों का इंटरव्यू न लिया जाए। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर भी कई सारी टिप्पणियां हैं और गिरिबाला के जो बिहेवियर है, फोन न देने, जांच में सहयोग न करने को लेकर भी टिप्पणियां हुई और घटना दुर्भाग्यपूर्ण बताई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच आवश्यक है, केस को सनसनी केस न बनाया जाए।
0: बिल्कुल, और परिजनों पर इंटरव्यू ना चलाए मीडिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि पहले लगातार गिरिबाला सिंह भी और साथ ही त्रिशा के पिता इस पूरे मामले पर इंटरव्यू देते आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके इंटरव्यू ना चलाए जाए। सॉलिसिटर जनरल की सुप्रीम कोर्ट में दलील है कि गिरिबाला सिंह, जो कि त्रिशा की सास है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रही।
1: सॉलिसिटर जनरल ने इस बीच में टिप्पणी की कि वो भ्रामक इंटरव्यूज दे रहे हैं, सृष्टि ओझा भी हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं। सृष्टि, हमने अभी देखा सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ टिप्पणियां आई है, लेकिन क्या गिरीबाला सिंह की तरफ से भी किसी ने पक्ष रखा है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है?
3: जी बिल्कुल, सभी पक्षों की तरफ से आज वकील इस हियरिंग में मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। जैसा कि हमें पता है सुमोटो मैटर था ये, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू का खुद लिया है, कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में नहीं आई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से मौजूद थे, हमने काफी अहम जो है स्टेटमेंट देखे उनकी तरफ से बोलते हुए। उन्होंने पूरी जो एक अनफॉर्चुनेट ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बात करते हुए ये कहा कि एक यंग लड़की जो है उसने अपनी जिंदगी गवाई है, अब या तो सुसाइड से गवाई है या फिर किसी क्रिमिनल तरीके से उनकी जान ली गई है, ये प्रोब के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि एक जो एक मासूम इनोसेंट लड़की ने अपनी जान गवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से अग्री करते हुए कहा कि अननेचुरल डेथ का केस है ये बिल्कुल, और इसकी जांच जो है वो बहुत ही इम्पार्शियल फेयर तरीके से होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हियरिंग के दौरान ये कहा है कि प्रोसीजर जो है लॉ में इन तरीके के केसेस में सेट है, फिक्स्ड है किस तरीके का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी कोशिश की होगी, और जैसे ही कुछ तरीके के प्रश्न उठाए गए उनकी प्रोब को लेकर, तो स्टेट ने उसी वक्त कहा कि सीबीआई जो है इस मामले की जांच
4: कर सकती है। आपके पास बीच संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कोर्ट ने इस बारे में भी कोई टिप्पणी किया है? सॉलिसिटर जनरल ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई सवाल उठाए?
2: इन्वेस्टिगेशन को लेकर नहीं, लेकिन इनके रवैये को लेकर तमाम सवाल उठाए गए हैं। जो लोग तुषार शर्मा के ससुराल वाले हैं उनके रवैये को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो इसको लेकर बात कही गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी की है कि जांच सीबीआई को एक निष्पक्ष स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी को जांच दी जाए ताकि इस मामले के तह तक पहुंचा जा सके, क्योंकि ये मामला जितना समझा जा रहा है उससे ज्यादा गंभीर है और इसमें तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की चीजें उठ रही हैं जिसके जवाब लिए जाने जरूरी हैं। क्या आखिर ये सारी घटनाओं के पीछे कौन है, जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा, और इसमें क्या सिर्फ ये परिवार ही है या परिवार का सहयोग करने
1: वाले? क्या क्या संजय, क्या गिरीबाला सिंह पर आने वाले दिनों में कुछ सख्ती देखने को मिल सकती है? जांच में सहयोग न करने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है।
2: जी हाँ बिल्कुल, अब जांच में सहयोग उनको करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। जैसे का मतलब लोग लगा सकते हैं कि अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो सीबीआई अपने हिसाब से जांच करेगी और सच उगलवाने की कोशिश करेगी। आखिर कितना भी मजबूत आदमी हो, आरोपी कितना भी मजबूत हो, एक समय पर
4: संजय साथी गिरीबाला सिंह अब अपना केस खुद लड़ेंगी, क्या इससे जांच प्रभावित हो सकती है और उनका केस और मजबूत हो सकता है?
2: इससे जांच प्रभावित नहीं होगी, चाहे वो खुद से अपना केस लड़े, लेकिन उन्हें जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और तमाम चीजें जो राज हैं वो राज खोलने पड़ेंगे। तो इसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपना केस खुद लड़ रही हैं या अपना केस किसी वकील के जरिए लड़वा रही हैं।
1: अच्छा संजय, सुप्रीम कोर्ट को क्या, क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया है यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्वाभाविक है कि बड़ा गंभीरता से देख रहा है, लेकिन कोर्ट की क्या क्या टिप्पणी रही तुषार शर्मा मौत मामले में?
2: कोर्ट की जो मुख्य टिप्पणियां हैं उसमें ये है कि खुदकुशी से या अपराध से एक मासूम युवती की जान गई है जिसका बहुत ही, और इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में जब कॉन्स्पिरेसी का एंगल है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है, और इसके पीछे भूमिका किन लोगों की है, उन लोगों की भूमिका सामने आनी चाहिए, कोर्ट का कर्तव्य नहीं है।
4: इसके अलावा अब आपको बता दें कि राज्य सरकार केस को ट्रांसफर करे ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि अभी तक संजय मान ले कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस केस को हैंडल किया है वो सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा है।
2: जी हाँ बिल्कुल, अभी तक जो केस को हैंडल किया गया, जिस तरह से आरोपियों की हठधर्मिता चल रही है, जिद चल रही है, उसको देखते हुए अब कोर्ट ने, जाहिर है कि कोर्ट का भरोसा राज्य सरकार की जांच पर उतना नहीं है, क्योंकि जिस तेजी के साथ और जिस कन्विक्शन के साथ जांच होनी चाहिए वो कोर्ट को लग रहा है कि कोई स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी यानी सीबीआई जैसी एजेंसी ही सच को सामने ला सकती है और जांच त्वरित वेग से आगे बढ़ सकती है।
1: और सीबीआई तो इन्वेस्टिगेशन संजय इस मामले में कर ही रही है, क्या अभी तक जो जांच हुई है उससे संतुष्टि जाहिर की गई है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, खासतौर पर जो सीबीआई कर रही है?
2: अभी फिलहाल तो इस संतुष्टि की बात नहीं आई है, अभी फिलहाल तो कोर्ट सिर्फ ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कोर्ट क्या चाह रहा है कि किस तरह से जांच आगे बढ़नी चाहिए।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका. वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो. इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
6: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at wgu.edu.
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: Sokudo.
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
13: आगे आगे,
14: अरे उधर उधर,
13: करेक्ट करेक्ट.
15: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
16: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम.
17: AU,
18: सोच बदलो और बैंक भी.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
9: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
8: आप कैसे कर लेते हो?
10: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
11: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
12: नहीं,
11: और म्यूचुअल फंड्स है
12: सही।
13: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
14: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: बस दो हजार
16: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
17: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा।
1: इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में अब सुनवाई की है।
2: सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिमाला सिंह जांच में अड़चन डाल रही है। जी हाँ, अड़चन डाल रही है और टीवी में गलत इंटरव्यू दे रहे हैं गिरिमाला सिंह। सॉलिसिटर जनरल ने कहा गिरिमाला को तुरंत जमानत भी मिल जाती है और वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। गिरिमाला त्रिशा की सास है, जांच के लिहाज से उनका मोबाइल मांगा गया था लेकिन उसमें भी कठिनाई हुई, यानी कि जांच में गिरिबाला सिंह सहयोग नहीं कर रहे हैं।
1: संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, परिवार वालों से इंटरव्यू ना लिए जाए, इसका क्या मकसद है?
3: इसका मकसद ये है कि वो लगातार गुमराह करने वाले इंटरव्यू दे रही है और इंटरव्यू देने से इस मामले के जांच पर असर पड़ सकता है। लिहाजा कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि परिवार के लोगों का इंटरव्यू ना लिया जाए और ना ही इसे प्रसारित किया जाए, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। और साथ ही इंटरव्यू देने के बाद चीजें वो ठोस आधार पर वो अदालत में भी अपनी बातें रख सकते हैं, लिहाजा उन्हें जो भी बात कहनी है वो अदालत में जांच एजेंसी के सामने रखे, ना कि मीडिया के सामने इस तरह के इंटरव्यू दिए जाए। मीडिया से भी अपील की गई है कि वो परिवार वालों के इंटरव्यू ना चलाए।
2: संजय, अब संजय कोर्ट ने इसे अननेचुरल माना, अप्राकृतिक माना है, तो जब ये टिप्पणी हो रही थी तो इसके पीछे का आधार क्या क्या दिए गए?
3: इसके पीछे आधार ये दिए हैं कि ये एक तो संदिग्ध हालात में मौत है, दूसरा इसके पीछे अपराध का एंगल भी है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये नेचुरल मौत है। तो ऐसे में क्योंकि पहले पुराने रिकॉर्ड अगर हम पुराने बिंदुओं को कनेक्ट करें तो त्रिशा शर्मा ने पहले भी अपने घर वालों को बताया था कि वो मुश्किल में है और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जब अपराध का एंगल है तो उसकी जांच भी उसी तरह से होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो सच्चाई जल्दी और सटीक ढंग से सामने आने की उम्मीद लगती है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि एक तो इंटरव्यू ना चलाएं, दूसरा कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, जिसके सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही बता दिया था कि सरकार ने मन बना लिया है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और अब इस पर मुहर भी लग गई है।
1: इसके अलावा त्रिशा के पिता ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं और साथ ही जो लास्ट व्हाट्सएप चैट्स हैं या फिर कॉल्स हैं, कहीं ना कहीं परिवार वालों के मन में अफसोस है कि अगर वो वक्त रहते पहुंचते तो शायद त्रिशा की मौत नहीं होती।
3: जी हाँ बिल्कुल, परिवार वालों का ये भी कहना है कि उसके समय रहते अगर चीजें सही दिशा में आगे बढ़ती तो त्रिशा को की मौत को बचाया जा सकता था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसमें ये भी सवाल उठेगा कि उसका इलाज कराने में देरी क्यों की गई और इलाज यानी जिस समय उसकी जान बचाने के लिए जितनी सीरियस ढंग से कोशिश की जानी थी वो नहीं की गई। तो ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब सिर्फ जांच एजेंसी जब जांच रिपोर्ट देगी उसी से सामने आ सकते हैं।
2: बिल्कुल संजय, जब कॉन्स्पिरेसी की बात कही जा रही है, इन आरोपों के बीच में चूंकि गिरिबाला सिंह की तरफ से भी पक्ष रखा जा रहा होगा, उनके वकीलों ने क्या कहा?
3: गिरिबाला सिंह के वकीलों की तरफ से फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहा गया, अभी तो कोर्ट है और सॉलिसिटर जनरल इस मामले में दलीलें दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो उस समय क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी गिरिबाला सिंह की तरफ से कौन क्या दलीलें लेकर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
1: साथ ही संजय, गिरिबाला सिंह ने कहा कि उनके वकील को मारने की कोशिश की जा रही थी तभी उसने केस से विड्रॉ कर लिया, इन सब तमाम बातों से ये जाहिर हो रहा है कि वो पैनिक मोड में आ चुकी है। दूसरा आरोप उन पर ये भी लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर त्रिशा को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा ताकि वो इसे आगे आने वाले वक्त में इस्तेमाल कर सके उसी के अगेंस्ट।
3: क्या बिल्कुल, साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने की दलीलें इससे साफ लगता है कि बाद को ये कहा जाए कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली, तो ये रंग देने की कोशिश की जा रही थी। और दूसरी रही बात गिरिबाला सिंह के वकील को धमकी देने की, तो उन्हें अब ये बात जांच एजेंसी के आगे सिद्ध करनी पड़ेगी कि कहां से फोन आया था, किसका फोन आया था, कब फोन आया था।
2: बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें संजय एक बड़ी टिप्पणी है, त्रिशा का परिवार है वो चाहता है कि ट्रायल वो राज्य में ना हो, मध्य प्रदेश में ना हो, ट्रायल वो बाहर चाहता है, तो क्या किसी राज्य विशेष का जिक्र किया गया कि इस राज्य में चाहते हैं और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं ट्रायल चाहते हैं? क्या रसूख गिरिबाला सिंह का?
3: जी हाँ बिल्कुल, गिरिबाला सिंह का रसूख और इन तमाम चीजों को देखते हुए और जिस तरह से जांच बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी है, और यहां पर उनको उम्मीद है कि उनको आशंका ऐसी लगती है कि इनको जल्दी जमानत मिल जाएगी, इनके साथ इनके रसूख का ये फायदा उठाएंगे, लिहाजा किसी भी पड़ोसी राज्य में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए और ट्रांसफर करने का के आदेश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट पे है। लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है कि राज्य से बाहर इस मामले का ट्रायल कराया जाए।
1: एक और बात यहाँ पर जो बेहद महत्वपूर्ण, मौत वाले दिन ही उससे ठीक पहले ट्रिशा एक पार्लर में गई थी जहां उसने लगभग 3 घंटे का वक्त बिताया था। अब पार्लर वालों का ये कहना है कि उसकी मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने वहां फोन करके उस सीसीटीवी फुटेज की मांग की जिस दौरान वहां पर ट्रिशा मौजूद थी। इसके क्या कारण हो सकते हैं?
3: इसके कारण ये है कि एक तो वो सीसीटीवी फुटेज वो या तो गायब कराना चाह रही होंगी या फिर उससे भी कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही होगी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से वहां पर उसके व्यवहार और बर्ताव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके पीछे और क्या वजहें रही हैं ये तो गिरिबाला सिंह ही बताएंगी और पुलिस जांच एजेंसी वहां से उसकी कॉपी कैसे बरामद करती है सीसीटीवी फुटेज की, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या वो सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई है या उसकी कॉपी उनके पास मौजूद है, तो तमाम चीजें जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
4: ये गिरिबाला सिंह की ये जो हरकतें हैं और उनके बेटे का फरार होना, ये तमाम संदेह जरूर उत्पन्न करता है। लेकिन इस बीच में संदेह पहले पोस्टमार्टम को लेकर भी था परिवार को, क्या उस पहले पोस्टमार्टम का जिक्र हुआ आज कोर्ट में?
3: कोर्ट में फिलहाल पिछले पोस्टमार्टम का जिक्र तो नहीं हुआ है, लेकिन ये अवश्य है कि दो पोस्टमार्टम होने के बाद अभी इन दोनों की रिपोर्ट बहुत सारी चीजों का खुलासा करेगी कि क्या ट्रिशा के घर वालों की परिवार वालों की आशंका वो सही थी या निर्मूल थी। दो पोस्टमार्टम हुए हैं, अलग अलग पैनल ने किए हैं, तो ये भी देखना होगा कि दोनों पोस्टमार्टम के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या कहती है। तो इन तमाम चीजों पर से पर्दा जांच एजेंसी की जांच से ही उठेगा।
1: साथ ही संजय, क्या कुछ पुलिस वालों को भी बतौर विटनेस इस पूरी प्रोसीडिंग में बुलाया जा सकता है? क्योंकि कई जगह पे हमने इंटरव्यूज के दौरान देखा सीनियर पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि ये आत्महत्या का मामला, अभी तफ्तीश चली रही है, उन्होंने आत्महत्या पहले से ही मान लिया।
3: जी हाँ बिल्कुल, जब सीबीआई जांच करेगी तो ये तमाम लोग भी दायरे में आएंगे कि आखिर किस आधार पर उन्होंने इसे आत्महत्या बताया है, क्या तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ये पुलिस अधिकारी कैसे कह सकते हैं कि आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है। अगर वो बिना पोस्टमार्टम के कह रहे हैं तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, केवल और केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही पोस्टमार्टम के बाद ये बता सकता है कि मामला आत्महत्या का था या फिर किसी साजिश का हिस्सा थी। तो ये तमाम चीजें हैं, जांच अधिकारी जब जांच करेंगे, सीबीआई जांच करेगी, तो उसके दायरे में न केवल ट्रिशा के ससुराल वाले बल्कि वो उनसे भी पूछताछ की जाएगी जो जिस ब्यूटी पार्लर में गई थी, और पुलिस अधिकारी, अस्पताल के लोग, ये तमाम लोग तो जांच के दायरे में आएंगे और इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जिससे पता चलेगा आखिर उनके बयान का आधार क्या था।
4: संजय एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि गिरिबाला सिंह पर आरोप लगातार ये लगता रहा कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करे, क्या उसका जिक्र हुआ, कैसे और सिस्टम का दुरुपयोग किया गया इस केस में, क्या उल्लेख हुआ इसका कहीं?
3: सिस्टम का दुरुपयोग अभी तो आरोप प्रत्यारोप के स्तर पर बातचीत है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसे अब इलाज कराने के लिए, उसको उसकी जान बचाने के लिए ले जाने में देरी हुई, इधर उधर घुमाया गया, तो ये तमाम चीजें हैं। सिस्टम का दुरुपयोग ये है कि उसमें कई रसूखदार लोगों के भी शामिल होने के आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से अब वो तो फोन एक बार सामने आ जाए तो पता चले कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, या फिर कड़ाई से पूछताछ की जाए तो गिरिबाला सिंह ही इस मामले में बता सकती हैं कि उनके साथ इस साजिश का हिस्सा कौन कौन लोग थे।
1: एक और बात संजय जो बेहद महत्वपूर्ण है, परिवार वालों ने कहा कि ट्रिशा के शरीर पर चोट के निशान थे, अब सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इस बात का खुलासा हो सकता है कि ये चोट के निशान कैसे आए, क्योंकि हो सकता है कि बॉडी इस हद तक डिकम्पोज हो गई हो कि इस बात का पता लगाना ये मुश्किल हो जाए, काफी वक्त बाद सेकेंड पोस्टमार्टम हुआ है।
3: लेकिन बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया था, लिहाजा ऐसे में पोस्टमार्टम से ये तो पता चल जाता है कि अगर पुराना भी जख्म होगा तो उससे भी पता चल जाता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रहता कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, तो उससे विज्ञान को चकमा नहीं दिया जा सकता, विज्ञान को धोखा नहीं दिया जा सकता है, और उसमें कई तरह की चीजें होती हैं जिसका कई एंगल से जांच होती है, सिर्फ एक ही एंगल से जांच या एक ही स्तर पर जांच नहीं होती, कई स्तर पर जांच होती है, लिहाजा इस बात का पता लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि जो इंजरी मार्क थे वो इंजरी मार्क कितने पुराने हैं, किस हथियार से किए गए हैं, कैसे इंजरी हुई है, किस दिशा से की गई है, वो तमाम चीजें वहां पता चल जाती हैं। तो लिहाजा ऐसे में ये कहना है कि दूसरे पोस्टमार्टम में काफी देरी हुई है जिससे बॉडी डिकम्पोज।
1: एक और बात संजय जो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज लगातार दिखाया गया जिसमें ट्रिशा के पति और दो अन्य लोग उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे ला रहे हैं, अब क्या वजह रही पूछताछ के दौरान अगर पति ने या फिर सास ने बताया कि उस दौरान पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं किया गया या फिर एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई, त्वरित मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं भेजा गया, खुद ही सब कुछ क्यों करने लगे वो लोग?
3: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरा कहना है कि जब जांच होगी तो तमाम पहलुओं पर जांच होगी कि आखिर इसके पीछे इनकी वजह क्या है। अभी तो इन्होंने पुलिस को जो बयान दिए हैं पुलिस रिवील नहीं कर रही, लेकिन जब सीबीआई जांच करेगी या केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करेगी तो इन तमाम चीजों के जवाब सामने आएंगे कि आखिर इनके इन एक्ट के पीछे वजह क्या थी, क्यों ये ऐसा करना चाहते थे, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और क्या साजिश क्या थी, वो तमाम खुलासे अभी होने बाकी हैं। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इन चीजों पर भी पर्दा उठता जाएगा।
4: संजय जांच पर सबकी निगाह है, तो क्या जांच एजेंसी को भी किसी तरह का कोई निर्देश दिया गया अब तक?
3: जांच एजेंसी को निर्देश नहीं, जांच एजेंसी को तो अभी फिलहाल ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। तो अब इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें कोर्ट कोई टाइमलाइन फिक्स करती है कि इतने समय में जांच पूरी करके रिपोर्ट दी जाए या जल्दी से जल्दी शीघ्रते शीघ्र ये कहा जाए एज सून एज पॉसिबल।
1: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्योंकि आपने इस केस को सिरे से फॉलो किया है शुरुआत से लेकर अभी तक, अब परिवार जिस दिशा में केस आगे बढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, परिवार संतुष्ट है अब इस कार्रवाई से?
5: बिल्कुल नेहा, परिवार पूरी तरीके से अब संतुष्ट नजर आ रहा है और यही वजह है कि कल त्रिशा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, क्योंकि परिवार की मांग यही थी कि केस जो है वो मध्य प्रदेश में इसकी जांच ना हो, केस की जांच बाहर हो, सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि त्रिशा का अंतिम संस्कार परिवार नहीं कर रहा था, चाहता था कि पहले सेकंड पोस्टमार्टम हो और कल जब दिल्ली एम्स की टीम ने सेकंड पोस्टमार्टम भी कर दिया तो परिवार की ये दूसरी मांग भी पूरी हो गई। तो ये दो प्रमुख मांगे थी परिवार की और इन दोनों मांगों के पूरा हो जाने के बाद ही त्रिशा के परिवार ने आखिरकार
4: बिल्कुल मौत के 12 दिन तो हमने देखा हुआ, लेकिन इस बीच में जो आज कोर्ट में जो टिप्पणियां हुई हैं रवीश, खासतौर पर अग्रिम जमानत को लेकर कि जांच में सहयोग भी नहीं कर रही हैं और उनको बड़ी आसानी से अग्रिम जमानत भी मिल जाती है।
5: देखिए ये बिल्कुल वाजिब तर्क जो है कोर्ट में दिया गया है एसजी जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है पुलिस सूत्रों से वो ये है कि करीब 3 बार समन भेजा जा चुका है गिरिबाला सिंह को बयान देने के लिए पुलिस पूछताछ में, लेकिन उन्होंने अब तक अपने बयान दर्ज नहीं कराए, यानी वो पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। दूसरा, अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार जो हाईकोर्ट गई है, जबलपुर हाईकोर्ट गई है, जिस पर आज दिन में सुनवाई होनी है करीब 2:30 बजे के आसपास, उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने यह माना है कि टेम्परिंग जो है वो सबूतों के साथ कर सकती हैं गिरिबाला सिंह और इस बात का संदेह है और इसीलिए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाए। तो खुद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो है वकील है वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं हाई कोर्ट में भी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी
1: कि
5: गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही है।
1: संजय रवीश पाल सिंह हमारे साथ इस केस पर जुड़े और तमाम जानकारी देते हुए। अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे जहां पर जैसे जैसे बकरीद नजदीक आ रही है माहौल पर इसका असर दिखाई देने लगा है, क्योंकि योगी सरकार ने बकरीद को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। यूपी में गायों की कुर्बानी पर रोक है और इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में दो नाबालिग हिंडन में मांस फेंकने की कोशिश में दिख रहे हैं जिसके बाद बवाल मच गया।
6: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
7: आपने देखी यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर योगी की सख्ती,
8: सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है, जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।
7: आपने देखी बकरीद पर सख्ती को लेकर गर्माती यूपी की सियासत,
9: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है, हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर

0: के तहत राज्य में गौवंश की कुर्बानी पर पूरी तरह से कानूनी रोक है। यूपी समेत कई राज्यों में ऊंट पर भी प्रतिबंधित श्रेणी या विशेष नियमों के तहत ही उसे रखा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के दायरे में आने वाले ये जानवर, उन पर पूरी तरह से रोक है।
1: वहीं बकरीद को लेकर देश के कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने दो दिन की जगह इस बार बकरीद की छुट्टी एक ही दिन रखने का आदेश जारी किया है।
0: अब बकरीद पर सियासत भी जमकर चल रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि ड्राई होली की तरह मुस्लिमों को वर्चुअल बकरीद मनानी चाहिए।
2: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी।
3: बकरीद के नाम पर मजहबी राजनीति किस हद तक पहुंच जाती है ये आप हुमायूं कबीर के इस बयान को सुनकर समझ सकते हैं। इस शख्स के नाम में ही कबीर है, सोच में मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार सख्ती करने पर आमादा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक किसी गाय या भैंस की तभी हत्या की जा सकती है जब उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो पशु शारीरिक रूप से अक्षम हो। इसके अलावा पशुओं को खुले में मारने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
4: हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950 का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950 का जो आईन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आईन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आईन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा क्योंकि
0: और अब रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
8: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और

0: एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
4: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
3: आप कैसे कर लेते हो?
5: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
7: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: Like I said before, we better hold this in.
10: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
11: मिडिल ईस्ट जंग का संकट, सप्लाई लाइन ठप, पेट्रोल डीजल फिर महंगे, जनता परेशान। 10 दिन पेट्रोल डीजल ने मारी 5 रुपए की उछाल, तेल की कीमतों में उछाल, रोटी से व्यापार तक असर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने पूरे विश्व को तनावग्रस्त कर रखा है। जंग के चलते वहां से तेल निर्यात में समस्या का असर आम लोगों के जेबों पर दिखने लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए। पिछले 10 दिनों में ईंधन करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते पूरे देश में महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। आम जरूरत की चीजों से लेकर परिवहन तक हर चीज पर असर दिखने लगा है। विपक्ष ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी नेता ने खाड़ी देशों के युद्ध का हवाला देते हुए महंगाई के लिए वैश्विक संकट को जिम्मेवार ठहराया।
12: फिर से भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी।
13: ये वैश्विक स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, जिससे पूरा भारत और दुनिया प्रभावित है, उसका ही प्रकोप भारत पर भी है।
11: शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 86 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 86 पैसे बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल 91 पैसे की बढ़त के साथ 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं। दोनों शहरों में डीजल के दाम भी पेट्रोल के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। ये इस महीने की तीसरी बढ़ोतरी है। तेलों की कीमतों में उछाल पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से घबराने की बजाय जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदने की अपील की है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने एक बार फिर महंगाई की चिंता बढ़ा दी है। अब आगे क्या होगा? क्या महंगाई का मीटर बढ़ता जाएगा या इसे रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी? आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast. Right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया. दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है. लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी. तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही. हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई. अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी.
12: बंद कमरे में राहुल गांधी का ताजा बयान राजनीति के बाहरी गलियारे में बवंडर बनकर घूमने लगा. बीजेपी ने इसको साजिश, पीएम की लोकप्रियता का डर और देश में हिंसा फैलाने की मंशा से जोड़कर पलटवार किया. राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है. राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं. राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस ने फुल स्टॉप लगाया. सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी की बैठक में सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हुई बल्कि कांग्रेस की राजनीति की दिशा पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा जिसके साथ अन्याय हो कांग्रेस को खुलकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश में है जिसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम देती रही है।
4: क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं, कांग्रेस साजिश करती रहती है।
12: अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआत है? क्या कांग्रेस आर्थिक असंतोष और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नई जमीन तलाश रही है? क्या राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने एनडीए में असमंजस पैदा करने के लिए ताजा बयान दिया? या फिर बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के नैरेटिव से राहुल गांधी के बयान को कमजोर कर देगी? राहुल गांधी का दावा कितना सच होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल ने मोदी सरकार के जाने का जो समय तय किया है उसका टेस्ट 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधानसभा समेत कई राज्यों के चुनाव में हो जाएगा, जहां मुद्दे भी होंगे, मजहब भी होगा, विकास भी होगा और सत्ता विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा भी। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

विशा केस की जांच जल्द शुरू करे सीबीआई। मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखे। परिवार सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट। वकील ने कहा जांच में मदद नहीं कर रही सास। देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट। पेट्रोल की कीमतों का शतक। 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी। 10 दिन में चौथी बार इजाफा। टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। शोपिया में कई जगहों पर छापेमारी। जमात इस्लामी के शिक्षण संस्थान निशाने पर। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। लाइव इवेंट में राजदूत सर्जियो गोर्स फोन पर बोले ट्रंप आई लव इंडिया। भारत कर सकता है भरोसा। जैसलमेर के डंपिंग ग्राउंड में सैकड़ों मृत गायों के मिलने से सनसनी। आज तक पर खबर चलने के बाद जगह प्रशासन। रद्द हुआ ठेकेदार का लाइसेंस। क्रेन से शुरू हुई कार्रवाई।

0: 12 रिपोर्टर का समय हो गया है। शुरुआत करते हैं 12 बजे 12 रिपोर्टर की बड़ी खबर के साथ। ये खबर त्विशा शर्मा मौत केस से जुड़ी हुई है। सीबीआई की टीम आज भोपाल जा रही है और त्विशा शर्मा केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम भोपाल रवाना हो गई है। सीबीआई जांच की संतुति राज्य सरकार ने की और अब सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भोपाल रवाना हो गई है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, अब सीबीआई जा रही है भोपाल, इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जाएगी। परिवार को राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था, राज्य की इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी उस पर भरोसा नहीं था। सीबीआई जांच की मांग की और राज्य सरकार ने उस मांग को पूरा भी किया, सीबीआई जांच की संतुति की और अब सीबीआई की टीम आज त्विशा केस की जांच शुरू करने वाली है, वो भोपाल पहुंच रही है। त्विशा केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई और कोर्ट ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण माना है और निष्पक्ष जांच की बात कही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि त्विशा की सास गिरिबाला सिंह जांच में अड़चने डाल रहे हैं, टीवी में गलत इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से कहा कि मीडिया में कोई भी इंटरव्यू ना दें, जो कहना है वो जांच एजेंसी के सामने कहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला को तो तुरंत जमानत भी मिल जाती है, वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे, अभी तक अपना मोबाइल पुलिस तक को उन्होंने नहीं सौंपा है। संवाददाता शिष्य ओझा इस खबर पर जुड़ गए। शिष्य, अब तक की सुनवाई में क्या क्या हुआ और क्या सुनवाई अभी चल रही है?
1: जी राजीव, सुनवाई इस मामले में खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो संज्ञान इस मामले का लिया था। आज जब इस मामले में सुनवाई हुई, कोर्ट ने एक बात बहुत साफ तौर से करी है कि इस मामले में संज्ञान लेने का एक ही गोल है, वो सुप्रीम कोर्ट का था, एक ही कंसर्न है कि इस मामले में जिसमें एक मासूम लड़की ने अपनी जान गंवाई है, उस मामले में एक फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि त्विशा शर्मा की फैमिली की तरफ से काफी कंसर्न्स जताए गए हैं कि शायद जो ट्रायल है इस मामले में वो फेयर ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ है वो जुडिशरी से एसोसिएटेड रही हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि एक बायस जो है इस मामले में उनके खिलाफ हो सकती है और शायद उन्हें इस मामले में इंसाफ ना मिले। ये जो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है पिछले कुछ दिनों से, इस नैरेटिव की तरफ चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेने का डिसीजन लिया। पर कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो एमपी पुलिस है, एमपी सरकार है, एमपी सरकार ने खुद ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का एक जो प्रपोजल है वो रखा है। इस मामले में एमपी स्टेट ऑफ एमपी और एमपी पुलिस की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें किसी भी तरीके से जो वहां की एमपी पुलिस है उस पर कोई शक नहीं है, उन्हें भरोसा है स्टेट अथॉरिटीज पे, और ये अच्छी बात है कि कुछ तरीके के जो डाउट्स रेज हुए थे उसके बाद खुद जो है सरकार ने सीबीआई की तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने की बात करी। सोलिसिटर जनरल ने कोर्ट को अश्योर किया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जल्द से जल्द शुरू करेगी
0: और सीबीआई की टीम आज भोपाल पहुंच भी रही है। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। त्विशा मौत मिस्ट्री से जुड़ी भी एक और अर्जी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली, उसी के खिलाफ एक याचिका, उस पर आज सुनवाई होगी। इस बीच में त्विशा के पति समर सिंह से लगातार पूछताछ जारी है। अब तक की पूछताछ में क्या सामने आया है बता रहे हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह।
2: पुलिस कस्टडी में समर से लगातार पूछताछ हो रही है और पुलिस उसके और त्विशा के बीच संबंधों को जानने में जुटी हुई है। पुलिस पूछताछ में समर यही बता रहा है कि उसके और त्विशा के बीच में संबंध बेहद अच्छे थे, लेकिन जब से त्विशा को उसके गर्भवती होने का पता चला, उसका व्यवहार समर्थ और उसके परिवार के प्रति बदल गया। पुलिस पूछताछ में समर्थ ने यह भी बताया है कि दोनों के बीच बेंगलोर साथ में जाने को लेकर के विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद त्विशा अपने भाई के पास जाने का कहकर अजमेर निकल गई और समर्थ बेंगलोर चला गया, लेकिन बाद में समर्थ को पता चला कि त्विशा अजमेर में सिर्फ एक ही दिन रही और बिना समर्थ को बताए वो वहां से दिल्ली चली गई थी। इस बात को लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद हुआ था, लेकिन समर्थ ने पुलिस को यह भी बताया है कि जिस दिन त्विशा ने फांसी लगाई उस दिन दोनों के बीच बेहद सामान्य बातचीत हुई थी और यहां तक कि दोनों ने दिन में खूब समय एक साथ बिताया था, लेकिन रात को अचानक से त्विशा ने यह कदम उठा लिया।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में त्विशा जैसे ही केस सामने आए, बीते महीने जयपुर में अनु मीणा सुसाइड केस में अब नए सीसीटीवी फुटेज ने पूरे केस की जांच का नया मोड़ दे दिया है। अनु मीणा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम उसे बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। मामला बीते महीने 7 अप्रैल का है जब अनु मीणा ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अब अनु के मोबाइल से कुछ अहम वीडियोस, कुछ सबूत मिलने के बाद परिवार वालों ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अनु के भाई नीरज मीणा ने आरोप लगाया कि गौतम लगातार उसकी बहन को प्रताड़ित करता था।
3: अब बात बीते महीने जयपुर में हुए अनु मीणा सुसाइड केस की। इस मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अनु मीणा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम बुरी तरह से पीट रहा है। अनु मीणा के मोबाइल से कुछ ऐसे वीडियो और सबूत बरामद हुए हैं जो बता रहे हैं कि लगातार वो ससुराल वालों के हाथों प्रताड़ना झेल रही थी। अब नए सबूत आने के बाद पुलिस नए धाराओं में जांच कर रही है। अनु मीणा के भाई नीरज मीणा ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को बहुत दिनों से पीटा जा रहा था और आत्महत्या के लिए उकसाया गया।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप बात करेंगे एक दर्दनाक हादसे की। आगरा के ताजगंज में एडवेंचर गेम के दौरान हादसे में 16 साल के लड़के की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जिप लाइन पर आगे बढ़ते ही पुली का लॉक अचानक खुल गया और कुणाल अग्रवाल नाम का लड़का लगभग 45 फीट नीचे आ गिरा। लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
4: आगरा की ताजगंज में बने एडवेंचर पार्क में फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी पंकज अग्रवाल अपने बेटे कुणाल अग्रवाल के साथ पहुंचे तो बेटे ने जिद कर दी कि वो जिप लाइन पर एडवेंचर करेगा और यही वजह थी कि बेटे की जिद के आगे पंकज अग्रवाल ने 120 फीट लंबी और लगभग 45 फीट ऊंची जिप लाइन पर बेटे को एडवेंचर के लिए चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही कुणाल ने जिप लाइन से आगे बढ़ा, जिप लाइन का लॉक खुल गया और करीब 45 फीट की ऊंचाई से कुणाल गिर गया। जब तक कुणाल को उसका परिवार अस्पताल ले जाता उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में आगरा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एडवेंचर पार्क संचालकों को हिरासत में ले लिया गया है।
0: अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। एनआईए की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एक छापेमारी शोपिया में जामिया सिराज उल उलूम नाम के एक शिक्षण संस्थान पर हुई है। ये जमात इस्लामी चलाता है। इस संगठन पर इसी साल की शुरुआत में बैन लगा दिया गया था। अब एनआईए ने संगठन से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी की है।
5: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज सुबह सवेरे घाटी में 3 अलग अलग लोकेशंस पे छापेमारी की। इसमें शोपियन जिले के 2 लोकेशन थे जिसमें सिराजुल उलूम दारुल उलूम जो कि जमाते इस्लामी द्वारा रन किया गया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। ऑलरेडी अगर आप कुछ महीने पहले की बात करें तो उसको सील किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। छापेमारी हुई और उसके अलावा साहिबजादा औरंगजेब जो कि फॉर्मर अमीर जमात थे शुपियन के, उनके घर पे भी छापा मारा गया। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भी ऐसे ही छापेमारी हुई एनआईए के साथ पुलिस और सीआरपीएफ। छापेमारी हुई और उसके अलावा साहिबजादा औरंगजेब जो कि फॉर्मर अमीर जमात थे शुपियन के, उनके घर पे भी छापा मारा गया। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भी ऐसे ही छापेमारी हुई एनआईए के साथ पुलिस और सीआरपीएफ भी थी। सूत्रों का माने तो 2021 का एक केस है रेडिकलाइजेशन और टेरर फंडिंग का और इसमें एनआईए जो है तब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जांच जब आगे बढ़ी तो नए तथ्य नए पहलू सामने आए हैं और उसी की छानबीन करने के लिए ये छापेमारी हुई है।
0: अब बात महंगाई की नई किस्त के। देश में पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर से महंगा हो गया है। तेल कंपनी से इस महीने चौथी बार तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। आज से पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए महंगा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में भी पेट्रोल अब शतक के पार चला गया। राजधानी में पेट्रोल का भाव अब 102.12 रुपए हो गया। नई दर के मुताबिक दिल्ली में अब डीजल 95.20 रुपए में मिलेगा। अगर हम बात मुंबई की करें तो यहां पेट्रोल 111.21 रुपए में बिक रहा है। डीजल 97.83 रुपए का हो गया। कोलकाता में पेट्रोल का भाव 113.51 रुपए हो गया तो डीजल कोलकाता में 99.82 रुपए का हो गया। अगर हम चेन्नई की बात करें पेट्रोल यहां 107.77 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
6: पिछले कुछ दिनों में चौथी बढ़त है पेट्रोल और डीजल की भावों में, और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है अब आसमान छू रहे हैं। तकरीबन मुंबई में 111 रुपये 21 पैसे हो गए हैं, जबकि डीजल का जो दाम है वो है 97 रुपीज 83 पैसे, जो कि तकरीबन आप देख लीजिए 2.5 रुपये से ज्यादा की बढ़त है।
7: बहुत डिफिकल्ट है अभी तो फिलहाल, क्योंकि क्या है ऑफिस के लिए जाने के लिए हमको तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छा तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अच्छा लगता था, पर अभी ऐसा लग रहा है फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना पड़ेगा।
6: वही कह रहे हैं कि सरकारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उसका इस्तेमाल, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि करें लोग, उसकी तरफ ही अब जाना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, ऐसा यहाँ के लोगों का अब मानना है। लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी का जो बजट है स्पेशली फ्यूल पर वो हिल चुका है।
0: आम आदमी के बजट में भूकंप ही आ गया है। तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी पर अब कांग्रेस ने तीखी आपत्ति की है। कांग्रेस का कहना है कि तेल कंपनियां भारी कमाई कर रहे हैं लेकिन आम जनता दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक्स पर लिखा, सरकारी तेल कंपनियों ने 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया, यहां तक कि चौथी तिमाही में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी तीनों का लाभ 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% ज्यादा था। जब ये ओएमसी इतना भारी मुनाफा कमा रही है और तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना धीरे धीरे क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जहां पर ओएमसी भारी कमाई कर रहे हैं वहीं पर आम जनता दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है। क्या यही सुशासन है? कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल और उसके बाद सरकारी सूत्रों की तरफ से सफाई आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 78 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल कीमतें लगभग स्थिर रहीं। 4 चरणों में लगभग 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि दुनिया के बड़े देशों में भारत में सबसे कम ही बढ़ोतरी हुई है। म्यांमार में पेट्रोल 89%, डीजल 112% महंगा हुआ। पाकिस्तान, यूएई, अमेरिका, फिलीपींस समेत कई देशों में 40-50% तक पेट्रोल डीजल बढ़े। यूरोप में पेट्रोल 180-235 प्रति लीटर रुपए बिक रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक गैर सब्सिडी वाले देशों में भारत सबसे कम कीमत वाला देश है। अब बड़ी खबर आपको नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। मांग की गई है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एनटीए को भंग करने वाली याचिका पर अब नोटिस जारी कर दिया गया है। यह नोटिस एनटीए को दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी यह नोटिस दिया गया है एनटीए को भंग करने, क्योंकि एनटीए पर आरोप लग रहा है कि वो एक एग्जाम को सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे और उसके चलते नुकसान बहुत हो रहा है। अनिशा माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अनिशा, नोटिस भेज दिया गया, कब तक जवाब देना है, नोटिस में क्या क्या लिखा है?
8: स्नेहा, वी जस्ट सॉ द
0: हम रुक करेंगे दोबारा अपने संवाददाता का, लेकिन एनटीए को भंग करने वाली याचिका पर एक नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को यह नोटिस भेजा है। दरअसल यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन ने एक याचिका दाखिल की थी, उन्होंने सीधी मांग की थी कि एनटीए वो कुछ काम का बचा नहीं है, ऐसे में एनटीए को भंग ही कर दिया जाए। बारह बजे 12 रिपोर्ट में खबरों का सिलसिला जारी है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राजदूत को फोन किया और जमकर पीएम मोदी की भारत की तारीफ किया। क्या है इसके मायने आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अमेरिका से पौने जो है 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर से फोन पर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद है, मोदी महान है, वो मेरे दोस्त हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे, भारत मुझ पर और हमारे देश पर 100% भरोसा कर सकता है, अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो जानते हैं कि किसे फोन करना है।
9: भारत और अमेरिका के संबंधों में बीते डेढ़ साल के दौरान आए उतार चढ़ाव और साथ ही उठे आशंका के सवालों को दूर करने की कोशिश थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री को 4 दिनों के भारत दौरे पर भेजा। साथ ही सीधे तौर पर यह संदेश भी दिया कि भारतीय उन पर 100% भरोसा कर सकते हैं। मौका था भारत में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उत्सव का और अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने सीधे ट्रंप को फोन मिलाया। ट्रंप ने फोन पर ही कहा कि भारतीय न केवल उन पर भरोसा कर सकते हैं बल्कि भारत और अमेरिका इससे पहले कभी उतना करीब नहीं थे। भारतीय ये जानते हैं कि जब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो उन्हें फोन कहां करना है, उन्हें सीधे फोन वाशिंगटन में करना है। लेकिन ये तमाम बातें आखिर हकीकत में कितना उतर पाएंगी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि कथनी के साथ साथ जो आकलन है वो करनी के आधार पर भी होता है। और अभी भारतीयों की अपेक्षा होगी कि चाहे वीजा का मुद्दा हो, चाहे भारत के ऊपर टैरिफ या ट्रेड का मामला हो, उसमें भारत की सहायता के लिए अमेरिका एक मजबूत साथी की तरह न केवल साथ खड़ा नजर आए बल्कि भारत के मददगार के तौर पर अपना जो रिकॉर्ड है उसे साबित भी करे।
0: और अब खबर यूपी की, जहां पर बकरीद से पहले यूपी सरकार ने कह दिया है कि सड़क पर जाम करके नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी और साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस रहेगा। यूपी सरकार के फैसले के मुताबिक प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। आपको बता दें कि यूपी में गौवंश यानी गाय, बछड़ा, बैल, सांड और ऊंट पर भी प्रतिबंधित है और वो प्रतिबंधित पशुओं की सूची में शामिल है।
10: बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश सामने आए हैं। उन्होंने कल लखनऊ में हुई बैठक में साफ किया है कि खुले स्थान पर कुर्बानी नहीं देने दी जाएगी और ना ही सड़क पर नमाज करने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि सड़क पर नमाज करना उत्तर प्रदेश में फिलहाल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा जैसे पहले रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि प्रतिबंधित जानवर जैसे कि गौवंश, ऊंट आदि की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा खुले में मांस भी बेचना यूपी में प्रतिबंधित रहेगा। बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के इस तरह के निर्देश के बाद यूपी की सियासत में हलचल भी तेज हो गई है और विपक्ष मुख्यमंत्री पर समुदाय विशेष की आजादी के हनन पर कहीं ना कहीं टिप्पणी करता दिख रहा है।
0: एक दिन पहले बंगाल की फलता सीट का नतीजा आ गया। वहां पर बीजेपी ने बम्पर फोर से जीत हासिल की है और इस हार के बाद ममता बैनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए, कहा कि वोटों की लूट हुई है। लगे हाथ उन्हें इंडिया गठबंधन की याद भी आई। ममता ने फेसबुक लाइव संबोधन में कल कहा कि इंडियन अलायंस की जून के पहले हफ्ते में बैठक की संभावना है। कहा कि विपक्षी खेमा एक लंबा राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार है।
11: ममता बनर्जी फिर से अब इंडिया अलायंस को एक्टिव करने के मकसद से काम करने वाली हैं। फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जून के पहले सप्ताह में उनकी कोशिश रहेगी कि जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, उनको एकजुट करें और उनके साथ बीजेपी की लड़ाई करें, बीजेपी के साथ वो लड़ाई करें। दरअसल ममता बनर्जी के पास अब दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती है पश्चिम बंगाल में टीएमसी को टूटने से बचाना, क्योंकि साफ तौर पर लग रहा है कि टीएमसी टूटने के कगार पर आ रही है। काकुली घोष दस्तीदार ने इस्तीफा दिया है, जो बारासात की ऑर्गेनाइजेशनल प्रेसिडेंट थी उसके पद से। ऐसे में बहुत सारी आलोचनाएं हो रही हैं। आईपैक को लेकर भी टीएमसी के जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं, टीएमसी में असंतोष पनप रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को टूटने से बचाना है, फिर से मजबूत करना है, तो दूसरी ओर दिल्ली में इंडिया अलायंस को फिर से एक्टिव करना है, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और उससे पहले ये सब कोशिशें करने के लिए ममता बनर्जी के पास चुनौती दोहरी है।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली खबर दिल्ली की है। दिल्ली में जल संकट है, गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त बिजली का संकट भी है। पानी को लेकर कल पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। दक्षिणी दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में सैकड़ों लोग जल संकट से गुजर रहे हैं। लोग परेशान हैं, इस संकट के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
12: देश की राजधानी का दक्षिण में कैसा इलाका है, हर साल पानी की दिक्कत होती है, गर्मियां आती हैं, पानी की किल्लत बढ़ जाती है। एक महीने से ज्यादा समय में यहां सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके घर में नल से पानी नहीं आया है। कुछ घरों में है तो बाकी तरह देखिए सारे डब्बे बाल्टी, पीने के पानी की दिक्कत है। कपड़े धोने नहाना तो दूर की बात है, जो लोग हैं काम पे जाने वाले हैं छुट्टी लेने पड़ते हैं, बच्चे बिना नहाए स्कूल जा रहे हैं। और इन सब में दरअसल स्थिति यह है कि पानी की सप्लाई अगर नल से नहीं हो रही तो कम से कम टैंकर आने चाहिए। लोगों की शिकायत यह है कि सुनवाई वहां भी नहीं है। टैंकर को फोन करते हैं तो जो टैंकर माफिया जो प्राइवेट टैंकर ऑपरेट करते हैं 1500 रुपए लेते हैं, लोग पैसा जमा करके आते हैं और तब जाकर के पानी की सप्लाई आती है। ये स्थिति देश की राजधानी की है।
0: अब बात करते हैं मौसम की। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बाद अब गर्मी से बचाव के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हिल स्टेशन में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब मनाली से देखिए आज तक संवाददाता मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
13: मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ अब लोगों ने पहाड़ों पर अब रुख करना शुरू कर दिया है। बात अगर मनाली की करें तो मनाली में इस समय पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक जो है वो मनाली अब ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पर्यटक जो है वो मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों में आकर यहाँ पैराग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारी संख्या बढ़ती संख्या को देखते हुए मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों में अब कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या भी अब पनपने लगी है। लोग पर्यटकों को यहाँ घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यटक यहाँ आकर परेशान जरूर हो रहा है। वहीं इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी मैदानी इलाकों में और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक जो है वो मनाली का और इसके आसपास का इलाकों का भारी संख्या में रुख करेंगे।
0: अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल का प्लेऑफ लाइनअप तैयार हो गया है। किस टीम का किससे कब मुकाबला है बता रहे हैं आज तक संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
14: लीग स्टेज के बाद अब प्लेऑफ की तस्वीर साफ हो चुकी है। नंबर 1, 2, 3 और 4 की टीमों के नाम अब सबके सामने आ चुके हैं। आरसीबी नंबर 1, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे एसआरएच और नंबर 4 पर अब फाइनली राजस्थान ने अपना नाम लिख दिया है। क्वालिफायर 1 जो है वो 26 तारीख को खेला जाएगा जहां पर आरसीबी और गुजरात आमने सामने होगी। अगर यहां जो भी टीम जीतेगी उसको डायरेक्ट जो है टिकट मिलेगी वो फाइनल की मिलेगी। उसके बाद क्वालिफायर खेला जाएगा जहां पर राजस्थान और एसआरएच का मुकाबला होगा। यहां जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी। क्वालिफायर 2 में जो दो टीमें आएंगी वहां सर एक टीम निकलेगी फाइनल की तरफ जाकर 31 तारीख को अहमदाबाद में फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी जो पिछले साल की चैंपियन है वो पहुंचती है या फिर कोई नई टीम इस बार ट्रॉफी उठाती है। आरसीबी के सामने, गुजरात के सामने, हैदराबाद के सामने और राजस्थान के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी।
0: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
16: भारत की
0: 12:12 रिपोर्टर में बात पर मध्य प्रदेश की भोटशाला पर एमपी हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज सीएम मोहन यादव धार पहुंचे और इस दौरान सीएम मोहन यादव भोटशाला में मां वाग देवी का दर्शन पूजन भी वो करेंगे। दोपहर 2:30 सीएम देवी सागर तालाब में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे।
17: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
18: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
17: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
18: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
19: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
21: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
22: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
21: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
23: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
24: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
25: सोच बदलो और बैंक भी.
26: Like I said before, we better hold the sins.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: भारत में आग बरस रही है, मई मार डालने पर उतारू है। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और आदमी तड़प रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में बिजली कटौती तबाही मचा देने वाली है। इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाए, गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाए, बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाए, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार भले ही बता रही हो कि वो बिजली कटौती के खिलाफ एक्शन में है, मगर सच्चाई यही है कि कई शहरों और गांवों में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है और आदमी परेशान है, इसीलिए विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है।
1: देखिए, 9 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी गर्मी बढ़ती, जब भी ठंड बढ़ती, जब भी बिजली की मांग बढ़ती है, बिजली व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा जाती है। चाहे लखनऊ राजधानी की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, बिजली कब आती, कब जाती, कब जाती, फिर आती नहीं।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें बिजली कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जब बर्फ का पहाड़ दरकता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। बद्रीनाथ में कंचन जंगा घाटी पर बर्फ का तूफान आया है।

0: सर, ज्यादा गर्मी इसलिए बिना गोशे के निकलने वाला ही नहीं है।
1: ज्यादा सभी घर से बाहर निकलो तो जबरदस्त हो गर्म के मारे हालत खराब।
2: टेम्परेचर काफी यानी पसीना छूट रहा है इस समय।
3: चल रहे

0: बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया।
1: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
2: दिमाग खराब हो रहा है डेली।
3: दाम तो बढ़ रहे हैं, जनता पे बोझ बढ़ रहा है अपने।
4: तो ये तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी हमारे ऊपर, बहुत भार पड़ गई तुम से।
5: आम आवाम पर जून से पहले एक तो कुदरत का जुल्म बरपा हुआ है, ऊपर से भीषण गर्मी और बिजली पानी की किल्लत में पेट्रोल डीजल की महंगाई जेब जला रही है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। आज से पेट्रोल 2.61 रुपए तो डीजल 2.71 रुपए महंगा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में भी पेट्रोल शतक लगा चुका है।
6: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मुज संकट का ऐसा कहर है कि 2 महीने बाद भी बारूद आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
7: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
8: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
9: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए, यही नहीं मालूम पड़ा ना न्यूज पे ना उस पे, कोई यही नहीं रहा।
6: हिंदुस्तान के आवाम को पता है कि ईरान की जंग के कारण तेल के दामों में आग लगी हुई है, और सिर्फ 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए तक महंगा हो चुका है। लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं, यही आशंका कांग्रेस पार्टी भी जता रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने लिखा है, सरकारी तेल कंपनियों ने 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया, यहां तक कि चौथी तिमाही में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी तीनों बड़ी तेल कंपनियों का लाभ 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% अधिक था। जब ये तेल कंपनियां इतना भारी मुनाफा कमा रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना धीरे धीरे क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जहां OMCS भारी कमाई कर रही है, वहीं आम जनता भारी दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है। क्या यही सुशासन है?
10: अरे पहले तो ऐसा था कि 30-40 रुपए में अपना हो जाता था, लेकिन अब तो 120 रुपए का डलाएंगे तब हम लोग ड्यूटी तक पहुंच पाते हैं।
11: हमारे लिए महंगाई हो रही है, हमारा कुछ नहीं होता है, हम गरीब बंदे क्या करेंगे इसलिए, और मजबूरियां पड़वाना तो पड़ेगी, डलवाना तो पड़ता ही है, क्या करें अब गरीब बंदा क्या करेगा।
12: ईरान से जो आने में वो प्रॉब्लम हो रहा ना, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं रहेगा।
13: क्या कोई कर सकता है? ये युद्ध का मेन कारण है, और बढ़ने से सभी छोटे से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी।
6: विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन अप्रैल और मई में 35,000 से 45,000 करोड़ का नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624.54 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18,000 से 22,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901.50 करोड़ मुनाफा मिला, लेकिन अप्रैल मई में 17,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। तेल कंपनियों के बही खाते में आए भूचाल का अनुमान लगाते हुए बाजार के जानकार पहले ही 20 से 25 रुपए तक दाम बढ़ने की आशंका जता रहे थे। इसमें अभी तक सिर्फ 7 से 8 रुपए तक ही बढ़ोतरी की गई है। आशंका है कि अगर हॉर्मुज की डील जल्द नहीं सुलझी और कच्चे तेल के दाम जंग से पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंचे, तो महंगाई के जोर का झटका धीरे धीरे लगते रह सकता है। आज तक ब्यूरो।
5: भारत के लोगों पर अगला कहर आसमान से बरप रहा। एक तरफ महंगाई में जेब जल रही, दूसरी तरफ गर्मी में जिंदगी सुलग रही। उत्तर भारत में तापमान 43 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है, 9 दिन के 9 तपा, और ऊपर से सूरज आग उबल रहा है। नीचे पानी से लेकर बिजली तक के संकट ने जीना मुहाल कर रखा है।

0: उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री में उबल रहा है। मध्य प्रदेश का खजुराहो 47.4 डिग्री में तप रहा है। महाराष्ट्र का वर्धा 47.2 डिग्री में झुलस रहा है। हरियाणा का रोहतक 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है। पंजाब के बठिंडा पर 46.6 डिग्री का कहर टूट रहा है। इस सुपर और नीनो इफेक्ट ने ऐसी मुसीबत कायम करके रखी है कि पूरी दुनिया के टॉप 50 गर्म शहरों में सारे के सारे हिंदुस्तान के हैं। और इस आसमानी आफत का कहर जो सूबा सबसे ज्यादा उठा रहा है वो उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ के बांदा जिले में गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। वाराणसी, बांदा और अयोध्या जैसे शहरों में तापमान 42 से 48.2 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है और नतीजा ये है कि गर्मी और लू की चपेट में आकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद औसतन 300 से 400 तक बढ़ गई है। इधर राजधानी दिल्ली में इस 45 डिग्री की भीषण गर्मी में जगह जगह पानी की परेशानी नजर आ रही है। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी के 10 ब्लॉक में हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं बताती हैं कि पानी की किल्लत के कारण वो दफ्तर जाकर स्नान तक कर रही है।
1: बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, अब तो लग रहा है कि हम लोगों को प्यासे ही मरना पड़ेगा। बताइए, सुबह से शाम तक ड्यूटी जाते हैं, वहाँ से आके पानी भरते हैं।
2: अच्छा, बताया जा रहा है कि ड्यूटी जहाँ पर आप लोग जाते हैं वहाँ पे जाके नहाते हैं,
3: वहाँ पे जाके नहाते हैं, साकेत में जाते हैं,
2: साकेत में ही नहा लेते हैं,
3: साकेत में नहाते हैं।
2: दिक्कत हो रही है,
3: बहुत परेशानी थी। चौथी मंदिर से पानी भरने आ रहे हैं हम, चौथी मंदिर से, चौथी मंदिर किरायेदार, अब क्या करें, मकान मालिक तो किराया देगा, मकान मालिक खुद ही किराया देगा, हाँ तो किरायेदार है।
2: कितने का पानी मिलता
3: है? कभी 100 रुपए की आती, कभी 120 की आती,
2: 20 लीटर वाली,
3: हाँ
2: 20 लीटर वाली, पीने वाली,
3: हाँ पीने वाली।
2: तो काफी दिक्कत हो रही है आपको?
3: बहुत दिक्कत होती है, 300-400 रुपए।
2: कैसे आप लोगों का गुजारा हो रहा है?
3: वो एक एक बोतल ले आने की गुजारा कर रहे हैं।
0: लोगों की शिकायत है कि यहाँ 250 से 300 घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। ऐसी ही तस्वीर सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन में दिख रही है, जहां वार्ड नंबर 219 से लेकर जीटीबी एनक्लेव तक में कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग खाली बाल्टियां और बोतलें हाथ में लेकर जल बोर्ड कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय विधायक का साथ भी उन्हें मिला।
4: हमें पानी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। हमारे जनता फ्लैट में 2-2 करोड़ के मकान लेकर बैठे हैं, झुग्गियों वाली हालत हो रही है, मिडिल क्लास फैमिली है यहाँ पर, रोज 200-300 रुपए का पानी पीने के लिए खरीद रही है, बर्तन मांजने के लिए खरीद रही है, झाड़ू पोछे के लिए खरीद रही है, और ऊपर से जो कपड़े हमारे इकट्ठे हो रहे हैं वो हम वो नहीं ढूंढ रहे।
5: 1800 की लाइन में कम से कम 15 दिन से पानी नहीं है, और 15 दिन से तो थोड़ा बहुत आ भी रहा था, लेकिन एक हफ्ते से तो एक बूंद भी नहीं टपक रहा पानी। 1800 की लाइन में 5 कैंपस इधर और 5 कैंपस इधर, और 1300 की लाइन में 2 लाइन ऐसी है कि जिनमें बिल्कुल ही पानी की बूंद नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे हम? मेरे घर में तो 2-2 बीमार भी पड़े हैं, 1-4 रुपए में मैं पानी लेने भी कहाँ जाऊँ।
0: दरअसल 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रही दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके कारण दिल्ली जल बोर्ड के 2 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वजीराबाद और चंद्रावल में है, वहाँ से पानी सप्लाई काफी कम हो गई। इसके कारण मध्य, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की लगभग 2.5 करोड़ आबादी के लिए रोजाना 473 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड रोज 380 करोड़ लीटर पानी ही दे पाता है, क्योंकि दिल्ली को हरियाणा के मुनक नहर के जरिए 232 करोड़ लीटर, गंगा नदी से 96 करोड़ लीटर, भाखड़ा नांगल से 84 करोड़ लीटर और भूगर्भ जल करीब 51 करोड़ लीटर पानी ही रोज मिल पाता है। इसमें भी भीषण गर्मी के कारण हर जगह जलस्तर नीचे जाने के कारण पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार कह चुकी है कि किसी इलाके में पानी की कमी नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होगी, लेकिन जमीनी हालात और घरों में पानी के खाली डब्बे सरकारी दावों को पंचर कर रही है। हालात ये हैं कि देवली के अलावा संगम विहार, दक्षिणपुरी, आम्बेडकर नगर, खानपुर, तिगड़ी, मदनगीर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, कालकाजी के कुछ हिस्से, बदरपुर बॉर्डर के आसपास की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है, और ये पहली बार नहीं है। इन इलाकों को वाटर स्ट्रेस जोन कहा जाता है। सरकार का कहना कुछ भी हो, लोगों के सामने पानी का संकट बड़ा है और उनकी निर्भरता पानी के टैंकरों पर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल वो भी उपलब्ध नहीं है।
6: जैसे जैसे गर्मियां बढ़ी हैं, देश के कई इलाकों में बिजली का संकट है, लेकिन देश की राजधानी में पानी का यह संकट नया नहीं है। जाहिर है गर्मियां आती हैं, संकट बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसे सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिनके लिए पानी मूलभूत जरूरत है, कम से कम पीने का पानी जरूर मिले, और वो नहीं मिल रहा है। लोगों की शिकायत है, जो पानी आ रहा है वो हमने देखा कि घरों में गंदा पानी आ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या देश की राजधानी के लोगों को साफ पानी भी नहीं दिया जा सकता? गर्मी का संकट है तो पानी हर किसी के लिए जरूरी है, तो भला इन्हें पानी क्यों नहीं मिलता? दक्षिणी दिल्ली से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
7: दिल्ली में सरकार बदले लेकिन गर्मियों की तस्वीर नहीं बदली। लेकिन अब दिल्ली के बाद आपको जयपुर लिए चलते हैं। वहां पर भी पानी की किल्लत है और उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जल विभाग के दफ्तर का घेराव किया, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया।
8: राजधानी जयपुर में सैकड़ों घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा और उस बात को लेकर आंदोलनकारी जो हैं वो उग्र हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जल भवन का जो है वो घेराव कर लिया गया है जयपुर में, और यहां पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो जल भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो आंदोलन आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या यहाँ पर क्यों?
9: देखिए, भजन लाल शर्मा को भगवान माफ नहीं करेगा। जिस तरह बीजेपी सरकार आम जनता के साथ में अन्याय कर रही है ना, गंदा पानी सिवलेज का पानी पिला के, वो ऊपर वाला देख रहा है सब, बजरंगबली का आशीर्वाद से इनको ऐसा कर देंगे हालत की जनता इनको मारेगी, ढूंढेगी बीजेपी को, कहाँ चलेगा ये लोग।
8: ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं जो जल भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, रफीक खान जो कि विधायक हैं आदर्श नगर से, कांग्रेस के विधायक हैं, वो आप देख सकते हैं गेट

0: का पहाड़गंज इलाका ये बड़ा बाजार है और इस बाजार में मजदूरों की बोली लगती है। पहाड़गंज के लेबर चौक पर सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों से आए मजदूर दिहाड़ी की उम्मीद में खड़े होते हैं। उन मजदूरों के बीच हमारे संवाददाता पहुंचे।
1: ये देश की राजधानी दिल्ली का पहाड़गंज है, सबसे व्यस्ततम बाजारों से एक है। यहाँ पर्यटक भी आते हैं, व्यावसायिक रूप से भी इलाका बेहद सघन है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर एक लेबर चौक है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे चारों ओर जो लोग हैं ये मजदूर हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो कुछ सुविधा विधा मिलती है आप लोगों को, खाना पानी कोई देता है?
2: लेबर को कुछ नहीं।
1: जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पे
2: कुछ नहीं, अपने से लेना पड़ता
1: है। अभी जैसे 10-11 बजे के बाद एकदम जलने लगता है, तब कैसे काम हम होता आप लोगों से?
3: धूप पड़े या आग पड़े, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा।
4: नेता थोड़े हैं हम, अभी हमें तो काम करना ही पड़ेगा। पेट में भूख लगाए तो करनी पड़ेगी, चूहे कूलेंगे तो।
1: दरअसल पेट की आग होती है ना, पेट की आग बुझाने के लिए फिर आसमान से आग क्यों ना बरसी हो। मजदूरों की नियति यही है, मजदूरी करनी पड़ती है।
0: इनमें से ज्यादातर मजदूर दैनिक मजदूरी करते हैं और वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिन भर कड़ी मशक्कत करते हैं। रेत, सीमेंट, लोहा, मिट्टी का काम करने वाले इन मजदूरों के लिए गर्मी नहीं, वक्त पर मजदूरी का नहीं मिलना ही बड़ी फिक्र होती है।
1: इस तपती गर्मी में ये मजदूर का जीवन है, जहां आप खड़े नहीं होना पसंद करते और धूल धुआं तो खैर छोड़ दीजिए, ये जो तपिश है यहाँ 5-10 मिनट अगर खड़े होते हैं तो चक्कर खा के गिर सकते हैं। ये मजदूर रोजी रोटी के लिए, घर चलाने के लिए घंटों इस धूप में मेहनत करते हैं। ये मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोज मजदूरी कर रहे हैं, गर्मी में खुद को जला रहे हैं, पैसा नहीं मिलता समय से। कितना दिन डिले होता है पैसा मिलने में?
5: सर 10-15 भी लग जाता है ना। हम लोग लास्ट में ना रोड पर छोड़ देते हैं मलबा उठाने के लिए, हड़ताल हो जाते हैं, फिर बोलता है दे दूंगा कल दूंगा, फिर मिलता है जाके।
6: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
10: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
13: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
12: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
14: By the airport!
13: See dealer for details. Offer ends 6/1/26.
15: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
16: You use AI every day, but what if you built what it runs on? At WGU, you'll earn your software engineering degree online, on your schedule, and packed with certifications from AWS, CompTIA, and more. With training in Java or C#, hands-on experience, and a focus on AI-powered systems, you won't just learn to code, you'll learn to build what's next. Learn more at WGU.edu.
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ऐसी भीषण गर्मी में देश के आम लोग जिस एक और संकट का सामना कर रहे हैं वो बिजली है। खासकर जिस यूपी के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा चुका है, उस यूपी के कई जिलों में बिजली की किल्लत की खबरें आ रही हैं। गर्मी में तापमान और बिजली की मांग इतनी ज्यादा है कि कहीं ट्रांसफॉर्मर फूक रहे हैं, कहीं पर लोड शेडिंग की मुसीबत है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
6: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
5: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Chogan Perfumes The French Edition for him and her Durable Pipes Fittings and Tanks A complete range of sanitary solutions
2: Morning people wake up for peace and quiet McDonald's breakfast people We wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
11: देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है लोग लाइन के अंदर लगेंगे पेट्रोल के लिए डीजल के लिए मारामारी होगी महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए चूंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया अब उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई।
4: राहुल गांधी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सलाहकार समिति की बैठक में जिस तरह की भाषा बोली, एक तो उन्होंने कहा माइनॉरिटी नहीं मुस्लिम बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री के लिए बोला है, इस सरकार के लिए बोला है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस साजिश करती रहती है और जिस तरह का बयान पहले भी राहुल गांधी ने बोला था कि वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तो जलजला आ जाएगा, हुआ कुछ नहीं, अभी वो देश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं।

0: लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लोगों ने सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है। मेरठ में जनता मेयर आवास तक पहुंच गई। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। यूपी के बांदा में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ निर्देश दिए हैं कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली आपूर्ति की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को देर रात तक फील्ड में तैनात किया गया है। लखनऊ में 22 अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को रात 9 बजे से 1 बजे तक अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण और फॉल्ट होने पर तुरंत बिजली बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल ने भी बिजली व्यवस्था पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। गाजियाबाद और मेरठ के 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर भीषण गर्मी के बीच यूपी की जनता को राहत कब मिलेगी और क्या सरकार के आदेश जमीन पर असर दिखा पाएंगे? आज तक ब्यूरो।
1: गिरीबाला सिंह विशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरीबाला सिंह भले ही कुछ न बोले लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
2: स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई का, सीबीआई जांच होनी चाहिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

त्रिशा केस की जांच जल्द शुरू करे सीबीआई। मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखे परिवार। सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट, वकील ने कहा जांच में मदद नहीं कर रही है सास। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने को लेकर दायर हुई है याचिका। देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट, पेट्रोल कीमतों का शतक, 2.61 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। डीजल के दाम में 2.71 रुपए का इजाफा, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, शोपियां में कई जगहों पर छापेमारी, जमात इस्लामी के शिक्षण संस्थान निशाने पर। आज तक की खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। लाइव इवेंट में राजदूत सर्जियो फोन पर बोले ट्रंप, आई लव इंडिया, भारत कर सकता है भरोसा।

निशा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जांच एजेंसी पर भरोसा रखे, मीडिया में बयान देने से बचे पक्षकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच प्रभावित न हो इसलिए पीड़ित और आरोपी अपने बयान सीधे जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएं। निशा मौत मामले में परिवार के वकील ने अदालत में ट्रायल को मध्यप्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की संभावना जताई। एसजी ने बताया कि गिरिबाला सिंह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई और टीवी इंटरव्यू के जरिए मृतका को लेकर बयान दिए गए। त्रिशा दीपिका के बाद अब जयपुर के अनु की मौत का मामला आया सामने। सीसीटीवी में अनु के पति बुरी तरह से पीटता दिखाई दे रहा है। तेल के दाम में फिर महंगाई का तड़का, पेट्रोल डीजल के दाम आज चौथी बार बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा, डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पिछले 10 दिन में चौथी बार तेल के दाम बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम में करीब पूरे देश ने पार किया 100 रुपए का आंकड़ा। ईंधन कीमतों की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे, डीजल 94 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 51 पैसे और डीजल 99 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। तेल के दाम में नए उछाल के बाद मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 31 पैसे, डीजल 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में ईंधन महंगा, पेट्रोल 107 रुपए 70 पैसे, डीजल 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी ने कहा महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, तेल के दाम बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया फ्यूल लूट का आरोप। केजरीवाल ने कहा रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं ले रहे हैं, मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा महंगाई से आम आदमी की कमर टूटी है, ईंधन महंगा होने की से खेती, मध्यम वर्ग और गरीबों पर मार। पेट्रोल डीजल कीमतों पर बीजेपी का किया बचाव, विवेक ठाकुर बोले अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से बढ़े दाम, 83 जहाज फंसे होने से वैश्विक दबाव। विश्व भर में चल रहे ऊर्जा संकट के बीच जैसलमेर में ऑयल इंडिया लिमिटेड की बड़ी सफलता, डांडे वाला फील्ड में मिला प्राकृतिक गैस का नया भंडार। दिल्ली जिमखाना क्लब के परिसर खाली करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख, याचिका दाखिल करने पर कल सुनवाई। दिल्ली जिमखाना क्लब मामला केंद्र सरकार और क्लब प्रशासन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है। पटना में बिहार विधानमंडल के कर्मचारियों के लिए बस सेवाएं शुरू, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दूसरी बार लगाया जनता दरबार, हजारों लोगों की सुनी फरियाद। ताजमहल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, बोले ये दुनिया के अजूबों में से एक है, कहा भारत का इतिहास बेहद समृद्ध है। मार्को रूबियो ने भारत की संस्कृति और इतिहास की सराहना की, ताजमहल दौरे के बताया सम्मान का प्रतीक। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ईरान पर बयान, परमाणु मुद्दे पर समयबद्ध बातचीत का प्रस्ताव, कूटनीति को दी प्राथमिकता। रूबियो बोले ईरान से समझौते की कोशिश जारी लेकिन नाकामी पर दूसरे विकल्पों पर विचार संभव। आज तक से खास बातचीत में रूबियो ने भारत को अमेरिका का करीबी सहयोगी बताया, कहा भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी है। बिहार में हरे गमछे पर गरमाई सियासत, सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, कहा सम्राट चौधरी के बयान पर हंसी आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एआई समिट के दौरान हरे गमछे वाले को लेकर कहा था अगर हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो एआई कैमरे उसे तुरंत पकड़ लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार का खजाना खाली और ये लोग हरा और नीला गमछे की बात कर रहे हैं। खड़गे आवास पर होगी अहम बैठक, सीएम सिद्धारमैया समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया, विपक्ष का विरोध। दिल्ली के दक्षिणपुरी में भीषण जल संकट, एक महीने से नल सूखे, लोग टैंकर और महंगे पानी पर निर्भर। दिल्ली में पानी की लत से कई इलाकों में हाहाकार, कई इलाकों में प्रदूषित सप्लाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। जालना में बैंक के एटीएम में लगी आग, एटीएम जलकर खाक, लाखों का नुकसान। हैदराबाद में 200 की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वीडियो पोस्ट करने वाला शख्स गिरफ्तार, हिरासत में आरोपी। शाहजहांपुर में खेत से लौट रही बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड का हमला, 11 साल की बच्ची की लाश दौरान मौत। महाबलेश्वर में स्कॉर्पियो कार करीब 700 से 800 फीट नीचे गहराई में गिरी, 8 लोगों की मौत। महाबलेश्वर हादसे में रेस्क्यू में 2 शव बरामद, अंधेरे और दुर्गम रास्तों के बीच शव निकालने की कोशिश तेज। कानपुर में मामूली विवाद में पिता पुत्र की रोड पर हत्या, भाई घायल, 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सोनीपत में बुजुर्ग महिला की हत्या, लूट के इरादे से हत्या की आशंका, जांच में जुट गई है पुलिस। दिल्ली में 10 महीने की मासूम की हत्या कर सेप्टिक टैंक में फेंका, बेटी होने से नाराज पिता गिरफ्तार। लखनऊ के बलियाबाद में नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद में पकड़ा तूल, किला और शिव मंदिर को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस ने 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पासी किला विवाद पर तनाव बढ़ता जा रहा है, लाखन आर्मी प्रमुख सूरज पासी ने पुलिस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए बड़े आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कई स्थानों पर एनआईए की छापेमारी, जमात इस्लामी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान जामिया सिराज उलूलूम की हो रही है छापेमारी। अलीगढ़ में महिलाओं से लूट करने वाले 2 बदमाश पुलिस के हत्या चढ़े, कई वारदात को दे चुके हैं अंजाम।
साबरकांठा में एक मैदान में लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर हुई दुर्घटना, बाल बाल बच्चे पर्यटक, हादसा सीसीटीवी में कैद। मेहसाणा के मोदीपुरा के पास भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत। खेड़ा के वेद हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी में लगी आग, तीन मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। बघा में खाली ट्रॉली के नीचे से मिला शराब का जखीरा, 302 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार। आगरा चौपाटी में बड़ा हादसा, जिप लाइन से गिरकर 16 साल के युवक की मौत, सिस्टम की लापरवाही पर उठे सवाल। सोनीपत में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी, शख्स ने पति पत्नी और एक महिला को तेज धारदार हथियार से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। झांसी में सवारियों से भरी शताब्दी बस में लगी भीषण आग, मची चीख पुकार। मधुबनी सदर अस्पताल में युवक को मृत घोषित किए जाने पर बवाल, परिजनों ने किया हंगामा और तोड़फोड़। राजस्थान के जैसलमेर से आई विस्तृत करने वाली तस्वीर, जिसने गौ संरक्षण और सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। जैसलमेर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में 500 से अधिक गायों के शव मिलने से सनसनी, वीडियो वायरल, लोगों में नाराजगी, मामले पर जिला कलेक्टर से मांगी गई रिपोर्ट। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी तूफान का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी, 47 डिग्री तक पहुंच रहा है पारा। बदायूं भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजारों में कचरा सन्नाटा, घर से निकलना हुआ मुश्किल। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव, आंधी तूफान से मची भारी तबाही, कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेर से झरने की तरह पानी गिरता नजर आया। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक करें नैनीताल का रुख, सुहाने मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं टूरिस्ट। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रैफिक जाम। चमोली में मौसम ने ली करवट, हेमकुंड साहब में भारी बर्फबारी। चमोली में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, प्रशासन यात्रियों से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, लाल चौक से सामने आई तस्वीरें। आज राष्ट्रपति भवन ने पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 171 में से 66 पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री, दुनिया के नंबर वन पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता गोल्ड, पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तगाराम भील ने अलगोजा वादन को दी ग्लोबल पहचान, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म। मानसी में गंगा दशहरा पर गंगा किनारे सुबह से भक्तों का तांता, गंगा में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से पूजा पाठ। गंगा दशहरा में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने मां गंगा का किया जलाभिषेक, विधि विधान से की पूजा अर्चना। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था के सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हापुड़ में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, भक्तों ने की मां गंगा की पूजा। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, घाटों पर गोताखोर तैनात। राजस्थान रॉयल्स का बड़ा धमाका, मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में बनाई शानदार जगह। वानखेड़े सीरीज में राजस्थान का तूफान, 205 रन के विशाल लक्ष्य के आगे मुंबई इंडियंस पूरी तरह बेबस। 2026 के प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ, आरसीबी गुजरात हैदराबाद राजस्थान ने टॉप फोर में बनाई जगह। क्वालिफायर वन में आरसीबी और गुजरात के बीच होगी महा मुकाबले की टक्कर, एलिमिनेटर में राजस्थान और हैदराबाद होंगे आमने सामने। राजस्थान रॉयल्स से जीत के साथ बढ़ाया खिताब की ओर कदम, मुंबई इंडियंस की हार से टूटा सफर। धुरंधर टू ने 66वें दिन भी बनाया दम, 1800 करोड़ के क्लब से चंद कदम दूर, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1799 करोड़ 61 लाख। अक्षय की भूत बंगला की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई जारी, फिल्म ने 37 दिन में दुनिया भर में 279 करोड़ 4 लाख का किया बिजनेस। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी ने 30वें दिन 1 करोड़ 37 लाख की कमाई की, कुल कलेक्शन 111 करोड़ 47 लाख के पार। 17वें दिन माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 ने लगाई छलांग, ग्रॉस कलेक्शन 31 करोड़ 69 लाख। पति पत्नी और वो दो के 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर दिखाई मामूली बढ़त, फिल्म ने 46 करोड़ 27 लाख का किया कारोबार। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय ने जॉनर में रखने जा रहे कदम, अब एलियन से भिड़ेंगे, सम्मुख से करेंगे हॉलीवुड स्टाइल हॉरर साइंस फिक्शन में एंट्री। रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 की बदल सकती है रिलीज डेट। के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, निर्माता निर्देशक करण जौहर हुए इमोशनल। अमीषा पटेल ने शेयर की ऋतिक के साथ कहो ना प्यारे की शूटिंग के दौरान की तस्वीर, कहा बॉलीवुड में कोस्टार्स के बीच ऐसे असली रिश्ते नहीं देखने को मिलते। अपने ओरा वर्ल्ड टूर में शानदार गीत से जलवा बिखेरे हैं सिंगर दलजीत दोसांझ, न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में कॉन्सर्ट में उमड़े फैंस।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के मुद्दे पर बातचीत करने वाले अपने प्रतिनिधियों को निर्देश साफ दिया गया कि जल्दबाजी में समझौता ना करें। इसराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर सहमत है कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते परमाणु खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किया ने कहा तेहरान के वार्ताकार देश की गरिमा से समझौता नहीं करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन तेहरान का कानूनी अधिकार है। तुर्की के प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के हजारों कार्यकर्ता राजधानी अंकारा की सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे। पूर्वी कांगो के कनन शहर मोंगवालू में इबोला के दुर्लभ बंदीबुगियो स्ट्रेन मिलने से हड़कंप। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहले रविवार 16 लाख तीर्थयात्री जुटे। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद धार्मिक रस्मों को निभाते नजर आए। ब्रिटेन के ज्यादा इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की वजह से पड़ रही है भीषण गर्मी। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हुए रवाना। 1 साल तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर करेंगे शोध। सर्बिया के साथ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहले दौर में स्थानीय खिलाड़ी जियोवानी पेरिकार्ड को 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 से दी मात।

0: और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नीट मामले से। नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एनटी और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट पर यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन की ओर से याचिका दी गई है और मांग की गई है कि एनटी को भंग कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एनटी को दरअसल भंग करने की याचिका दाखिल की गई थी, इस पर नोटिस जारी किया गया है। पीआईएल में एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब एनटीए से मांगा गया है। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। अनीशा, एनटीए तो पहले ही नकार चुका है कि हमारा इस लीक से ही कोई लेना देना नहीं है, क्या यही वजह थी कि याचिका दायर की गई थी?
1: देखिए, फाइमा और यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन की तरफ से यह याचिका दाखिल हुई है, जो सीधे तौर पर यह कह रही है कि एनटीए जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसलिए एनटीए को डिसॉल्व कर देना चाहिए और जो जून में रीटेस्ट होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंटली हो और इस तरह की लीक नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह भी बात कही है कि 2024 से कोई सबक जो लेना था वो नहीं लिया गया है। एनटीए को अब तक समझ जाना चाहिए था, सबक ले लेना चाहिए था। और जो कमिटी बनाई गई थी 2024 की लीक के बाद, जो कि राधाकृष्णन कमिटी थी, उसने जो भी सुझाव दिए थे कि क्या क्या ठीक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस पर क्या किया गया है, उस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन उसके लिए भी अब 3 दिन का समय कोर्ट ने दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट आए, सरकार जवाब दे और एनटीए जवाब दे कि क्या किया जाना चाहिए।
0: और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवा देते हैं।
2: आज नीट यूजी की पिटिशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटिशन जो थी, ये पेपर लीक जो नीट यूजी का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया।
3: हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि एनटीए दोबारा एग्जाम रिकंसीडर करा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसलिए लर्नेड एसजी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, एनटीए को एंड सीबीआई को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए।
0: और अब बात बिहार की। बिहार में हरे गमछे पर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी तेज है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में एआई समिट के दौरान कहा कि अगर हरे गमछे वाले को पकड़ना हो तो एआई कैमरे को निर्देश देने पर वो तुरंत उसे पकड़ लेगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार का खजाना खाली है और ये लोग हरा और नीला गमछे की बात कर रहे हैं।
4: अब एक छोटा उदाहरण में पुलिस की चर्चा करके छोड़ दिया था, अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा।
5: सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। हमने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का, वो कब दीजिएगा, पेंशन कब दीजिएगा, बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। इस देश में जिस प्रकार से ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, बिहार में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं।
6: बिहार में अपराधियों की जाति को लेकर के जारी सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि हरे गमछे वाली सियासत ने जोर पकड़ ली है। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एआई समिट के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एआई से लैस कैमरे तुरंत किसी संदिग्ध की पहचान कर लेंगे, चाहे वो हरे गमछे वाले क्यों न हो। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, बिहार का खजाना खाली है और उन्हें मुख्यमंत्री के ऐसे बयान पर हंसी आ रही है। देखना होगा कि हरे गमछे को लेकर जारी सियासत कहां तक जोर पकड़ती है।
0: इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
10: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
12: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Well played, Jack. Well played.
12: Jack FM, playing what we want.
13: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
14: Sokudo.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
10: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
9: आप कैसे कर लेते हो?
11: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते हो धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
16: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
17: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
18: आगे आगे,
19: अरे उधर
18: उधर,
19: करेक्ट करेक्ट।
20: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: Like I said before, we better own the sins.
22: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
25: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
22: जहां खबर वहां खबरदार।
26: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
27: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
28: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: बात आगरा की, जहाँ की ताजगंज में एडवेंचर गेम के दौरान हादसा हो गया जिसमें 16 साल के एक बच्चे की जान चली गई है। आगरा के ताजगंज में एडवेंचर पार्क, जहां पर जिप लाइन भी है, उसी जिप लाइन से गिरकर बच्चे की जान गई है। पुलिस के मुताबिक जिप लाइन पर आगे बढ़ते ही पुली का लॉक अचानक टूट गया और लड़का सीधे नीचे आ गिरा। चीख पुकार वहां मच गई, मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। माता पिता बदहवास हालत में बेटे की ओर दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुणाल ने दम तोड़ दिया था। एक छोटे से ब्रेक ले, रुक रहे हैं, दिखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
7: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
9: So thank God I get to wake
8: and everything
9: up
8: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC. Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

मिश्रा केस की जांच जल्द शुरू करे सीबीआई। मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखे परिवार। सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट, वकील ने कहा जांच मदद नहीं कर रही है सास। नीट पेपर लीक मामले में एनडीए को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने को लेकर दायर हुई है याचिका। देश को महंगाई की कौन किश्त का करंट, पेट्रोल की कीमतों का शतक, 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। असम विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक, विपक्ष का हंगामा, व्यापक चर्चा और जन सुझाव की मांग, हेमंता बोले रोड मैप तैयार। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। लाइव इवेंट में राजदूत सर्जियो फोन पर बोले ट्रंप, आई लव इंडिया, भारत कर सकता है भरोसा।

नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। मध्यप्रदेश के चर्चित त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज अहम सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए और सीबीआई को जल्द मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने आरोपी और पीड़ित परिवार से मीडिया में या सार्वजनिक मंच पर बयान न देने की अपील की है। अदालत में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि गिरिबाला सिंह अपने रसूख का इस्तेमाल कर जांच में सहयोग नहीं कर रही है।

0: भोपाल के तुषार शर्मा की मौत की जांच जारी है, कानूनी लड़ाई चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब तुषार के परिवार को जल्द इंसाफ की उम्मीद जगी है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई फौरन इस केस को अपने हाथ में ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो मीडिया से बात ना करें और जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें।
1: हम पुराने बिंदुओं को कनेक्ट करें तो तुषार शर्मा ने पहले भी अपने घर वालों को बताया था कि वो मुश्किल में है और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जब अपराध का एंगल है तो उसकी जांच भी उसी तरह से होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो सच्चाई जल्दी और सटीक ढंग से सामने आने की उम्मीद लगती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि एक तो इंटरव्यू ना चलाएं, दूसरा कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, जिसके सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही बता दिया था कि सरकार ने मन बना लिया है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और अब इस पर मुहर भी लग गई।
0: सुप्रीम कोर्ट ने तुषार के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, साथ ही कहा न्यायपालिका के दखल के आरोपों के चलते शीर्ष अदालत को इस केस में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। एक दिन पहले ही तुषार शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद पुलिस की टीम फिर से गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गई है। पुलिस टीम ने उस जगह का मुआयना किया जहां तुषार शर्मा का फंदे से लटका शव मिला था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुषार की सास गिरिबाला पर कई गंभीर आरोप लगाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह कई नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई। केस में बहुत मुश्किल से गिरिबाला सिंह का बयान दर्ज कराया जा सका। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह का फोन जब्त करने में भी काफी दिक्कत हुई। बड़ा आरोप लगाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह ने अपने बयानों से तुषार की छवि को खराब किया।
1: माँ की हालत ठीक नहीं होने की वजह से वहाँ पर उसके व्यवहार और बर्ताव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके पीछे और क्या वजह रही है ये तो गिरिबाला सिंह ही बताएंगी और पुलिस जांच एजेंसी वहां से उसकी कॉपी कैसे बरामद करती है सीसीटीवी फुटेज की, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
0: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ सीबीआई की टीम केस की जांच के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है। जांच एजेंसी एक एक सबूतों की पड़ताल करेगी। तुषार के परिवार के आरोपों का सच जल्द ही सामने लाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: इस पूरे मामले में तुषार की सास सवालों के घेरे में है, जिस पर लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने भी तुषार की सास गिरिबाला सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तुषार शर्मा की मौत से जुड़ा ऐसा कोई राज है जो गिरिबाला सिंह छिपा रहे हैं।
3: गिरिबाला सिंह तुषार शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरिबाला सिंह भले ही कुछ न बोले लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
4: स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
3: जिस ब्यूटी पार्लर में तुषार गई थी वहां तुषार की सास को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। 12 मई को तुषार ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसके अगले दिन यानी 13 मई को सुबह 11:30 बजे तुषार की सास गिरिबाला सिंह का फोन आया। किरण का दावा है कि इस दौरान गिरिबाला ने बार बार पूछा क्या तुषार पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई, कितने बजे गई और पेमेंट कैसे किया गया।
5: जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा?
6: मुझे पता चला जब गिरिबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि तुषार कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि तुषार कब आई और कब गई।
5: ये कब कॉल आया था आपके पास?
6: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है।
5: 13।
6: फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम तुषार मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी इतने बजे गई थी।
3: इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले का अहम सबूत सीसीटीवी ट्विशा की सांस ले गए, लेकिन पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर तक नहीं पहुंच सकी।
6: पुलिस तो नहीं आई
5: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं,
6: नहीं कोई नहीं आया।
5: आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा फुटेज के अलावा?
6: नहीं, कुछ भी नहीं।
3: 11 दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है।
4: अरे कोई कानून है क्या आपको सब बताए?
7: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही
4: है। स्वागत है सीबीआई जांच का।
3: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 11 दिन बाद भी पता न लगा सकी, उससे भी सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ।
8: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
3: अब ट्विशा का ससुराल सवालों के घेरे में, जिसमें सास की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के खिलाफ लगाई गई याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी, यानी कि अब से लगभग 1.25 घंटे बाद ये सुनवाई शुरू होगी। अग्रिम जमानत उन्होंने हासिल की थी तभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, हालांकि वो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में। ट्विशा के परिवार ने यह अर्जी दी है, का कहना है कि अग्रिम जमानत उन्हें इस मामले में नहीं मिलनी चाहिए थी, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अग्रिम जमानत हासिल की थी। और ट्विशा शर्मा का पति समर्थ 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने समर्थ से सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। केस की जांच आगे बढ़ने के साथ समर्थ की रिमांड के दौरान कई साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही है।

0: त्रिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री बेहद पेचीदा है। कई उलझे सवाल हैं, कई गंभीर आरोप हैं और घेरे में है त्रिशा का पति समर्थ सिंह, जो करीब 10 दिनों की फरारी के बाद अब पुलिस रिमांड पर है। समर्थ से लगातार पूछताछ चल रही है, जिसके जरिए केस की कई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने समर्थ सिंह से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई है। समर्थ सिंह से ज्यादातर सवाल जवाब त्रिशा से उसके रिश्ते, त्रिशा की मौत और उसके फरार रहने को लेकर हो रहे हैं। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि 12 मई यानी जिस दिन त्रिशा की मौत हुई वो कहाँ था, क्या उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सवाल ये भी हुआ कि जब उसे त्रिशा के साथ रहना था तो आखिर वो फरार क्यों हो गया। इसके बाद 10 दिनों तक वो कहाँ कहाँ गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस का अहम सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान उसकी अपनी माँ गिरिबाला से भी बातचीत होती रही। ये सारे सवाल त्रिशा शर्मा की मौत वाले दिन और उसके बाद के घटनाक्रम से जुड़े हैं।
1: कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी की पत्नी चली जाए और वो लगातार फरार रहे, कहीं ना कहीं उनके कंडक्ट को दिखाता है। जिस तरीके से किसी की पत्नी शांत हो गई, वो एम्स में है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वो फरार चल रहे हैं और शुरू से कोशिश करी जा रही है आरोपियों द्वारा मिलके कि किस तरीके से जांच को प्रभावित करा जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड है वो दिखाता है। वो कितना कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं, खुद वकील रहे, उससे पहले उनकी जो मदर है वो डीजे रही, लेकिन किस तरीके से उनका कंडक्ट रहा वो मीडिया में भी सबने देखा।
0: त्रिशा के परिवार वाले लगातार समर्थ पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और उसे त्रिशा की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। एक दिन पहले जब भोपाल की अदालत में समर्थ सिंह की पेशी हुई, तब त्रिशा के भाई ने कहा कि उसके चेहरे पर कोई गम, कोई दर्द नहीं दिख रहा था, उल्टा वो कोर्ट में मुस्कुरा रहा था।
2: जी, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहाँ पे अपना वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं, जो लोग उनमें से।
0: समर्थ सिंह 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पर पूछताछ चल रही है। पुलिस ने समर्थ से पूछा कि उसकी पत्नी त्रिशा और गिरिबाला सिंह के बीच संबंध कैसे थे, क्या कभी गिरिबाला सिंह ने ऐसा कहा था कि त्रिशा उन्हें पसंद नहीं है, क्या त्रिशा रोजाना अपने परिवार से बातचीत में तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र करती थी। इसके साथ जो चैट्स दिखाकर त्रिशा के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन पर उसका क्या कहना है।
3: जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
0: त्रिशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी करीब 5 महीने पहले हुई थी। 5 महीनों में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी, तनाव बढ़ा और त्रिशा की मौत हो गई। अब जांच चल रही है कि क्या इस मौत के पीछे उसके पति समर्थ या ससुराल के किसी भी शख्स की कोई भूमिका तो नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात जयपुर में हुए अनु मीणा सुसाइड मामले के, इस केस मिले नए सीसीटीवी फुटेज ने पूरे केस की जांच को नया मोड़ दे दिया है। फुटेज में अनु मीणा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति उसको बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला बीते महीने 7 अप्रैल का है, जब अनु मीणा ने खुदकुशी कर ली, लेकिन अब अनु के मोबाइल से कुछ और अहम वीडियो और सबूत मिलने के बाद परिवार वालों ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर शिकायत कराई। अनु के भाई नीरज मीणा ने आरोप लगाया कि गौतम लगातार उसकी बहन को प्रताड़ित कर रहा था और ये सीसीटीवी फुटेज से साफ भी हो रहा है।

0: जाती तो मेरे पैर पकड़ के एडमिर ले जाता, उसको नहीं करूंगा आज के पास मैं कभी नहीं करूंगा, पैर पकड़ देते थे आके। मैं कहती अनु ये रोज का काम है, मर जाए तू। अरे यार मम्मी आप तो माफी मांग रही।
1: आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी?
0: आखिरी चौथ के व्रत के दिन आई थी, वो घूमने गया था। हाँ 3 दिन पहले आई थी। आके मेरे को खाना बनवा के ले गई भाभी के पास, भाभी मेरे को खाना बना दे, चौथ का व्रत मैं वहीं खोलूंगी। बच्चों को लेके गई थी, बच्चे यहीं थे मेरे, बच्चों को लेके गई थी। फिर दूसरे दिन सोमवार को भी बात हुई थी, मेरी बात होती रही, उस दिन नहीं हुई मेरी बात। मैंने फोन करा था, मेरा फोन ही नहीं उठाया उस दिन। तो उसी दिन के बाद मेरी बेटी को पता ना उसने क्या कैसा करा, उसके बोलने ही नहीं दिया। उसने ऐसे ही बोलती थी मम्मी, मैं सोची कि वही 8 बजे बात करी, मैं सोची कि बाद में करेगी मम्मी, ये टॉर्चर करता है मेरी साथ में कि तेरी मारांड ऐसी है, उससे बात करती है ऐसे करती। तो मैंने ये सोचा कि भाई फोन करने के बाद वो चले जाएगा ऑफिस जब कर लेगी, मैं नहीं पता मेरी बेटी को ये कर देगा पीछे। तो खो रहेगा मेरी बेटी के साथ है।
2: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 7 अप्रैल का वो वीडियो भी सामने आ चुका है जब अनु मीणा ने खुदकुशी की थी। ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन उसने खुदकुशी की, उसके बाद सीपीआर देने की कोशिश। हालांकि पूरी तरीके से हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इससे ये साफ हो रहा है कि उसे रिवाइव करने की, बचाने की कोशिशें की गई थी।
3: सांस दो, सांस दो, फूंक मारो, फूंक मारो, फूंक मारो, मुंह में फूंक मारो प्लीज, कोई पहले फूंक मारो मुंह में, फूंक मारो मुंह में,
4: ये फूंक मार दो,
3: फूंक मार, ये करके भाभी, अरे सांस दो, सांस दो, फूंक मारो, फूंक मारो, फूंक मारो मुंह में फूंक मारो प्लीज, कोई पहले फूंक मारो मुंह में।
2: देव अंकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देव अंकुर, दो वीडियो फुटेजेस हमने देखे हैं, इस एक में अनु का पति उसे मारता हुआ दिख रहा है, दूसरा जो फुटेज है वो ठीक आत्महत्या के बाद का है। इससे क्या पुलिस को प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि बीच का फुटेज भी तो कुछ होगा, क्योंकि अगर सीसीटीवी लगा है या फिर ये वीडियो किसी ने बनाया है, इससे कुछ साक्ष्य?
5: देखिए नेहा, पहले कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे, पर जब ये वीडियो सामने आया है और जानकारी के मुताबिक ये वीडियो जो है वो

0: का अनुमीना के फोन को जब उसके लॉक को खोला गया तो सामने आया, और जब वीडियो सामने आया तो होश फाकता हो गए। होश इसलिए फाकता हो गए कि इतनी बुरी तरह से, बेरहमी से, बर्बरता से कोई आदमी किसी औरत को, और वो भी उसकी पत्नी को कैसे पीट सकता है। इतनी बुरी तरह से पीटा, और वो भी अपने नाबालिग बच्चे के सामने बुरी तरह से पीटा। और कहा यह जा रहा है कि जो व्यक्ति है गौतम मीना, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में XAEN है, उसने अपनी पत्नी को शराब के नशे में आए दिन अपनी पत्नी को पीटता था, उस पर शक करता था। और सोचकर देखिए कि अपने ही घर में CCTV कैमरा लगा के रखा हुआ था ताकि अपनी पत्नी की मूवमेंट्स पर वो नजर बना के रखे, और आए दिन शक करता था, आए दिन शराब के नशे में उनको पीटता था। और ये पूरा वाक्या जो है, अनु मीना का जो परिवार है उनका ये कहना है कि वो बताती तो थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर कितना हो रहा है, किस बर्बरता से हो रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताती थी, और उनको अंदेशा नहीं था कि इस तरह से उसके साथ बर्बरता हो रही है, जिसकी वजह से उनको अंदेशा तो था पर इतनी क्रूरता से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये उनको नहीं पता था। ये जो वीडियो सामने आया है ये अपने आप में होश फाकता करने वाला है। गौतम मीना जो है, जो कि XAEN है, वो इस समय बताया जा रहा है कि टोंक जिले में पोस्टेड है, पर इस पूरे सबूत जो कि वीडियो के तौर पर सामने आया है, इससे पुलिस का जो केस है, जो प्रताड़ना का केस है, वो कहीं ना कहीं और मजबूत होता है। मेरी बात हुई है DCP से, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस वीडियो के सामने आने के बाद जो धारा है, जो रेलिवेंट धारा है, उसको जोड़ दिया है, पर क्या जल्द गिरफ्तारी होगी गौतम मीना की, क्या इस वीडियो की वजह से गौतम मीना को कड़ी सजा मिल पाएगी, ये समय बता पाएगा।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से वृद्धि हो गई है। अगर हम आज के दामों की बात करें तो आज सुबह 2.71 रुपए डीजल के दामों में वृद्धि हुई है प्रति लीटर की, और वहीं पेट्रोल की अगर प्रति लीटर की बात करें तो वो 2.61 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि पेट्रोल में हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली एनसीआर के एक पेट्रोल पंप पर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज के दाम है वो 100 रुपए पार कर चुके हैं। यानी कि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 102.12 रुपए प्रति लीटर जो है वो आपको पेट्रोल मिलेगा। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल का रेट आज के दिन हो गया है 95.56 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं बता रहे कि कैसे जो वृद्धि हुई है पेट्रोल और डीजल की वजह से, उसके बाद जो प्रति लीटर का जो दाम है वो भी बढ़ गया है, और 2.71 रुपए 2.61 रुपए डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कहीं ना कहीं लोगों के जेबों पर जरूर असर डालेगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगभग 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो चुकी है, और इससे लगातार कहीं ना कहीं और बाकी चीजों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का यह मानना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी देश भर में नहीं है, और ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वेस्ट एशिया में लगातार स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। हालांकि ईरान और यूएस के बीच में बातचीत जरूर हुई है, लेकिन उसका असर होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

द्विशा केस की जांच जल्द शुरू करे सीबीआई। मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने रखे बात परिवार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बोला, वकील ने कहा जांच में मदद नहीं कर रही है सास।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने को लेकर दायर की गई है याचिका। देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट। पेट्रोल की कीमतों में का शतक। 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल की कीमतों के दाम भी बढ़े। 2.71 रुपए में हुई बढ़ोतरी। 10 दिन में चौथी बार हुआ इजाफा। असम विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक। विपक्ष का हंगामा। व्यापक चर्चा और जन सुझाव की गई है मांग। हेमंता बोले, रोड मैप है तैयार। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। लाइव इवेंट में राजदूत सर्जोई के फोन पर बोले ट्रंप, आई लव इंडिया, भारत कर सकता है भरोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
1: नमस्कार, 2 बजे के इस खास पेशकश न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री धार भोशाला में पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार वहां पर वो अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि धार भोशाला में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना भी करें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मोहन यादव धार भोशाला में पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं अपने कई नेताओं के साथ में और पूजा अर्चना भी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं।
2: अरे साइन बजाओ, अरे नीचे बैठ जाओ, अरे साइन बजाओ।
1: और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, देखिए हम देख रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री खुद धार पहुंचे हुए और खास तौर पे पूजा अर्चना भी कर रहे हैं।
3: जी बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि भोजशाला जो है सरस्वती देवी का मंदिर है, तो उसके जरिए ये दिखाने की कोशिश है जनता के बीच में कि मध्य प्रदेश में जो है कानून का राज है। और इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जब भोजशाला पहुंचे हैं, दरअसल धार में उनका गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत थी और इसी के सिलसिले में वो धार जिले पहुंचे थे। लेकिन जाहिर सी बात है 2 हफ्ते पहले ही तो हाईकोर्ट ने इसे एक मंदिर माना है और उसके बाद जिस तरीके से ASI ने इस जगह पर हिंदुओं को साल के 12 महीने अनुमति दी है प्रवेश की और पूजा की, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का जो है यहाँ पे एक दौरा तय किया गया। और क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले से मंगलवार को ही जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो पूजा कर सकते थे और शुक्रवार को मुस्लिम यहाँ पे नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन अब साल के 365 दिन यहाँ पूजा हो सकती है। और इसी की खुशी मनाने भी और जनता को बधाई देने भी मुख्यमंत्री जो है भोजशाला में आज पहुंचे हैं। माँ वाग देवी की पूजा उन्होंने की है, वहाँ पे प्रतिमा के दर्शन किए। हालांकि प्रतीकात्मक प्रतिमा है क्योंकि असली प्रतिमा लंदन में मौजूद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवीश हमारे साथ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचकर वहां पे लगातार हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो व्यवस्था है उनको भी देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर NTA को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं, ये आपको बताते हैं। NTA को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कहा है कि दुख की बात है कि NTA ने सबक नहीं सीखा है, 2024 के बाद भी ये सबक नहीं सीखा गया। पेपर लीक को मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला आया था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद तीसरी बड़ी बात क्या कही है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट NTA को लेकर उनके काम करने के तरीके को नाराजा। साल 2024 में समिति का गठन हुआ था, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें कही हैं जो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। समिति की सिफारिशें भी मान ली गई है, यह भी कहा गया है। देखिए हम आपको कई महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका की सुनवाई के दौरान कहा। NTA बताए कि सिफारिशें कहां तक लागू की गई है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने NTA से पूछा है। देखिए NTA के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी दिखाई है। NTA बताए कि सिफारिश कहां तक लागू की गई है, यानी ये महत्वपूर्ण बातें जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने आज NTA से पूछी है। आइए आपको इसको लेकर एक बयान भी सुनाते हैं।
4: आज नीट UG की पिटिशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है NTA को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटिशन जो थी ये पेपर लीक जो नीट UG का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया।
5: हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि NTA दोबारा एग्जाम रिकंसिडर करा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसलिए लर्नेड SG को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, NTA को एंड CBI को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए।
1: चलिए अगली खबर बिहार से है। बिहार में हरे गमछे को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद तेजस्वी यादव तिलमिला गए। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं।
6: अब एक छोटा उदाहरण में पुलिस की चर्चा करके छोड़ दिया था, अभी मैं देखता हूं AI जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा।
7: सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। हमने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का, वो कब दीजिएगा? पेंशन कब दीजिएगा? बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। इस देश में जिस प्रकार से ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, बिहार में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं।
8: बिहार में अपराधियों की जाति को लेकर के जारी सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि हरे गमछे वाली सियासत ने जोर पकड़ ली है। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित AI समिट के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि AI से लैस कैमरे तुरंत किसी संदिग्ध की पहचान कर लेंगे, चाहे वो हरे गमछे वाले क्यों न हो। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, बिहार का खजाना खाली है और उन्हें मुख्यमंत्री के ऐसे बयान पर हंसी आ रही है। देखना होगा कि हरे गमछे को लेकर जारी सियासत कहां तक जोर पकड़ती है।
1: अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर अब जैसे जैसे बकरीद नजदीक आती जा रही है, यूपी के माहौल पर भी इसका असर देखा जाने लगा है। दरअसल बात यह हुई कि गाजियाबाद में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर दो नाबालिग हिंडन में मांस फेंकने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसके बाद लगातार बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
9: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
10: आपने देखी यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर योगी की सख्ती।
11: सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का?
10: आपने देखी बकरीद पर सख्ती को लेकर गर्माती यूपी की सियासत।
12: तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है।
10: यूपी में बकरीद पर इस बार सियासत की भट्टी धधक रही है। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी अपना इरादा पहले ही जता चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस साफ कहती है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यूपी सरकार की इस गाइडलाइंस का क्या मतलब है, ये आप योगी के फरमान से अच्छी तरह समझ सकते हैं।
11: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके।
10: तो बकरीद करीब है और यूपी के माहौल पर बकरीद का भरपूर असर है। इस वायरल वीडियो को देखिए, गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल मुआयने पर निकली है। इन दो नाबालिगों पर आरोप लगा रही है कि ये हिंडन में मीट की बोरी फेंकने जा रहे थे। मेयर ने पुलिस को भी बुलाया और इस चेतावनी के साथ गिरफ्तार करवाया कि इन्हें किसी हालत में छोड़ा ना जाए।
13: नहीं जा तू, अगर ये छोड़ देगा सस्पेंड करवा दूंगी।
10: यूपी में अगले साल चुनाव है। बकरीद जैसे मौके पर मजहबी माहौल बनाने की कोशिश हर साल होती है, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इस बार भी माहौल चढ़ा हुआ दिख रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: अभी आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार कुर्बानी को लेकर क्या क्या नियम है, किन किन नियमों का लगातार सख्ती से पालन किया जा रहा है। सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर है, निर्धारित स्थान पर ही धार्मिक आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको बता दे। और इसके अलावा अगर आप देखें कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर पाबंदी की गई है, ये आपको बता रहे हैं कि देखिए इसके अलावा एक और बड़ी बात कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लागू की गई है। सड़क जाम कर नमाज की अनुमति नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके अलावा यूपी में कुर्बानी किसकी होगी, गाय, बछड़ा या फिर बछिया, बैल, सांड, सब पर रोक लगा दी गई, यानी इन जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। ऊंट की कुर्बानी पर भी यूपी में प्रतिबंध है, इसके अलावा कई और राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध है। वन जीव संरक्षण अधिनियम के दायरे में भी आने वाले तमाम आप कह सकते जानवरों की कुर्बानी पर बैन है। गाय, बछड़ा, बछिया, बैल, सांड पर भी पूरी तरीके से बैन है। इसको लेकर ना सिर्फ यूपी बल्कि अब देश भर के अंदर राजनीति गर्माती जा रही है, उसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
14: कुर्बानी तो हो गई, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी एक कुर्बानी होगी।
15: बकरीद के नाम पर मजहबी राजनीति किस हद तक पहुंच जाती है, ये आप हुमायूं कबीर के इस बयान को सुनकर समझ सकते हैं। इस शख्स के नाम में ही कबीर है, सोच में मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार सख्ती करने पर आमादा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक किसी गाय या भैंस की तभी हत्या की जा सकती है जब उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो पशु शारीरिक रूप से अक्षम हो। इसके अलावा पशुओं को खुले में मारने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर अमल कर रही है। चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी वो कहते रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदुओं का ही वोट मिलता है। शुभेंदु सरकार का एक नया आदेश देखिए, जिसमें कहा गया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन 28 मई को छुट्टी रहेगी। पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी। जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही है, तीखे बयानों में भी तेजी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे की सलाह है कि मुसलमानों को भी ड्राई होली की तरह वर्चुअल बकरीद मनाना चाहिए।
16: मोड़े आमचे दिवा होली आले, होली का सण आला, दिवाली आले तर परिवार अनुपूरक होली मनवा, ड्राई होली मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा, कापू नका बकरी।
15: बकरीद को लेकर हलचल दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
17: बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
15: कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती है। अदालत से इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने की गुहार लगाई गई है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
1: और बकरीद पर हुए घमासान के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर पर। दरअसल महाराष्ट्र के एक मंत्री नीतीश राणे ने एक ऐसा बयान दिया जिसपे इसके बाद सियासी घमासान और तेज हो गया। नीतीश राणे ने कहा कि देखिए मदरसे जो हैं वो आतंकवाद के अड्डे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
16: मैं पहला दूसरा पसंद बोलते है जो मदरसा है ना, ये आतंकवादी के अड्डे है, ये काई शिक्षण देत नहीं, तना देते काई शिक्षण देत नहीं। किती असे केसेस घडले आहेत जिथे मदरसामध्ये आतंकवादी सापडले आहेत, हत्यार सापडले आहेत। एक तरी मदरसामध्ये चुकून कुठला तरी डॉक्टर इंजिनियर बनलेला दाखवा।
1: एक तरफ गर्मी का सितम, अब दूसरी तरफ महंगाई की बढ़ती मांग से या फिर महंगाई के बढ़ते आग से लगातार लोग परेशान हैं। दरअसल एक बार फिर से 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है।
15: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मुज संकट का ऐसा कहर है कि 2 महीने बाद भी बारूद याक की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
18: यहाँ को आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
19: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
20: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए, यही नहीं मालूम पड़ा ना न्यूज पे ना उस पे, कोई यही नहीं रहा।
15: हिंदुस्तान के आवाम को पता है ईरान की जंग के कारण तेल के दामों में आग लगी हुई है और सिर्फ 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए तक महंगा हो चुका है। लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं, यही आशंका कांग्रेस पार्टी भी जता रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने लिखा है, सरकारी तेल कंपनियों ने 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया, यहां तक कि चौथी तिमाही में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी तीनों बड़ी तेल कंपनियों का लाभ 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% अधिक था। जब ये तेल कंपनियां इतना भारी मुनाफा कमा रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना धीरे धीरे क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जहां OMCS भारी कमाई कर रही है, वहीं आम जनता भारी दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है, क्या यही सुशासन है?
21: अरे पहले तो ऐसा था कि 30-40 रुपए में अपना हो जाता था, लेकिन अब तो 120 रुपए का डलाएंगे तब हम लोग ड्यूटी तक पहुंच पाते हैं।
22: हमारे लिए महंगाई हो रही है, हमारा कुछ नहीं होता है, हम गरीब बंदे क्या करेंगे इसलिए, और मजबूरियां पड़वाना तो पड़ेगी, डलवाना तो पड़ता ही है, क्या करें अब गरीब बंदा क्या करेगा।
23: ईरान से जो आने में वो प्रॉब्लम हो रहा ना, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं रहेगा।
24: क्या कोई कर सकता है, ये युद्ध का मेन कारण है और बढ़ने से सभी छोटे से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी।
15: विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन अप्रैल और मई में 35,000 से 45,000 करोड़ का नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624.54 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18,000 से 22,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901.50 करोड़ मुनाफा मिला, लेकिन अप्रैल मई में 17,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। तेल कंपनियों के बही खाते में आए भूचाल का अनुमान लगाते हुए बाजार के जानकार पहले ही 20 से 25 रुपए तक दाम बढ़ने की आशंका जता रहे थे, इसमें अभी तक सिर्फ 7 से 8 रुपए तक ही बढ़ोतरी की गई है। आशंका है कि अगर हॉर्मुस की डील जल्द नहीं सुलझी और कच्चे तेल के दाम जंग से पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंचे, तो महंगाई के जोर का झटका धीरे धीरे लगते रह सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: चले न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
25: इन एसोसिएशन विद भारत।
26: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
27: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. more country roads.
2: Thank God I get to wake
27: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
4: अपनी इलेक्ट्रिक सवार
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
5: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
6: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
7: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
8: नहीं,
7: और म्यूचुअल फंड से
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट।
12: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: Like I said before, we better hold the sins.
15: बस 2000
16: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा,
17: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
18: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
2: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuban kesri.
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Summer cool cooler, hawa aisi chode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
7: Har chehra sirf ek naam nahi hota, uske piche hoti hai ek kahani. कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना न भूलें सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पर यूसीसी कानून को लेकर सरकार ने बिल को पेश कर दिया है। आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं जो असम से आ रही है, जहां पर यूसीसी कानून को लेकर काजारा के विधानसभा में यूसीसी कानून को लेकर सरकार ने बिल को पेश कर दिया है। असम में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया गया है। विधेयक में विधानसभा में विपक्ष ने किया है इसको लेकर जोरदार हंगामा, और विधायक जो है वो लगातार विपक्ष के विधायक इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया है। चलिए वक्त एक बार फिर से छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत।
4: Looking for your next unforgettable getaway? Discover Wheeling, West Virginia, where history meets adventure. Stroll through charming downtown streets, explore the iconic Wheeling Suspension Bridge, and catch a show at the Capitol Theater. From scenic riverfront views to family fun at Ogle Bay, why Wheeling? Why not? Plan your trip today at visitwheelingwv.com, your gateway to the friendly city.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Apni electric sawari, so kudo.
8: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: Like I said before, we better own the sins.
11: बस दो हजार
12: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
13: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।
14: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
15: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
16: आपने देखी यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर योगी की सख्ती।
17: सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।
16: आपने देखी बकरीद पर सख्ती को लेकर गर्माती यूपी की सियासत।
18: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर की है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पर कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है। क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है।
16: यूपी में बकरीद पर इस बार सियासत की भट्टी धधक रही है। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी अपना इरादा पहले ही जता चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस साफ कहती है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यूपी सरकार की इस गाइडलाइंस का क्या मतलब है, ये आप योगी के फरमान से अच्छी तरह समझ सकते हैं।
17: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके कर। लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही।
16: तो बकरीद करीब है और यूपी के माहौल पर बकरीद का भरपूर असर है। इस वायरल वीडियो को देखिए, गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल मुआयने पर निकली। इन दो नाबालिगों पर आरोप लगा रही है कि ये हिंडन में मीट की बोरी फेंकने जा रहे थे। मेयर ने पुलिस को भी बुलाया और इस चेतावनी के साथ गिरफ्तार करवाया कि इन्हें किसी हालत में छोड़ा ना जाए।
19: नहीं जा तू, अगर ये छोड़ देगा सस्पेंड करवा दूंगी। थे इसका नाम देख ले क्या है। बात सुनो, हेलो, खाना सस्पेंड करा दूंगी पूरा अगर गड़बड़ हो गई। मैं अभी कमिश्नर से बात कर रही हूँ, पुलिस कमिश्नर से। मास्क फेंकने बच्चों को भेजा है, भेजा किसने, कौन है मदरसे में, कौन है, बात सच सच बता दे बेटा। उस्ताद कौन है तेरा, उसने कह के भेजा भाई। तो बच्चे
20: कारिश्मीन साहब,
19: कारिश्मीन नंबर बताया, इसका नंबर होगा होगा, तुझे सब याद है। मास्क भेजने फेंकने भेजा है, इसका मतलब उसने जान के भेजा है।
16: बकरीद पर सरकार की सख्ती का असर दिखने भी लगा है। झांसी में कल पीस कमेटी की बैठक हुई जिसमें दोनों धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नमाज और कुर्बानी को लेकर सरकार का सख्त निर्देश बता दिया। यूपी में अगले साल चुनाव है, बकरीद जैसे मौके पर मजहबी माहौल बनाने की कोशिश हर साल होती है, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इस बार भी माहौल चढ़ा हुआ दिख रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

सीबीआई परिवार को मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखने की सलाह दी। परिजनों के वकील बोले जांच में सहयोग नहीं कर रही है सास। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा सिफारिशें लागू करने के लिए क्या किया, स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने को लेकर दायर हुई याचिका। देश को महंगाई की एक और किश्त का संकरंट, पेट्रोल की कीमतों का शतक। 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार हुआ इजाफा। प्रचंड गर्मी ने बढ़ाई देश के कई राज्यों में बिजली पानी की किल्लत। नौतपा शुरू होते ही दहकने लगे हैं यूपी के कई जिले, सीएम योगी का निर्देश। शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे मिले पावर सप्लाई। राजस्थान दिल्ली में भी जल संकट। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। लाइव इवेंट में राजदूत सर्जियो पर फोन पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, आई लव इंडिया, भारत कर सकता है भरोसा।

0: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और चलिए बात करेंगे गर्मी के सितम को लेकर। दरअसल गर्मी के सितम के साथ साथ कई और परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं, खासतौर पर बिजली का संकट और पानी की किल्लत से लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बात कर रहे हैं कि कैसे लगातार लोग तीन फ्रंट पर लगातार इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम बढ़ते गर्मी के सितम को लेकर करें। 47 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। इसके बाद जो बिजली की सप्लाई में कटौती की जा रही है या फिर जो इसका खामियाजा लोगों पर भुगतना पड़ रहा है, और इसके बाद पानी की किल्लत की भी एक बड़ी दिक्कत है जो लोगों को जिसका सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार लोग तीन फ्रंट पर अलग अलग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। महंगाई के बाद अब बात करें बढ़ती गर्मी का, और बढ़ती गर्मी के साथ साथ अगर आप बात करें कि बिजली पानी में हो रही कटौती को लेकर। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान है। अगर आप ग्राफिक्स देखें तो आप देखेंगे कि ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र की अगर बात करें 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये 24 मई का आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बांदा यूपी, जिसको सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं जिले के तौर पर देखा गया है, यूपी के 46.8 सेल्सियस इसका तापमान रहा। इसके बाद अगर बात करें श्रीगंगानगर राजस्थान की अगर आप बात करें तो यहां पर भी 40 डिग्री का तापमान यहां पर रहा। ये 24 मई के आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये तापमान के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगांव की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, जहां पर 45.8 डिग्री के करीब रहा। चंद्रपुर महाराष्ट्र की अगर बात करें 45.6 डिग्री यहां पर तापमान रहा। ये अलग अलग महाराष्ट्र की बात कर ले, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों की हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन से जिले जो हैं सबसे ज्यादा इसमें लोगों को आप कैसे जूझना पड़ रहा है। अब आपको इसको लेकर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
1: तपती धरती और पारे के टॉर्चर के बीच गुस्सा सरकार पर है। गुस्सा ऐसा कि विपक्ष ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है, तो आम लोग अफसरों से अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। आज जयपुर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। इन्होंने हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
2: राजधानी जयपुर में सैकड़ों घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा और उस बात को लेकर आंदोलनकारी जो हैं वो उग्र हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जल भवन का जो है वो घेराव कर लिया गया है जयपुर में, और यहां पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो जल भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो आंदोलन आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या यहाँ पर क्यों?
3: देखिए, भजन लाल शर्मा को भगवान माफ नहीं करेगा। जिस तरह बीजेपी सरकार आम जनता के साथ में अन्याय कर रही है ना, गंदा पानी सिवलेज का पानी पिला के, वो ऊपर वाला देख रहा है सब, बजरंगबली का आशीर्वाद से इनको ऐसा कर देगी हालत की जनता इनको मारेगी।
1: इस प्रदर्शन में गहलोत सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खचरियावास भी शामिल हुए, और उन्होंने सरकार पर लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया।
4: पूरे राजस्थान में लोग 50 रुपए में कैंपर, 500 रुपए में टैंकर खरीदने को मजबूर है। सरकार मस्त है, रात्रि चौपाल में पार्टियां कर रही है, प्यासे मर रहे हैं लोग। बाड़मेर में गायें पानी के बिना मर गई,
2: और जैसलमेर में जो सैकड़ों की संख्या में
4: जो लाशों के ढेर लगे हुए गायों के, पानी के अभाव में मर गई। कंटेंजेंसी प्लान बनता है, लोगों को पानी मिले, गायों को पानी मिले, जानवरों को पानी मिले। आपने प्लान नहीं बनाया, गायों की लाशों के ढेर आ गए। ये चाहते हैं आदमियों की लाशों के ढेर लगे, उससे पहले हम निकले हैं। राजधानी जयपुर में सिविल लाइन में लोग गंदा पानी पी रहे हैं।
1: अब आपको दिल्ली की हालत दिखाते हैं।
5: इधर राजधानी दिल्ली में इस 45 डिग्री की भीषण गर्मी में जगह जगह पानी की परेशानी नजर आ रही है। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी के 10 ब्लॉक में हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं बताती हैं कि पानी की किल्लत के कारण वो दफ्तर जाकर स्नान तक कर रही है।
6: बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, अब तो लग रहा कि हम लोगों को प्यासे ही मरना पड़ेगा। बताइए, सुबह से शाम तक ड्यूटी जाते हैं, वहाँ से आके पानी भरते हैं।
7: अच्छा, बताया जा रहा है कि ड्यूटी जहाँ पर आप लोग जाते हैं वहाँ पे जाके नहाते हैं?
8: साकेत में जाते हैं,
7: साकेत में ही नहा लेते हैं,
8: साकेत में नहाते हैं।
7: दिक्कत हो रही है,
8: बहुत परेशानी थी, चौथी मंजिल से पानी भरने आ रहे हैं हम।
9: चौथी मंजिल से तुम भी किराएदार हो, क्या करे, मकान मालिक तो किराया देगा, मकान मालिक खुद ही देगा तो किराएदार है।
7: कितने का पानी मिलता
10: है? कभी 100 रुपए की आती, कभी 120 की आती,
7: 20 लीटर वाली।
10: हाँ
7: 20 लीटर वाली पीने वाली।
10: हाँ पीने वाली।
7: तो काफी दिक्कत हो रही है?
10: बहुत दिक्कत होती है, 300-400 रुपए
7: आप लोग का गुजारा हो रहा है?
10: वो एक एक बोतल ले के गुजारा कर रहे हैं।
5: लोगों की शिकायत है कि यहां 250 से 300 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसी ही तस्वीर सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन में दिख रही है, जहां वार्ड नंबर 219 से लेकर जीटीबी एनक्लेव तक में कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग खाली बाल्टियां और बोतलें हाथ में लेकर जल बोर्ड कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद स्थानीय विधायक का साथ भी उन्हें मिला।
11: हमें पानी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। हमारे जनता फ्लैट में 2-2 करोड़ के मकान लेकर बैठे हैं, झुग्गियों वाली हालत हो रही है, मिडिल क्लास फैमिली है यहाँ पर, रोज 200-300 रुपए का पानी पीने के लिए खरीद रही है, बर्तन मांजने के लिए खरीद रही है, झाड़ू पोछे के लिए खरीद रही है, और ऊपर से जो कपड़े हमारे इकट्ठे हो रहे हैं वो नहीं धुल रहे।
12: 1800 की लाइन में कम से कम 15 दिन से पानी नहीं है, और 15 दिन से तो थोड़ा बहुत आ भी रहा था, लेकिन एक हफ्ते से तो एक बूंद भी नहीं टपक रहा पानी। 1800 की लाइन में 5 कैंपस इधर और 5 कैंपस इधर, और 1300 की लाइन में 2 लाइन ऐसी है कि जिनमें बिल्कुल ही पानी की बूंद नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे हम? मेरे घर में तो 2-2 बीमार भी पड़े हैं, एक 4 रुपए में मैं पानी लेने भी कहाँ जाऊँ।
5: दरअसल 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रही दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके कारण दिल्ली जल बोर्ड के 2 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वजीराबाद और चंद्रावल में है, वहाँ से पानी सप्लाई काफी कम हो गई है। इसके कारण मध्य उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की लगभग 2.5 करोड़ आबादी के लिए रोजाना 473 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड रोज 380 करोड़ लीटर पानी ही दे पाता है, क्योंकि दिल्ली को हरियाणा के मुनक नहर के जरिए 232 करोड़ लीटर, गंगा नदी से 96 करोड़ लीटर, भाखड़ा नांगल से 84 करोड़ लीटर और भूगर्भ जल करीब 51 करोड़ लीटर पानी ही रोज मिल पाता है। हालांकि दिल्ली सरकार कह चुकी है कि किसी इलाके में पानी की कमी नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होगी, लेकिन जमीनी हालात और घरों में पानी के खाली डब्बे सरकारी दावों को पंचर कर रही है। हालात ये है कि देवली के अलावा संगम विहार, दक्षिणपुरी, आम्बेडकर नगर, खानपुर, तिगड़ी, मदनगीर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, कालकाजी के कुछ हिस्से, पदरपुर बॉर्डर के आसपास की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के शहर इंदौर का हाल क्या है। मिनी मुंबई की पहचान बना चुका इंदौर भी गुस्से में है। शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। करोड़ों के विकास के दावे और स्मार्ट सिटी की चमक के बीच हालात ऐसे हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरकर अपने हिस्से के पानी के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में जल संकट ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चक्का जाम कर नगर निगम पर सवाल उठाए। लोगों का आरोप है कि कई दिनों से पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो रही, नलों में पानी नहीं आ रहा है, और जिन बोरवेलों के भरोसे लोग थे वो भी गर्मी में जवाब दे चुके हैं। अब हालात इतने खराब हैं कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी जुटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई अन्य इलाके भी भीषण पानी संकट से जूझ रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ देवांकुर, जयपुर आज तक।
0: तपती बढ़ती गर्मी और उसके ऊपर पानी की किल्लत, और इसी पानी की किल्लत को लेकर, परेशानी को लेकर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको दिखाते हैं।
13: देश की राजधानी का दक्षिण में कैसा इलाका है, हर साल पानी की दिक्कत होती है, गर्मियां आती हैं, पानी की किल्लत बढ़ जाती है। एक महीने से ज्यादा समय में यहां सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके घर में नल से पानी नहीं आया है। कुछ घरों में है तो बाकी तरह देखिए सारे डब्बे बाल्टी, पीने के पानी की दिक्कत है। कपड़े धोने नहाना तो दूर की बात है, जो लोग हैं काम पे जाने वाले हैं छुट्टी लेने पड़ते हैं, बच्चे बिना नहाए स्कूल जा रहे हैं, और इन सब में दरअसल स्थिति यह है कि पानी की सप्लाई अगर नल से नहीं हो रही तो कम से कम टैंकर आने चाहिए। लोगों की शिकायत यह है कि सुनवाई वहां भी नहीं है। टैंकर को फोन करते हैं तो जो टैंकर माफिया, जो प्राइवेट टैंकर ऑपरेट करते हैं, 1500 रुपए लेते हैं, लोग पैसा जमा करके आते हैं और तब जाकर के पानी की सप्लाई आती है। ये स्थिति देश की राजधानी की है। हम दक्षिणपुर के एक घर में हैं जहां दरअसल पानी की पाइपलाइनें भी डली हैं, तो कुछ घरों में पानी आ रहा है, लेकिन जब पानी आया है बहुत अजीब सी स्मेल आई, और स्मेल के बाद जब लोगों ने टोटी खोला है, ये देखिए टोटी से पानी भरा जा रहा बकेट में, ये पूरा का पूरा आपको लग रहा होगा ये क्रूड ऑयल भर रहे हैं हम, ये पानी है, सप्लाई का पानी है, आ रहा है, और पूरी तरह ये पानी काला है। ये नाले का पानी है, सीवर का पानी है, इसकी बदबू इतनी तेज है, अगर आप नाले वाले के आसपास से गुजरते हो कभी तो बिल्कुल उसी तरह की बदबू। ये देखिए पूरा बकेट भर चुका है, पानी की सप्लाई है और ये पानी पीने के बाद कोई बच तो नहीं सकता। मैनुअल को कहूंगा जरा आगे ला करके दिखाएं, तस्वीरें देखिए, ये पानी पूरी तरह से काला है। ये देश की राजधानी में पानी की सप्लाई की वो तस्वीरें हैं जो सरकार को देखना चाहिए। जनता को साफ पानी के नाम पर, पानी की सप्लाई के नाम पर क्या मिल रहा है? ये टैप खुला हुआ है, इसी टैप से नया पानी पाइपलाइन डली है और हमने ये ताजा पानी यहाँ पर भरा है। ये पूरे दक्षिण का जो इलाका है इसमें संगम विहार, देवलिया, अम्बेडकर नगर, यहाँ पानी की किल्लत बहुत ज्यादा, लेकिन जहां पाइपलाइन डली है वहां इस समय ये जहरीला गंदा नाले का पानी आ रहा है। और ये क्या, ये कोई पी सकता है भला ये पानी? इस पानी से आप नहा भी नहीं सकते।
0: और पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में क्या ताजा हालात हैं, आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट हमने आप तक दिखाई। अब कुछ हालात ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी है जहां पर बिजली की किल्लत से लोग परेशान है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में क्या ताजा हालात हैं, आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट हमने आप तक दिखाई। अब कुछ हालात ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी है जहां पर बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी

0: क्योंकि बिजली की समस्या है और बिजली इस वक्त इनके घरों में नहीं आ रही है। काफी ज्यादा कटिंग लखनऊ के इस क्षेत्र में बिजली की हो रही है। क्या समस्याएं हैं इन्हीं से समझते हैं। आप बताएं मुझे कितना आपके मोहल्ले में दिक्कत इस वक्त बिजली को लेकर है।
1: दिन भर लाइट गायब है, हर एक घंटे के बाद लाइट चली जाती है, रात तो समझ लिए कोई सो ही नहीं पा रहा है यहाँ।
0: ये है इनके तमाम महिलाएं भी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर हाथ में पंखे लिए हैं और यहाँ पर मौजूद नजर आ रही हैं। पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है आप लोगों को, घर के पंखे बंद हो गए हैं
2: जी गर्मी की वजह से। जब लाइट नहीं आती तो हम लोग हाथ के बने हुए पंखों से ही चला करके गर्मी से राहत लेते हैं। बड़ी दिक्कतें हैं, लाइट मतलब कोई टाइम ही नहीं, कब आ रही कब जा रही, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। टंकी भरी नहीं,
0: समरसेबल ही नहीं चल पाएगा,
2: समरसेबल भी नहीं चल पाता है। और सारा काम शहरी जीवन में सब बिजली पे ही डिपेंड है, चाहे वो मसाला पीसना हो, चाहे वो कपड़ा धुलना हो, चाहे वो पीने का पानी हो, नहाने का, कुछ भी हो, सब बिजली पे ही डिपेंड है।
0: इन्होंने बात कही, पहले मैं उस पर आ जाता हूँ, क्योंकि देखिए जब बिजली नहीं तो पानी नहीं, कई तरीके से। गर्मी में आपको ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज में है तो ठंडा ठंडा नहीं रहेगा। समरसेबल आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ये बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है अब आप इसका अंदाजा खुद लगाएं। अब ये नल है, ये नल की टोटियां हैं, लेकिन इनके जो पाइप्स हैं इनमें से पानी आपको आता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि समरसेबल बंद है और स्टोर्ड पानी इस घर का खत्म हो चुका है। तो पानी की किल्लत दोहरी मार है इन निवासियों के लिए जो यहाँ रह रही है या रह रहे हैं।
3: चलिए न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Summer's a gift, the gift of days that last a little longer, a brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event with specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid, all backed by a 10-year 100,000 mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires.
7: Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/2016. Dealer for warranty details.
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
9: with artists like James Bay,
10: come on, let it go.
8: Nora Jones,
11: the heart is drained.
8: Daniel Caesar. More as you sink into a good book or get lost in your work, just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: आगरा के ताजगंज में एडवेंचर गेम के दौरान हादसा हो गया जिसमें 16 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। आगरा के ताजगंज में एडवेंचर पार्क बना हुआ था जिस पर चिप लाइन लगी हुई थी और उसी चिप लाइन से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चिप लाइन पर आगे बढ़ते ही पुल का लॉक अचानक खुल गया और लड़का सीधे नीचे आ गिरा। चीख पुकार मच गई और वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। माता पिता बदहवास हालत में बेटे की ओर दौड़े लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुणाल ने दम तोड़ दिया था।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
6: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer.

0: brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event, with specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires.
1: Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/2060. Dealer for warranty details.
2: You've always believed in students, their potential, and what they can become. At WGU School of Education, we help current and aspiring educators become great teachers with bachelor's and master's degree programs that are flexible, accredited, and built for real life. With personal support and your pathway to the classroom in any of the 50 states, WGU is where your love for education meets a path to impact. Because teaching isn't just a career, it's a calling. Learn more at WGU.edu.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
6: In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
8: The Tailgate Top 20.
9: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
8: The Tailgate Top 20.
6: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
9: Try to keep up.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: बस दो हजार
11: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा
12: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा
13: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो
14: उत्तर भारत में आग बरस रही है मई मार डालने पर उतारू पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और आदमी तड़प रहा है ऐसी भीषण गर्मी में बिजली कटौती तबाही मचा देने वाली है इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की इस बैठक में सीएम ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाए गांवों में 18 घंटे बिजली दी जाए बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाए लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी सरकार भले ही बता रही हो कि वो बिजली कटौती के खिलाफ एक्शन में है मगर सच्चाई यही है कि कई शहरों और गांवों में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है और आदमी परेशान है इसीलिए विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है
15: देखिए 9 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब भी गर्मी बढ़ती जब भी ठंड बढ़ती जब भी बिजली की मांग बढ़ती है बिजली व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा जाती है चाहे लखनऊ राजधानी की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, बिजली कब आती कब जाती, कब जाती फिर आती नहीं।
14: सियासत अपनी जगह है, मगर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें बिजली कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
16: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
17: Presented by
5: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: त्रिशा केस की जांच जल्द शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम। परिवार को मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखने की सलाह दी। परिजनों के वकील बोले, जांच में सहयोग नहीं कर रही है सास। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र से मांगा जवाब। पूछा, सिफारिशें लागू करने के लिए क्या किया? स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने को लेकर दायर की गई है याचिका। देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट लगा, पेट्रोल की कीमतों का शतक। 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में भी 2.71 रुपए की बढ़ोतरी। 10 दिन में चौथी बार हुआ इजाफा। प्रचंड गर्मी ने बढ़ाई देश के कई राज्यों में बिजली पानी की किल्लत। नौतपा शुरू होते ही दहकने लगा है यूपी। सीएम योगी का निर्देश, शहर में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे मिले पावर सप्लाई। राजस्थान और दिल्ली में भी जल संकट। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लाइव इवेंट में राजदूत सर्जियो से फोन पर बोले ट्रंप, आई लव इंडिया, भारत कर सकता है भरोसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: त्रिशा केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें, मीडिया में बयान देने से बचे पक्षकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच प्रभावित ना हो इसलिए पीड़ित और आरोपी अपने बयान सीधे जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएं। त्रिशा केस में परिवार के वकील ने अदालत में ट्रायल को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की संभावना जताई। एसजी ने बताया कि गिरिबाला सिंह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई है और टीवी इंटरव्यू के जरिए मृतका को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। त्रिशा और दीपिका के बाद अब जयपुर की अनु के मौत का मामला भी आया सामने। सीसीटीवी में अनु को पति बुरी तरीके से पीटता हुआ नजर आ रहा है। तेल के दाम में फिर महंगाई का तड़का लग गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज चौथी बार बढ़े हैं। पेट्रोल 2.61 रुपए महंगा हो गया जबकि डीजल की कीमतों में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार तेल के दाम में बढ़ोतरी है। पेट्रोल के दामों में करीब पूरे देश में 100 रुपए पार कर लिए हैं। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल कीमतें 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हुई है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 और डीजल 99.82 रुपए प्रति लीटर हुआ। तेल के दामों में नए उछाल के बाद में मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे और डीजल की कीमतें 57 रुपए 83 प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में भी ईंधन महंगा हो गया। पेट्रोल 107.77 पैसे और डीजल 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला हुआ है। तेल के दाम में बढ़ाने के साथ ही ताकि चुपके चुपके आपकी जेब काटी जा सके। 10 दिनों में चौथी बार बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दामों पर। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया फ्यूल लूट का आरोप। खड़गे ने लिखा, जनता की जेब जलाकर कंपनियों को दे रहे हैं फायदा। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हम रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं ले रहे हैं, मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। ईंधन महंगा होने से खेती और मध्य वर्ग और गरीबों पर इसकी मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बीजेपी का किया है बचाव। विवेक ठाकुर बोले हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से बढ़े हैं दाम। 83 जहाज फंसे होने से वैश्विक दबाव बढ़ा है। विश्वभर में चल रहे ऊर्जा संकट के बीच जैसलमेर में ऑल इंडिया लिमिटेड की बड़ी सफलता हाथ लगी है। डांडेवाला फील्ड में मिला प्राकृतिक गैस का नया भंडार। गैस का अनुमान केंद्र सरकार ने जताई है खुशी। दिल्ली जिमखाना क्लब के परिसर खाली करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। दिल्ली याचिका पर कल होगी सुनवाई। दिल्ली जिमखाना क्लब मामला केंद्र सरकार और क्लब प्रशासन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। पटना में बिहार विधानमंडल के कर्मचारियों के लिए बस सेवा शुरू की गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने धार बहुशाला पहुंचे हैं। धार बहुशाला में सीएम मोहन यादव ने पूजा पाठ भी की। ताजमहल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले ये दुनिया के अजूबों में से एक है, कहा कि भारत का इतिहास बेहद समृद्ध है। मार्को रूबियो ने भारत की संस्कृति और इतिहास की सराहना की है, ताजमहल दौरे पर बताया सम्मान की बात। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान का पर भी बयान दिया, परमाणु मुद्दे पर समयबद्ध बातचीत का प्रस्ताव रखा है, कूटनीति को भी दिया प्राथमिकता। रूबियो बोले हैं कि ईरान से समझौते की कोशिश जारी है लेकिन नाकामी पर दूसरे विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आज तक से खास बातचीत में दौरान मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का करीबी सहयोगी बताया, कहा कि भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। बिहार में हरे गमछे को बर्जी की गई है सियासत, सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने बयान पलटवार किया, कहा कि सम्राट चौधरी के बयान पर हंसी आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एआई समिट के दौरान हरे गमछे वाले को लेकर कहा कि अगर हरे गमछे वाले को पकड़ना हो तो एआई कैमरे उसे तुरंत पकड़ लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का खजाना खाली हो रहा है, ये लोग हरा और नीला गमछे की बात कर रहे हैं, बिहार को बांटने का काम कर रहे हैं। खड़गे के आवास पर होगी अहम बैठक, सीएम सिद्धरमैया समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक किया है पेश, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के दक्षिणपुरी में भीषण जल संकट हो गया, एक महीने से नल सूखे हैं, लोग टैंकर और महंगे पानी पर निर्भर हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत से कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है, कई इलाकों में प्रदूषित सप्लाई को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। झालम में बैंक के एटीएम में अचानक लगी भीषण आग, एटीएम जलकर हुआ खाक, लाखों का नुकसान। हैदराबाद में 200 की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वीडियो पोस्ट करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में है आरोपी। शाहजहांपुर में खेत से लौट रही बच्ची पर आवारा कुत्तों ने झुंड ने हमला कर दिया, 11 साल की बच्ची के इलाज के लिए दौरान मौत हो गई। महाबलेश्वर में स्कॉर्पियो कार के करीब 700 से 800 फीट गहरी खाई में गिरी है, कार सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। महाबलेश्वर हादसे में रेस्क्यू में 2 शव बरामद किए गए, अंधेरे में और दुर्गम रास्तों के बीच शव निकालने की कोशिश तेज हुई है। कानपुर में मामूली विवाद में पिता पुत्र की रोड पर हत्या कर दी गई, भाई घायल हुए, 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सोनीपत में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई, लूट के इरादे से हत्या की गई आशंका है, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में 10 महीने के मासूम की हत्या कर सेफ्टी टैंक में फेंका गया बेटी होने से नाराज पिता गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के महिलाबाद में नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद ने पकड़ा है तूल, किला और शिव मंदिर को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस ने 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पासी किला विवाद पर तनाव बढ़ता जा रहा है, लखन आर्मी प्रमुख सूरज पासी ने पुलिस को कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए बड़े आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कई स्थानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है, जमात इस्लामी द्वारा संचालित शिक्षक संस्थानों और जामिया सिराज उल उलूम में भी छापेमारी हुई है। अलीगढ़ में महिला से लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए, कई वारदात को दे चुके थे अंजाम। साबरकांठा में एक मैदान में लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद पाए आग पर काबू। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर हुई दुर्घटना, बाल बाल बचे पर्यटक, हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। महसाना के मोतीपुरा में पास भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। केरला के वेद हॉस्पिटल में आईसीयू में एसी में लगी अचानक आग, 3 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। बगा में खाली ट्रॉली के नीचे मिला शराब का जखीरा, 302 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आगरा चौपाटी में बड़ा हादसा, चिप लाइन में गिरकर 16 साल के किशोर की मौत, सिस्टम की लापरवाही पर उठे सवाल। सोनीपत में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई, शख्स ने पति पत्नी और एक महिला को तेज धार हथियार से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। झांसी में सवारियों से भरी शताब्दी बस में लगी भीषण आग, मची चीख पुकार, बस चालक की सतर्कता से सवारियों के बस में से उतार कर उनकी जान बचाई। मधुबनी सदर अस्पताल में युवक को मृत घोषित किए जाने पर बवाल हुआ, परिजनों ने किया हंगामा और तोड़फोड़ भी की। राजस्थान से जैसलमेर से आ रही विचलित करने वाली तस्वीरें, जिसमें गौरक्षक संरक्षण और सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। जैसलमेर नगर परिषद में डंपिंग यार्ड में 500 से ज्यादा गायों के शव मिले हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। मामले पर जिला कलेक्ट्रेट से मांगी गई है रिपोर्ट। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी तूफान का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंचा है पारा। बदायूं में भीषण गर्मी और तेज धूप से के चलते बाजारों के पास सन्नाटा पसरा हुआ है, घर से निकलना हुआ है मुश्किल। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव किए गए, आंधी तूफान से मची है भारी तबाही, कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन पर बना तालाब शेड से झरने की तरह पानी गिरते हुआ नजर आया। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे हैं नैनीताल का रुख, सुहाने मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं टूरिस्ट। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया है, वाहनों की लगी है लंबी कतार। चमोली मौसम में बदली है करवट, हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। चमोली में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन ने यात्रियों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की है। श्रीनगर में कुछ हिस्सों में तेज बर्फबारी भी हुई है और बारिश भी हुई है, लाल चौक के सामने आई तस्वीरें। आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 131 में से 66 पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर वन पैरा हाई जंपर एथलीट हैं प्रवीण कुमार। पैरा ओलंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया ने बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तांगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए मिलेगा यह सम्मान। तांगाराम भील ने अलगोजा वादन को दी है ग्लोबल पहचान, फ्रांस स्पेन इटली जर्मनी और जापान सिंगापुर और अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म। राजस्थान रॉयल्स का बड़ा धमाका, मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में बनाई अपनी शानदार जगह। खेड़े स्टेडियम में राजस्थान का तूफान, 205 रन के विशाल लक्ष्य के आगे मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से बेबस नजर आई है। आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में तीसरी पूरी तरीके से साफ हो गई है, आरसीबी गुजरात हैदराबाद और राजस्थान ने टॉप चार में बनाई अपनी जगह। क्वालिफायर एक ने आरसीबी और गुजरात के बीच होगी महामुकाबले की टक्कर, एलिमिनेशन में राजस्थान और हैदराबाद आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जीत के साथ ही बड़ा खिताब की ओर अपना कदम, मुंबई इंडियंस की हार से टूटा यह सफर। वाराणसी में गंगा दशहरा पर गंगा किनारे सुबह से भक्तों का लगा है मेला, श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से पूजा पाठ भी किए। वाराणसी में गंगा दशहरा पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने मां गंगा का किया जलाभिषेक, विधि विधान से की पूजा अर्चना। हरिद्वार में भी गंगा दशहरे पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हापुड़ में भी गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई है डुबकी, भक्तों ने की मां गंगा की पूजा अर्चना। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, घाटों पर गोताखोर भी तैनात किए गए। धुरंधर 2 ने 66वें दिन भी दिखाया अपना दम, 1800 करोड़ के क्लब में चंद कदम दूर है क्वालिफाइड कलेक्शन में, 1799 करोड़ 61 लाख पहुंचा है। अक्षय की भूत बंगला की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी है, फिल्म ने 37 दिन के अंदर दुनिया भर में 289 करोड़ रुपए की कमाई की है। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी के 23वें दिन 1,37,00,000 रुपए की कमाई की है, कुल कलेक्शन 111 करोड़ 47 लाख के पास पहुंचा है। 17वें दिन भी माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 ने लगाई है उछाल, क्रॉस कलेक्शन 31 करोड़ 59 लाख पहुंचा है। पति पत्नी और वो में 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर दिखाई है मामूली बढ़त, फिल्म ने 40 करोड़ 27 लाख का कारोबार किया है। कॉमेडी एक्शन के बाद अक्षय कुमार नए जॉनर में दिखा सकते हैं अपना कदम, अब एलियन से भिड़ेंगे समूह में करेंगे हॉलीवुड स्टाइल हॉरर साइंस फिक्शन में एंट्री। रणबीर कपूर की रामायण पार्ट वन के बदल सकती है रिलीज डेट, दावा किया जा रहा है कि फिल्म इस साल दिवाली से एक हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को हो सकती है रिलीज। 40 फिल्मों के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, निर्माता निर्देशक करण जौहर भी हुए इमोशनल। अमीषा पटेल ने शेयर की ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार की शूटिंग के दौरान की तस्वीर, कहा कि बॉलीवुड में को स्टार के बीच ऐसे असली रिश्ते नहीं देखने को मिलते। अपने ऑरा वर्ल्ड टूर के में शानदार गीतों के जलवा बखेर रहे हैं सिंगर दलजीत सिंह दोसांझ। न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कॉन्सर्ट में उमड़े फैंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मुद्दे पर बातचीत करने वाले अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि जल्दबाजी में समझौता ना करें, अगर मैं ईरान के साथ समझौता करता हूं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर सहमत है कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते से में परमाणु खतरे को पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने कहा कि तेहरान के वार्ताकार देश की गरिमा का समझौता नहीं करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता ने सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन तेहरान के कानूनी अधिकार है। तुर्की के प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के हजारों कार्यकर्ता राजधानी अंकारा में सड़कों पर उतरे हैं। पार्टी दफ्तर में पुलिस घुसने से विरोध में संसद की ओर मार्च भी किया। पूर्वी कांगो के शहर खनन शहर मंगबालू में इबोला के स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया। कांगो में इबोला वायरस ने अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहले रविवार को 16 लाख तीर्थयात्री जुटे। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में बावजूद धार्मिक रस्मों को निभाते हुए नजर आए श्रद्धालु। ब्रिटेन के ज्यादातर इलाकों में चलचलाती गर्मी से लोग परेशान है। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पहुंचने की वजह से भारी भीषण गर्मी पड़ रही है। चीन के तीन अंतरिक्ष यात्री चियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। एक साल तक अंतरिक्ष स्टेशन से रहकर करेंगे अपना शोध। चीन की 2030 तक चंद्रमा पर इंसान उतारने की योजना है। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। पहले दौर में उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी जियोवानी को 5-7, 7-5 और 6-1 और 6-4 से दी है मात।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
0: और खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाते आप वहां पर, एक तो जून से पहले एक कुदरत का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा। उधर ऊपर से भीषण गर्मी और बिजली पानी की किल्लत ने, पेट्रोल डीजल की महंगाई ने उनकी जेब भी जला रखी है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े। आज से पेट्रोल के दाम 2.61 रुपए बढ़े, वहीं डीजल के दाम 2.71 रुपए बढ़ गए। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की अब तक शतक पार कर लिया है।

0: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मुज संकट का ऐसा कहर है कि 2 महीने बाद भी बारूद आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
1: यहाँ आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
2: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
3: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए, यही नहीं मालूम पड़ा ना न्यूज पे ना उस पे, यही नहीं रहा।
0: हिंदुस्तान के आवाम को पता है ईरान की जंग के कारण तेल के दामों में आग लगी हुई है, और सिर्फ 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए तक महंगा हो चुका है। लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं, यही आशंका कांग्रेस पार्टी भी जता रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने लिखा है, सरकारी तेल कंपनियों ने 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया, यहां तक कि चौथी तिमाही में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी तीनों बड़ी तेल कंपनियों का लाभ 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% अधिक था। जब ये तेल कंपनियां इतना भारी मुनाफा कमा रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना धीरे धीरे क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जहां OMCS भारी कमाई कर रही है, वहीं आम जनता भारी दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है, क्या यही सुशासन है?
4: अरे पहले तो ऐसा था कि 30-40 रुपए में अपना हो जाता था, लेकिन अब तो 120 रुपए का डलाएंगे तब हम लोग ड्यूटी तक पहुंच पाते हैं।
5: हमारे लिए महंगाई हो रही है, हमारा कुछ नहीं होता है, हम गरीब बंदे क्या करेंगे इसलिए, और मजबूरियां पड़वाना तो पड़ेगी, डलवाना तो पड़ता ही है, क्या करें अब गरीब बंदा क्या करेगा।
6: ईरान से जो आने में वो प्रॉब्लम हो रहा ना, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं रहेगा।
7: क्या कोई कर सकता है, ये युद्ध का मेन कारण है और बढ़ने से सभी छोटे से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी।
0: विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन अप्रैल और मई में 35,000 से 45,000 करोड़ का नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624.54 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18,000 से 22,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901.50 करोड़ मुनाफा मिला, लेकिन अप्रैल मई में 17,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। तेल कंपनियों के बही खाते में आए भूचाल का अनुमान लगाते हुए बाजार के जानकार पहले ही 20 से 25 रुपए तक दाम बढ़ने की आशंका जता रहे थे, इसमें अभी तक सिर्फ 7 से 8 रुपए तक ही बढ़ोतरी की गई है। आशंका है कि अगर हॉर्मुज की डील जल्द नहीं सुलझी और कच्चे तेल के दाम जंग से पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंचे, तो महंगाई के जोर का झटका धीरे धीरे लगते रह सकता है। आज तक ब्यूरो।
8: चले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: अपनी इलेक्ट्रिक सवार
14: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स.
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
17: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स.
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग.
18: Like I said before, we better own the sins.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बस दो हजार
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
8: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी
3: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Hey Jack, could you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. Chogan

जल्द शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल पहुंची सीबीआई परिवार को मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखने की सलाह। परिजनों के वकील बोले जांच में सहयोग नहीं कर रही सास। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। पूछा सिफारिशें लागू करने के लिए क्या किया। स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने को लेकर दायर हुई है याचिका। देश को महंगाई की एक और किश्त का करंट। पेट्रोल की कीमतों का शतक 2.61 रुपए प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी। 10 दिन में चौथी बार इजाफा। प्रचंड गर्मी ने बढ़ाई देश के कई राज्यों में बिजली पानी की किल्लत। नौतपा शुरू होते ही दहकने लगा यूपी। सीएम योगी का निर्देश शहरों में 24 घंटे गांवों को 18 घंटे मिले अनिवार्य पावर सप्लाई। राजस्थान दिल्ली में भी जल संकट। आज तक से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं ट्रंप। लाइव इवेंट में राजदूत सर्जियो फोन पर बोले ट्रंप आई लव इंडिया। भारत कर सकता है भरोसा।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन में बात दो अहम खबरों की जो इंसाफ और हक की लड़ाई से जुड़ी हैं। दोनों खबरें देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट से निकली हैं। पहली खबर नीट पेपर लीक की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी एजेंसी को भंग करने को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। वहीं दूसरी खबर त्विशा शर्मा केस से जुड़ी है, जिसकी मौत की उलझती गुत्थी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने केस की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। इन दोनों खबरों से जुड़ी हर रिपोर्ट विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दुखद है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन की ओर से याचिका लगाई है और मांग की गई है कि एनटीए को भंग किया जाए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एनटीए को फटकार लगाई गई है। कहा है कि पेपर लीक होना दुख की बात है और पहले जो गलतियां हुई हैं उनसे कोई सबक नहीं ली गई है, कुछ नहीं सीखा गया है। इस बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी को 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट मनीषा हवलदार को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दे चुकी है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा हवलदार को एनटीए ने बतौर एक्सपर्ट नियुक्त किया था, उस पर फिजिक्स का पेपर आउट करने का आरोप है।
1: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट करने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिसकी फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया और दोनों में समानता पाई गई। सीबीआई लगातार इस मामले में देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इसके आधार पर पेपर लीक करने वालों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है और इनमें से 2 सीधे एनटीए से जुड़ी थी। ये गिरफ्तारी एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ, ये दावा संसदीय समिति की बैठक में एनटीए अधिकारियों ने किया। संसद की एजुकेशन कमेटी ने एनटीए के आला अधिकारियों को तलब किया, पेपर लीक को लेकर सवाल जवाब किए तो यही उत्तर मिला। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ, यानी एनटीए ने माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ है। इस पर विपक्षी सांसदों ने तुरंत पलटकर सवाल किया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया, दोबारा एग्जाम की क्या जरूरत थी।
2: जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाए।
1: इस सवाल का एनटीए के डीजी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जब तक सीबीआई नहीं कहती कि पेपर लीक हुआ है तब तक वो इसे लीक नहीं मानेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल पीडीएफ से मामला शुरू हुआ और बाद में सीबीआई जांच में राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: नीट पेपर लीक का खुलासा राजस्थान से जरूर हुआ। राजस्थान पुलिस के एसओजी ने इसकी पड़ताल शुरू की, लेकिन अब सारे तार महाराष्ट्र से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पेपर लीक भी महाराष्ट्र से हुआ और इसे हरियाणा, राजस्थान, बिहार और दूसरे राज्यों तक पहुंचाने वाले भी महाराष्ट्र के ही थे। मनीषा हवलदार के अलावा कई आरोपी महाराष्ट्र से ही गिरफ्त में आ चुके हैं।
1: पुणे के पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार, पुणे की मनीषा मंधारे गिरफ्तार, पुणे की मनीषा वाघ मारे गिरफ्तार, नासिक का शुभम खैरनार गिरफ्तार, अहिल्यानगर का धनंजय लोखंडे गिरफ्तार। नीट पेपर लीक का खुलासा भले ही राजस्थान से हुआ हो, लेकिन इसके तार महाराष्ट्र से गहरे जुड़े हैं। इस लीक कांड का किनपिंग कुलकर्णी महाराष्ट्र का है। छात्रों तक पेपर पहुंचाने वाले आरोपी महाराष्ट्र के हैं और पेपर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने वाले चेहरे महाराष्ट्र के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस केस की तह तक तहकीकात की बात कही थी और अब सीबीआई इस लीक की एक एक जड़ खंगाल रही है।
3: इस सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए।
1: इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। दोनों पेशे से शिक्षक रहे, दोनों नीट के पेपर तैयार करने वाली प्रक्रिया में सीधे जुड़े रहे, लेकिन अब इस केस में आरोपी हैं। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए और नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही आरोप पीवी कुलकर्णी पर भी है कि उन्होंने मनीषा बाघमारे के साथ मिलकर परीक्षा से पहले छात्रों से मॉक सेशन कराए।
4: कुछ दिन पहले 3 मई को ये परीक्षा हुई है, परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पीवी कुलकर्णी ने एक खास कोचिंग रखी थी, एक खास क्लास रखी थी मनीषा बाघमारे के साथ मिलकर, जहां पर जो बच्चे उनके कोचिंग में आ रहे थे उन्हें खास सवाल दिए, उनके जवाब दिए और उन्हीं सवालों की तैयारी करवाई। जब उन सवालों की तैयारी करवाई और बाद में जब परीक्षा हुई तो ये पता चला कि यही सवाल, जो सवाल कुलकर्णी पीवी कुलकर्णी ने बताए थे, वही सवाल नीट की परीक्षा में भी आए। इसीलिए पेपर लीक का मामला सामने आया है। पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। आपको
1: अब जरा आपको देश के सबसे बड़े पेपर लीक कांड की कड़ियां बताते हैं। ये बताते हैं कि इस पेपर लीक की पूरी कहानी में किसका क्या किरदार रहा। पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री का पेपर सेट किया, मनीषा मंधारे ने बायोलॉजी का पेपर सेट किया, दोनों ने अपने अपने छात्रों से उन्हीं सवालों के मॉक टेस्ट कराए। कुलकर्णी और मनीषा दोनों के जरिए सवाल मनीषा वाघमारे तक पहुंचे। वाघमारे ने ही दोनों प्रोफेसरों के साथ मिलकर छात्रों की परीक्षा की तैयारी करवाई। मनीषा वाघमारे से पेपर धनंजय लोखंडे और फिर शुभम खैरनार तक पहुंचता है। शुभम खैरनार से पेपर गुरुग्राम में यश यादव और राजस्थान के बिवाल परिवार तक पहुंचता है।
4: पूरी सर्कल समझिए, पूरा ग्रिड समझिए। पीवी कुलकर्णी पेपर सेट करते हैं, मनीषा वाघमारे के टच में आते हैं, वो मनीषा वाघमारे को सवाल बताते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सवाल बताते हैं। मनीषा वाघमारे स्टूडेंट्स जमा कर लाती है। मनीषा वाघमारे धनंजय लोखंडे को वो पेपर देती है, धनंजय लोखंडे शुभम खैरनार को वो पेपर देता है, शुभम खैरनार यश यादव को गुरुग्राम में पेपर देता है और यश यादव से राजस्थान जयपुर का बिवल परिवार ये पेपर लेता है। और उसके बाद बिवल परिवार की जांच जब शुरू होती है तब नीट पेपर लीक का पूरा खुलासा हुआ। इसीलिए किंग पिन पीवी कुलकर्णी को कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष धामापुरकर और लातूर से अनिकेत जाधव के साथ दिव्येश सिंह, लातूर आज तक। पूरी सर्कल समझिए, पूरा ग्रिड समझिए। पीवी कुलकर्णी पेपर सेट करते हैं, मनीषा वाघमारे के टच में आते हैं, वो मनीषा वाघमारे को सवाल बताते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सवाल बताते हैं। मनीषा वाघमारे स्टूडेंट्स जमा कर लाती है। मनीषा वाघमारे धनंजय लोखंडे को वो पेपर देती है, धनंजय लोखंडे शुभम खैरनार को वो पेपर देता है, शुभम खैरनार।
0: मध्य प्रदेश के चर्चित त्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज अहम फैसला दिया है। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले खबर गुलमर्ग से, जहां केबल कार के खराब हो जाने से कई पर्यटक फंस गए। जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर केबल कार तकनीकी खराबी के बाद रुक गया था, लेकिन खराबी के तुरंत बाद ही फंसे लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। गुलमर्ग में जो स्कीइंग की तरफ जाते हुए रास्ता है, वहां पर कई लोग इस केबल कार से होकर जाते हैं। सेना की भी मौजूदगी रहती है, लिहाजा बहुत तेजी से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण हो गया। लेकिन देखिए कि खराब केबल कार किस तरीके से फंसा है, और आम पर्यटक जो वहां पर छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, उन सबको एक एक करके लेकिन बड़ी सावधानी से और जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि इस पूरे जो ये जो पूरी राइड है, उसको समय समय पर मेंटेनेंस उसकी होती है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर ये तकनीकी खराबी किस कारण से आई है और जल्दी से जल्दी इसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये पूरा इलाका इस केबल कार सर्विस पर निर्भर करता है। अब मध्य प्रदेश के त्विशा शर्मा मामले की बात हम करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, अहम सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए, सीबीआई को जल्द मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने आरोपी और पीड़ित परिवार से मीडिया में या सार्वजनिक मंचों पर बयान न देने की अपील की है। अदालत में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि गिरिबाला सिंह अपने रसूख का इस्तेमाल कर जांच में सहयोग नहीं कर रही है।
5: भोपाल की त्विशा शर्मा की मौत की जांच जारी है, कानूनी लड़ाई चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब त्विशा के परिवार को जल्द इंसाफ की उम्मीद जगी है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई फौरन इस केस को अपने हाथ में ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो मीडिया से बात न करें और जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें।
6: हम पुराने बिंदुओं को कनेक्ट करें तो त्विशा शर्मा ने पहले भी अपने घर वालों को बताया था कि वो मुश्किल में है और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जब अपराध का एंगल है तो उसकी जांच भी उसी तरह से होनी चाहिए, और एक स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो सच्चाई जल्दी और सटीक ढंग से सामने आने की उम्मीद लगती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि एक तो इंटरव्यू ना चलाएं, दूसरा कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, जिसके सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही बता दिया था कि सरकार ने मन बना लिया है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, और अब इस पर मुहर भी लग गई।
5: सुप्रीम कोर्ट ने त्विशा के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, साथ ही कहा न्यायपालिका के दखल के आरोपों के चलते शीर्ष अदालत को इस केस में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। एक दिन पहले ही त्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, और उसके बाद पुलिस की टीम फिर से गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गई है। पुलिस टीम ने उस जगह का मुआयना किया जहां त्विशा शर्मा का फंदे से लटका शव मिला था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने त्विशा की सास गिरिबाला पर कई गंभीर आरोप लगाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह कई नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई। केस में बहुत मुश्किल से गिरिबाला सिंह का बयान दर्ज कराया जा सका। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह का फोन जब्त करने में भी काफी दिक्कत हुई। बड़ा आरोप लगाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह ने अपने बयानों से त्विशा की छवि को खराब किया।
6: मां की हालत ठीक नहीं होने की वजह से वहां पर उसके व्यवहार और बर्ताव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके पीछे और क्या वजहें रही हैं, ये तो गिरिबाला सिंह ही बताएंगी, और पुलिस जांच एजेंसी वहां से उसकी कॉपी कैसे बरामद करती है सीसीटीवी फुटेज की, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
5: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ सीबीआई की टीम केस की जांच के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है। जांच एजेंसी एक एक सबूतों की पड़ताल करेगी। त्विशा के परिवार के आरोपों का सच जल्द ही सामने लाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस पूरे मामले में त्विशा की सास भी सवालों के घेरे में है, जिस पर लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने भी त्विशा की सास गिरिबाला पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या त्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा ऐसा कोई राज है जिसे गिरिबाला सिंह छुपा रही है।
7: गिरीवाला सिंह, त्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरीवाला सिंह भले ही कुछ न बोले लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
8: स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
7: जिस ब्यूटी पार्लर में त्विशा गई थी वहाँ त्विशा की सास को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। 12 मई को त्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसके अगले दिन यानी 13 मई को सुबह 11:30 बजे त्विशा की सास गिरीवाला सिंह का फोन आया। किरण का दावा है कि इस दौरान गिरीवाला ने बार बार पूछा क्या त्विशा पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई, कितने बजे गई और पेमेंट कैसे किया गया।
9: कि जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा?
10: मुझे पता चला जब गिरीवाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि त्विशा कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उनने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि त्विशा कब आई और कब गई।
9: ये कब कॉल आया था आपके पास?
10: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है।
9: 13
10: फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम त्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी, इतने बजे गई थी।
7: इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले का अहम सबूत सीसीटीवी त्विशा की सास ले गए लेकिन पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर तक नहीं पहुंच सकी।
10: पुलिस तो नहीं आई,
9: अभी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं,
10: नहीं कोई नहीं आया।
9: आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा फुटेज के अलावा?
10: नहीं, कुछ भी नहीं।
7: 11 दिन पहले भोपाल में हुई त्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है।
8: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए?
11: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
12: पीड़ित परिवार पूछिए, पीड़ित परिवार कहता है
11: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। साहब आप जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर
8: स्वागत है सीबीआई जांच का।
7: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 11 दिन बाद भी पता न लगा सकी उससे भी सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ।

0: हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिबाला जी को। और ये सारी चीजें कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
1: अब पिशा का ससुराल सवालों के घेरे में, जिसमें सास की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: खबरें असरदार में आज के लिए इतना ही। आपसे अब रात 8 बजे खबरदार शो में मुलाकात होगी, जहां आज आपको हम बताएंगे कि पेट्रोल 100 रुपए के पार होने से आपकी रोज की जिंदगी पर महंगाई का कितना असर पड़ने जा रहा है। देश में लाखों छात्रों की मेहनत पर फिर मजाक हो रहा है, जहां CBSE ने इस बार 12वीं के छात्रों की कॉपी जांचने का ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसके बाद छात्रों का भविष्य या तो धुंधला दिख रहा है या फिर पता चल रहा है कि उनकी जगह किसी और की कॉपी जांचकर नंबर आधा अधूरा दे दिया गया। इसके बाद बंगाल में चलते बुलडोजर से खबरदार करेंगे, जहां अब जाकर यह सामने आया है कि ममता राज में सरकारी जमीन पर कब्जा करके तृणमूल कांग्रेस वाले दफ्तर बनवाते रहे। साथ ही आज आपको गर्मी की छुट्टी में मौत के एडवेंचर पार्क से खबरदार करेंगे, जहां बेटे को घुमाने लाए पिता की आंखों के सामने जिप लाइन से गिरकर उनके बेटे की जान चली गई। तो मिलते हैं रात 8 बजे। आप तब तक देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
6: And
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी बैंकों में तेहरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका समझौते के शुरुआती चरण में ही ईरान की कुछ ब्लॉक की गई संपत्तियों को जारी करने पर सहमत नहीं होता, तब तक किसी अंतिम समझौते की संभावना नहीं है। आरोप ये भी है कि अमेरिका बातचीत के दौरान लगातार अपना रुख बदल रहा है और मुख्य शर्तों में अड़चन पैदा कर रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, अमेरिका ने बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा है कि वह समझौते में जल्दबाजी ना करें। होर्मुज को लेकर भी ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सुरक्षा सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि होर्मुज प्रबंधन ईरान का कानूनी अधिकार है।

0: भोपाल की ट्यूषा शर्मा की मौत की जांच जारी है, कानूनी लड़ाई चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब ट्यूषा के परिवार को जल्द इंसाफ की उम्मीद जगी है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई फौरन इस केस को अपने हाथ में ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो मीडिया से बात न करें और जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें।
1: हम पुराने बिंदुओं को कनेक्ट करें तो ट्यूषा शर्मा ने पहले भी अपने घर वालों को बताया था कि वो मुश्किल में है और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जब अपराध का एंगल है तो उसकी जांच भी उसी तरह से होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो सच्चाई जल्दी और सटीक ढंग से सामने आने की उम्मीद लगती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि एक तो इंटरव्यू ना चलाएं, दूसरा कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, जिसके सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही बता दिया था कि सरकार ने मन बना लिया है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और अब इस पर मुहर भी लग गई।
0: सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूषा के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, साथ ही कहा न्यायपालिका के दखल के आरोपों के चलते शीर्ष अदालत को इस केस में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। एक दिन पहले ही ट्यूषा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद पुलिस की टीम फिर से गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गई है। पुलिस टीम ने उस जगह का मुआयना किया जहां ट्यूषा शर्मा का फंदे से लटका शव मिला था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्यूषा की सास गिरिबाला पर कई गंभीर आरोप लगाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह कई नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई। केस में बहुत मुश्किल से गिरिबाला सिंह का बयान दर्ज कराया जा सका। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह का फोन जब्त करने में भी काफी दिक्कत हुई। बड़ा आरोप लगाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह ने अपने बयानों से ट्यूषा की छवि को खराब किया।
1: माँ की हालत ठीक नहीं होने की वजह से वहाँ पर उसके व्यवहार और बर्ताव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके पीछे और क्या वजहें रही हैं ये तो गिरिबाला सिंह ही बताएंगी और पुलिस जांच एजेंसी वहां से उसकी कॉपी कैसे बरामद करती है सीसीटीवी फुटेज की, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
0: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ सीबीआई की टीम केस की जांच के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है। जांच एजेंसी एक एक सबूतों की पड़ताल करेगी। ट्यूषा के परिवार के आरोपों का सच जल्द ही सामने लाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

61 पैसे प्रति लीटर महंगा डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी, 10 दिन में चौथी बार इजाफा। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। पूछा, सिफारिशें लागू करने के लिए क्या किया, स्वतंत्र एजेंसी से परीक्षा कराने को लेकर दायर हुई है याचिका। त्रिशा केस की जांच जल्द शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम। परिवार को मीडिया से बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखने की सलाह। परिजनों के वकील बोले, जांच में सहयोग नहीं कर रही है सास। प्रचंड गर्मी ने बढ़ाई देश के कई राज्यों में बिजली पानी की किल्लत। नौतपा शुरू होने से दहकने लगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, शहरों में 24 घंटे और गांवों को 18 घंटे मिले पावर सप्लाई। राजस्थान दिल्ली में भी जल संकट। गुलमर्ग में केबल कार में खराबी से हड़कंप।

0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari. So
2: चौबीस घंटे में पलटी बाजी, खतरे में दुनिया की सबसे बड़ी महाडील। शनिवार को जो महाडील पक्की थी वो रविवार को अचानक अटकी। ट्रंप का यू टर्न, कहा समझौते की कोई जल्दबाजी नहीं। नेतन्याहू का अल्टीमेटम, परमाणु ठिकाने नष्ट होने तक जंग जारी रहेगी। हुर्मुज जल डब्लू मध्य पर तनाव, टली नहीं अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी। सीक्रेट बंकर में कैद हुए सुप्रीम लीडर, ईरान में मची खलबली। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा, मौत के खौफ में जी रहे खामेनेई। कुरियर के चक्रव्यूह में फंसे संदेश, बातचीत में लग रहा भारी वक्त। सीज फायर की उम्मीदों के बीच मिसाइलें फिर से दागने की तैयारी। कूटनीति के फेल होते ही मिडिल ईस्ट पर फिर मंडराया महायुद्ध का साया। सीज फायर की उम्मीदों के बीच मिसाइलें फिर से दागने की तैयारी। कूटनीति के फेल होते ही मिडिल ईस्ट पर फिर मंडराया महायुद्ध का साया।

0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिशें, उन पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। 24 घंटे में कूटनीति की बाजी फिर पलट गई है। अमेरिका ईरान जो डील थी वो शनिवार को लगभग पक्की मानी जा रही थी, लेकिन रविवार को उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मौत के खौफ से दिन का उजाला भी नहीं देख रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई। वो किसी अज्ञात बंकर में बंद हैं या कैद हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट कॉल से मिडिल ईस्ट की राजनीति में भी इस समय जबरदस्त हड़कंप मच गया है। इसराइल को मान्यता देने की बात पर फोन लाइन पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सऊदी अरब ने स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की बड़ी शर्त रखकर ट्रंप को दो टूक जवाब भी दे दिया है। और इन सब के बीच अमेरिका का जो शांति प्रस्ताव कुरियर और चिट्ठियों के चक्रव्यूह में अब फंस गया है, क्योंकि मंत्रियों को भी नहीं पता कि समय मुज्तबा खमेनेई अगर है तो कहां है, किस बंकर में है, कहां छिपे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन से तीन सबसे बड़े विवाद हैं जिनके चलते ये जो ऐतिहासिक महाडील है, ये आखिरी वक्त, जिसे अंग्रेजी में 11th आर कहा जाता है, 11th आर में आकर ये अटक गई है। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो महाडील है ये अटक कहां गई है, ये फंस कहां गई है। दरअसल अगर आपको इस महाडील के बारे में बताया जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद जो है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। और ये मतभेद मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मुद्दा नंबर वन, और अमेरिका की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का है उसका क्या होगा। अमेरिका का रुख यह है कि जो यूरेनियम का संवर्धन है यह पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ईरान का कहना है यह तो हमारा सॉवरन राइट है, संप्रभुता के प्रश्न से जोड़कर वो इसे संप्रभु अधिकार के रूप में देखते हैं। वो कह रहे हैं कि संवर्धित यूरेनियम हम रखेंगे, संवर्धित यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अमेरिका को सौंप दिया जाए, यह अमेरिका का पक्ष है। लेकिन ईरान कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पर वो अपना 400 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा। जो दूसरा बड़ा विवाद है परमाणु कार्यक्रम के बाद वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य का। दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका पूरी तरह से मुक्त आवाजाही, फ्री मूवमेंट चाहता है, अनइम्पीडेड मूवमेंट चाहता है। वहीं ईरान कह रहा है कि संचालन और नियंत्रण में उसका अधिकार बना रहेगा उत्तर की तरफ और ओमान का बना रहेगा दक्षिण की तरफ। दुश्मन देशों के जहाजों पर अब पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा और टोल लगाने का अधिकार ईरान के पास होगा। यह अमेरिका मान नहीं रहा है। अब मामला यहां भी फंस गया है। जो तीसरा मुद्दा है वो प्रतिबंध यानी सैंक्शंस और फ्रीज संपत्ति, यानी ईरान का वो पैसा जो दशकों से विदेशी बैंकों में बंद पड़ा है। ईरान चाहता है कि उस पर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध पिछले 40-45 वर्षों में लगे थे वो सब एक ही बार हटा दिए जाए। विदेशों में जो इसके अरबों डॉलर अलग अलग बैंकों में बंद है वो सारी संपत्ति रिलीज कर दी जाए और जो युद्ध में उसका नुकसान हुआ है उसका उसे मुआवजा मिलाया जाए। 27 बिलियन डॉलर की वो बात कह रहा है और ये केवल प्रारंभिक पैसा है। उसका ये मानना है कि उसका 100 से ज्यादा बिलियन डॉलर अलग अलग बैंकों में है, अभी तो केवल वो शुरुआती पैसा मांग रहा है। अमेरिका कह रहा है जब तक परमाणु जो संवर्धित यूरेनियम है वो नहीं वापस होता या वो अमेरिका के पास नहीं जाता ये पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद ही राहत मिलेगी। यानी दोस्तों देशों के बीच जो संबंध में भरोसे की बात है वो बिल्कुल नहीं है। एक और बात, अमेरिका का रुख यह है कि जो प्रॉक्सी संगठन है यानी हमास है, हिजबुल्ला है, हूती विद्रोही है, उनको समर्थन पूरी तरह से बंद किया जाए। ईरान का कहना है कि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद हो, नुकसान का हर्जाना मिले और हिजबुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई इसके बाद इसराइल न करे। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यह विवाद अभी भी बना हुआ है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक के बाद एक सोशल मीडिया पर उन्होंने दो पोस्ट किए और अमेरिका और ईरान की महाडील के सस्पेंस को इस समय उन्होंने चरम पर पहुंचा दिया है। शनिवार को बेहद आक्रामक और सकारात्मक रुख दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते यानी सहमति पत्र का एक बड़ा हिस्सा लगभग तय हो चुका है, जिसके तहत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन ठीक अगले ही दिन यानी रविवार को डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आए। उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा डील फाइल करने में कोई जल्दबाजी ना हो क्योंकि वक्त अमेरिका के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक समझौते पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती तब तक ईरान की समुद्री नाकेबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि यह नई डील ओबामा के दौर की नाकामी से बिल्कुल उलट होगी। ईरान को कोई नकद पैसा नहीं दिया जाएगा, उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जो सभी शर्तें हैं उन्हें सख्ती से न केवल जोड़ा जा रहा है बल्कि लागू भी किया जाएगा। और इस वक्त अमेरिका और ईरान डील को लेकर सबसे बड़ी और बेहद सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय खबर सीधे ईरान से आ रही है। अमेरिका के साथ होने वाली महाडील के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नियंत्रण वाले सबसे प्रमुख जो अखबार है वहां का कायहान, उसने अपने फ्रंट पेज पर बेहद आक्रामक तेवर दिखाए हैं। अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए अखबार के मुख्य हेडलाइन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई भी शांति समझौता केवल और केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई की सभी शर्तों का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। अखबार ने युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान की लक्ष्मण रेखा यानी रेड लाइन को साफ तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है, जिसके तहत ईरान ने अपनी चार प्रमुख शर्तें रखी। ईरान की शर्तें क्या है? पहली शर्त, परमाणु क्षेत्र में ईरान की तरक्की और उपलब्धियों की पूरी सुरक्षा हो। दूसरी शर्त, युद्ध का जो नुकसान हुआ है उसके लिए ईरान को हर्जाना और मुआवजा दोनों मिले। तीसरी शर्त, सबसे बड़ी शर्त है, मिडिल ईस्ट क्षेत्र से अमेरिकी सेना उसकी मुकम्मल वापसी हो जाए, यानी ना सऊदी अरेबिया में, ना कुवैत में, ना कतर में, ना संयुक्त अरब अमीरात में, किसी मध्य पूर्व के देश में अमेरिकी बेसिस नहीं होने चाहिए। चौथी शर्त, सभी मोर्चों पर एक साथ पूर्ण युद्ध विराम लागू किया जाए, यानी हिजबुल्ला पर भी कोई अटैक नहीं होगा। इस अखबार ने एक बहुत तीखी हेडलाइन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला करते हुए कहा है ईरान के खिलाफ ट्रंप का यह पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के आत्मसमर्पण के साथ खत्म होगा। इसके साथ ही अखबार ने जंग के दौरान ईरान के सैन्य प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की है। तारीफ कर में यह लिखा है कि ईरान की सेना की युद्ध नीति की दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में बात हो रही है और इसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं देश के भीतर गद्दारों को सख्त संदेश देते हुए अखबार ने फ्रंट पेज की टॉप राइट हेडलाइन में ऐलान किया है कि युद्ध के दौरान ईरान के रक्षा उद्योग केंद्रों की खुफिया जानकारी दुश्मन देश को भेजने वाले एक जासूस को फांसी की सजा दी जा चुकी है। ईरान के इस बेहद सख्त और कड़े रुख ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति डील पर बहुत बड़ा सस्पेंस और संकट दोनों खड़े कर दिए हैं। और इस बीच भारत के दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ईरान को लेकर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ईरान से अच्छी खबर आने की उम्मीद तो थी लेकिन वो उम्मीद आज सवेरे टूट गई।
1: Still a work in progress. As I said, you know, we thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally, every country that we've walked through it. Understands it's very not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महाडील को लेकर जो कड़वाहट है दोनों देशों के बीच ये बढ़ती जा रही है। ईरान के प्रभावशाली नेता और वहां की जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हैं इब्राहिम रजाई, उन्होंने सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद तल्ख अंदाज में सीधी चेतावनी भी दे दी है। रजाई ने साफ लफ्जों में कहा है कि सैन्य युद्ध के दौरान ईरान की रणनीति आंख के बदले आंख की थी, यानी एन आई फॉर एन आई, और अब इस राजनयिक युद्ध में भी उसकी नीति एक्शन का बदला एक्शन होने वाली है। ईरान के नेता दुनिया से अपील कर रहे हैं कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खोखले दावों और झांसों पर भरोसा ना करे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया लामबंद है। उनके मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है वो किसी भी तरह के दबाव में, ताकत में या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए रजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका वाकई समझौता करना चाहता है तो उसे बराबरी पर आकर सम्मानपूर्वक ईरान से बातचीत करनी होगी, और अगर अमेरिका को अपने देश में $6 प्रति गैलन का महंगा पेट्रोल देखना है तो ट्रंप अपने इसी अड़ियल रुख और गीदड़ भपकियों पर अड़े रह सकते हैं, खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। ईरान के नेता के बेहद आक्रामक बयान ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी डील के लिए घुटनों के बल आगे बढ़ने को तैयार नहीं है जो अमेरिका की शर्तों पर हो। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी झुकने को तैयार नहीं है, जिससे अब इस महाडील पर एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। और ईरान से डील को लेकर चल रही अमेरिका की बातचीत के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बहुत बड़ा और बहुत सख्त बयान जारी किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है बिल्कुल साफ है और एक जैसी है। दोनों ही किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री ने यह खुलासा भी किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर इसराइल की सुरक्षा और दुश्मनों के खिलाफ इसराइल की जो आत्मरक्षा की नीति है और आत्मरक्षा के इसराइल के अधिकार को पूरी तरह से उसका समर्थन भी किया है और उसे दोहराया भी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले संभावित समझौते की दिशा तय करते हुए साफ लफ्जों में कहा है कि इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट किया जाए और वहां मौजूद सभी संवर्धित परमाणु सामग्री को ईरान की धरती से बाहर निकाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप और मेरे बीच बातचीत जो हुई है इस पर पूर्ण सहमति है, क्योंकि ईरान के साथ होने वाले किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को जड़ से खत्म करना अनिवार्य होगा। इसराइल के बेहद कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को किसी भी तरह की ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिसने अब इस शांति डील के भविष्य को और पेचीदा बना दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या नहीं होगी, कई बार तो लगता है डील बेहद करीब है, फिर लगता है समस्या बड़ी है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दावा यह किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई इस शांति समझौते के मुख्य मसौदे पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर उम्मीद जताई है कि अगले कुछ दिनों में इस महाडील पर अंतिम मुहर लग जाएगी। लेकिन इन सब के बीच CBS न्यूज ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है और बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा किया है, जिसने महाडील के फाइनल होने के सस्पेंस को अब सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अंतिम समझौते में हो रही देर की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई इस वक्त बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। वो एक बेहद गुप्त बंकर में छिपे हुए हैं। जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल के हमलों में घायल होने के बाद से ही उन्हें अपनी जान का इतना खौफ सता रहा है कि वो दिन का उजाला अब तक 28 फरवरी के बाद नहीं देख पाए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक बैनर्जी के घर कोलकाता पुलिस पहुंच गई है। अभिषेक बैनर्जी के घर फाल्टा में चुनाव नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर पुलिस टीम पहुंच गई है। घर में अवैध निर्माण पर बाकायदा नोटिस भी दिया गया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अभिषेक बैनर्जी का घर है। इस इलाके को एक समय गढ़ माना जाता था अभिषेक बैनर्जी का, लेकिन इन चुनाव नतीजों के बाद बहुत कुछ बदल गया है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, घर पर जो नोटिस चस्पा किया गया था अवैध कंस्ट्रक्शन का, उसके बारे में बताइए और पुलिस इस समय क्यों पहुंची हुई है, क्या पता चल पा रहा है अनुपम?
2: जी देखिए, कोलकाता पुलिस के चार अधिकारी अभिषेक बनर्जी का जो हरीश मुखर्जी रोड से घर है शांति निकेतन, वहां पर अभी थोड़ी देर पहले चार अधिकारी घुसे थे भीतर। उसके बाद से एक मॉनिटर, घर के भीतर से एक जो टीवी का मॉनिटर होता है या LCD टाइप का कुछ होता है, वो एक लेके निकले हैं। अब वो हमने जब पूछा उनसे तो वो कुछ बता नहीं रहे हैं। कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी अभी पूरे मसले पर खामोश हैं। तो अभी समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर किस वजह से पुलिस गई थी, वो मॉनिटर खोल के कहाँ से मॉनिटर खोल के ले गई, क्यों मॉनिटर खोल के ले गई, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि 10 दिन पहले ही एक नोटिस भेजा गया था, एक सप्ताह पहले एक नोटिस भेजा गया था अभिषेक बनर्जी के इसी घर में। डिमोलिशन का नोटिस था, इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने उत्तर देने के लिए समय भी मांगा था, 10 दिन का समय मांगा था, जिसे कल जो कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी ने 10 दिन का समय मांगा है, उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। लेकिन इसके बाद आज चार अधिकारी अचानक थोड़ी देर पहले इसी शांति निकेतन वाले घर में, जहां कुछ महीने पहले तक एक किले दुर्ग को जिस तरह से घेर कर रखा जाता है, जैसी सुरक्षा व्यवस्था होती है वैसी सुरक्षा व्यवस्था होती थी, वहां पे आज अभी थोड़ी देर पहले चार पुलिस अधिकारी अंदर गए थे। उन्होंने एक मॉनिटर लिया है और मॉनिटर लेके वो निकले हैं। तो अभी
0: अच्छा ये बताइए अनुपम, बड़ी खबर आप इस समय हमें बता रहे हैं, सुनते हैं। ये पुलिस की टीम वहां नोटिस चस्पा कर चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है कि घर पर कुछ अवैध निर्माण की बात है। अनुपम, अगर आप इस समय मेरे साथ हैं, हम इन तस्वीरों को भी देख रहे हैं, 188A हरीश मुखर्जी रोड, किस तरह का अवैध निर्माण है यहां पर जिसको लेकर यह नोटिस जारी किया गया है, क्या प्रशासन की तरफ से उस पर कोई सफाई?
2: ये देखिए, प्रशासन की ओर से कुछ खास सफाई नहीं दी गई थी। हालांकि जो नोटिस था वो हमारे पास था, जिसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसकी अनुमति कॉरपोरेशन की ओर से नहीं थी। कॉरपोरेशन का जो नक्शा था उसके मतलब उसके बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन वो क्या किया गया था इस बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी हमें नहीं है। तो वो नोटिस तो दिया गया था 7 दिन पहले। अब उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने समय मांगा था। समय मांगने के बाद कल जो कोलकाता कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अधिकारी हैं स्मिता पांडे, कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हमसे समय मांगा गया है, हमने समय दिया है। तो इसके बाद अब अचानक से कोलकाता पुलिस की जो टीम पहुंची है, हो सकता है कि इसी सिलसिले में पहुंची हो, लेकिन अभी तक कोलकाता पुलिस की ओर से इस पर आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से इस पर खुलासा लें कि आखिर किस वजह से कोलकाता पुलिस के अधिकारी अंदर घुसे थे, एक मॉनिटर क्यों निकाल के ले गए हैं, क्या वजह है। तो हो सकता है थोड़ी देर में इस बारे में हम पता चले।
0: ठीक अनुपम, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये वित्त मंत्रालय से जुड़ी ये खबर आ रही है। निर्मला सीतारामन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान, किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह असर पड़ रहा है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहद मजबूत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। सुनिए,
3: said that West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran-Israel-US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they're not minor increase, they're very serious increases, all of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident, and I'm saying this with responsibility, I'm confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. If crude oil prices are growing, 1 week it is 83, another week 86, 92, 101, 102, 116, we will have to constantly monitor this, but make sure that people are not going to suffer.
0: एक और बड़ी बात मैं आपको इस समय बता दूं, बीकानेर बॉर्डर पर कल गृहमंत्री अमित शाह एक बड़ी बॉर्डर समीक्षा करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह कल बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे और वो गुजरात के भुज भी जाएंगे, बीएसएफ चौकियों का निरीक्षण करेंगे, राजस्थान सीमा का भी निरीक्षण करेंगे और 5 जून को त्रिपुरा बॉर्डर पर जाएंगे, यानी उत्तर पूर्व भी जाएंगे और पश्चिम की सीमा पर भी जाएंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ये सीमा का निरीक्षण क्या किसी खतरे को देखते हुए है जितेंद्र?
4: देखिए गौरव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए अलग अलग राज्यों में, चाहे वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर हो या फिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर, इन इलाकों में जाकर के बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 मई को यानी कल जो है वो बैठक बीकानेर में जाकर के कर रहे हैं और वहाँ जो सुरक्षा चौकी है वहाँ पर उसका दौरा करेंगे और इसके साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही जो सीमावर्ती राजस्थान के डीएम और एसपी हैं 5 जिलों के, उनके साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि स्मार्ट बॉर्डर को लेकर के लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है और बीएसएफ राज्यों के साथ मिलकर के स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग बनाने की पूरी प्रक्रिया में काम उसका किया जा रहा है। गृहमंत्री त्रिपुरा भी जाएंगे जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, 15 जून के बाद उनका दौरा है। तो लगातार जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा समीक्षा करने के लिए गृहमंत्री अलग अलग राज्यों के बॉर्डर में जा करके, ये लगातार कोशिश की जा रही केंद्र सरकार की तरफ से कि यहाँ पर किसी भी तरीका से सुरक्षा में चूक।
0: आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: चोगन परफ्यूम्स द प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

आज राजस्थान के बीकानेर में बिताएंगे रात, 29 मई को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा बॉर्डर और 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। बंगाल में सियासी समीकरण बदलने के बाद शुरू हुई कार्रवाई, अभिषेक बैनर्जी के घर कोलकाता पुलिस, कुछ दस्तावेज किए गए बरामद, अतिक्रमण को लेकर सर्वे की खबर,

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। पूरी दुनिया की नजरें इस समय भारत पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर है। कोलकाता से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ इस समय मुड़ी है, वापस दिल्ली लौटेंगे। कल क्वाड में जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसका वो भाग होंगे। इस बीच मेरे सहयोगी रोहित शर्मा ने उनका इंटरव्यू किया है, उनसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद से लेकर हॉर्मुज के हालत के बारे में एक्सक्लूसिव सवाल पूछे। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद दुनिया में कहीं भी हो, अमेरिका उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है और अपनाता रहेगा। हॉर्मुज के हालत पर उन्होंने अमेरिका का पक्ष रखा कि किसी भी तरह का टोल वहां बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा क्वाड की अहमियत को मौजूदा हालात में उन्होंने बेहद जरूरी बताते हुए दुनिया भर में सप्लाई चेन जो बनी रहनी चाहिए उसकी जरूरत भी बताई। हम आपको मार्को रूबियो का यह सबसे खास इंटरव्यू दिखाएंगे और मेरे सहयोगी रोहित से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी विस्तार से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग पहलुओं पर मार्को रूबियो ने क्या कहा भारत अमेरिका के रिश्तों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बारे में। अच्छा, इस साल होने वाली अमेरिकी यात्रा पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही, टैरिफ को लेकर मार्को रूबियो ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
1: आज हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मिस्टर मार्को रूबियो। सेक्रेटरी, वेलकम टू इंडिया। पिछले 2 दिनों से आप भारत में हैं और आपने मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ, क्या बता सकते हैं आप इन मीटिंग्स के बारे में हमें?
2: ये सभी मुलाकातें शानदार रहीं। सबसे पहले तो भारत एक शानदार देश है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। हालांकि अभी मैं यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन रहा हूँ, पर मैं यहाँ 4 हफ्ते भी रहूँ तो भी सब कुछ नहीं देख पाऊंगा। ये सचमुच इतना बड़ा देश है जहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, पर साथ ही अमेरिका और भारत के बीच ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध भी है। ये एक रणनीतिक गठबंधन है। दुनिया भर में कई देशों के साथ हमारे संबंध हैं, लेकिन हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन है और भारत उनमें से एक है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें समानता है और जिनमें भारत और हमारी साझा रुचि है और जिनमें हम दोनों योगदान दे सकते हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है और इसलिए हम यहाँ वास्तव में उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि हर नए युग में दुनिया भर में नए अवसर और नई चुनौतियाँ सामने आती हैं और भारत उन देशों में से एक है जिसके साथ हमने इन सभी मामलों में बेहद करीबी से काम किया है।
1: आपने ये अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री अब अमेरिका के दौरे पे जाएंगे, ये स्पष्ट नहीं है कि वो G20 के समय जाएंगे या उससे पहले जाएंगे, क्या कुछ आप हमें बता सकते हैं कि कब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे, बायलेटरल दौरे पे जाएंगे?
2: जी हाँ, हम इसे एक अलग बैठक बनाना चाहते हैं। हम एक स्वतंत्र यात्रा चाहते थे, जाहिर है। हम दिसंबर में फ्लोरिडा में G20 के लिए उनकी मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हम इसके अलावा एक बैठक भी करना चाहेंगे और उन्होंने आने का संकेत दिया है, तो जाहिर है हम उचित समय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें अगले हफ्ते ही देखना चाहें।
1: भारत और अमेरिका की जो संबंध है जिसमें थोड़ा सा एक ठहराव आ गया था जनवरी में एम्बेसडर गौर के बाद, काफी चीजें फास्ट ट्रैक हुई है और उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ट्रेड और ट्रेड डील। आपने आज कहा कि अगले महीने एक डेलीगेशन आने वाला है अमेरिका से, क्या हम ये समझे कि अगले महीने शायद जो ये ट्रेड डील है ये साइन हो सकती है?
2: मैं फिलहाल इसे लेकर अभी कुछ नहीं कह सकता। हमें उम्मीद है कि ये शायद अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह तक हो जाएगा, लेकिन हम अभी अंतिम विवरणों पर काम कर रहे हैं। हम एक व्यापार समझौते की कगार पर हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इससे दोनों देशों को फायदा होगा, इससे अमेरिका का निवेश और भारत का निवेश दोनों बढ़ेगा। टैरिफ जैसी चीजें व्यापक संबंधों पर असर डालती हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हम दोनों देशों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते के जरिए इन मुद्दों को सुलझा लेंगे, उतने ही बेहतर अवसर सभी को मिलेंगे।
0: और मेरे सहयोगी रोहित इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, स्वागत है आपका। ये बताइए कि दोनों देशों के बीच जो तल्खी, अमेरिका ने जो पहले 25% और उसके बाद फिर प्यूनिटिव 25% टैरिफ भारत पर लगा दिए थे, उसको देखकर दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें खासी तल्खी आ गई थी, क्या इसमें आप कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि अमेरिका और भारत वैसे तो बहुत करीबी दोस्त हैं, आपने जो मार्को रूबियो का इंटरव्यू भी कहा, दो सबसे पावरफुल डेमोक्रेसीज की वो बात करते हैं, लेकिन वो जो प्यूनिटिव टैरिफ थे सिर्फ भारत पर ही लगाए।
3: देखिए बिल्कुल, आई थिंक जो 2025 के एंड तक जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रहा था, जिस तरह के वहां से बयानबाजी हो रही थी, ऑब्वियसली यू नो उसका जो नुकसान हुआ है रिलेशनशिप को, उससे कोई भुला नहीं सकता. बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब से जनवरी में एम्बेसडर गौर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें एक तरह से कह सकते हैं कि हाइपर चार्ज कर दिया रिलेशनशिप को. उनके आने के 3 हफ्ते बाद ये अग्रीमेंट आ गया ट्रेड डील का. अब जब उनसे हमने एक्सक्लूसिवली पूछा था संजय गौर से 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था देखिए डील पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ लीगली जो राइटिंग है वो बची हुई है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें एज अ फेज टू ऑफ रिलेशनशिप देखना चाहिए इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां पे, और मैं फिर से बात कहूंगा कि आज मार्को रूबियो इतनी मई में इतनी गर्मी में फिर भी अमेरिका से भारत आए, क्योंकि ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है और यही बात वॉशिंगटन में चल रही है, इसी को लेके वो यहां पे आए. और उन्हें बार बार हमसे जो इंटरव्यू किया उसमें भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है हम अमेरिका और भारत, हमें साथ में मिलकर काम करना है आने वाली चीजों को लेकर.
0: ठीक, लेकिन जो अमेरिका का रुख है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा भी दे रहा है, जिससे भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश परेशान है. इस बारे में जब मार्को रूबियो से बकायदा एक सवाल पूछा गया कि अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ गलबैया कर रहा है, उस पर उन्होंने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं.
1: स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है, उसकी ओसैक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उसमें इजाफा हुआ है. वहां पे ऐसा कहा गया कि 35% तक इजाफा हुआ है. आपने काउंटर टेररिज्म को एक सेंट्रल थीम बनाया है इस मीटिंग में, समिट में. क्या कुछ ऐसा अमेरिका कर सकता है या करना चाहिए अमेरिका को, ताकि ये जो टेररिज्म पाकिस्तान से एमिनेट होता है, निकलता है, उस पे जो है लगाम लगा सके?
2: देखिए, हम आतंकवाद से निपटना चाहते हैं, चाहे वह कहीं से भी हो रहा हो. मेरा मतलब है, अगर सशस्त्र समूह लोगों को मारना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं और वे दुनिया के किसी भी देश की सीमा के भीतर काम कर रहे हैं, तो हमें इसका समाधान करना होगा. हमें अपने क्षेत्र में भी इसका समाधान करना पड़ा है. मेक्सिको में अभी बहुत खतरनाक गिरोह सक्रिय हैं और हम मेक्सिको सरकार के साथ मिलकर इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं. मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर इन बेहद खतरनाक समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो न सिर्फ देश के लिए खतरा है बल्कि आने वाले समय में क्षेत्रीय लोगों और संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए भी खतरा है. तो आप जानते हैं, जहां कहीं भी आतंकवाद हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हम उसका समाधान करना चाहते हैं. और आदर्श रूप से यदि वे किसी देश के भीतर स्थित हैं, तो उस देश की सीमाओं के भीतर उस देश के सहयोग से उसका समाधान करना चाहते हैं.
0: रोहित, आतंक के मुद्दे पर आप बहुत गहराई से अमेरिका के प्रशासन से सवाल पूछते भी रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका का प्रशासन भूल गया कि यही पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों को मरवा चुकी है, और अभी मार्को रूबियो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ, के अधिकारियों के साथ मिलकर आतंकवादियों का सफाया करेंगे, वही पाकिस्तान की सेना जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है?
3: देखिए, अमेरिका का एक जो भी रिलेशनशिप रही है पाकिस्तान के साथ, इट हैज़ बीन यूज एंड थ्रो. जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान की, उन्होंने यूज़ किया है. जब उन्हें लगा कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. एग्जाम्पल के तौर पे, जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था 4 साल तक, तो उन 4 साल में प्रेसिडेंट बाइडन का ने कभी भी ना तो कभी फ़ोन किया, ना कभी मुलाकात की पाकिस्तानियों के साथ. हाल फिलहाल में इस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी समझ थी, ऐसे काफ़ी लोग आए जिन्हें लगा कि फिर से पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनानी चाहिए. लेकिन ये बात भी इतनी सही है गौरव, कि जब पिछले साल पहलगाम में अटैक हुआ था, तो सबसे पहला कॉल जो आया था वो भी अमेरिका से आया था, और मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री जयशंकर से बात की. तो जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा और स्टेट डिपार्टमेंट का हवाला दिया, मैंने ये नहीं कहा कि इस एक्स वाई जी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कहना है, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट जिसको मार्को रूबियो हेड करते हैं, उनका ये आंकलन है कि इजाफा हो रहा है और उसमें वो क्या कर सकते हैं. तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम टेरर का खात्मा करें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, आई थिंक हम सबके लिए ये जानना, कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे.
0: ठीक, क्या ठोस कार्रवाई होगी इस पर नजर तो रहेगी. वैसे 28 फरवरी से अमेरिका ईरान के साथ एक युद्ध लड़ रहा है, अभी तक दोनों देशों के बीच समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है. आखिरकार दिक्कतें कहां कहां आ रही हैं? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से यही बात जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी रोहित शर्मा ने भी, कि आखिर कहा यह जा रहा था वीकेंड पर कि अब समझौता होने वाला है, महाडील होने वाली है, क्यों नहीं हो रही है, क्या कहना है मार्को रूबियो का, सुनिए.
1: ईरान को लेके काफी ज्यादा थ्योरीज चल रही है, जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसको लेके कि ईरान शायद यूरेनियम जो है वो नहीं छोड़ेगा और देने पे अपनी मंजूरी नहीं देगा, और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके भी काफी चीज चल रही है। आप क्योंकि नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं आप हमें कि कहां तक पहुंचा है नेगोशिएशन?
2: मेरा मानना है कि इसके दो पहलू हैं। देखिए, इसे आपको अलग अलग करके देखना होगा। पहला मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जो कर रहे हैं वह अवैध, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और अस्वीकार्य है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को यह कहना चाहिए और दुनिया के अधिकांश देश ये कह भी रहे हैं। भारत कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, हर कोई यही कह रहा है। यहां तक कि चीन ने भी पिछले हफ्ते जब हम वहां थे तब हमसे यही कहा था कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कब्जा कर ले, उन जहाजों को उड़ा दे जो उन्हें टोल देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह से खोला जाना चाहिए, तो यह इसका पहला चरण है। दूसरा यह है कि ईरान को तीन विषयों पर गंभीरता से बातचीत शुरू करनी होगी। परमाणु हथियार न रखने का उनका वादा, उनकी संवर्धन क्षमताओं पर दीर्घकालिक प्रतिबंध और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का क्या किया जाए। 60% संवर्धित यूरेनियम रखने का कोई कारण नहीं है जब तक कि आप इसे 90% संवर्धित यूरेनियम में परिवर्तित करके हथियार बनाना न चाहें। इन विषयों पर अभी विचार करना होगा। ये अत्यधिक तकनीकी मुद्दे हैं, इन पर काम करने में समय लगेगा और जाहिर है ईरान को इससे लाभ होगा। जाहिर है ये बातचीत कठिन होने वाली है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे जरूरी और तत्काल कदम यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाए। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें वो टोल वसूलें और वाणिज्यिक जहाजों को उड़ाने की धमकी दें, ये जारी नहीं रह सकता।
0: तो जब दोनों के रुख इतने अलग अलग हैं रोहित, तो क्या अमेरिका ये कुछ बता पाया है, मार्को रूबियो बता पाए कि समाधान क्या निकलेगा, या सभी टटोल रहे हैं क्या हो सकता है समाधान?
1: देखिए, जितने भी बयान आए हैं समझौते को लेकर, अभी की बात नहीं है, इसके पहले भी बात हो रही थी, अब डील हो सकती है, हो सकती है। प्रॉब्लम वही है, ईरान को लगता है कि वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकता। ईरान अमेरिका को लगता है कि जब तक यूरेनियम हैंडओवर की बात नहीं होगी तब तक कोई डील नहीं हो सकती। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर गारंटीज ईरान नहीं दे पा रहा है अमेरिका को। तो बात वहीं पे है जो युद्ध होने से पहले शुरू हुई थी, और अभी भी वही बात है कि दोनों जो साइड्स हैं वो फिर भी बात नहीं कर पा रही है। और जो इंटरलोकेटर्स हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने सवाल भी उठाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान कर क्या रहा है अगर ये समझौता नहीं करा पा रहा। तो आई थिंक मार्को रूबियो बातों में वो बात बोल गए कि अगर इन दोनों चीजों पे अग्री नहीं करता ईरान तो समझौता होना मुश्किल है।
0: आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। रोहित, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय एक बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां कल क्वेटा में एक मिलिट्री शटल ट्रेन पर एक भीषण हमला हुआ था। अब प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बीएलए की सबसे खतरनाक आत्मघाती शाखा मजीद ब्रिगेड ने एक खौफनाक आंकड़ा जारी करते हुए दावा किया है कि कल हुए इस बड़े हमले में पाकिस्तान की सेना के कम से कम 82 सैनिक मारे गए हैं और 121 से ज्यादा जवान और अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संगठन के आधिकारिक बयान के मुताबिक कल ये जो भीषण हमला हुआ था, ये क्वेटा कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके में चमन फाटक के पास पाकिस्तान की सेना के जवानों को ले जा रही एक मिलिट्री शटल ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया था। ये एक VBIED व्हीकल बॉर्न इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस था। इस बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए बीएलए की फिदाइन यूनिट और उसकी खुफिया विंग जराब ने मिलकर एक साझा ऑपरेशन चलाया था। दावा यह किया जा रहा है कि हताहत होने वालों में पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी भी हैं, यानी अफसर भी हैं, एनसीओज नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स भी हैं, और सेना में नए रिक्रूट्स यानी सेना के पाकिस्तान की सेना के नए रंगरूट जो पहली बार क्वेटा से बाहर जा रहे थे वो भी शामिल है। और पिछली बार जो ट्रेन पर हमला हुआ था जाफर एक्सप्रेस के बाद, उसके बाद से ये एक अलग मिलिट्री शटल ट्रेन चलाई गई थी जो मेन स्टेशन पर आके मिलती थी। बीएलए ने खुलासा किया कि कल सुबह 8 बजे इस आत्मघाती धमाके के लिए बलूच लड़ाकों ने महीनों तक पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट की रेकी की थी और खुफिया जानकारी जुटाई थी। इस बड़ी खबर में रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, Ooh, like yeah. pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है उसकी ओसैक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं उसमें इजाफा हुआ है वहां पे

0: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires.
1: Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/26. See dealer for warranty details.
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
6: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
8: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
9: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
13: ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी बैंकों में तेहरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका समझौते के शुरुआती चरण में ही ईरान की कुछ ब्लॉक की गई संपत्तियों को जारी करने पर सहमत नहीं होता, तब तक किसी अंतिम समझौते की संभावना नहीं है। आरोप ये भी है कि अमेरिका बातचीत के दौरान लगातार अपना रुख बदल रहा है और मुख्य शर्तों में अड़चन पैदा कर रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, अमेरिका ने बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा है कि वह समझौते में जल्दबाजी ना करें। होर्मुज को लेकर भी ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सुरक्षा सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि होर्मुज प्रबंधन ईरान का कानूनी अधिकार है।

0: خارج بشیم. میدونید این تهدید یعنی چی؟ که اگر ما از NPT خارج شدیم چه بلایی به سر شما میاد.
1: ईरान ने अपना यह संदेश पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के उन देशों तक भी पहुंचा दिया गया है जो बैक चैनल कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ पुराने के अनुभवों को देखते हुए केवल कागजी गारंटी पर्याप्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। लखनऊ के तुबग्गा इलाके में लोगों ने सड़क जाम कर दी। आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है। मेरठ में जनता मेयर आवास तक पहुंच गई। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। यूपी के बांदा में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ निर्देश दिए हैं कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली आपूर्ति की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को देर रात तक फील्ड में तैनात किया गया है। लखनऊ में 22 अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को रात 9 बजे से 1 बजे तक अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण और फॉल्ट होने पर तुरंत बिजली बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल ने भी बिजली व्यवस्था पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। गाजियाबाद और मेरठ के 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है। आखिर भीषण गर्मी के बीच यूपी की जनता को राहत कब मिलेगी और क्या सरकार के आदेश जमीन पर असर दिखा पाएंगे? आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल भी शतक के करीब। वित्त मंत्री ने बताया जंग का साइड इफेक्ट, राहुल बोले सरकार चुपके चुपके काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा पर गहरे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर मांगा केंद्र से जवाब, पूरी प्रक्रिया पर तल्ख टिप्पणी, कहा पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। गृहमंत्री अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बिताएंगे रात, 29 मई को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा बॉर्डर और 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। बंगाल में सियासी समीकरण बदलने के बाद शुरू हुई कार्रवाई, अभिषेक बनर्जी के घर कोलकाता पुलिस कुछ दस्तावेज किए बरामद, अतिक्रमण को लेकर सर्वे की खबर। बढ़ते तापमान से झुलसा पूरा उत्तर भारत, नौतपा शुरू होते आसमान से बरसी आग, कई राज्यों में बिजली पानी की किल्लत, यूपी दिल्ली राजस्थान में बड़ा संकट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
0: भारत में बड़ा संकट।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दरअसल आज पूरा देश एक युद्ध लड़ रहा है और ये युद्ध है महंगाई के खिलाफ, क्योंकि पिछले 10 दिन में होले होले करके 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। ताजा बढ़ोतरी जोड़कर पेट्रोल के दाम 7.38 रुपए और डीजल के दाम 7.53 रुपए लीटर बढ़ा दे चुके हैं। आम जनता तो खैर इस बढ़ोतरी का बोझ झेलने को मजबूर है ही, लेकिन विपक्षी दल इसे मुद्दा जरूर बना रहे। कांग्रेस पार्टी तो प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन कहने लगी है। कांग्रेस गिना रही है कि यूपीए के मुकाबले मोदी राज के 12 साल में कच्चा तेल बिल्कुल महंगा नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल 43% और डीजल 68% तक महंगा हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि महंगा पेट्रोल डीजल बेचकर देश की जनता से 42 लाख करोड़ रुपए की लूट की गई, और अब ईरान जंग के बहाने एक बार फिर से दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी भारत के मुकाबले ज्यादा दाम बढ़े हुए हैं, भारत में उसका असर कम ही दिखाई दे रहा है। ऊपर से महंगे तेल की सूरत में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है, जनता का बोझ भी अपने कंधे पर ले लिया है। और अभी अगर तेल महंगा है तो उन राज्यों में ज्यादा वैट वसूली हो रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इन सारे सियासी आरोपों और प्रत्यारोपों से आगे इकोनॉमी के जानकारों की एक अलग राय है, उनकी एक अलग चिंताएं भी है। उनका मानना है कि ईरान संकट हो या यूक्रेन संकट, तेल की महंगाई का ऐसा सीरियल इफेक्ट शुरू होगा कि उसका खामियाजा देश में महंगाई से लेकर रोजगार और विकास से लेकर जीडीपी विकास दर तक पड़ सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो इस संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या भरपूर है? क्या देश को एक युद्ध लड़ना है महंगाई के खिलाफ? इन्हीं तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसी से जुड़ी यह रिपोर्ट देखेंगे।

0: आम पब्लिक पे जो भजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखता है कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखता है।
1: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही।
2: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मूज संकट का ऐसा कहर कि 2 महीने बाद भी बारूदी आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए, 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे, 23 मई को पेट्रोल 90 पैसे, डीजल 91 पैसे, और अब 25 मई की सुबह पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे। 10 दिन के भीतर 4 बार में पेट्रोल 7 रुपए 38 पैसे, डीजल 7 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया।
3: क्या कहेंगे, बढ़ता ही रहा है। जो अपने यहाँ पेट्रोल डीजल है ही नहीं है तो बढ़ेगा ही जब बाहर से आएगा तो।
4: क्या सरकार चाहती क्या है, मिडिल क्लास को मार के रख दिया है क्या? छोटी छोटी फैमिली वाले जो कम सैलरी पे काम करते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ? 15 दिन के अंदर 3 बार पैसे बढ़ाने ये कोई सही बात थोड़ी है।
5: पूरे वर्ल्ड में ऊर्जा संकट है और ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए इन परिस्थितियों का सामना हम लोग कर सकते हैं।
6: अपना टैक्स तो घटाते नहीं पेट्रोल डीजल पे, आधा तो उनका टैक्स ही है। अब लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे, पब्लिक को क्यों चूस रही है?
7: पब्लिक पे असर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी, जो गुड एंड सर्विसेज है सबकी कॉस्ट बढ़ेगी।
2: अवाम हलकान है कि जब जंग में दाम नहीं बढ़े तो सीज फायर के बीच हर तीसरे चौथे दिन दाम क्यों बढ़ रहे हैं?
8: ये तिल तिल करके, तड़पा तड़पा के, आम आदमी को बेइज्जत कर करके कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए, क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से?
9: पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं? पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%।
2: कांग्रेस नेता गिनाते हैं कि जंग से पहले तक चौथी तिमाही में तेल कंपनियों का मुनाफा 41% बढ़कर 19,470 करोड़ रुपए था, तो हजारों करोड़ रुपए महीने की कमाई करने वाली तेल कंपनियां और सरकार अब धीरे धीरे तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं?
10: तो 8 रुपए तक प्रति लीटर जो रेट बढ़ चुके हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी महंगाई की मार हो चुकी है। देश को पता चल चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल टूट गई है और भारतीय जनता पार्टी से ये देश चल नहीं पा रहा।
11: लूट, ये किस प्रकार की भाषा है? ये किसी के जेब में पैसे जा रहे जैसे उनके लूट हुए थे, जिन पर जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया था 2014 में। लूट शब्द का कैसे प्रयोग कर रहे हैं? किसी की जेब में ये पैसे नहीं जा रहे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी उनकी सरकारों में वो टैक्स अपना घटा दे, बीजेपी की सरकारों ने तो किया भी था एक पॉइंट में।
2: विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती हैं, और आंकड़े कहते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन अप्रैल और मई में 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901 करोड़ रुपए का मुनाफा मिला, लेकिन अप्रैल मई में 17,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का दावा है। जबकि कांग्रेस के नेता आंकड़े गिनाते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठाया और उस पर ऊंची दर से टैक्स वसूली करके 15-20 लाख करोड़ रुपए कमाए, जबकि बीजेपी दलील देती है कि 2005 से 10 के बीच जब कच्चे तेल का भाव $147 तक चला गया था, तब मनमोहन सिंह सरकार ने 1,48,186 करोड़ के ऑयल बॉन्ड तेल कंपनियों को दिए थे। इन पर 6.35% से लेकर 8.4% तक ब्याज देना था। तब से 10-15 साल के बीच तेल कंपनियों ने इन बॉन्ड्स को भुनाना शुरू किया जो 2015 से 2026 तक चलता रहा। इस बीच मोदी सरकार ने 1.71 लाख करोड़ का ब्याज तेल कंपनियों को चुकाया और मूलधन मिलाकर कुल 3.20 लाख करोड़ तेल कंपनियों को देना पड़ा। ऊपर से जब ईरान में जंग छिड़ी तब जनता को महंगाई के झटके से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज 13 से घटाकर 3 रुपए किया, डीजल पर एक्साइज 10 रुपए से घटाकर फ्री कर दिया। इससे सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, क्योंकि हमारे देश में जब 1 लीटर पेट्रोल बिकता है तो 11.90 रुपए केंद्र, 15 से 21 रुपए राज्य, 8 से 12 रुपए तेल कंपनी और 3.5 से 4.5 रुपए पेट्रोल पंप वालों की कमाई होती है। इसी तरह 1 लीटर डीजल पर 7.80 रुपए केंद्र, 11 से 15 रुपए राज्य, 4 से 7 रुपए तेल कंपनी और 2.5 से 3.5 रुपए पंप वालों की कमाई होती है। महंगे तेल के कारण सरकार की कमाई घटी है, जबकि तेल कंपनियां धीरे धीरे दाम बढ़ाकर अपने पुराने नुकसान की भरपाई कर रही हैं, क्योंकि तेल कंपनियों के बही खाते में आए भूचाल का अनुमान लगाते हुए बाजार के जानकार पहले ही 20 से 25 रुपए तक दाम बढ़ाने की आशंका जताते रहे और ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर कार बाइक चला रहे आम लोगों की जेब पर ही नहीं पड़ेगा। ऑटो कैब बस के किराए बढ़ेंगे, ट्रकों की माल ढुलाई महंगी होगी, सब्जियां राशन महंगी होंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, कपड़े दवाइयां सब कुछ महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो कंपनियों का मुनाफा घटेगा, उत्पादों के दाम बढ़ेंगे तो खपत कम होगी, मांग घटेगी तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार कटेगा, असर सीधा विकास दर पर पड़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल 10% महंगा होता है तो GDP 1% तक घट जाती है। ऊपर से महंगे तेल की खरीद में घिसते डॉलर का भंडार तेजी से घटा तो चालू खाते का घाटा बढ़ता जाएगा और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक को रेपो रेट बढ़ाना होगा, जिसका असर होम लोन से कार लोन तक पड़ता है। आज तक ब्यूरो।
12: फरवरी महीने में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद 3 महीने तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन 15 मई से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये चौथी बार है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में बढ़ चुके हैं और इसका सीधा असर ये लोगों पर पड़ रहा है। और इसीलिए चर्चा भी जरूरी है कि आखिरकार सरकार क्या इस पे कुछ कर सकती है या राज्यों पर अब इसका भार डाल दिया जाएगा। कई सवाल इस पे उठते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर विपक्ष की भूमिका रखेंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वो भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी भूमिका रखेंगी। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या किश्तों में तेल महंगा करने से महंगाई रोकने में क्या मदद मिल पाएगी? कई लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शन की जगह पर ड्रिप के जरिए उठाएगी, कई लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शन की जगह पर ड्रिप के जरिए ये महंगाई लोगों के शरीर में डाली जा रही है एक तरीके से, और क्या इससे मदद मिल पाएगी? दूसरा सवाल, क्या महंगे तेल के बाद अब महंगे कर्ज की बारी आने वाली है और उठाएगी? कई लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शन की जगह पर ड्रिप के जरिए ये महंगाई लोगों के शरीर में डाली जा रही है एक तरीके से, और क्या इससे मदद मिल पाएगी? दूसरा सवाल, क्या महंगे तेल के बाद अब महंगे कर्ज की बारी आने वाली है? मॉनेटरी पॉलिसी के बाद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए जाएंगे ये भी माना जा रहा है, जिसके चलते क्या महंगे कर्ज की बारी आएगी? तीसरा सवाल, क्या तेल से 42 लाख करोड़ रुपए जमा कर जनता को राहत नहीं देने का कांग्रेस का आरोप क्या सही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दरअसल ऑयल बॉन्ड्स को चुकाने में ये सारे पैसे लगे, इसके लिए शायद जनता तक नहीं पहुंच पाए। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, ट्रंप और ईरान के बीच डील की खबरों के बाद कच्चे तेल के दामों में 5% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड $99 के भी नीचे आ गया, यानी $100 के नीचे अब ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो दाम है वो आ चुका है, जबकि भारतीय बास्केट में कच्चे तेल के दाम 3.88% तक गिर चुके हैं। अनुमान है कि अगर 2 हफ्ते तक दाम ऐसे ही रहते हैं तो भारत में तेल कंपनियां तेल के दामों में राहत दे सकती है, क्योंकि तेल कंपनियां 2 हफ्ते के औसत दाम के हिसाब से भाव तय करती है, यानी 2 हफ्ते के दाम देखकर वो आगे के दाम तय करती है। इस बीच और एक बड़ी खबर, ईरान संकट का तेल के दामों पर असर को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बड़ा बयान आ चुका है। पहली बार निर्मला सीतारामन की तरफ से बयान आया है, कहा है कि पश्चिम एशिया संकट, हॉर्मुज संकट से लेकर सप्लाई चेन तक तमाम संकट, बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है, लेकिन इसका असर देश की जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि हर हफ्ते कच्चे तेल के बढ़ते दाम की निगरानी की जा रही है और सरकार को भरोसा है कि वो इन चुनौतियों से निपट लेगी। कहीं ना कहीं निर्मला सीतारामन ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि जनता तक इसका असर नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लेकिन पिछले 10 दिन में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। निर्मला सीतारामन ने क्या कहा वो जरा एक बार सुनिए।
13: जैसे पिछले 2-3 साल में ऐसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जितने भी रहा, हमारे देश का उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि सब उनके अपने अपने स्तर पर देश के लिए कंट्रीब्यूट करके अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे। ऐसे ही हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए हम आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोविड के समय से लेकर देखिए, मैं कोविड से नहीं कंपेयर कर रही, उस समय से लेकर देख लीजिए, कभी भी देश का जनता का कुछ भी रिक्वेस्ट और सेंटिमेंट रहा उसके लिए हम समय समय पर रिस्पॉन्ड करते आ रहे हैं और जनता भी उसके लिए रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी आगे बढ़ना चाहिए।
12: सीतारमण कहने की कोशिश करिए कि भरोसा रखिएगा, हम जनता तक इसका असर नहीं पहुंचाने देंगे, लेकिन आज की स्थिति में जैसे मैंने कहा कि 15 मई से लेकर 25 मई तक 4 बार दाम बढ़ चुके हैं, एक ड्रिप तरीके से लोगों को ये महंगाई की कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश हो रही है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से शुरू करनी होगी। निर्मला सीतारमण का बयान आपने सुना, वित्त मंत्री कह रही है कि थोड़ा भरोसा रखिएगा, ये संकट है, यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बाद अब ये ईरान का युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा भरोसा रखिए। क्या कांग्रेस पार्टी भरोसा करने को तैयार है?
14: देश भी, देश ने भी 2014 में भरोसा ही किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और रुपया जब लुढ़कता है तो देश की जो करेंसी गिरती है तो उससे देश का मान गिरता है, प्रधानमंत्री की मर्यादा गिरती है, तमाम तरह के नारे दिए थे, देश ने बहुत भरोसा किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न रुपया इनसे कंट्रोल हो पाया न महंगाई कंट्रोल हो पाई, चौथी से हम छठी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा दिए इन लोगों ने। और आज जो मंत्री महोदया की आप बात कर रहे हैं बोगस मंत्री हैं, उनके बस की कुछ नहीं है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर ना फाइनेंस मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री ने तो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 दिन के अंदर लगभग $12 इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल प्राइस गिर गए, 10 दिन के अंदर 12 बैरल, एक बैरल का प्राइस $12, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां 4 बार प्राइस बढ़ गए, हमारे पड़ोस के देश नेपाल और पाकिस्तान भी अपने यहां पर प्राइस घटा रहे हैं। 4 बार प्राइस बढ़ाने के बाद एक वित्त मंत्री कह रही है कि जनता तक इसकी किसी भी तरह की नकारात्मकता को हम नहीं पहुंचने देंगे। दुर्भाग्य यह है कि 5,00,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने आरबीआई से ले लिया, 2 दिन पहले भी 3,00,000 करोड़ रुपया आरबीआई से लेने की तमाम खबरें आई है, ईएमआई महंगी होती चली जा रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, किस मुंह से कहती हैं कि जनता के ऊपर इसका प्रभाव नहीं होगा? क्या उनको इकोनॉमी का एबीसी भी नहीं पता है? वेलफेयर स्कीम्स में कटौती शुरू हो गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती शुरू हो गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता चला जाएगा, ईएमआई महंगी होती चली जाएगी, रेपो रेट बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि साहब देश के ऊपर कुछ नहीं होगा और हम नहीं होने देंगे, तो ये आपकी बुद्धि है, आपको सोचना है। 2,00,000 करोड़ का इस देश के अंदर से 2 महीने में करेंसी फ्लाई हुआ है, मैं इसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, मैं इसको करेंसी फ्लाई कह रहा हूं। कारण क्या है कि 2 महीने में इतना बड़ा पैसा, शेयर मार्केट आपकी धड़ाम पर ही है, शेयर मार्केट से पैसा निकलकर दूसरे देशों में जा रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि हम कोई असर नहीं होने देंगे। ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से मेंटली बैंकरप्ट हो, 2 महीने में इतना बड़ा पैसा, शेयर मार्केट आपकी धड़ाम पर ही है, शेयर मार्केट से पैसा निकलकर दूसरे देशों में जा रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि हम कोई असर नहीं होने देंगे। ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से मेंटली बैंकरप्ट हो गई है, और ये 12 साल की जो इनकी अव्यवस्थाएं थी उसका कहर बरप रहा है जनता के ऊपर। ये 150 करोड़ लोगों का देश है
12: कुल मिलाकर, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम,
14: देश में ये हो गया, उस देश में ये हो
12: गया। आलोक शर्मा जी यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये मौखिक वादों से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस आपको देना होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही चुनाव रुक जाते हैं 15 मई से दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी बीच ऑयल कंपनियों के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो भी आ जाते हैं, उसमें भी दिखता है कि आखिरी तिमाही में जो हुई है, लास्ट क्वार्टर जो है, उसमें 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा, मुनाफा इन ऑयल कंपनीज को हो चुका है, उस बीच तो कहीं दाम नहीं बढ़े। लेकिन अब दाम बढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है और हर दो दिन के बाद खबर आती है कि दाम बढ़ना शुरू हो गया। यानी जो इंजेक्शन जो दवाई आप डायरेक्टली नहीं दे सकते वो ड्रिप करके आप दे रहे हैं एक तरीके से, तो कैसे भरोसा करें?
15: देखिए साहिल जी इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो ग्लोबल ऑयल शॉक की स्थिति में पूरे दुनिया है उसमें भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं आपको इस बात को बताता हूं। पहले तो जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से जो तीन बड़े प्रॉब्लम है, एक तो फ्यूल का, दूसरा फर्टिलाइजर का और तीसरा जो है फॉरेन करेंसी का, ये तीन एफ को जो हम लोग को मैनेज करना और बहुत अच्छे से हम मैनेज किए जा रहे हैं। बाकी लोगों को दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, दुनिया हमें देख रही है, अपोजिशन जो है वो अपने गरिमा में झांक के देखे कि उनके समय में क्या कमेंट आता था और आज के समय में क्या कमेंट आता है। पहली बात कि देखिए जो प्राइस जो धीरे धीरे, पहले तो तीन महीने तो प्राइस नहीं बढ़ाया, ये अब इसलिए कि जनता को राहत दिया, इतनी अनसर्टेनिटी थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट की वजह से, जो ईरान यूएस और इसके जो वॉर की वजह से प्राइस पे सडनली जो है अपवर्ड प्रेशर आया और पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सरकार ने अब्सॉर्ब किया कॉस्ट। जब एक्साइज ड्यूटी भी कम की 10 रुपया से पेट्रोल डीजल पे और जो कॉस्ट को अब्सॉर्ब करती रहे, लॉस पेयर करती रहे, बर्डन पास ऑन नहीं किया जनता में। अब देखिए जो आप बोल रहे हैं ड्रिप करना है, ये इसलिए ड्रिप कर रहे हैं कि आप भी समझ सकते हैं कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। आज आप अभी थोड़ी देर पहले कहा है ट्रंप और ईरान के बीच में सहमति बनने की संभावना, आप बताइए, आप अगर बैक टेस्टिंग करके देखिए पिछले 3 महीने में कितनी बार ऐसा हुआ कि संभावना बनी संभावना गई, संभावना बनी संभावना खत्म हो गई, मीन्स जो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जब भी पॉजिटिविटी होती है तो आप देखते हैं कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आते हैं, कभी देखते हैं अनसर्टेनिटी होती है तो क्रूड के प्राइसेस जंप कर जाते हैं। आप अगर देखिए कि फ्यूचर्स और जो स्पॉट में अब सिर्फ $2 का महत्व जो है अंतर है, पहले वही जो है बहुत ज्यादा अंतर था। तो जाहिर है कि इस पूरे समय में भारत की सरकार ने अपने में बढ़े,
12: लेकिन मामला इस बात को लेकर भी होता है, एक बात की सर्टेंटी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थी, एक बात की सर्टेंटी कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी लोगों के बीच में थी कि चुनाव का माहौल चल रहा है, प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे। ये तो अभी आम जनता को समझ में आ चुका है कि भाई अगर चुनाव चल रहा है तो प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये लॉजिक नहीं समझ में आता। जरा आप वो मुझे समझाने की कोशिश करिए। देखिए 4 मार्च 2026 को सुन लीजिए, 4 मार्च 2026 को $85.24 प्रति बैरल दाम थे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, 9 मार्च 2026 को $120.28 प्रति बैरल दाम थे, 20 मार्च को वो बढ़ के $156 हो गए, 24 मार्च को $147 हो गए, दाम नहीं बढ़े, और अब 22 मई 2026 को ये दाम घटकर $106 प्रति बैरल हो गए, और अभी अभी खबर है कि बेंट क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो $99 हो गया, 100 से कम हो गया है, और हमारे यहां पर दाम बढ़ रहे हैं। तो लोग उल्टा सवाल तो पूछेंगे ना यहां पर जफर इस्लाम जी।
15: अब उसके
12: और आप कह रहे हैं कि राज्यों को कम कर देना चाहिए आप?
15: नहीं बिल्कुल से देखिए नहीं नहीं पहले दो तीन बातें पूरी बात खत्म कर दीजिए। पहले तो कि सरकार ने शुरू के अनसर्टेनिटी के समय में बर्डन जो है पास ऑन नहीं किया, जब इतना हाई प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड और ब्रेंट के जो प्राइसेस ऊपर गए, अब्सॉर्ब किया, लेकिन जब देखा कि इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए तो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बर्डन दिया, बाकी खुद भी अब्सॉर्ब कर, इसलिए कि जैसे ही ये सर्टेनिटी हो जाएगी कि परमानेंट सॉल्यूशन और जो है समाधान निकल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग का और ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में एक समाधान हो गया और गल्फ कंट्रीज भी एक सहमति हो गई है, तो आप देखेंगे ब्रेंट के प्राइस जो है वो अपने आप क्रैश कर जाएंगे। और जो एक्सपेक्टेड लाइन है, जो फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेड लाइन है कि $60 से $70 के बीच में रहेंगे, तो जाहिर है कि एक क्वार्टर में जो तकलीफ हुई उसका जो है इम्पैक्ट भी सबसे कम न्यूनतम इम्पैक्ट भारत के लोगों को हुआ, बाकी देशों में तो तुरंत बढ़ा के उनको पास ऑन कर दिया, हमने अब्सॉर्ब किया ना, तो हमें तारीफ
12: आलोक शर्मा जी प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ
15: करनी चाहिए
12: कि आज उन्होंने अगल बगल के देशों में झांककर देखिएगा,
15: एक लास्ट सवाल, लास्ट बात,
12: पड़ोसियों को देख लीजिएगा, अगर पड़ोसियों के हमसे ज्यादा बढ़े तो खुश हो जाइएगा। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये बार बार ये बताया जाता है सरकार की तरफ से। 10 सेकंड सर, उसके बाद आलोक शर्मा जी बात करेंगे जल्दी से।
15: यस, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि देखिए जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको जरा दिखा लेना चाहिए तेलंगाना में वैट कितना है, वैट कम कर दीजिए ना, दूसरे को नसीहत देने से अच्छा, दूसरे को ज्ञान देने से अच्छा जरा कुछ करके तो दिखाइए कि वैट कम कर दिए, भाई हम भी बहुत चिंतित हैं अपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए जरा वैट कम करके दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं चैलेंज करता हूं कि वैट जरा आप केरला में और यहां कम के दिखाइए, हमने तो बहुत कम रखा है, हमारे यहां वैट इस तरह से नहीं बढ़ा जहां इनके
16: आलोक शर्मा जी
15: में। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था सिर्फ
16: मतलब जो भी आपके पास अभी राज्य बचे वहां पर आप वैट कम कर दीजिए उससे राहत दिलवा
15: दीजिए। इन्फ्लेशन
16: दूसरा आप
15: डबल डिजिट
16: एक डबल डिजिट देशों में देखिए
15: डबल
14: सबसे पहले तो मैं देश को मेलोडी बधाई देना चाहूंगा। देश को मेलोडी बड़ी कड़वी लगी है, जब से मेलोडी बटी है विदेशी टॉफी तो उसके बाद से देश जो है पूरा कहर बरप रहा है देश के ऊपर। देश को मेलोडी बधाई। अब बात आ जाते हैं कि भाई किसके यहां वैट कितना है। अरे भाई आपने तो 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, लगभग 42.5 लाख करोड़ रुपया आपने जनता की जेब से निकाला। अगर आपने 42.5 लाख करोड़ रुपया निकाला था और कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ाया था तो स्वाभाविक है कि आज आप ही का फर्ज पहले बनता है। राज्यों को जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनका तो आप मनरेगा तक का पैसा नहीं दे रहे, हर राज्य का जीएसटी का सीएसटी का पैसा अटका हुआ है, आप सारा का सारा पैसा अडानी को देना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि आपको व्यापारियों की ज्यादा चिंता है राज्यों की नहीं। आप मुझे केवल ये व्हाइट पेपर ले आइए कि किस किस राज्य का हमने पिछले 12 साल में जीएसटी का पैसा कब कब दिया है, इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर ले आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100 के पार आपने पेट्रोल का सेंचुरी मार दी और उसके बाद भी आज आप कह रहे हैं कि विपक्षी ये नहीं कर रहे, जनता पेट्रोल ना लगाए, जनता विदेश ना जाए, जनता गोल्ड ना खरीदे और हम गोल्ड खरीदे, आरबीआई गोल्ड खरीदे, अडानी गोल्ड खरीदे, जनता ना खरीदे। भाई आप जिम्मेवारी कब लोगे, 12 साल हो गए आपको। नोटबंदी जैसा कुकर्म आपने किया था, ये केवल होमरूज के पीछे छिप जाना, युद्ध के पीछे छिप जाना, इससे कुछ नहीं होगा। आप तमाम सोशल इंडिकेटर्स देख लीजिए, मॉल न्यूट्रिशन से लेकर
15: जवाब देना चाहते
14: हो इंडिकेटर देख लीजिए, आपका बुरा हाल है। जिस तरह से खाद्यान्न के दाम अब बढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, जिस तरह से खाद की कमी आएगी, जिस तरह से खरीफ की क्रॉप का प्रोडक्शन घटेगा, सरकार की क्या तैयारी है सरकार वो बताए। आप हमें नेपाल से और पाकिस्तान से तुलना करने के लिए आज हम मजबूर हो गए। अरे भाई चाइना का पर कैपिटा इनकम कितना है, यूएस का कितना है, किससे कंपेयर कर रहे हैं। हमारी करेंसी में ज्यादा डाउनफॉल है, पड़ोसी के देशों में करेंसी मजबूत हुई है हमारी तुलना में कंपेयर।
16: मुझे पता था
14: उसके बाद आप कह रहे हैं
16: कि ये मुद्दा निकलेगा कि राज्यों के वैट के दाम कब कम होंगे। और जाहिर सी बात है, और जिनको जिन्हें जिन्हें ऑयल प्राइसेस समझ में आती है उन्हें यह बात भी समझ में आती होगी कि क्रूड ऑयल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, नहीं नहीं सुनिए तो, उसमें उसमें उसमें रिफाइनिंग चार्जेस होते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, डीलर्स कमीशन होता है और स्टेट का वैट भी उसमें लगता है, और जिसके वजह से दाम आज की स्थिति में इतने बढ़ते हैं। और कुछ स्टेट्स के नाम यहां पर गिनवाए गए हैं, तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट निकाल के रखी है यहां पर। सैयद जफर इस्लाम जी, जरा वो लिस्ट भी हम सबके सामने रख देते हैं और उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए आज की स्थिति में सबसे टॉप पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एनडीए की सरकार है वहां पर, आंध्र प्रदेश में वैट है 31% चार्ज किया जा रहा है। नंबर दो पर है तेलंगाना, 115 रुपए वहां पर है, तेलंगाना में 35% वैट वहां पर चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद है केरला, केरला में 30% वैट उस पर चार्ज किया जा रहा है, अभी अभी कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 29% वैट चार्ज किया जाता है। ये चार टॉप फाइव है, मैं गिनाऊंगा, बाकी भी गिनवा सकता हूं मैं। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा बिहार है उसके बाद नंबर, और बिहार में 23.58% वैट वहां पर चार्ज किया जाता है। यानी राज्य कहीं ना कहीं तो कमाने की कोशिश करेंगे ना। सैयद जफर इस्लाम जी, पूरी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूं, टॉप फाइव में दो राज्य आपको मिलेंगे कांग्रेस शासित, बाकी के तीन राज्य एनडीए के भी आपको
15: लिस्ट मालूम है।
16: तो वैट आप कैसे कम करेंगे बताइए।
15: मुझे पूरी लिस्ट मालूम है, नहीं मुझे पूरी लिस्ट की जानकारी है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो लोगों को यह समझना चाहिए कि स्टेट्स के इनकम जो है रिसोर्सेस वो डिपेंडेंट है वैट पे, और वो बियॉन्ड अ पॉइंट वो वैट कम नहीं कर सकते, उनकी अपनी मजबूरी होती है, उनके जो जो जो उनके फिस्कल डेफिसिट है, जो स्टेट फिस्कल डेफिसिट वो बढ़ जाएगा, तो उनकी
14: भाषा बदल
15: इसलिए नहीं नहीं यू टर्न एक मिनट सुनिए पहले बात। लेकिन जिन जिन राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है जैसे केरला है
14: आपकी भाषा बदल।
15: अरे भाई सुनो सर, तो आपके जैसे नहीं है,
14: बे लोटा के 20 साल से बैठे, वो शर्म नहीं आती आप लोगों को।
15: देखिए आप बढ़ा लीजिए, आप नहीं
17: हमें शर्म तो आपका नहीं चाहिए। आप यूपीए समय से कंपेयर कर लीजिए, यूपीए में सर यूपीए समय से क्या किया आपने? आप यूपीए से समय से कंपेयर कर लीजिए, कितना आपने बढ़ाया था, कितना हमने बढ़ाया। आप तो एक दिन में 7.5 लीटर बढ़ा, 7.5 रुपया प्रति लीटर बढ़ा रहे थे, हमने नहीं किया। इसमें साहिल भाई बीच में नहीं बोला था, अगर बीच में बोलेंगे तो बीच में हम भी बोलेंगे, ये गलत तरीका है। नहीं नहीं गलत तरीका,
16: पूरा जवाब सुन लीजिए ना। बीच में हम नहीं, मैंने तो अभी उनको वैट के दाम बता दिए हैं अलग अलग राज्यों में क्या है, मैं लिस्ट पूरी बता सकता हूँ। यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है, बिहार है, राजस्थान में 30% करीब करीब उस पे वैट का चार्ज है, महाराष्ट्र के भीतर 25% वैट चार्ज किया जाता है, पश्चिम बंगाल में 25% वैट वहां पर चार्ज किया जाता है, कर्नाटक में 30% है, उड़ीसा में 28% है। हर राज्य कहीं ना कहीं 25% से ज्यादा चार्ज कर रहा है, सबसे कम गुजरात में है। जी
17: साहिल भाई देखिए, मैंने कहा मैं बहुत चूंकि ये इन्फॉर्म डिस्कशन हो रहा है, तूतू मैमे वाले नहीं, और चूंकि आलोक भाई समझते हैं इकोनॉमी को, इसलिए इनसे तूतू मैमे नहीं करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि स्टेट के पास लिमिटेशंस होती है, लेकिन इनके अगर जो ये ज्ञान दे रहे हैं तो पहले केरला और इससे इनिशिएट करा दे, हमारे लिए एक टेम्पलेट, हमारे बाकी स्टेट के लिए टेम्पलेट बन जाए कि भाई ऐसा हमने किया, देखो भाई एग्जाम्पल है, आप करो, लेकिन ये नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं आपसे कि जहां तक प्राइसेस का मामला है, जरा यूपीए सरकार में जब थी उस वक्त कंपेयर कर लीजिए, परसेंटेज टर्म में कितना उनके समय बढ़ा, कितना बढ़ा, और इन्फ्लेशन की देख लीजिए हालात क्या थे, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, क्यों इस तरह का कोई ऑयल शॉक हुआ था उस तरह में, सप्लाई चेन डिस्रप्शन हुआ था क्या? जिस तरह की स्थिति से हम जूझ रहे हैं उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था 11वीं पोजिशन से चौथी, और बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन में हम 6th पोजिशन पे है, तो हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर है, बेहतर तरीके से मैनेज हो रही है, जनता भी पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल रही है। हाँ इनको दिक्कत हो सकती है, ये कांग्रेस वालों को दिक्कत हो सकती है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रेजाइल इकोनॉमी, जितना भी मैक्रो नंबर्स है वो सारे बुरे हालत में थे, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, रेटिंग अपग्रेड हमारे समय हुआ,
16: कोविड
17: हमारे
16: समय आके भी, आज की स्थिति में
17: हमारी अर्थव्यवस्था,
16: मॉडल आलोक शर्मा जी हमारे पास है कि जिसके वजह से अगर ऑयल शॉक हमें महसूस हो रहा है, सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हमें महसूस हो रहा है, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑयल प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बावजूद हम जनता तक उसका बोझ नहीं पहुंचा है, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आलोक शर्मा जी? और उसके बाद मुझे जरा अरुण कुमार जी के पास जाना है, क्योंकि इस पर भी काफी चर्चा हो रही है।
18: केवल साहिल जी मेरा मानना है, साहिल जी मेरा केवल ये मानना है कि हम केवल पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल की और तमाम चीजों पर चर्चा करके पीछे हट जाते हैं। इकोनॉमी केवल पेट्रोलियम प्राइसेस से नहीं चलती है, वो एक मेजर फैक्टर है, लेकिन उसके बाद इनके जितने प्रोग्राम थे, वो मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, बैट अप इंडिया हो, लेट अप इंडिया हो, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम चलाए थे, उनकी सबकी बैंड बजी हुई है। उनके आंकड़ों पर बात कीजिए आप, स्किल डेवलपमेंट का हाल यह है कि फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने लगभग चले गए और 6 महीने के बाद भी 0.6% केवल यूटिलाइजेशन हुआ है उसका। एक योजना आई थी, आप देखिए कि उनके अंदर हम 20,000 लोगों को स्किल डेवलप करेंगे एक एक कंपनी में, वो कौन सी योजनाएं हैं, कहां चली जाती हैं? 2014 में 17% जीडीपी का हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से था, आज 12.5% पे आ गए हैं और ये मेक इन इंडिया का ढोल पीट रहे हैं। केवल एक पेट्रोलियम प्राइसेस के पीछे छिप जाना सरकार की तमाम नाकामियां हैं। सरकार की आज हालत यह है कि वेजेस स्टैग्नेशन है, क्या वो भी विपक्षी दलों की वजह से है? क्या मजदूरी जो स्टैग्नेट कर रही है, क्या नोएडा और हरिद्वार का बीएचईएल का जो वहां पर पूरा जिस तरह से हुआ है ठेकेदारी प्रथा में गुजरात मॉडल पे, क्या उसके ऊपर सरकार ने कोई भी एक्शन लिया? दुर्भाग्य ये है कि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। सरकार ने एक डमी मिनिस्टर बैठा रखी है,
17: देश की जनता के लिए नहीं खर्च
18: की, कोई कोई किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं
17: जनपद को दे दिया।
18: साहिल जी देश हित में और बता रहा हूँ, एक ही दिन बढ़ा दो सारा देश हित, 15 रुपए बढ़ा दो देश हित,
16: जरा एक मिनट,
18: 50 रुपए बढ़ा दो,
16: हम ऑयल प्राइजेस पर
18: पोस्टर लगवा दो, मोदी जी हैं तो मुमकिन है,
16: आलोक शर्मा
18: बढ़ा दिए हमने, एक ही दिन में बढ़वा दो।
16: ऑयल प्राइजेस पर चर्चा आज की स्थिति में इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसका सीधा असर लोगों पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोग वहां पर पेट्रोल पंप पर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निचले तबके के लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आज इंडस्ट्रीज भी वहां पर सामने आकर कहने की कोशिश कर रही है कि उसका उसका असर जो मिडिल इनकम ग्रुप है उस पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या आज की स्थिति में कोई दूसरा ऑप्शन देश के पास है? ये बात भी सही है कि भारत के भीतर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भारत की स्टॉक मार्केट से बाहर निकल कर जा रहे हैं। क्या इससे सचमुच में अगर इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होती, क्या उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पर काबू करने में हम सफल हो पाते, या आज की स्थिति में हमारे पास और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है?
19: साहिल जी, ये बात सच है कि सप्लाई शॉक तो अर्थव्यवस्था में है, और ये सप्लाई शॉक का मतलब है कि एनर्जी की कमी भी है और एनर्जी के दाम भी बढ़े हैं, और क्योंकि इसमें क्रूड में बहुत सारे और पदार्थ निकलते हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है आपका, जो बाकी जैसे प्लास्टिक्स है आपका, जो सिंथेटिक्स है आपके, जो फर्टिलाइजर है, सब चीजों पर असर पड़ा है। तो कुल मिला के आपका जो उत्पादन कम होगा, आपके दाम बढ़ेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हमने सही समय पर कदम उठाया? मेरा मानना है कि मार्च में ही हमको सही कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि हम जो 35% अपना जो रिफाइंड प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसका मतलब है कि हमारी क्रूड शॉर्टेज जल्दी जो है तेज हो जाती है, और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हम मार्च से ही जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को रोक देते, हम जो एक्सपोर्ट को रोक देते, तो शायद स्थिति हमारी इतनी नहीं बिगड़ती जो अब बिगड़ती चली जा रही है। तो इसका असर किस पे पड़ रहा है? जैसे आपने सही कहा कि आम आदमी पे पड़ रहा है। उसको अगर आप छोटे शहर में देखें, मेरा बेटा गोवा में है, वो 3 घंटे लाइन में खड़ा रहा और पेट्रोल पंप बंद हो गया, उसको पेट्रोल नहीं मिला। छोटे शहरों से जो खबर आ रही है कि वहां पे जो लाइनें लग रही हैं, वहां पे मिल नहीं रहा पेट्रोल डीजल, और इसका असर हमारी खेती पे भी पड़ रहा है कि खेती में डीजल की जरूरत होती है, और जैसे सुनने में आ रहा है कि जो आपका जो फर्टिलाइजर है उसमें भी ये क्योंकि ये शॉर्टेज है तो वहां पे भी ये कमी है, और एल नीनो आने वाला है साल सुपर एल नीनो, तो इसका असर हमारी खेती पे पड़ेगा, इससे हमारे दामों पे पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो सरकार 3.5% कह रही है, वो एक्चुअली गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर उसको सिलेंडर 950 रुपए का सिलेंडर 4,000-5,000 में है तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन रेट 40% हो गया, जहां वो गैस को जो है 100 रुपए किलो में भरवाता था और आज जो है वो 400-500 में भरवाता है, तो उसके लिए तो आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट तेज हो गया। इसीलिए नोएडा में जो लोग जो 10,000-11,000-12,000 कमाते थे, वो कहते हमारे घर का खर्चा नहीं चल सकता, और ये बात सही है कि जो 10,000-11,000 कमाता है उसके पास कोई बचत नहीं होती है, और बचत नहीं होती है तो उसका जो एकदम बिगड़ जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं शहर से गांव की तरफ, क्योंकि यहां गैस उपलब्ध नहीं है, खाना बनाना मुश्किल है, ढाबे में दाम बढ़ गए।
16: जफर इस्लाम, जो इन्फ्लेशन रेट आज की स्थिति में हम देने की कोशिश कर रहे हैं 3.48%, वो एक एवरेज रेट है, लेकिन उसका असर जो निचले तबके के लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है, जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे उसका सीधा असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा कि जो उसके आधार पर बाकी सारी चीजें खरीदते हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि डीजल के दाम मत बढ़ाइएगा, आज की स्थिति में वो भी मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरुण कुमार जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मार्च महीने से हमने दाम बढ़ाए होते तो आज हम इस स्थिति में नहीं आते।
17: नहीं, वो देखिए उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हमने तो भार जो बर्डन जो है वो पास ऑन किया ही नहीं, सरकार अब्सॉर्ब करती रही। आज भी बहुत थोड़ा सा भार जो है या बर्डन जो है कंज्यूमर को पास ऑन किया, जो जनता को इस कोशिश में कि शायद ये सारे मामले सुधर जाए, तो ये जो अचानक तेल के दामों में, क्रूड के दामों में तेजी आई थी वो वापस आ जाए और फिर ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाएगा, देखिए जितना प्राइस तेल का प्राइस बढ़ा है उसके अगर कैलकुलेट कीजिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के साथ वो जो है 20-30 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ेगा। आज 3.48 है, आपको इन्फ्लेशन जो है 3.8 से ज्यादा जाएगा नहीं, और हमने तो अपने पहले से डे वन से ये पॉलिसी बना के रखी है इन्फ्लेशन +4 ± 2%, तो हम तो वेल विद इन द लिमिट है। इनके समय में जरा पूछिएगा जरा सा आलोक शर्मा जी से कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन, चरमराती इकोनॉमी, फ्रजाइल इकोनॉमी और साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सब जो है कचड़े की तरह, और उसके साथ जो कहते थे जनता ने 10 जनपद
16: की सरकार चलने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में,
17: तो ऐसे में
16: वजह से कितना भी असर पड़े उसका हम पर सीधा असर नहीं होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद प्रोफेसर तनेजा बात करेंगे।
19: नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर जो हम गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी जो कंजम्पशन बास्केट है वो एकदम श्रिंक हो गई है एसेंशियल्स में, और एनर्जी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसके लिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20-30% के करीब पहुंच गया है, जिससे कि उसका सारा बजट गड़बड़ा गया है, क्योंकि वो अब जो कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि अगर 11,000 रुपए की तनख्वाह है और सिलेंडर में ही आपका 3-4 हजार एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो आपके लिए तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 30-40% हो गया है। तो जो आपका सीपीआई है वो आपके जो गरीब आदमी की हालत है उसको नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मेरा कहना है। और इसलिए हमें अपना इन्फ्लेशन का रेट जो है वो गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि क्या वो अपने घर बार का खर्चा चला पा रहा है। अगर वो घर बार का खर्चा नहीं चला पा रहा,
16: प्रोफेसर तनेजा, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बार बार ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पर कंट्रोल जितना किया जा सके उतना किया जाना चाहिए। प्रोफेसर तनेजा, ठीक
20: जी, नमस्कार साहिल जी। देखिए प्रोफेसर अरुण ने जैसे बोला, और फिर आपका जो सवाल है, प्रोफेसर अरुण ने जैसे बोला कि गरीबों को अगर देखना चाहिए, तो सर आप जो बार बार बात कर रहे हो वो मोर ऑफ अ मिसमैनेजमेंट लग रही है, मिसमैनेजमेंट एट दी माइक्रो लेवल लग रही है, जिसको सरकार एड्रेस भी कर रही है। जो आपने कहा कि 900 रुपए का सिलेंडर, तो दैट मीन सरकार की तरफ से वो 900 समथिंग का सिलेंडर है जिसको आप 4,000-5,000
16: आप बता सकती है प्रोफेसर, मिसमैनेजमेंट किस तरीके से?
20: बिल्कुल साहिल, जैसे जमाखोरी, काला बाजारी, वो जो अफवाहों का बाजार होता है, जैसे हमने शुरू शुरू में देखा, जिस दिन जी,
18: अरे भाई 21 राज्यों में सरकार,
16: नहीं आप बोलिए
20: सर, आप मुझे बोलने दीजिए ना, आनंद में आपके
18: सरकार भाजपा की है,
16: नहीं बोलिए बोलिए, आप अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि मुझे भी ये सवाल पूछना है कि मिसमैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी किसकी है अगर मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है तो।
20: बिल्कुल, मिसमैनेजमेंट की जिम्मेवारी सरकार की है, इसीलिए सरकार को ऐसे क्राइसिस के टाइम पे भी एस्मा लगाना पड़ा, क्योंकि वो जो जमाखोरी का एक मेंटालिटी थी, साहिल आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ था और होर्मुज बंद हुआ था, उस समय कहां कहां पे किस किस के घरों में गैस के सिलेंडर्स मिले थे, वो कौन कौन लोग थे, उसके बाद अगर आप आज देखें 80 दिन के बाद, वो जो पैनिक सिचुएशन थी, वो जो क्राइसिस था, वो खत्म हो गया है विद रिस्पेक्ट टू गैस। फिर अगर बात करें ऑयल की,
16: तो ऑयल में प्रोफेसर तनेजा, मैं आपको जो बात डॉक्टर अरुण कुमार कहने की कोशिश, प्रोफेसर अरुण कुमार कहने की कोशिश कर रहे हैं, जरा तस्वीरें देख लीजिएगा, इन रियलिटी चीजें कुछ अलग है। बार बार आकर सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि देखिए यह तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से लाइन लग रही है महाराष्ट्र के बुलढाणा में, आपको पता नहीं चल पाएगा कि यह पानी की किल्लत के वजह से टैंकर के पीछे लोग भाग रहे थे या डीजल खरीदने के लिए लोग भाग रहे थे, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा देंगे।
20: बिल्कुल,
16: आपके रूरल इलाकों में जाएगी, स्थिति अलग हो जाती है वहां पर।
20: सर जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ग्राउंड से और आप ही लोगों के हवाले से आ रही हैं, तकरीबन अगर हम मैक्सिमम मान के भी चलें कि 1,200 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पे मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है, तो हम उसको परसेंटेज टर्म्स में अगर देखें, तो जो हमारी इस समय सरकारी आंकड़े हैं और जो हमारी नंबर ऑफ पेट्रोल पंप हैं, वो तकरीबन 1,02,066 पेट्रोल पंप पूरी कंट्री में, अगर हम उसका 1,200 भी लेते हैं तो मात्र 1-2% बनता है। हम मैक्रो फिगर को क्यों भूल जाते हैं साहिल, और जो बार बार बात हो रही है 2013 के साथ कंपैरिजन की, अभी आलोक सर ने बोला कि ईएमआई बढ़ रही है, सर मैं समझ ही नहीं पा रही, जब अभी आप क्योंकि इकोनॉमिक्स के हो तो आप ये बात समझा सकते हो, जब रेपो रेट 5.25 की दर पे स्टेबल रखा हुआ है, तो कैसे आपने ईएमआई बढ़ने का दावा कर लिया, और यही 2013 में 8%
16: मॉनेटरी पॉलिसी आना बाकी है अभी।
20: जी बिल्कुल, अभी आना बाकी है, लेकिन
16: आरबीआई ने डिविडेंड दिया है,
20: बिल्कुल आरबीआई ने डिविडेंड दिया है, और उसी के तहत अगर बढ़ती भी है तो 5.75।
16: ये देखिए, ये तस्वीर देख लीजिएगा, ये जरा तस्वीर बड़ी करके दिखा दीजिएगा प्रोफेसर तनेजा को, ये तस्वीर आप अगर देख सकती है स्क्रीन पर तो आपको पता चलेगा, ये पानी के लिए लाइन नहीं है, पानी के लिए लोग नहीं भाग रही है, ये महाराष्ट्र के बुलढाणा में लोग डीजल खरीदने के लिए भाग रहे थे, इस तरीके से हाथ में बड़े बड़े जो क्या टैंकर्स कह सकते हैं या बड़े डिब्बे लेकर वो वहां पर भाग रहे थे, प्लास्टिक के डिब्बे लेकर, देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं
20: साहिल, बहुत बढ़िया
16: बात, उनके ट्रैक्टर के लिए चाहिए उनको डीजल, ये ट्रांसपोर्टर भी है इसमें से, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन आकर कह रही है कि एक साथ ही बढ़ा दीजिए, कि लंबी लाइन ट्रैक्टर की लंबी लाइन यहां पर नजर आ रही है,
20: ऐसी तस्वीरें कई जगह से मिल जाएंगी। तस्वीर दिखाई साहिल जी आपने, बहुत अच्छी है तस्वीर दिखाई, लोगों के हाथ में कनिस्टर है, क्या भारत में कनिस्टर में तेल पेट्रोल डीजल लेना अलाउड है? आप एक बहुत मैं कहती हूँ जिम्मेवार पत्रकार हैं, तो ये तो आप ही को बोलना चाहिए कि जब एक जेटी जो वो है कैनिस्टर, उसका जो एक इस्तेमाल होता है, ये कहाँ से कच्चे तेल और कहाँ से पेट्रोल?
16: चलिए, इस वक्त सरकार ने बताया है कि 78 दिनों का कच्चा तेल हमारे पास है, संसदीय समिति की बैठक के बाद ये खबर यहाँ पर आ रही है, संसदीय समिति की बैठक में सरकार ने बताया है कि 78 दिनों का कच्चा तेल का रिजर्व इस वक्त भारत के पास है। इस बैठक में ये पूछा गया संसदीय समिति की बैठक में कि आखिरकार कितना कच्चा तेल का रिजर्व हमारे पास है, तो 78 दिनों का रिजर्व हमारे पास है, ये सरकार की तरफ से बताया गया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि रोकथाम की तैयारियां हमारी चल रही है, खाद का स्टॉक भी हमारे पास पर्याप्त है। खरीफ के बाद खाद का स्टॉक को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही थी। खरीफ हंगाम जो ये हुआ है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की है इबोला वायरस को लेकर, वो एक बैठक चल रही है। और दूसरी है संसदीय समिति की बैठक चल रही है, उसमें कच्चे तेल को लेकर कहा गया है 78 दिनों का हमारे पास स्टॉक है, खाद का स्टॉक भी हमारे पास पर्याप्त इस वक्त है, ये भी सरकार की तरफ से बताया गया है। 78 लाख टन की मांग है, 80 लाख पास खाद का है, ये भी यहां पर कहा गया है। आज की स्थिति में सरकार की तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से युद्ध की स्थिति से निपटने की तैयारी, खास करके भारत के भीतर स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है। दूसरी तरफ आज तक पर आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत सफल हो, ईरान को लेकर बातचीत सफल हो, लेकिन जब तक वो नहीं होती है तब तक भारत पर इस तरीके का संकट क्या बना रहेगा और उसी बात को लेकर हमारा भी ध्यान रहेगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।
0: Tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
21: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
23: आगे आगे
24: अरे उधर
23: उधर गया।
24: करेक्ट करेक्ट
25: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
26: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
27: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
28: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
29: और वही कहाँ गए थे घूमने?
30: जीके मैक्स।
31: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
30: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
31: जेके वॉल मैक्स
30: बेस्ट पेंट,
31: जेके मैक्स।
30: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
32: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
33: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
32: आप कैसे कर लेते हो?
33: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
32: नहीं,
33: और म्यूचुअल फंड्स है
32: सही।
34: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मुज संकट का ऐसा कहर है कि 2 महीने बाद भी बारूद आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
1: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
2: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
3: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए, यही नहीं मालूम पड़ा ना न्यूज पे ना उस पे, कोई दे ही नहीं रहा।
0: हिंदुस्तान के आवाम को पता है कि ईरान की जंग के कारण तेल के दामों में आग लगी हुई है और सिर्फ 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए तक महंगा हो चुका है, लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं, यही आशंका कांग्रेस पार्टी भी जता रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने लिखा है, सरकारी तेल कंपनियों ने 2025-26 में भारी मुनाफा कमाया, यहां तक कि चौथी तिमाही में जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी तीनों बड़ी तेल कंपनियों का लाभ 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% अधिक था। जब ये तेल कंपनियां इतना भारी मुनाफा कमा रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना धीरे धीरे क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जहां ओएमसीएस भारी कमाई कर रही है, वहीं आम जनता भारी दमनकारी मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बोझ तले पिस रही है, क्या यही सुशासन है? विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे रही लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
5: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए लेकिन हॉर्मूज संकट का ऐसा कहर कि दो महीने बाद भी बारूदी आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए, 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे, 23 मई को पेट्रोल 90 पैसे, डीजल 91 पैसे और अब 25 मई की सुबह पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे, 10 दिन के भीतर 4 बार में पेट्रोल 7 रुपए 38 पैसे, डीजल 7 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया। अवाम हलकान है कि जब जंग में दाम नहीं बढ़े तो सीज फायर के बीच हर तीसरे चौथे दिन दाम क्यों बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता गिनाते हैं कि जंग से पहले तक चौथी तिमाही में तेल कंपनियों का मुनाफा 41% बढ़कर 19,470 करोड़ रुपए था, तो हजारों करोड़ रुपए महीने की कमाई करने वाली तेल कंपनियां और सरकार अब धीरे धीरे तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती हैं। और आंकड़े कहते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ लेकिन अप्रैल और मई में 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901 करोड़ रुपए का मुनाफा मिला लेकिन अप्रैल मई में 17,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का दावा है। जबकि कांग्रेस के नेता आंकड़े गिनाते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठाया और उस पर ऊंची दर से टैक्स वसूली करके 15-20 लाख करोड़ रुपए कमाए, जबकि बीजेपी दलील देती है कि 2005 से 10 के बीच जब कच्चे तेल का भाव $147 तक चला गया था तब मनमोहन सिंह सरकार ने 1,48,186 करोड़ के ऑयल बॉन्ड तेल कंपनियों को दिए थे। इन पर 6.35% से लेकर 8.4% तक ब्याज देना था। तब से 10-15 साल के बीच तेल कंपनियों ने इन बॉन्ड्स को भुनाना शुरू किया जो 2015 से 2026 तक चलता रहा। इस बीच मोदी सरकार ने 1.71 लाख करोड़ का ब्याज तेल कंपनियों को चुकाया और मूलधन मिलाकर कुल 3.20 लाख करोड़ तेल कंपनियों को देना पड़ा। ऊपर से जब ईरान में जंग छिड़ी तब जनता को महंगाई के झटके से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज 13 से घटाकर 3 रुपए किया, डीजल पर एक्साइज 10 रुपए से घटाकर 3 कर दिया। इससे सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है क्योंकि हमारे देश में जब 1 लीटर पेट्रोल बिकता है तो 11.90 रुपए केंद्र, 15 से 21 रुपए राज्य, 8 से 12 रुपए तेल कंपनी और 3.5 से 4.5 रुपए पेट्रोल पंप वालों की कमाई होती है। इसी तरह 1 लीटर डीजल पर 7.80 रुपए केंद्र, 11 से 15 रुपए राज्य, 4 से 7 रुपए तेल कंपनी और 2.5 से 3.5 रुपए पंप वालों की कमाई होती है। महंगे तेल के कारण सरकार की कमाई घटी है जबकि तेल कंपनियां धीरे धीरे दाम बढ़ाकर अपने पुराने नुकसान की भरपाई कर रही हैं क्योंकि तेल कंपनियों के बही खाते में आए भूचाल का अनुमान लगाते हुए बाजार के जानकार पहले ही 20 से 25 रुपए तक दाम बढ़ाने की आशंका जताते हैं।

0: ते रहे और ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर कार बाइक चला रहे आम लोगों की जेब पर ही नहीं पड़ेगा। ऑटो कैब बस के किराए बढ़ेंगे, ट्रकों की माल ढुलाई महंगी होगी, सब्जियां राशन महंगी होंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, कपड़े दवाइयां सब कुछ महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो कंपनियों का मुनाफा घटेगा, उत्पादों के दाम बढ़ेंगे तो खपत कम होगी, मांग घटेगी तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार कटेगा, असर सीधा विकास दर पर पड़ेगा क्योंकि कच्चा तेल 10% महंगा होता है तो GDP 1% तक घट जाती है। ऊपर से महंगे तेल की खरीद में घिसते डॉलर का भंडार तेजी से घटा तो चालू खाते का घाटा बढ़ता जाएगा और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक को रेपो रेट बढ़ाना होगा जिसका असर होम लोन से कार लोन तक पड़ता है। आज तक ब्यूरो।
1: मिडिल ईस्ट जंग का संकट, सप्लाई लाइन ठप, पेट्रोल डीजल फिर महंगे, जनता परेशान। 10 दिन पेट्रोल डीजल ने मारी 5 रुपए की उछाल, तेल की कीमतों में उछाल, रोटी से व्यापार तक असर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने पूरे विश्व को तनावग्रस्त कर रखा है। जंग के चलते वहां से तेल निर्यात में समस्या का असर आम लोगों के जेबों पर दिखने लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। पिछले 10 दिनों में ईंधन करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते पूरे देश में महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। आम जरूरत की चीजों से लेकर परिवहन तक हर चीज पर असर दिखने लगा है। विपक्ष ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी नेता ने खाड़ी देशों के युद्ध का हवाला देते हुए महंगाई के लिए वैश्विक संकट को जिम्मेवार ठहराया।
2: फिर से भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी।
3: ये वैश्विक स्थिति जो उत्पन्न हुआ है जिससे पूरा भारत और दुनिया प्रभावित है उसका ही प्रकोप भारत पर भी है।
1: शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 86 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 86 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल 91 पैसे की बढ़त के साथ 92.49 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं। दोनों शहरों में डीजल के दाम भी पेट्रोल के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। ये इस महीने की तीसरी बढ़ोतरी है। तेलों की कीमतों में उछाल पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से घबराने की बजाय जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदने की अपील की है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने एक बार फिर महंगाई की चिंता बढ़ा दी है। अब आगे क्या होगा? क्या महंगाई का मीटर बढ़ता जाएगा या इसे रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी? आज तक ब्यूरो।

अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है। भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी के जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी अभी तो आज सवाल यही है कि क्या बंगाल में हिंदुत्व के जिस कार्ड पर बीजेपी जीत पाई वो कार्ड यूपी में ना चले, इसकी तैयारी में अखिलेश यादव मैदान में। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक विवादित बयान बोलने वाले राजकुमार भाटी जी को उन्होंने तलब भी कर लिया। और दिलचस्प है कि राजकुमार भाटी जी आज यहां पर लाल गमछा ओढ़कर हमारे साथ डिबेट में भी पहुंच गए, तो उनसे इस बात पर भी चर्चा होगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं उस पर क्या कहना है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, सुबुई खान संयोजक राष्ट्र जागरण अभियान की, मोहम्मद फैज खान संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, ये तीनों इस तरफ हैं। तो दूसरी तरफ राजकुमार भाटी के साथ मौलाना अंसार रजा चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि नमाज को लेकर, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो गलत है, दोनों तरफ साधने की कोशिश करें। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत। इस हफ्ते का मंगलवार आ रहा है तो 7 दिन पुरानी ये तस्वीरें दोबारा याद आ गई हैं। पिछले हफ्ते बड़े मंगलवार को लखनऊ में अखिलेश यादव भंडारे का प्रसाद बांटते नजर आए थे। हिंदू आस्था को सार्वजनिक करने की समाजवादी परिवार की ऐसी तस्वीरें राजनीति में एक तरह से दुर्लभ है। और इसीलिए जहां एक और सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव यूपी में 2027 के चुनाव के पहले मुस्लिम वोटों के समीकरणों के साथ बीजेपी के हिंदुत्व को रोकने का दांव चल रहे हैं। यहां यह भी सनद रहे कि बड़े मंगलवार पर भंडारे का प्रसाद बांटने के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने अपने पीडीए कार्ड पर ऑडिट वाला दांव चला था जिसमें उन्होंने जातीय भेदभाव का आरोप दोहराया था।
1: अगर वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव डिसीजन लेता है, लैपटॉप बांटता है, एक्सप्रेस वे बनवाता है, डायल 100 बनवाता है या अन्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है तो उसका आवाज गंगा जल से धुलवाया जाता है।
0: ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्ती को ये कहकर चुनौती दी है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है। उधर योगी आदित्यनाथ बकरीद पर सड़क पर नमाज को रोकने के लिए बेहद मुस्तैद दिखते हैं। पिछले हफ्ते सड़क पर नमाज को लेकर योगी का ये बयान सुर्खियों में था।
2: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।
0: इस बयान के बाद रविवार को कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन को योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाएंगे। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। बकरीद पर प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाए, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे।
4: देश का रहने वाला हिंदू मुसलमान वो एक दूसरे की आस्था का भी सम्मान करता है, उनकी परंपराओं का भी सम्मान करता है, उनके त्यौहार, उनकी पूजा पाठ का भी और नमाज का भी सम्मान करता है। ये जितने बयान आते हैं चुनाव के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है इसलिए आते हैं।
0: बकरीद आएगी और बीत जाएगी, लेकिन ये राजनीति लंबे समय

0: सुलगती रहेगी। हिंदुत्व ने बीजेपी को लगातार चुनावी सफलताएं दी हैं, ऐसे में विपक्ष की चुनौती यही है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कैसे फ्लॉप किया जा सके। आज तक ब्यूरो, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नमाज को लेकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो गलत है। अच्छा देखिए, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि वो प्रसाद भी बांट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस के अपमान के मुद्दे पर भी आपको कह रहे हैं भारी तो नहीं पड़ जाएगा।
1: देखिए अंजना जी, पहले तो मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से राजकुमार भाटी, जिन्होंने एक ही बार नहीं अनगिनत बार हिंदू ब्राह्मणों का अपमान किया है, और क्या बोला है सुनिए।
2: ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोय।
1: ब्राह्मण समाज को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करने वाले आज राजकुमार भाटी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को इनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए, जिससे प्रेसिडेंट सेट हो कि कोई हिंदू ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरीके से नहीं बोल सकता, क्योंकि एक ही नहीं इनके अनगिनत वीडियो हैं और ये बार बार ऐसा करते हैं। दूसरी बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जजमेंट है कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार आर्टिकल 25 के अंदर नहीं देता है। तो योगी आदित्यनाथ तो वही कह रहे हैं कि जो संविधान के अंदर लिखा है। इनको दिक्कत यह है कि इनको अपने वोट बैंक को साधना है और इनको बैक करने वाले कट्टरपंथी इस बात को नहीं मान रहे कि भाई नमाज पढ़ना है तो आप जाके अंदर पढ़िए, सड़क पर नमाज पढ़ने का तो अधिकार संविधान भी नहीं देता है, 25 आर्टिकल में लिखा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर के दर्शन अभी तक करने नहीं गए, चुनावी हिंदू बन रहे, पर क्या आज आप ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए माफी मांगेंगे?
0: राजकुमार भाटी जी, एक तो माफी की बात, क्योंकि अखिलेश जी ने भी आपको तलब किया है तो बोला ही होगा कि ये सम्मत कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव एक तरफ भाईचारा भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जातियों में बंटवारा भी चाहते हैं, तभी तो आपने इस तरह की बात बोली होगी, क्यों?
3: नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो, कई बार मैं स्पष्ट कर चुका हूं, किसी भी बात को अगर संदर्भ से काट कर देखा जाएगा तो बात समझ में आएगी नहीं। मेरी 12 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट का भाषण है, उसमें से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के और उस पर चर्चा की जा रही है। आप पूरा भाषण सुनिए तो आपको लगेगा कि उसमें मैंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा और मेरी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी, और किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हम अपमान कर ही नहीं सकते क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं।
0: ये लाइन आपने बोली है या नहीं बोली है?
3: संदर्भ देखिए, आप पूरा देखिए।
1: अभी भी
3: अंजना जी
0: गलत है।
3: अरे मैं जस्टिफाई क्यों नहीं करूंगा?
1: हाँ। फिर जस्टिफाई कर रहे
3: हैं। अरे और मैं आपकी हमें मिला दूं,
1: हिंदू ब्राह्मण को आप प्रोस्टिट्यूट से
3: अंजना जी, मैं मेरा नंबर
0: पूरा कर लेंगे पूरा,
3: और मेरे ख्याल से तो विषय पे ही चर्चा होनी चाहिए।
0: हां नहीं, उसी पे होनी चाहिए, उसी पे होनी चाहिए। इसमें क्या है, माफी मांग लीजिए, गलत बोला तो आगे बढ़ते हैं।
3: आप सबने पढ़ी सुनी होगी, अश्वत्थामा हते नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा भी सुन लिया होता द्रोणाचार्य ने तो महाभारत का रिजल्ट कुछ और होता। जब आप आधे आधी चीज सुनेंगे तो आपको सही अर्थ समझ में आएगा ही नहीं, किसी की भी समझ में। जो समझदार लोग हैं, मैं ब्राह्मण समाज के कह रहा हूं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आज भी मेरे घर पे 100 ब्राह्मण आए, सुबह बैठ के चाय पी के गए और ये कह के गए कि हमने पूरा भाषण सुना है, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है।
0: लेकिन 100 ब्राह्मण जो घर पे नहीं आए उनके लिए कह दीजिए कि आपका,
3: नहीं तो मैं कितनी बार माफी मांगू किसी बात के लिए। और जो मुझे जो गाली बकी जा रही है सोशल मीडिया पर, मेरी गर्दन काटने पे इनाम घोषित किया जा रहा है, उसके लिए भंडारी जी माफी मांगेंगे? मेरी माँ बहनों को लेकर गाली बकी जा रही है सोशल मीडिया पे, मैंने तो किसी को गाली नहीं दी।
1: सर तन से जुदा की कोई बात नहीं कर रहा।
3: अरे सुनो, आप वो मिश्रा वकील है वहाँ के ग्वालियर का, उसने 11 लाख रुपए इनाम घोषित किया है, जो राजकुमार भाटी गर्दन काट देगा उसको 11 लाख रुपए,
1: क्या
3: आप माफी मांगेंगे उसके लिए?
1: आप वापस
3: पहले बताइए, आप माफी मांगेंगे?
1: आज तक के नंबर वन शो पे देख रही है कि भाटी जी कह रहे हैं कि कंटेक्स्ट में उन्होंने जो ब्राह्मण समाज को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करा है, सही है। सुनिए एक और इनका बयान।
2: लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं, किसी,
3: अब ये चर्चा ही विषय बदल गया,
2: लेकिन ज्यादातर आपने दो लोगों को निकलते हुए देखा होगा, एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है, एक आदमी
1: तिलक लगाकर पंचांग दबाकर निकलता है और उसको कह रहे हैं कि ये भैरूपिया है।
0: अच्छा, क्या भाटी कोई जी पे बहस करनी है? भाटी जी पे बहस करनी है,
1: समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, ये समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है। अगर इनकी होती भाई,
0: जल्दी से
1: होती तो जाके मौलाना आपको बोला कि जाके हिंदू लड़की का जबरन धर्मन धर्मांतरण करते हो टोपी पहनकर और करके, बोलो ऐसा बयान दिया हो किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये इनका तुष्टीकरण।
3: ये नमाज तो बहाना है, ये केवल जो भोले भाले हिंदू हैं, जो सीधे हिंदू हैं, उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को औकात में ला रहे हैं उनकी वोट हासिल करने के लिए। इनका असली निशाना दलित और पिछड़े हैं। पश्चिम बंगाल में जो 17% आरक्षण ओबीसी का है वो इन्होंने आज 7% कर दिया है, जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 27% है।
1: झूठ।
3: ओबीसी की आबादी 54% है, 54% को 27% आरक्षण, उसमें भी पश्चिम बंगाल में 17 और आज कर दिया इनकी सरकार ने 7%।
1: झूठ।
3: तो असली क्या झूठ है?
1: झूठ।
3: 7% नहीं किया
1: मुसलमानों को,
3: 7% नहीं किया,
1: नहीं
3: 17 का 7 किया, नहीं किया
1: जो मुसलमानों को ओबीसी के
3: इस तरह झूठ बोलने से कुछ फायदा हो रहा है?
1: आप ये कह रहे हैं कि एक साथ
3: मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अंजना जी से बात
1: नहीं कह रहा हूँ, पर
3: अंजना जी इनका असली मकसद ये है,
1: बोले हिंदू है
3: मुसलमान को दिखा के ओबीसी और एससी के हक खाना चाहते हैं,
1: बदमाश कह रहे हैं आपने,
3: ये 85% हिंदुओं का शोषण करना चाहते हैं, उनके हक मारना चाहते हैं, उन्हें अपमानित करना चाहते हैं।
0: पर क्या बंगाल ने अखिलेश यादव को सिखा दिया कि आप सिर्फ एक तरफ की बात करके कि आंखों में मदीना और वहीं चले ये करे ये सब कावा मदीना करने से सिर्फ वोट नहीं मिलेगा, आपको हनुमान जी की भी आरती उतारनी होगी?
3: देखिए भारत की राजनीति में शायद मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा हनुमान भक्त कोई और नेता हो। वे हनुमान के भक्त थे, हनुमान की पूजा करते थे हमेशा। लखनऊ में आज नहीं, बड़े मंगल पे जो भंडारे लगते हैं, डिंपल जी हर साल बड़े मंगल पे भंडारे लगाती हैं लखनऊ में।
0: अच्छा।
3: जो हनुमान जी के नाम से लगते हैं। किसी की आस्था पे प्रश्न करना और किसी की आस्था पे सार्वजनिक चर्चा करना यही प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं।
1: हिंदुओं को बदमाश,
3: हम हनुमान
0: बारी बारी बारी बारी
1: जस्टिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये कोई दूसरे धर्म की बात होती तो सरतन
3: ये घोर जातिवादी व्यक्ति है, इन्हें केवल ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, बाकी देश दिखाई नहीं दे रहा।
1: ब्राह्मण को
3: ये केवल ब्राह्मण पर चर्चा करना चाहते हैं, घोर जातिवादी व्यक्ति है, ये आपकी पूरी डिबेट को एक जाति पे ले जाना चाहते हैं, ये घोर जातिवादी व्यक्ति है। हम पूरे समाज पे बात कर रहे हैं, इन्हें केवल
0: ठीक है। वापस आ रहे हैं भाटी जी, लेकिन आप उन पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, जाति की बात आपने कही जिसको लेकर ये बवाल छिड़ रहा है।
3: नो, नो, नो,
0: और हमारी यही कोशिश है कि आप डिबेट में आइए, अपनी बात रखिए, आगे बढ़िए।
3: मैं
0: आपने जो भी बोला, मेन सवाल पर आइए। मुझे जितना याद है राजकुमार भाटी हल्ला बोल के हर शो में कहते थे कि धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है,
3: आज भी
0: हम धर्म की दुकान नहीं लगाते, हम धर्म पे राजनीति नहीं करते, तो फिर आज वीडियो क्यों डालना पड़ रहा है? ये मेरा प्रश्न, इसका तो जवाब ही नहीं आया।
3: ये तो आज के युग में हर व्यक्ति किसी को बुखार भी होता है उसे भी सोशल मीडिया पर डालता है, किसी ने व्रत रखा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सब डालते हैं। ये तो आजकल है, आम प्रचलन है।
1: फिर ये खिल्ली उड़ा रहे, एक एक हिंदू महिला अगर व्रत करती है तो उसका अपमान कर रहे हैं, ऐसा मुसलमानों पे क्यों नहीं बोलते? वोट बैंक पे बोलो, बोलो एक मौलाना टोपी पहनकर
3: भाई भंडारी को क्या हो गया, ये विषय से पलट रहे हैं।
1: हिंदू धर्म की
3: ये गाड़ी को ट्रैक से बाहर ले जा रहे हैं,
1: आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, आपका चेहरा
3: तैयारी करके नहीं आया, विषय की जानकारी नहीं,
1: आपको माफ करेगा। इसीलिए आज आप हारोगे, अखिलेश यादव अगर चुनाव हारेंगे तो उसका
4: देखिए, कल सुंदर कांड का पार्ट चल रहा था, मैं भी वहां पर गया था, बहुत अच्छी पंक्ति उसमें आई, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। सुमति होगी तो संपत्ति आएगी और कुमति होगी तो विपत्ति आएगी, इसलिए हम सुमति से चले और कुमति से बचे, जो सही बात है उसको स्वीकारे। बिल्कुल अंजना जी, मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, यदि किसी को जाति के नाम पर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, किसी दूल्हे को इसलिए घोड़ी से उतार दिया जाएगा कि वो अमुक जाति का है, तो मैं उसका विरोध करूंगा, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्होंने परमवीर चक्र जीता, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए योगदान दिया, राम प्रसाद बिस्मिल जी, मंगल पांडे जी, परशुराम जी, यदि इनकी परंपरा का अपमान होगा तो मैं इसका विरोध करूंगा, और इसके लिए व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने नर नहीं गज के समय में ढोल नगाड़े बजवा दिए थे, तो साहब आप भी आसपास की जो बात कर रहे हैं ना, उस समय ढोल नगाड़े बज गए थे, अभी कुछ नहीं बज रहे हैं, माफी मांग लेना सबसे अच्छा माध्यम है, मैं ये कहना चाहूंगा। अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अकॉर्डिंग टू संविधान है और अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक के कायनात अपना काम करवाना जानता है। ये मौलाना, उलेमा, मुफ्ती यहां पर जो बैठे हुए हैं, इनको इस्लाम का काम करने भेजा गया था कि जाओ जहां जहां कांटे पड़े हैं उसे हटाओ, जहां जहां लोगों को तकलीफें हैं उसे दूर करो, तो ये उल्टा तकलीफ बनाने में यहां पर बढ़ गए। सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, संपत्तियों पर अवैध कब्जा करेंगे, रोहिंग्याओं को बसाएंगे, इससे ट्रिपल तलाक लेकर आएंगे। भाई इस्लाम में ये सब है ही नहीं,
5: तो अल्लाह को अपना काम करवाना था। कुल वल्लाह वाद अल्लाह उस्समद अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है, निर्लेस है, उसे आप लोगों की जरूरत नहीं है। मोदी जी से उन्होंने अपना काम करवा लिया, योगी जी से अपना काम करवा लिया। इस्लाम में तहारत है, एक बात और, इस्लाम में तहारत का बड़ा महत्व है, मौलाना बैठे यहाँ पर जानते होंगे। तहारत यानी कि स्वच्छता। सड़कों पर कितनी गंदगी होती है आप जानते हैं, कोई थूक देता है, गाड़ियां आती है, नाली का गंदा पानी आता है, वहां नमाज पढ़ने की जिद अजीब सी है।
0: क्यों मौलाना अंसार रजा साहब, क्या वो सही नहीं कह रहे हैं?
6: देखिए वो क्या सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं वो तो देश तय करेगा, लेकिन मैं अंजना जी एक बात कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ साहब ने जो बात कही है कि अगर नमाज पढ़ोगे तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है,
0: ये नहीं कहा।
6: क्या कहा है?
1: मैं पढ़ देता हूँ।
0: नमाज पढ़ोगे तो दूसरा तरीका है,
1: ये नहीं बोला है, ये
0: सड़क पर।
1: हम लोग नमाज को बंद नहीं करेंगे पर नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए।
6: उसके बाद
1: पढ़ो आगे, ये रहा
6: नहीं, नहीं,
1: स्टेट, बढ़ो
6: वो
1: रहा।
6: नहीं उनका भाषण सुनाइए,
1: उसी पे सड़क पर करोगे तो दूसरा तरीका
6: है। लफाजी से भंडारी साहब जंग नहीं जीती जाती।
1: मौलाना साहब वर्बैटम कोट कर दो।
6: और अगर उन्होंने
1: अगर उन्होंने
6: ये बोला, अगर उनका वो निकल आया कि अगर तरीका नहीं अपनाओगे तो हमारे पास दूसरा तरीका है, मैं माफी मांगूंगा, खड़े होकर माफी मांगूंगा। अगर उनका ये लफ्ज ना निकले कि अगर ऐसे नहीं मानोगे तो मेरे पास दूसरा तरीका है,
1: अगर सड़क पर नमाज पढ़ना कानूनी रूप से नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका।
6: हाँ यस, तो वो दूसरा तरीका क्या है?
4: कोई अवैध रूप से
6: करेगा, आपका नाम भंडारी है, आपका नाम भंडारी है,
1: भारतीय भाई है मेरा,
6: सुनो
1: वो भी बोल सकते,
6: आप ये
4: बलवा करेगा, कोई कब्जा करेगा, दूसरा तरीका होगा। मैं केवल एक बात इनसे,
6: अरे फैसला बोल चुके हो आप, दूसरे को मौका दो यार।
4: बच्चा अगर मस्जिद,
6: अरे सुनो ना भाई,
4: नहीं जाता है,
6: सुनो बहुत बड़े जानकार हो इस्लाम के,
4: सुनो है तो उसको छड़ी मार।
6: आप अंजना जी सुनिए, छड़ी मारने का कहीं हुक्म नहीं है, तुम झूठ फैला रहे हो, बिल्कुल
4: नहीं खाओ, खुदा की कसम खा के बोल दो कि मदरसे में छड़ी नहीं खाए हो। अरे मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, छड़ी खाए, उनसे पूछे बाजू में बैठे गुलाम सरवर साहब, छड़ी खाए कि नहीं, बाखुदा खुदा की कसम खा के बोलिए। अरे आप सही तरीके से नहीं चलोगे, इस्लाम कहता है भाई उसको छड़ी मार के सही रास्ते पर लाओ। वही योगी जी कह रहे हैं दूसरा तरीका,
6: तुम कह रहे कि नमाज पढ़ने के लिए छड़ी मारी जाती है,
4: नहीं मारी जाती नमाज पढ़ने के लिए छड़ी,
6: नहीं मारी जाती है
4: पढ़ने के लिए,
6: नहीं मारी जाती है,
4: मदरसे में पढ़े ही नहीं हूँ, फिर
6: खत्म भाई का। सुनो
4: किसी मदरसे में नहीं पढ़े,
6: अब सुनो
4: दूसरी चीज, गुलाम सरवर साहब छड़ी खाओ,
6: एक
7: मिनट,
4: मारते हैं।
6: दूसरी चीज अंजना जी, योगी आदित्यनाथ जी जो योगी जी का दूसरा तरीका, तो पहली बात तो देश को ये पता होना चाहिए कि वो दूसरा तरीका क्या है, और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो एक शासक की भाषा नहीं हो सकती है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो मंत्र है उसको लेकर के चलना चाहिए था, और ये उसी दिन बयान क्यों दिया गया जिस दिन हमारे देश का ये सुशीलजी प्रधानमंत्री ऐसे कर करके शेखों को गले लगा रहा था, उसी दिन मुसलमानों के लिए बात क्यों कही गई?
0: क्या कोरिलेशन है?
6: क्यों
0: मतलब
6: मिले नहीं ऐसे?
0: आपको शेख दिखता है यहाँ, यूएई का प्राइम मिनिस्टर है,
6: सर यहाँ मिसालें दी जा रही है सऊदी की, यहाँ मिसालें सऊदी की दी जा रही है कि सऊदी में नमाज नहीं होती है, तो सऊदी में हर कदम पे दो, हर दो कदम पे मस्जिदें हैं। सुनो दूसरी चीज, योगी
0: आदित्य ज्यादा मस्जिदें हैं यूएई में या भारत में?
4: भारत में,
6: देखिए भारत में अगर मस्जिद है तो वहां की आबादी के हिसाब से, वहां की आबादी के साथ। दूसरा आप सऊदी की मिसाल हर चीज में नहीं दे सकते ना, हर चीज में कैसे आप सऊदी की मिसाल?
0: सड़क पर पढ़ना चाहिए नमाज या नहीं?
6: अब आ जाते हैं हम इस मुद्दे पर। मैं देश के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे राहगीरों को तकलीफ हो। अब जहां तक सवाल शिफ्टिंग का है, हमारे यहां जमाने से शिफ्टिंग से नमाजें होती चली आ रही है, लेकिन एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, जोहर की नमाज का कितने वक्त से कितने वक्त तक है उतने ही शिफ्ट हो सकती है। चूंकि अब दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा है तो आप तादाद कम कीजिए, तो अब जिस आदमी के ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है और उसकी तादाद हम कैसे कम करें? गोली मार दें उनको, नदी में डुबो दें उनको, क्या करें उनका, वो बता देना मुझे।
0: सुबह
6: उसको छोड़ दीजिए,
4: इतना सारा लैंड क्या करेंगे,
6: वो सरकार समझेगी, वो तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम वक्त को समझोगे।
4: वहां नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं?
6: ये बताओ आप मुझे, उन लोगों का क्या करें? उन्होंने कहा कि जनसंख्या कम करो,
0: सर जी हो जी कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करने क्यों कहा?
8: जी जी
6: अंजना जी, नमाज के लिए जो उन्होंने कहा जनसंख्या कम करो, तो वो कहां जाएं जिन पर नमाज फर्ज हो चुकी है?
8: जी अंजना जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी भी हूं, मुसलमान भी हूं और एक अधिवक्ता भी हूं। सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी हैं, अपना पिंडदान करके कोई व्यक्ति योगी बनता है, तो जो लोग उनको पंथ से या जाति से या मजहब से जोड़ते हैं और ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की अज्ञानता दर्शाता है। वो किसी जाति या पंथ के नहीं है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के हैं। अब हम आ जाते हैं उनकी स्टेटमेंट पर। ये जो स्टेटमेंट है कि सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़क पर नमाज पढ़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, और किसी भी परिभाषा के हिसाब से आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते। हमारे आर्टिकल 25 में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मजहब का पालन करना, प्रचार करना, प्रसार करना, यह अधिकार हमें मिला है। लेकिन नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता की धज्जियां नहीं उड़ा सकते आप अपने मौलिक अधिकारों को अपनाते हुए। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ क्यों नहीं आती है? और एक अंसार जी, एक सवाल आपने और पूछा, आप एक बात बताइए कि अगर ये कहा जा रहा है कि सड़कों पे नमाज मत पढ़िए, पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होता है शालीनता के साथ,
6: सिर्फ नमाज के लिए?
8: अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।
6: और अगर आप
8: नहीं करेंगे,
6: आप अधिवक्ता हैं ना,
8: अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।
6: और
8: अगर आप नहीं करेंगे,
6: कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होता है?
8: पूरी होने दे रहे, अरे सब पर लागू होता है
6: ना, उन्होंने सबका जिक्र
8: किया। आपका जवाब देती हूँ,
6: उन्होंने सबका
8: पांच सेकंड दीजिए,
6: नमाज का इसलिए जिक्र किया है, उन्हें समझ में आ रहा है अब हिंदुओं को कैसे।
8: अरे आपने सवाल जवाब लेने के लिए पूछा है तो जवाब भी ले लीजिए।
6: जवाब नहीं है आपके पास, ये
8: वही योगी आदित्यनाथ है जो अगर कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाते हैं तो साथ के साथ ये भी ऑर्डर्स निकलवाते हैं कि कोई भी अभद्र या अश्लील गानों पर, डीजो पर डांस करते हुए पकड़ा गया तो तुरंत उठा के जेल में डाला जाएगा। कितने कांवड़ यात्रियों को उठा के जेल में डाला था जो इंडिसेंसी मचा रहे थे सड़कों पर? ये वही योगी आदित्यनाथ हैं। राम मंदिर का जब जजमेंट आया था अंजना जी, उसके बाद सबसे पहली गिरफ्तारी अराजकता मचाने वाले हिंदू की उत्तर प्रदेश में हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग। अपनी राजनीतिक हित साधिए, लेकिन कम से कम बात वो तो करिए जो लॉजिकल लगे।
7: गुलाम
8: कुछ भी बोलते हैं आप लोग।
7: गुलाम सरवर साहब, कौन सी मतलब
3: अंजना जी, असल में आप
7: कौन सी गलत बात है? कानून कहता है कि आप सड़क पर नहीं, और कोई अगर नवरात्र के लिए भी अगर कोई लंगर भी लगाता है परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन नहीं है, पुलिस खदेड़ देती है, कोई लगा ही नहीं सकता है विदाउट परमिशन। लेकिन ये तो हक मान लिया गया जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है।
3: मेरी तो हैसियत नहीं है, लेकिन एक सलाह फिर भी दूंगा कि आप जैसे तीन तीन का पैनल बनाते हैं, एक मिडिल मैन को भी बीच में रखिए। हमेशा पक्षपात ठीक नहीं लगता है। ये जो विषय है ना, इस विषय में मुसलमान भी कंफ्यूज है। अभी मैं सुबह पीसी किया हूँ इसी पर,
7: मिडिलमैन ही साबित हो।
3: मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो काम हमारे उलमा को 100 200 साल 500 साल पहले करना चाहिए, जो समझाना चाहिए, जो बताना चाहिए, वो आज दुर्भाग्य बदनसीबी है मुसलमानों की कि पॉलिटिकल पार्टियां हमें थ्रेटिंग के अंदाज में
7: डरा के कहती हैं,
3: डरा के कह रही हैं, जो हमको खुद ही अब इस्लाम
7: हर चीज पे लागू होता है, ट्रिपल तलाक से लेकर हर चीज में लागू होता है।
3: मैं एक बात और एक एडिशनल बात कहूंगा, सोशल मीडिया पर हमारे मुस्लिम नौजवान वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि देखो योगी जी का भाषण, और वो वीडियोस जो सड़कों पर तांडव मच रहा है अलग अलग मौकों पर, जो नॉन मुस्लिम भाइयों के द्वारा जुलूस और ये वो दिखा रहे। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये कोई लॉजिक हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। इस्लाम का अपना एक उसूल और सिद्धांत है जो मानवीयता पर आधारित है, और उसमें साफ शब्दों में ये दिशा निर्देश है कि आपके किसी भी कृत्य से किसी को कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या कारण रहा कि वर्षों से हमने कभी गंभीरता से इस पर विचार ही नहीं किया कि हम जहां चाह रहे, नाला है, सड़क है, गंदा है, अच्छा है, बस लेके मुसल्ला दौड़े और एकदम टाइम देख के दौड़े। अरे भाई नमाज है, घड़ी देख के क्यों दौड़ रहे हो कि एकदम दो मिनट जब जमात खड़ी होने को रहेगा तभी पहुंचेंगे। अब जगह मिल नहीं रही है तो पूरा सड़क पर सब खड़ा हो गया। मस्जिदों में नमाज, और हमारे यहाँ जो मौलाना ने कहा वो पुरानी रवायत है दो तीन जमात की, भाई उसको कीजिए, ठीक है। सड़क पर आप नमाज पढ़ रहे थे, बारिश हो गई, योगी जी तो बारिश नहीं बरसाएंगे, मोदी जी भी नहीं बरसाएंगे, बारिश तो ऊपर वाला कभी भी बरसा सकता। बारिश अगर हो जाएगी तब क्या कीजिएगा, तब तो दो तीन जमात कीजिएगा ना। तो क्यों आप जो है राजनेताओं को मौका देते हैं कि आज पूरे मुल्क में डिबेट हो रहे हैं, तुम ये ना करो। तुम आज भी एक परंपरा जिस पर अब तक हिंदुस्तान के उलमा काम नहीं किए, तमाम आइम्मा और खतीब जो मस्जिदों में मिंबर पर खड़े होते हैं उनको चाहिए, आपके यहाँ शराब हराम है, दारू हराम है, नशा हराम है, आज भी मुहर्रम जैसे मुबारक मौके पर
9: ताजिया बनाकर गैर शरई ढंग से सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा, हम कंपेरिजन करते हैं कि उनका भी तो हो रहा है, ये कोई लॉजिक ही नहीं उनका हो रहा, उनका हो रहा वो उनके धर्मगुरु समझेंगे, हमारे यहां जो हो रहा वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी है। बार बार फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है, उसका भी तो हमको ख्याल करना है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे पर एक लाइन का जवाब चाहता हूं, पूरे मुल्क के मुसलमानों को कहता हूं, आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोई तीज हो, त्यौहार हो, जैसे शब बरात में वो रात में जागते हैं, वो मोटरसाइकिल स्टंट ये वो जो होता, हम लोग हमेशा रोक रहे हैं सारे खतीब को, उलमा को। आप तो हमारे मस्जिदों में कमेटियां बन रही है समझाने के लिए, कई सालों से ये काम हो रहा, फिर भी काबू में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कई सालों से इनको खुले सांड की तरह छोड़ा गया था, तो इतनी आसानी से ये काबू में नहीं आएंगे, लेकिन काम हो रहा। तमाम उलमा और खतीब बिल्कुल सीरियस हो जाएं कि नौजवानों को काबू में कीजिए आप, अगर ये उनसे मुकाबला है, उनसे मुकाबला, ये मुकाबले के लिए हम थोड़ा ना इस मुल्क में, इस मुल्क को अमन चैन सुकून
7: मुझे लगता है संजीदगी के साथ आपने जो ये गंभीर बात की है, बहुत क्रांतिकारी बात है, लेकिन वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि होता क्या है कि बंद कमरे में शायद मौलाना अंसार रजा भी ये बात कह लें, क्योंकि मैं इनको जानती हूं, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि जो वो कह रहे हैं उसमें कितना सेंस है, लेकिन खुलकर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, और हो सकता है सोशल मीडिया पर लोग आपका पीछा करें, लेकिन आप खुलकर रहिएगा। और जिस तरीके से एक सेकेंड, ये हर धर्म पर लागू होता है,
9: बिल्कुल
7: हर धर्म पर लागू होता है कि हम ये समझे कि हम धर्म का पालन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं,
9: कि
7: हम वहां पर गड़बड़ करें।
9: राजनेताओं को मौका ही नहीं मिलना चाहिए जो मिल गया।
10: गुलाम जी, आपने जो कहा उसके लिए खड़े होकर आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। ये सच्चे भारतीय मुसलमान है जो असली सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अंसार रजा जी, मैं अंसार रजा को एक्सपोज भी करूंगा। अंसार रजा ने कहा कि भारत के अंदर इतनी मस्जिदें नहीं है, क्या आपको पता है यूएई के अंदर सिर्फ 9000 से 10000 मस्जिद है, भारत के अंदर 3 लाख पर कैपिटा की बात सुनो, पर कैपिटा की बात,
6: भारत की बात करो भाई।
10: अभी आपने बोला ना यूएई शेख, तो आपका मैं असली
6: हमने नहीं कहा, जो देखा दुनिया ने वो कहा हमने,
10: पर
6: किसी भारत के मुसलमान से ऐसे मिले क्या, किसी भारत के मुसलमान से ऐसे मिले क्या, ऐसे मिले क्या, ऐसे मिले क्या किसी भारत के मुसलमान से, ऐसे मिले क्या, ऐसे मिले हैं क्या,
10: आरिफ मोहम्मद खान में इनको मुसलमान नहीं दिखता,
6: इनको सिर्फ दिखाई देता, तुम्हें आरिफ मोहम्मद खान चूंकि माथा टेकते हैं इसलिए दिखाई देता तुम्हें, ये माथा टेकते
5: कर्नल निजामुद्दीन के पैर छुए मोदी जी ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न से नवाजा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, इस देश के प्रधानमंत्री को बैठाया गया है,
6: हर वो मुसलमान जो मंदिरों में माथा टेकेगा,
7: बारी बारी से
6: आपको हर
10: मुसलमान
6: जो मंदिर के सामने माथा टेकेगा, हम माथा नहीं टेकेंगे, हम सिर्फ अपने आप के आगे झुकेंगे
10: देश के,
6: और हम कहीं माथा नहीं टेकेंगे। सुनिए, हम कोई माफी, हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया है कि हमने डीजल बढ़ा दिया तो हम
10: अगर डर में नहीं रहोगे,
6: हमने कोई पाप नहीं किया
10: है, बारह सौ
6: आपको सिर्फ वो मुसलमान दिखाई देता है जो मंदिर में माथा टेकता है, आपको वो मुसलमान दिखाई देता है जो मंदिर में माथा टेकता है, हम मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे, हम एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, सारे धर्मों की इज्जत करेंगे, लेकिन
7: भाटी जी जो इन्होंने कहा सरवर साहब ने, उसमें आपको दम नहीं दिखा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और हर धर्म के लिए वो सही। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत?
3: मैं गुलाम सरवर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं, और उन्होंने क्योंकि वो जिस धर्म से आते हैं, उन्होंने उस धर्म के लोगों को कहा है कि कंट्रोल रखो, अनुशासन रखो, ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिले। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलना चाहिए था कि सड़कों पर कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होंगे, स्पेशली ये कहना कि नमाज नहीं होगी, वो भेदभाव दर्शाता है, तो ऐसी भेदभावपूर्ण भाषा शासकों को नहीं बोलनी चाहिए।
7: देखिए आपकी एक लाइन पे कितना बवाल मचा है, है ना, एक सेकंड, एक रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ, एक रेफरेंस, उनको ये बोलना चाहिए था, उनको सब सोच समझ के बोलते हैं भाटी जी, सबको पता है कि मेरे बोलने का क्या असर
3: होगा, सोच समझ के ही बोला होगा, सोच समझ के ही बोला होगा, भंडारी जी को तो जानकारी नहीं, अपडेट नहीं है, जिस दिन, देखो बीच में कृपया, जिस दिन पश्चिम बंगाल में ओबीसी का आरक्षण चोरी करना था उसी दिन नमाज का बयान दे दो, ताकि बहस इस पे होती रहे, वरना आज आरक्षण पे बहस हो रही होती, ओबीसी के आरक्षण को 17 से घटा के 7 क्यों कर दिया, ये मुद्दा दब जाएगा,
7: चले जब आप
4: इसलिए सोच समझ के दिया होगा।
10: ये तस्वीर दर्शाती है इनमें और हमें क्या फर्क है?
4: तस्वीर दर्शाती है भारत की खूबसूरती, भारत की खूबसूरती दर्शाती है। इसलिए है क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है?
11: ये क्यों दिखा रहे हो?
10: अरे मेरा हक है,
11: क्या दिखाना चाह रहे हो?
10: आपको क्या ग्रिल्ट है?
11: क्या मोदी जी मस्जिद में नहीं गए? क्या मोदी जी मस्जिद में नहीं गए?
10: बता तो रहा हूँ फर्क है,
11: दिखाओ ना मोदी जी
10: वाले फर्क, बता
11: मोदी जी वाले दिखाओ ना।
10: ये वोट बैंक
11: तरफा बोलते हो यार, जाते मोदी जी मस्जिद में जाए तो जायज है, अखिलेश जी चले जाए तो नाजायज हो गया।
10: और साथ में
11: क्या तमाशा करते हो यार, डिबेटों में आकर के इस तरफा बोलते हो?
10: इनको गुलाम जी जैसे लोगों ने इनको आईना दिखाया है कि हिंदू ब्राह्मणों को गाली बको, प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में दर्शन करने मत जाओ, और साथ में हिंदुओं को जाति में बैठो, और उसके साथ में जो मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़े उसको बैक करो। सड़क पे नमाज की बात इसीलिए चली क्योंकि एक जगह पे नमाज पढ़ी जाती है, सच्चाई की बात है।
7: अंजना जी, सबसे पहले तो मैं गुलाम सरवर जी की बात की तारीफ करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया। देखिए, हम जब बच्चे थे हम लोगों को तो वो इस्लाम बताया गया था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं और उनके कुर्ते पर एक बिल्ली बैठी है तो वो अपने कुर्ते को कैंची से काट देते हैं ताकि बिल्ली की नींद खराब ना हो। ये इस्लाम हमें पढ़ाया गया है। आजकल हम जो सड़कों पर देख रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, वो शक्ति प्रदर्शन है। वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट है, वो इस्लाम के नाम की राजनीति है। और बहुत अच्छा है कि अगर मुसलमान बच्चे सरवर साहब की बात माने या हमारी बात को समझते हुए एक्चुअल समझें कि रियल इस्लाम क्या है, किसी को तकलीफ ना देना। और सबसे अच्छी इबादत तहज्जुद की नमाज, रात को 2 बजे की नमाज सबसे पावरफुल नमाज क्यों कही जाती है अंजना जी? क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी इबादत वही होती है जो अल्लाह और आपके बीच में अकेले में हो। आपको उसके लिए विटनेसेस की जरूरत या अपने पावर प्रेजेंटेशन या शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। जो सर लोग सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं वो इबादत नहीं है, वो अहंकार है, वो जिद है।
11: कोई जिद नहीं कर रहा और जिद करनी भी नहीं चाहिए। कोई जिद नहीं कर रहा।
7: अब कोलकाता की तस्वीर दिखाएं आपको, राजा बाजार की। एक सेकेंड, पुलिस के साथ झड़प हो गई, वहां पर ऐसी नौबत आ गई, लाठी चार्ज की नौबत आ गई, कहे नहीं हम सड़क पे ही पढ़ेंगे नमाज, क्योंकि उनको बता दिया गया कि तुम्हारा अधिकार है।
11: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई अधिकार किसी का नहीं है, ऐसा कोई अधिकार किसी का नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो आप बार बार मिसाल दे रही हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल में ये होता रहा है, उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब हालात कैसे हो रहे हैं।
10: कई सालों मतलब, में कांग्रेस ने
7: मतलब हालात बदल रहे हैं इसलिए बदल दो।
11: बिल्कुल हालात बदल रहे हैं, बदल जाइए। अच्छा,
7: गलत नहीं है वो, मतलब
11: गलत क्या? अगर गलत होता ऐसी धमकी दी जाती क्या? ऐसी धमकी दी जाती क्या?
10: फेंकने को बैक कर रहे हैं आप, यही सोच है। पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंकने की बात हुई, जाके जब उनको हटाया गया सड़क से, आप उसकी बैकिंग कर रहे हैं? आपकी सोच है। आप नमाज में यही फर्क है, ये भारतीय मुसलमान के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके नाम
7: पर मुसलमानों को ये समझ जाना चाहिए कि समय बदल गया,
11: बिल्कुल बदल गया। देखिए मैडम, मैं आप बहुत हिंदुस्तान
10: वाली बात,
11: आप हिंदुस्तान की बहुत बड़ी
10: समय बदल गया, थोड़ा देर शांत रहो,
11: समय बदल गया।
10: कांग्रेस आएगी, समाजवादी आएगी तो गुंडागर्दी करेंगे, फिर से वही मारपीट करेंगे, फिर से सड़कों पर कब्जा करेंगे, फिर से नया पैदा करेंगे, फिर से मुख्तार पैदा करेंगे, फिर से अफजल गुरु पैदा करेंगे, फिर से याकूब मेमन। अभी समय बदल गया, अभी थोड़ा जनसंख्या नियंत्रण,
11: समय बदला जी, समय बदला, वरना यही आ गई योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में रो रहे थे। समय की बात है, ये सिर्फ समय की बात है, ये समय की बात है भाई,
10: महंत को
11: ये समय की बात है, छोड़ दो यार,
10: को आप वापस से पानी कर रहे हैं, ये इनकी सोच है,
11: कर रहे हैं
10: समय का इंतजार कर रहे
11: हैं, जनसंख्या पार्लियामेंट में रोए के नहीं रोए,
10: महंत को रुलाए
11: पार्लियामेंट में, रोए के नहीं रोए,
10: का परिणाम
11: रोए पार्लियामेंट वाली सोच नहीं रोए
10: आपकी, कभी वो समय नहीं आएगा,
11: कभी
10: वो समय नहीं आएगा, आपके जीवन काल में समय नहीं आएगा कि आप,
11: हमें नहीं जरूरत है समय से, समय की मांग चाहता हूं, मुझे ऐसे समय की जरूरत नहीं है कि मुझे रोना पड़े अपने हालात पर, मुझे ऐसे समय की जरूरत नहीं है।
10: हिंदू को नहीं रुला पाएंगे, याद रखिएगा,
7: इनकी बात से शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है कि फला ये कर रहा है तो ये करे। धर्म थोड़ी बदलता है कि भाई अब किसी और की सरकार आई है तो आपकी सोच, आपका धर्म बदल जाएगा। धर्म तो वही कहेगा जो पहले कह रहा था।
12: जिस इस्लाम में इमामत, शरीयत, तरीकत, इबादत, मन सारी चीजें हैं, हम तो, हमको तो कहा गया कि तुम दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए ही तुम भेजे गए हो, तुम्हें इसी लिए लाया गया रोए जमीन पर कि दुनिया की रहनुमाई करो। हम अगर ये कहते हैं कि अरे हालात ऐसे बन गए कि अब हम वो चीज नहीं, हालात हमको बदलना, और हम हालात के साथ अगर बदल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गैर मैंने
4: गैर इस्लामी है,
12: बिल्कुल ये सूट नहीं बैठ रहा। एक बात और भी एक बात और एडिशनल जो अभी अंसार रजा साहब ने भी कही, हमारे एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, आप लोग भी उनको भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता ही मानते हैं, हजरत ओवैसी साहब, उनकी तकरीर भी सुनिएगा आप। वो एक तरफ से बड़े कम्युनिटी को ललकारते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था योगी मोदी चला जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। हाँ। आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को ललकारिएगा,
11: मैं बिल्कुल इसके
12: कैसे कैसे इस कैसे आप एडजस्ट कीजिएगा इस सोसाइटी में, इसका मतलब आप अपने समाज को खुद जो है झोंकने की फिराक में है कि जा तू आ बैल मुझे मार कर रहे, मतलब जा तू मर जा बेटा, मेरा काम ऐसे नहीं चलेगा सर। इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब की जो बात होती है, जो साझी विरासत की बात होती है, वो क्या ललकारना है क्या? ललकारने से आप क्या समाज में सुख शांति चैन प्यार प्रेम भाईचारा ला रहे हैं क्या? इसलिए एक आपको सही रास्ता, अब उसको आप इस्लामी रास्ता कह सकते हैं, संवैधानिक रास्ता भी कह सकते हैं, भारत के परंपरागत जो सांस्कृतिक और सामाजिक मार्ग है वो भी कह सकते हैं आप, वो है मिल बैठकर जो पंचायती व्यवस्था है कि भाई बैठिए हमारी कमी आप निकालिए, आपकी कमी हम निकाले, पांच लोग जिस पर सहमत हो जाए उस रास्ते को चुना जाना चाहिए, उस पर यस होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये कमी है, छोटे छोटे सियासी फायदे के लिए आप किसी के बड़े नुकसान को का अनदेखा जो कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं उचित नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी इसलिए निशाने पर है, इसलिए नहीं निशाने पर है कि वो इस्लाम को मानता नहीं, मुस्लिम सोसाइटी इसलिए निशाने पर है कि उसने इस्लाम के उसूलों को बहुत दिन बहुत पहले पीछे छोड़ दिया।
7: रजा साहब
11: देखिए, सरवर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई किसी कम्युनिटी को ललकारे। मैंने जो हालात बदलने बात वाली बात कही है, आज तक कभी भी पश्चिम बंगाल में किसी भी धार्मिक आयोजन पर पाबंदियां नहीं लगाई गई।
13: झूठ, दुर्गा विसर्जन के ऊपर ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पाबंदी लगाई थी, झूठ मत बोलिए, बार बार आपके झूठ को चेक करूंगा, चेक कर लीजिए वापस से, झूठ मत बोलिए।
11: क्या क्या चेक करोगे, अभी हम चेक करवाने पे आ जाएंगे तो उठ के भाग जाइएगा, हम अगर चेक करवाने पे आ जाएंगे।
13: झूठ मत बोलिए, हिंदू का धार्मिक आयोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुसलमान का, झूठ मत बोलिए।
11: सुन तो, अरे भंडारी साहब
13: गलत बोले आप,
11: सुना कीजिए ना, ये सब जो फर्जी लिखा पढ़ा लेकर के आते हैं, सुनिए
7: पश्चिम बंगाल का, इनको बताना।
11: अब जहां तक सवाल है, देखिए पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, हालात मुल्क के इसमें कोई शक नहीं है कि भाईचारे वाले हालात अब नहीं रहे। एक कौम को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, एक कौम को निशाना बनाया जा रहा है,
13: और देश आज चुनाव को देखकर अनुपम उदाहरण है,
11: वोटों को देखकर
13: आप इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ जाकर हज सब्सिडी चाहिए नहीं मिलेगी साहब, आपको इफ्तार पार्टी चाहिए नहीं मिलेगी, आपको बिरयानी चाहिए नहीं मिलेगी, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा जी, आपको नहीं मिलेगा, आप मुसलमान हो इस नाम से आरक्षण चाहिए नहीं मिलेगा,
11: किसने मांगा भाई मुसलमान में आज तक नहीं मिलेगा,
13: कब मांग रहे हैं
11: मुसलमानों ने, कब मांगा बताओ,
13: खराब हो गया
11: जरा बताओ तो, देखो
13: राजनेताओं अंजना जी राजनेताओं के एक वर्ग ने मुसलमानों को बिगाड़ा है और राजनेताओं का एक वर्ग मुसलमानों को सुधार रहा है, जब वो मीठी मीठी बात करते थे तब उन पे आपत्ति नहीं करते थे
11: मुसलमानों को, सुधारने की ना तुम्हारी औकात है ना
13: क्यों करवा रहे हो,
11: सुनो मेरी बात,
13: अरे आप समाजवादी पार्टी के बिगड़े हुए लोगों, कांग्रेस ने पैसा देने के लिए आप लोगों को बुलवाया है, राष्ट्रीय जनता दल का पैसा खा कर आपने मुसलमानों को बिगाड़ा है, और आज
11: जो मुसलमान बिगड़ा हुआ तुम जैसे मुसलमान बिगड़े हैं जो वहां बैठे हैं,
13: बड़ी दिक्कत हो रही है,
11: मुसलमान बिगड़ा है आदमी को अपनी हद में
13: क्यों नहीं खिला रहे, देश का माहौल खराब हो गया, अरे इमामों को सैलरी मुसलमान देगा कि सरकार देगी,
11: मुसलमान देंगे भाई,
13: ममता बनर्जी दे रही थी ना बीजेपी ने, ठीक किया ना,
11: ठीक बंद करवा दिया ना,
13: ठीक किया,
11: खुश हो जाओ, अरे तुझे तो सैलरी मिल रही ना, अरे
13: उसी में खुश
7: हो
13: जाओ,
7: तड़ाक मत कीजिए ना, तू तड़ाक मत कीजिए
8: अंजना जी,
7: सम्मान से बात,
8: अंसार रजा जी बार बार मेरे ऊपर, फैज भाई के ऊपर और हमारे जैसे,
11: नहीं बिल्कुल गलत, मैंने आपको ऊपर कोई टारगेट नहीं किया
8: अंजना जी, ऐसे मैं बोलूंगा मेरा गला ठीक नहीं है, मेरा गला ठीक
13: नहीं है, बोलो हमको काफिर बोलते हैं, काफिर बोलते हैं, सब हमको हिंदू बोलने का गला नहीं है, प्लीज बोलते हैं, मैं बीजेपी के बारे में बोलूंगा, आप बीजेपी नहीं है,
8: मैं बिल्कुल
13: बीजेपी
7: आप हमला क्यों कर रहे हैं,
13: चुप रहिए, अब आप बीजेपी शासन
8: की
13: बात,
8: अंजना जी चुप हो जाइए, क्या लीजिएगा, चुप होने का,
7: धन्यवाद।
8: जी आपने क्या बोला? अरे जो इन्होंने बोला मैं वही बताती हूँ, जो
11: इन्होंने काफिर बोल देंगे एक मिनट।
8: अरे सुनिए सुनिए, अभी आप कह रहे हैं आपके ऊपर नहीं किया, मैं बताती हूँ आपने क्या कहा। आप बार बार मेरे जैसे सनातनी मुसलमानों पे, फैज भाई जैसे सनातनी मुसलमानों पर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि आप लोग मंदिरों में माथा टेकते हैं। आप लोग जैसे जो मुस्लिम बच्चों को ये बहलाते हैं ना, वरगलाते हैं ना, सबसे बड़े इबलीस हैं आप। अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाया था ना तो सारे फरिश्तों को बुलाया था और कहा था इसके सामने सजदा करो। वही अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसी, वही आत्मा और परमात्मा, इबलीस हैं आप लोग। जिस फरिश्ते ने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं अल्लाह ताला मैं आपके अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करूंगा, उस फरिश्ते के अहंकार के कारण अल्लाह ताला ने उसको इबलीस बना दिया था। आप सब लोग इबलीस हैं जो मुसलमान बच्चों को ये कहते हैं कि कहीं सजदा मत करो। ये इस्लाम की और ये अल्लाह पे बिलीफ की इंतहा है कि हमें हर जगह खुदा दिखाई देता है, हमें हर जगह अल्लाह दिखाई देता है, हमें हर भगवान में, हर परमात्मा में खुदा दिखाई देता है, हर ग्रंथ में कुरान दिखाई देता है। ये है हमारा ईमान। और आप लोग इबलीस हैं, आप लोग मुनाफिक हैं, आप लोग मुसलमान बच्चों को भड़काते हैं। हम किसी पार्टी में बिलोंग नहीं करते हैं।
11: अपनी मर्जी है,
14: चर्च है, गुरुद्वारा
11: है, आपकी अपनी मर्जी है। आपके कहां माथे
8: टेकेंगे? अंजना जी, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन,
7: जल्दी खत्म कीजिए।
8: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एक लाइन। अरे मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ, आपसे नहीं बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी कौम के बच्चों को एक बात बोलना चाहती हूँ। कोई हिंदू ना मुसलमान नजर आता है, मुझे हर शख्स में इंसान नजर आता है। जिसका धर्म से ताल्लुक है करीबी, उसको वेदों में भी कुरान नजर आता है।
11: वो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, उनकी सोच है भाई।
7: वो अच्छी मुसलमान है कि नहीं?
11: हम उसमें कोई जराच नहीं करेंगे। हम सिर्फ
7: बैठे हैं, कटाक्षी कर रहे
11: हैं। हम इतना जानते हैं कि हम सिर्फ अपने रब के आगे सजदा करते हैं, वो भी नमाज में, इसके अलावा नहीं। आप क्या समझते हो? वो आपकी अपनी सोच है भाई।
8: मान लीजिए
11: वो ठीक है, जैसे लोग वो आप इबलीस है, हम इबलीस है, वो आप क्या? अरे वो वो अपनी हरकतों से जन्नत से निकाला गया। ये जो हरकत है जन्नत में जा नहीं सकता।
7: एक एक करके जल्दी जल्दी
14: एक चीज फैक्चुअली इबलीस है। किसी के फेथ को कोई दूसरा आदमी डिफाइन करे, मैं समझता हूँ ये तो उसके दिल में आप इसका मतलब दाखिल हो रहे हैं। भाई फेथ तो हमारे अंदर का है ना, हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते।
11: मुसलमान
7: इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट?
3: बड़े आराम से।
6: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
7: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही।
6: आप कैसे कर लेते हो?
8: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
9: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
10: नहीं
9: और म्यूचुअल फंड्स है
10: सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
3: बस 2000
4: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा.
5: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो.
6: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
11: सोच बदलो और बैंक भी.
12: जन गण और मन तीनों जब मिलते हैं तब गणराज्य बनता है. RSS और कुछ नहीं है, शुद्ध यूरोप की नकल करने वाले लोग हैं. जो सेकुलर राजनीति कही जाती है उसकी गलतियों, उसके पाखंड, उसके झूठ, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है. समाज से संवाद और सत्ता से संघर्ष, ये हमारा फॉर्मूला होगा. आज इस देश में देशद्रोह की राजनीति चल रही है

यूपी में ना तो सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, ना ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की आजादी। सरकार ने अपना इरादा बता दिया है, नमाज पढ़ने के लिए सड़क का इस्तेमाल गैर कानूनी होगा। योगी सरकार ने कहा है कि सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के फरमान के बाद पुलिस एक्शन में। यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन ही छुट्टी रहेगी। पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी, लेकिन दो दिन पहले ही शुभेंदु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके मुताबिक बंगाल में 28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी। कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती है। अदालत से इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने की गुहार लगाई गई। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One-hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: बस दो हजार
14: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा
15: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा।
16: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो।
17: इस हफ्ते का मंगलवार आ रहा है तो 7 दिन पुरानी ये तस्वीरें दोबारा याद आ गई हैं। पिछले हफ्ते बड़े मंगलवार को लखनऊ में अखिलेश यादव भंडारे का प्रसाद बांटते नजर आए थे। हिंदू आस्था को सार्वजनिक करने की समाजवादी परिवार की ऐसी तस्वीरें राजनीति में एक तरह से दुर्लभ है और इसीलिए जहां एक और सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव यूपी में 2027 के चुनाव के पहले मुस्लिम वोटों के समीकरणों के साथ बीजेपी के हिंदुत्व को रोकने का दांव चल रहे हैं। यहां ये भी सनद रहे कि बड़े मंगलवार पर भंडारे का प्रसाद बांटने के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने अपने पीडीए कार्ड पर ऑडिट वाला दांव चला था जिसमें उन्होंने जातीय भेदभाव का आरोप दोहराया था।
18: अगर वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव डिसीजन लेता है, लैपटॉप बांटता है, एक्सप्रेसवे बनवाता है, डायल 100 बनवाता है या अन्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है तो उसका आवाज गंगा जल से धुलवाया जाता है।
17: ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्ती को ये कहकर चुनौती दी है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है। उधर योगी आदित्यनाथ बकरीद पर सड़क पर नमाज को रोकने के लिए बेहद मुस्तैद दिखते हैं। पिछले हफ्ते सड़क पर नमाज को लेकर योगी का ये बयान सुर्खियों में था।
19: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।
17: इस बयान के बाद रविवार को कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन को योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाएंगे। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। बकरीद पर प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने

0: वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे।
2: देश का रहने वाला हिंदू मुसलमान वो एक दूसरे की आस्था का भी सम्मान करता है, उनकी परंपराओं का भी सम्मान करता है, उनके त्यौहार, उनकी पूजा पाठ का भी और नमाज का भी सम्मान करता है। ये जितने बयान आते हैं चुनाव के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है, इसलिए आते हैं।
0: बकरीद आएगी और बीत जाएगी, लेकिन ये राजनीति लंबे समय तक सुलगती रहेगी। हिंदुत्व ने बीजेपी को लगातार चुनावी सफलताएं दी हैं, ऐसे में विपक्ष की चुनौती यही है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कैसे फ्लॉप किया जा सके। आज तक ब्यूरो।
3: देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही, हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई।
4: राहुल गांधी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सलाहकार समिति की बैठक में जिस तरह की भाषा बोली है, एक तो उन्होंने कहा माइनॉरिटी नहीं मुस्लिम बोला जाए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री के लिए बोला है, इस सरकार के लिए बोला है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस साजिश करती रहती है और जिस तरह का बयान पहले भी राहुल गांधी ने बोला था कि वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तो जलजला आ जाएगा, हुआ कुछ नहीं, अभी वो देश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, मैं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल भी शतक के करीब। वित्त मंत्री ने बताया जंग का साइड इफेक्ट, राहुल बोले सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर केंद्र से मांगा जवाब। गृहमंत्री अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बिताएंगे रात, 29 मई को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा बॉर्डर और 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। बढ़ते तापमान से झुलसा पूरा उत्तर भारत, नौतपा शुरू होते ही आसमान से बरसी आग, कई राज्यों में बिजली पानी की किल्लत, यूपी दिल्ली राजस्थान में बड़ा संकट। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह, अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण, हेमा मालिनी ने किया रिसीव, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। और सबसे पहले बात करेंगे ट्रिशा मौत मामले की, जहां सबको ट्रिशा की मौत के सच का इंतजार है। आज सीबीआई की टीम पुलिस से केस का हैंडओवर लेगी, तो वहीं दोबारा हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द आ सकती है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आया।
1: आखिर ट्रिशा की मौत का सच क्या है, दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा होगा, परिवार को इंसाफ का इंतजार है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट मामले में सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई फौरन इस केस को अपने हाथ में ले। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया है, सिर्फ जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखने की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रिशा की सास गिरिबाला पर कई गंभीर आरोप लगाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह कई नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई, केस में बहुत मुश्किल से गिरिबाला सिंह का बयान दर्ज कराया जा सका। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह का फोन जब्त करने में भी काफी दिक्कत हुई। बड़ा आरोप लगाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह ने अपने बयानों से ट्रिशा की छवि को खराब किया है।
2: माँ की हालत ठीक नहीं होने की वजह से वहां पर उसके व्यवहार और बर्ताव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके पीछे और क्या वजहें रही हैं ये तो गिरिबाला सिंह ही बताएंगी, और पुलिस जांच एजेंसी वहां से उसकी कॉपी कैसे बरामद करती है सीसीटीवी फुटेज की, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
1: एक्ट्रेस ट्रिशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राज्य शासन और ट्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट की ओर से गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत का विरोध किया था। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो ट्रिशा केस ने जहां देश को झकझोर दिया है, तो एक मामला जयपुर का भी सामने आया, जहां अनु मीणा ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था, लेकिन अब सुसाइड से पहले के कई चौंकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं।
3: जयपुर में सुनीता मीणा की वजहों की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम मीणा देखिए किस तरह पत्नी पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, घर का टीवी तोड़ता है, पत्नी को जमीन पर गिराकर जूतों से मारता है, साथ में 10 साल का छोटा बेटा बेबस अपनी माँ को पिटता देख रहा है। इसी प्रताड़ना से तंग आकर अनु ने घर में फंदा लगाकर खुद की जान ले ली।
4: दारू के नशे में वो मरते थे और एक दिन बोला कि सुनीता तेरी मम्मा बनेगी, ये तो बेकार है, ये तो मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनीता तुम्हारी मम्मा बनेगी।
5: आपको ऐसे बोला, और सुनीता कौन है?
4: हमारे काम वाली बाई थी और लेकिन अब उसको हटा दिया।
3: मामला 7 अप्रैल का है, लेकिन अब तक एक एक कर सुनीता के मोबाइल से शराबी गौतम के अत्याचारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सुनीता के परिवार ने गौतम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। परिवार का आरोप है कि शादी के 11 साल हो गए, लेकिन गौतम का सुनीता पर अत्याचार बढ़ता गया। जब वो मायके आती तो गौतम माफी का ड्रामा करके फिर उसे ले जाता।
6: रात को आ जाती तो मेरे पैर पकड़ के घर ले जाता, उसको नहीं करूंगा आज के पास मैं कभी नहीं करूंगा, पैर पकड़ देते थे आगे। मैं कहती अनु ये रोज का काम है, मर जाए तू। अरे यार मम्मी आप तो माफी मांग रही।
3: गौतम के अत्याचारों की एक और तस्वीर देखी। कार में वो अनु को गंदे गंदे ताने दे रहा है। अनु के आंसू रुक नहीं रहे और गौतम उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है।
7: मुझे नहीं है पसंद ये लिख रहे स्टाम्प कचरा कचरा था वो है। किसी को मिली होगी लेकिन मेरे से कचरा मिली होगी।
3: अनु गौतम से इतना परेशान हो गई कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, अपने मासूम बेटे को अकेला छोड़ गई, जिसे अब इंसाफ का इंतजार है। जयपुर से देवांकुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 28 मई को बकरीद का त्योहार है, लेकिन उससे ठीक पहले त्योहार को लेकर कई राज्यों ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसे लेकर सियासत तेज है।
3: सड़क पर नमाज पर रोक के बाद अब बारी है कुर्बानी। जहां बकरीद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, योगी सरकार ने बकरीद को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।
8: किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा।
9: जितने बयान आते हैं चुनाव के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है इसलिए आते हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि जनता के लिए मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दे हैं। भाजपा जानबूझ के इस तरह के मुद्दों को छालती।
3: बंगाल में सरकार बदली तो वहां भी त्योहारों पर सियासी हवा बदलने लगी। शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है। शुभेंदु सरकार का एक नया आदेश देखिए, जिसमें कहा गया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन 28 मई को छुट्टी रहेगी। पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी।
10: 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी।
11: ये जिद करेंगे कि नहीं, हम जो 5 लाख ईदगाहें हैं, मस्जिदें हैं या धार्मिक स्थल है वहां ना पढ़ करके हम सड़क पर जो है वो ठिठोली करेंगे तो वो ठीक नहीं है।
12: दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी पूजा हो, हर जगह लोग सड़क पर आते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को सड़क पर आने से रोका जाए ये तो बहुत ही गलत है।
3: उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिमों को वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दी है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी ना देने की बात कही है।
13: दिवाली आल तो परिवार अनुपूरक होली मनवा, ड्राई होली मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरीद येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा।
14: सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
3: कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर तंज कसा, तो अब आरजेडी सम्राट को घेर रही है।
1: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
15: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
1: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
16: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
1: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। पंचायत चुनाव में संभावित देरी के चलते सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कार्यकाल विस्तार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर मंथन जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। कार्यकाल बढ़ने की स्थिति में वर्तमान प्रधान अगले 6 महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे। पंचायत विभाग और शासन स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा जारी है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच बड़ी खबर कर्नाटक को लेकर, कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली जिसमें बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया गया है, ऐसे में कई संभावनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक 2028 चुनाव से पहले सत्ता में फेरबदल किया जा सकता है, जहां डीके शिवकुमार को भी कमान देने पर विचार किया जा सकता है। वहीं एक चर्चा खड़गे को सीएम बनाने की भी चल रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि पार्टी आला कमान ने दोनों बड़े नेताओं को कर्नाटक के समन किया हो, तब भी ये कयास लगाया जाए थे कि डीके शिवकुमार टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन अब खड़गे साहब का नाम अचानक से कैसे सामने आ गया?
17: देखिए, इस स्थिति में जहां पे लगातार एक ये बार बार शिगुफा छोड़ा जाता है कि अब परिवर्तन हो रहा है, अब लीडरशिप चेंज हो रहा है और हर बार दोनों तरफ से बयानबाजी जोर तूल पकड़ लेती है, तो अब 2.5 साल भी ओवर हो गए और पार्टी के पास टाइमलाइन बहुत कम बची है अगर उसको 2028 में वापसी करनी है। और इसीलिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जहां ना सिर्फ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने आ बल्कि 6-7 बड़े मंत्री भी आ रहे हैं और वो लोग कल 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे। अगर अगर डीके शिवकुमार को लेकर सहमति नहीं बनती है और अगर कैबिनेट रिशफल को और बड़े फेरबदल को भी सहमति नहीं मिलती है तो ये एक संभावना जरूर है। हालांकि इसकी संभावना कम है कि खड़गे को मुख्यमंत्री के तौर पर कर्नाटक भेजा जा सकता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर कड़े सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है।
1: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
18: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
1: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि सख्ती से सभी परीक्षाएं कंडक्ट की जाएं, शांतिपूर्ण और सफल तरीके से परीक्षा कराने की अपील शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई है। इससे पहले भी इस तरह की अपील की गई थी। पेपर लीक के बाद 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होगी। अब राज्यों को चिट्ठी लिखकर बाकायदा दिशा निर्देश दे दिए गए। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां के प्रसिद्ध गुलमर्ग रोपवे में बड़ी तकनीकी खराबी की खबर आई है। इससे रोपवे की सभी केबिन बीच हवा में लटक गई, करीब 300 पर्यटक फंस गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई, कई पर्यटक घबरा कर रोने लगे और नीचे उतारने के लिए चिल्लाने लगे। श्रीनगर से स्पेशल रेस्क्यू और भारतीय सेना भी मौके पर पहुंची। सेना पुलिस और प्रशासन ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रस्सी के सहारे सैलानियों को बाहर निकाला गया। गुलमर्ग रोपवे दुनिया के सबसे ऊंचे और लंबे केबल कार सिस्टम में से एक है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अफरवात पीक पर स्थित है। इसमें कुल 108 केबिन है। एक बार में केबल कार में 6 लोग बैठ सकते हैं। दो फेज में गुलमर्ग के आधार से कोंगदोरी और फिर अफरवत चोटी तक जाता है। यहां से बर्फीली चोटियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। गुलमर्ग गोंडोला देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है और गर्मियों में रहा बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। सूत्रों के अनुसार एक खराबी का कारण ओवरलोडिंग को माना जा रहा है। हालांकि इस बात का पता लगाने की लिए जांच जारी है कि आखिर किस वजह से तकनीकी खराबी आई जिससे लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। और अब बात एक दर्दनाक हादसे की। आगरा के ताजगंज में एडवेंचर गेम के दौरान हादसे में 16 साल के लड़के की जान चली गई। लड़का मां बाप और भाई के सामने 45 फीट ऊंचे झूले से सिर के बल नीचे गिर गया। कुणाल जैसे ही जिपलाइन में एक छोर से दूसरे छोर की तरफ बढ़ा, उसकी सेफ्टी बेल्ट का हुक टूट गया। रेलिंग से टकराता वो नीचे आ गिरा और मौके पर ही तड़प कर उसकी मौत हो गई। बेटा जब जिपलाइन झूले पर था तो नीचे मां और भाई वीडियो बना रहे थे। पूरा हादसा उनके फोन में रिकॉर्ड हो गया। कुणाल का परिवार फिरोजाबाद से आगरा घूमने आया था और हादसे के बाद से पुलिस ने जिप लाइन का संचालन बंद कर दिया है। मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब बात पद्म अवार्ड्स की। राष्ट्रपति भवन में आज पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान लिया। इस दौरान की बेटी आहाना बेहद भावुक नजर आई। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पुनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बात महंगाई की करेंगे जिससे आम जनता बेहाल होती दिख रही है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते अब पूरे देश भर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है।
1: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
19: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखता है कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखता है।
20: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
21: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
1: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
22: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन। वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
1: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
23: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
24: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
25: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है। उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
1: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबरें व्यापार जगत से, बात करेंगे गोल्ड यानी कि सोने के दामों की और साथ ही शेयर बाजार से जुड़ी खबरें।
1: कारोबार के दौरान खरीदारी के सकारात्मक माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1074 अंक मजबूत होकर 76489 और निफ्टी 312 अंक चढ़कर 24032 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज हल्की मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे मजबूत होकर 95.25 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह सराफा बाजार में भी आज तेजी का रुख रहा और 10 ग्राम सोना 268 रुपए महंगा होकर 1,58,622 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी प्रति किलो 2,321 रुपए बढ़कर 2,69,754 रुपए पर बंद हुई।
0: और अब बात आईपीएल की। आईपीएल के प्लेऑफ की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मुंबई पर राजस्थान की जीत के साथ ही पंजाब और कोलकाता की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब कल से शुरू होंगे प्लेऑफ्स के मुकाबले।
1: मुंबई को पीट, प्लेऑफ में पहुंचा राजस्थान। टूट गए पंजाब और कोलकाता के अरमान। कल से प्लेऑफ का घमासान। अपने आखिरी लीग मुकाबले में जीत के साथ ही राजस्थान ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब ना तो किसी दूसरी टीम के नतीजे को देखना है, न ही रन रेट के लफड़े में पड़ना है। मुंबई की टीम आखिरी मैच में बिना बुमराह के पहले गेंदबाजी करने मैदान में उतरी थी और शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन राजस्थान को जीतने से नहीं रोक पाई। इसके साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने वाली चारों टीमें भी तय हो गई हैं। अब पहली पायदान पर 9 जीत और 18 अंकों के साथ है डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु, जबकि गुजरात और हैदराबाद की टीमें भी 18 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। कल राजस्थान ने भी 8वीं जीत हासिल कर 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर लिया है। मंगलवार से धर्मशाला में प्लेऑफ मुकाबलों की शुरुआत हो रही है। क्वालिफायर वन में कल बेंगलुरु और गुजरात आमने सामने होंगे। इनमें से जो जीता उसे फाइनल का टिकट मिलेगा, इनमें से जो हारा उसके पास एक और मौका होगा राजस्थान और हैदराबाद के विजेता से भिड़कर फाइनल तक जाने का। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे के तीसरे दिन आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ पत्नी जेनेट डी रूबियो, अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल भी मौजूद थे। रूबियो ने ताजमहल परिसर का भ्रमण किया और इसके ऐतिहासिक वास्तुकला को करीब से देखा। इसके बाद रूबियो जयपुर के लिए रवाना हो गए, आमेर महल घूमे। आमेर महल में जलेब चौक में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी डांस किया। आमेर महल घूमने के बाद मार्को रूबियो पत्नी संग होटल रामबाग पहुंचे। तो बुलेटिन में ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits.
9: country roads, and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है. लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली.
11: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है.
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे.
13: बस दो दो हजार
14: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा.
26: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो.
27: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
28: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
29: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा.
30: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
31: एक हिंट तो देते.
30: हिंट बड़े आराम से.
32: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था.
33: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था.
34: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते. म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ. म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए. अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
35: नहीं.
34: और म्यूचुअल फंड से
35: सही.
36: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
37: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
38: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
39: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
40: सोच बदलो और बैंक भी.
41: Like I said before, we better hold this in.
42: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
7: आपने देखी यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर योगी की सख्ती।
8: सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।
7: आपने देखी बकरीद पर सख्ती को लेकर गर्माती यूपी की सियासत।
9: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पर कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है।
7: यूपी में बकरीद पर इस बार सियासत की भट्टी धधक रही है। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी अपना इरादा पहले ही जता चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस साफ कहती है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यूपी सरकार की इस गाइडलाइंस का क्या मतलब है, ये आप योगी के फरमान से अच्छी तरह समझ सकते हैं।
8: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके कर। लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है।
7: तो बकरीद करीब है और यूपी के माहौल पर बकरीद का भरपूर असर है। इस वायरल वीडियो को देखिए, गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल मुआयने पर निकली। इन दो नाबालिगों पर आरोप लगा रही है कि ये हिंडन में मीट की बोरी फेंकने जा रहे थे। मेयर ने पुलिस को भी बुलाया और इस चेतावनी के साथ गिरफ्तार करवाया कि इन्हें किसी हालत में छोड़ा ना जाए।
10: नहीं जा तू, अगर ये छोड़ देगा तो सस्पेंड करवा दूंगी। इसका नाम देख ले क्या है। हेलो, खाना सस्पेंड करा दूंगी पूरा अगर गड़बड़ हो गई। मैं अभी कमिश्नर से बात कर रही हूँ, पुलिस कमिश्नर से। मास्क फेंकने बच्चों को भेजा है, भेजा कितने, कौन है मदरसे में, कौन है, बात सच सच बता दे बेटा। उस्ताद कौन है तेरा, उसने कह के भेजा भाई। तो बच्चे कारिश्मीन नंबर बताया, उसका नंबर होगा होगा तुझे सब याद है। मास्क भेजने फेंकने भेजा, इसका मतलब उसने जान के भेजा है।
7: बकरीद पर सरकार की सख्ती का असर दिखने भी लगा है। झांसी में कल पीस कमेटी की बैठक हुई जिसमें दोनों धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नमाज और कुर्बानी को लेकर सरकार का सख्त निर्देश बता दिया। यूपी में अगले साल चुनाव है, बकरीद जैसे मौके पर मजहबी माहौल बनाने की कोशिश हर साल होती है, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इस बार भी माहौल चढ़ा हुआ दिख रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल भी शतक के करीब। वित्त मंत्री ने बताया जंग का साइड इफेक्ट। राहुल बोले सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर केंद्र से मांगा जवाब। गृहमंत्री अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बताएंगे रात। 29 मई को भुज का दौरा। बढ़ते तापमान से झुलसा पूरा उत्तर भारत, तौतपा शुरू होते आसमान से बरसी आग, कई राज्यों में बिजली पानी की किल्लत, यूपी दिल्ली राजस्थान में बड़ा संकट। राष्ट्रपति भवन ने पद्म पुरस्कार समारोह, अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण, हेमा मालिनी ने किया रिसीव। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। हम बात करेंगे बिजली संकट की, लेकिन उससे पहले इस बीच बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। दोबारा नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने चिट्ठी लिखी है। दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं कि ठीक ढंग से परीक्षाएं कराई जाएं, शांतिपूर्ण और सफल तरीके से परीक्षा कराने की इस चिट्ठी में अपील है।

शांतिपूर्ण और सफल तरीके से परीक्षा कराने की अपील धर्मेंद्र प्रधान ने की है। इस बीच काफी ज्यादा दबाव भी धर्मेंद्र प्रधान पर देखा गया जब नीट पेपर धांधली का मामला सामने आया। शिक्षा मंत्री ने अब राज्यों को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि शांतिपूर्ण और सफल तरीके से परीक्षा संपन्न कराएं।

0: और हमने आपको खबर दिखाई थी गुलमर्ग से, जहां कुछ पर्यटक केबल कार में फंस गए थे, अब उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, गुलमर्ग केबल कार के रेस्क्यू में काफी लंबा वक्त लगा, घबराहट से पर्यटक चीखने चिल्लाने लगे थे, लेकिन उसके बाद इस केबल कार में फंसे सभी पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रस्सी के सहारे इन्हें नीचे लाया गया।
1: एक पैर एक स्टेप ले उठा, एक पैर आगे पीछे रख।
0: कुछ को रस्सियों के सहारे, कुछ को सीढ़ियों के सहारे, और कुछ जवानों ने जो छोटे बच्चे थे उन्हें अपने कंधे पर लाद कर नीचे जमीन तक पहुंचाया, क्योंकि ये मंजर दरअसल किसी के लिए भी आसान नहीं होता कि कई फीट ऊंचाई में आप हवा में लटके हुए हैं, आपकी जान सांसत में आ जाती है। और देखिए रेस्क्यू कितना मुश्किल, क्योंकि वहां पर खराब मौसम की भी एक बड़ी चुनौती, आसमान में काले बादल, और ये इलाका दरअसल काफी ठंडा रहता है, यहाँ अक्सर जीरो से माइनस में तापमान होता है, ठंडी हवाएं चलती है, और ऐसे में रेस्क्यू में काफी दिक्कतें। 300 पर्यटक फंसे हुए थे बताया जा रहा है, एक एक करके इन्हें बाहर निकाला गया। जाहिर तौर पर कई घंटे के रेस्क्यू के बाद अब सभी को सकुशल बचा लिया गया है। और अब बात प्रचंड गर्मी के बाद पैदा हुए बिजली संकट की करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां सरकार का दावा है कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यूपी के बड़े बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है? क्योंकि यूपी के बिजली मंत्री का तो यही दावा है। इन दावों की हकीकत आज तक ने चेक की है, हमने अपनी टीम ग्राउंड पर भेजी और इन दावों का रियलिटी चेक किया।

0: जिन्हें उसे लाइट नहीं है और ये लोग वहाँ 5 घंटे इंतजार करने के बाद कर्मचारियों का अधिकारियों का इंतजार करने के बाद यहाँ कभी नगर उपकेंद्र पर आए हैं।
1: आज से नौतपा शुरू हो चुका है। नौतपा मतलब अगले 9 दिन भीषण गर्मी, कहीं कोई राहत नहीं। देश के कई इलाकों में तापमान 47 से 48 डिग्री चल रहा है। यूपी के कई शहरों में 45 के पार चला गया है। गर्मी इतनी भीषण कि डॉक्टर से लेकर सरकार तक कह रही है कि घरों से बाहर मत निकलना, लेकिन घर में तो बिजली ही नहीं आ रही, तो लोग क्या करेंगे। जनसंख्या के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यूपी में ही हालात खराब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती पर सख्ती दिखाई है। यूपी में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की सप्लाई की जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में 24 घंटे बिजली मिल पा रही है?
2: मुझे तो हाथ जोड़ के उनसे लाइट सही करवा दीजिए कि हम लोगों को बहुत, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किचन में काम करते वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
1: क्या यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली मिल रही है? क्या इस भीषण गर्मी में यूपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं कट रही?
3: परेशानी गर्मी के समय है, आम जनता है, बुजुर्ग लोग हैं, मामले तकलीफ हो रही है सभी लोग को, उतने बैठने में और बिजली के सारे सभी लोग हैं।
1: आज हम इसी का रियलिटी चेक करेंगे कि यूपी के शहरों में और ग्रामीण इलाकों में कितनी बिजली आ रही है। लेकिन उससे पहले जरा आपको यूपी के बिजली मंत्री के दावे भी बता देते हैं। ये यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा हैं, पूर्व IAS रहे हैं। आजकल ये हर रोज अपनी एक्स टाइमलाइन पर यूपी में बिजली की स्थिति की जानकारी देते हैं। बढ़िया फोटो खिंचवाकर बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं, यूपी वालों को बिजली दे रहे हैं। इन्होंने आज ये पोस्ट किया है, दावा किया कि यूपी में बिजली की महाआपूर्ति हो रही है। ये भी बताया कि कल रात 10:39 तक 31,804 मेगावाट की पीक सप्लाई की गई। कहा कि सर्वत्र 24 घंटे बिजली दी गई। ये भी दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में भी 22 से 22.5 घंटे तक बिजली दी गई। अब जरा यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा के इन दावों का रियलिटी चेक करते हैं। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्योंकि मंत्री जी के दावों की हवा तो प्रदेश की राजधानी में ही निकल रही है। कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, प्रॉपर शहरी इलाका लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका, जहां रात रात भर बिजली नहीं आ रही, दिन में बस कुछ ही घंटे बिजली आती है। और इन हालात में भी महिलाओं को घर वालों के लिए खाना तो बनाना ही है।
4: चेहरे पर कितनी भी शिकन हो, चेहरे पर कितना भी पसीना हो, लेकिन ये इनका धर्म है, इनका कर्तव्य है, इसका निर्वहन ये करती नजर आती हैं। इनकी क्या समस्या है इस बिजली समस्या में, जिसे इस वक्त पूरा प्रदेश जूझ रहा है, वो आपको बताएंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में है। हमारे साथ पूनम जायसवाल जी इस वक्त मौजूद हैं। पूनम जी, मैं देख रहा हूँ कि आप घर के लिए लंच तैयार कर रही हैं, रोटी बना रही हैं। बिजली की कितनी समस्या आपके इलाके में और क्या परेशानियों को आप एक महिला के तौर पर घर में झेल रही हैं?
2: सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को, गृहणियों को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब लाइट नहीं आ रही है, हमको तो BP की प्रॉब्लम है और मुश्किल से 5 रोटी सेकते हैं, हम रुक जाते हैं, बंद कर देते हैं, फिर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फिर रोटी सेकते हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत है। और फैन रहता है तो जाके, लाइट रहती तो फैन में बैठ जाओ, लेकिन अब लाइट नहीं रहती तो दिक्कत हो जाती है। और रात रात भर बच्चे जगते रहते हैं, हमारे बच्चे को तो सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है गर्मी की वजह से।
4: आप जैसे बोल रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं, आपकी सांस भी फूल रही
2: है। जी जी, मुझे BP की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से, गर्मी की वजह से मैं गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और मुझे तो बहुत ज्यादा।
4: तो आपके इलाके में तो बता रहे हैं लोग कि रात रात भर लाइट नहीं आ रही है, कैसे
2: लाइट नहीं आती है? रात रात भर लाइट नहीं आती है, रात तो सब बाहर घूमते रहते हैं।
4: 24 घंटे में कितने घंटे लाइट आ रही है?
2: आती जाती रहती है, कभी कभी तो 2-3 घंटे रात में कट जाती है, सुबह 4-5 बजे आती है।
1: तो शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा तो फेल हो गया मंत्री जी। पंखा झलते हुए लोग खुद ही बता रहे हैं कि बिजली के क्या हाल है। बिजली आ कम रही है और कट ज्यादा रही है।
4: सोच रहे होंगे कि दोपहर के समय आखिर ये मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं मोहल्ले के, ये बाहर आंगन में क्या कर रहे हैं और इनके हाथों में पंखे क्यों हैं? अब बाकी कहानी शायद आप खुद समझ गए होंगे कि इनके हाथों में पंखे इसलिए हैं क्योंकि बिजली की समस्या है और बिजली इस वक्त इनके घरों में नहीं आ रही है। काफी ज्यादा कटिंग लखनऊ के इस क्षेत्र में बिजली की हो रही है, क्या समस्याएं हैं इन्हीं से समझते हैं। आप बताएं मुझे कितना आपके मोहल्ले में दिक्कत इस वक्त बिजली को लेकर है।
5: दिन भर लाइट गायब है, हर एक घंटे के बाद लाइट चली जाती है। रात तो समझ ले कोई सो ही नहीं पा रहा है यहाँ।
4: रात में क्या माहौल रहता है?
5: रात में डेली लाइट चली जाती है, डेली का नियम है 10-11 बजे से रात भर लाइट नहीं आ रही।
4: आप लोग फोन करते हो केंद्रों में, क्या बोलते हैं?
5: बस वही कहते हैं कि यार यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, बस यही चल रहा है, बहुत परेशान है।
6: बड़ी दिक्कतें हैं, लाइट मतलब कोई टाइम ही नहीं, कब आ रही कब जा रही, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। टंकी भरी नहीं,
4: समरसेबल ही नहीं चल पाएगा,
6: समरसेबल भी नहीं चल पाता है। और सारा काम शहरी जीवन में सब बिजली पे ही डिपेंड है, चाहे वो मसाला पीसना हो, चाहे वो कपड़ा धुलना हो, चाहे वो पीने का पानी हो, नहाने का, कुछ भी हो, सब बिजली पे डिपेंड है।
1: अब आपको उत्तर प्रदेश के एक और बड़े शहर वाराणसी का हाल दिखाते हैं। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा सर्राफा मार्केट है, वाराणसी का रेशम कटरा। यहाँ हजारों कारीगर सर्राफा से जुड़े हैं, जिनकी पूरी कारीगरी बिजली पर ही निर्भर है। सोने चांदी की शुद्धता मापनी हो या कोई आभूषण पॉलिश करना हो, जिन मशीनों से ये काम होता है उन्हें ठंडा माहौल चाहिए होता है। 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर और बिना बिजली के इस तापमान को बहाल करना मुश्किल हो रहा है।
7: बिजली तकरीबन मतलब कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कट रही है, मतलब कि 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार कट रही है। बीच बीच में 10 मिनट आ रही है, फिर आधे घंटे चली जा रही है, फिर आधे घंटे आ रही है, फिर एक घंटे चली जा रही है। उसके वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है कि लगातार इसको बैकअप करना, इसके लिए बैकअप करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं कि बैटरी जिसके पास बैकअप नहीं रहता है वो पूरा दिन उनका काम बंद हो जाता है, क्योंकि ये सारे मशीनें सब टेसी के ही टेम्परेचर में 20-22 डिग्री टेम्परेचर में ही चल पाएगा। उसके अगर अलावा मतलब अगर बंद रहेगा, अगर एसी हमारा नहीं चलेगा तो ये नहीं चल पाएगा मशीन, क्योंकि बहुत महंगी मशीनें आती है, 30 से 32 लाख अमूमन इसका दाम होता है। और हमेशा ये इसको लगातार ये सुबह 10 से चालू होता है, रात के 10 बजे तक ये चलता रहता है। अगर बिजली नहीं अगर इसको मिलेगा तो ये चल नहीं पाएगी। तापमान
1: कानपुर का भी हाल देख लीजिए। कानपुर यूपी का बड़ा महानगर है, दावों में तो यहाँ भी 2400 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन रियलिटी चेक हाल बता रहा है। ये कानपुर का एक बैंक्वेट हॉल है जहां पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है, लेकिन लाइट ही नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि कारोबारियों को बुकिंग कैंसिल होने का डर सता रहा है।
8: मौजूद है कानपुर में, एक महानगर है, स्मार्ट सिटी है, और ये दोपहर का वक्त है, समय बज रहा है 4:30 के आसपास, और हालत ऐसी है कि फिलहाल एक गेस्ट हाउस के बाहर हूँ मैं। 80 फिट रोड ये मार्केट पड़ती है, जहाँ पे तमाम आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, और हालत ये है कि लाइट नहीं आ रही है, और जो लोग हैं वो सामने बैठ के आपके गर्मी से कहीं ना कहीं पंखा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हवा लगे, लेकिन इसी तरीके के हालत आपको तकरीबन शहर के कई इलाकों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पंखा है, स्विच लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल पंखा बंद है, पूरी तरीके से एयर कंडीशन्ड ये हॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज्ड एसी है, लेकिन फिलहाल बिजली ना आने की वजह से ना लाइट जल रही है ना ही पंखे चल रहे हैं।
9: सुबह 10 बजे गई थी, फिर थोड़ी देर आई, फिर आ जा रही है, मतलब ये समझ के चलिए कि इस भीषण चिलचिलाती गर्मी में जो हाल आप देख ही रहे हो,
8: देख रहा हूँ कि चेहरे पे पसीना जो है वो बता।
9: हाँ, तो ये हाल है कि जब उनसे बात करो अधिकारियों से, ऊपर सरकार प्रयास करी, योगी जी का पेपर पढ़ते हैं, बहुत प्रयास है उनका कि बत्ती 24 घंटे मिले, लेकिन अधिकारियों से बात करी तो कह रहे हैं एवीसी कंडक्टर जो तार डाले गए उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। बताइए, अरे कनेक्शन भैया सुबह जोड़ लो, कम से कम वर्किंग आवर्स में तो ना जोड़ो, जिससे जो आम आदमी प्रताड़ित ना हो।
10: यही है कि जनरेटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो डीजल की कॉस्ट आएगी, जब डीजल महंगा हो गया, रूम अगर हम रूम भी उठाते हैं तो रूम में कॉस्ट बढ़ जाएगी, रूम हमारा क्यों लेगा कोई, सबसे पहले लाइट नहीं है तो रूम लेने के लिए उसको लाइट चाहिए, एसी चाहिए, जब वो पैसा देगा तो उसको एसी चाहिए, जनरेटर से चलाते हैं तो डीजल की कॉस्ट बढ़ गई, मेरे रूम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रूम उठना बंद हो गया।
8: ये सरकार दावा कर रही है कि 18-24 घंटे जो है बिजली दे रहे हैं या दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि?
11: देखिए, ये दावे तो सभी फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग तो रोज प्रतिदिन ये सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि यही कामना कर रहे हैं प्रभु कब लाइट पूरी तरीके से मिलेगी, लाइट तो कत्ता ही मिल नहीं रही है। और जो चाह रहे हैं कि मतलब ये मान लीजिए अगर कुछ घंटे के लिए आ जाए तो वही बहुत है, वो भी नहीं आ रही है, मतलब हर थोड़ी देर में ट्रिप हो रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
12: फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
5: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
8: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
9: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
10: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
11: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
12: नहीं,
11: और म्यूचुअल फंड से
12: सही।
13: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
14: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: Like I said before, we better hold the sins.
19: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
20: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
21: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
19: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
22: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
20: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार

0: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
1: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
0: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
2: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री में उबल रहा है। मध्य प्रदेश का खजुराहो 47.4 डिग्री में तप रहा है। महाराष्ट्र का वर्धा 47.2 डिग्री में झुलस रहा है। हरियाणा का रोहतक 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है। पंजाब के बठिंडा पर 46.6 डिग्री का कहर टूट रहा है। इस सुपर और नीनो इफेक्ट ने ऐसी मुसीबत कायम करके रखी है कि पूरी दुनिया के टॉप 50 गर्म शहरों में सारे के सारे हिंदुस्तान के हैं। और इस आसमानी आफत का कहर जो सूबा सबसे ज्यादा उठा रहा है वो उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ के बांदा जिले में गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। वाराणसी, बांदा और अयोध्या जैसे शहरों में तापमान 42 से 48.2 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है और नतीजा ये है कि गर्मी और लू की चपेट में आकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद औसतन 300 से 400 तक बढ़ गई है। इधर राजधानी दिल्ली में इस 45 डिग्री की भीषण गर्मी में जगह जगह पानी की परेशानी नजर आ रही है। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी के 10 ब्लॉक में हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं बताती हैं कि पानी की किल्लत के कारण वो दफ्तर जाकर स्नान तक कर रही है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ 250 से 300 घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। ऐसी ही तस्वीर सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन में दिख रही है, जहाँ वार्ड नंबर 219 से लेकर GTB एनक्लेव तक में कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग खाली बाल्टियां और बोतलें हाथ में लेकर जल बोर्ड कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद स्थानीय विधायक का साथ भी उन्हें मिला। दरअसल 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रही दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके कारण दिल्ली जल बोर्ड के 2 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वजीराबाद और चंद्रावल में है, वहां से पानी सप्लाई काफी कम हो गई। इसके कारण मध्य, उत्तर और उत्तर पश्चिम

दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की लगभग 2.5 करोड़ आबादी के लिए रोजाना 473 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड रोज 380 करोड़ लीटर पानी ही दे पाता है, क्योंकि दिल्ली को हरियाणा के मुन्नत नहर के जरिए 232 करोड़ लीटर, गंगा नदी से 96 करोड़ लीटर, भाखड़ा नांगल से 84 करोड़ लीटर और भूगर्भ जल करीब 51 करोड़ लीटर पानी ही रोज मिल पाता है। इसमें भी भीषण गर्मी के कारण हर जगह जलस्तर नीचे जाने के कारण पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार कह चुकी है कि किसी इलाके में पानी की कमी नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होगी, लेकिन जमीनी हालात और घरों में पानी के खाली डब्बे सरकारी दावों को पंचर कर रही है। हालात ये हैं कि देवली के अलावा संगम विहार, दक्षिणपुरी, आम्बेडकर नगर, खानपुर, तिगड़ी, मदनगीर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, कालकाजी के कुछ हिस्से, बदरपुर बॉर्डर के आसपास की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है और ये पहली बार नहीं है। इन इलाकों को वाटर स्ट्रेस जोन कहा जाता है। सरकार का कहना कुछ भी हो, लोगों के सामने पानी का संकट बड़ा है और उनकी निर्भरता पानी के टैंकरों पर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल वो भी उपलब्ध नहीं है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल भी शतक के करीब। वित्त मंत्री ने बताया जंग का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर केंद्र से मांगा जवाब। गृहमंत्री अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बिताएंगे रात, 29 मई को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा बॉर्डर और 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। ईरान अमेरिका में समझौते की कोशिश के बीच ट्रंप की बड़ी कोशिश, अरब देशों के मुस्लिम नेताओं से बात की, इसराइल को मान्यता देने वाले इब्राहिम समझौते में शामिल होने की अपील। डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में बढ़ा विवाद, एक्टर पर शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले फिल्म छोड़ने का आरोप, शिकायत के बाद FWICE ने प्रतिबंध लगाया।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: Chogan Perfumes The French Edition for him and her, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। आज हम आपको उस जनता के हित और हक में खबरदार करेंगे जहाँ महंगाई हो, पढ़ाई हो या फिर छुट्टी में कहीं घूमने जाने की बारी हो, जनता को केवल संघर्ष, चुनौती, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पहले बताएंगे कि पेट्रोल 100 रुपए के पार होने से आपकी रोज की जिंदगी पर महंगाई का कितना असर पड़ने जा रहा है। क्या राज्य टैक्स कम करके खुद जनता को राहत नहीं दे सकते? देश में लाखों छात्रों की मेहनत पर फिर मजाक हो रहा है। CBSE ने 12वीं के बच्चों की कॉपी जांचने में जिस सिस्टम को पारदर्शी बताया था, उस पर ही दाग नजर आ रहे हैं। इसके बाद बंगाल में चलते बुलडोजर से खबरदार करेंगे, जहां पता चला है कि ममता राज में सरकारी जमीन पर कब्जा करके तृणमूल कांग्रेस वाले दफ्तर बनवाते रहे। साथ ही आज आपको गर्मी की छुट्टी में मौत के एडवेंचर पार्क से खबरदार करेंगे, जहां बेटे को घुमाने लाए पिता की आंखों के सामने जिप लाइन से गिरकर उनके बेटे की जान चली गई। तो आम आदमी की बात सबसे पहले आज हम करेंगे। 3 तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आज सुबह महंगाई का चौथा झटका पेट्रोल डीजल के दाम पर लगा है। 4 दिन में 7.5 रुपए तक पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं। जनता अब सवाल करने लगी है कि आमदनी तो वही है, बस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि महंगाई के युद्ध में अभी कितना और जनता को लड़ना होगा, क्योंकि जनता तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ रही है। कभी पेपर लीक, कभी कॉपी जांचने में पूरा सिस्टम वीक, और फिर पता चलता है कि CBSE ने 12वीं की कॉपी बच्चों की जांचने के नाम पर मजाक कर दिया। इन सब के बीच है, अगर आम आदमी कहीं चंद रुपए बचाकर घूमने निकल जाए तो असुरक्षा का शिकार हो जाता है, जैसे आज आगरा और गुलमर्ग से खबर आई। इन तीनों खबरों को एक एक करके आज हम दिखाएंगे। सबसे पहले महंगाई से दो दो हाथ करते आम आदमी की खबर, जिसे सुबह उठने पर पिछले 10 दिन में या तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का पता चलता है या फिर दूध की महंगाई का। कभी ट्रक ऑटो की हड़ताल तो कभी CNG का बढ़ता दाम। आज हफ्ते का पहला दिन शुरू हुआ तो पता चला कि अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। अब डीजल की कीमत भी ज्यादातर राज्यों में 100 रुपए के पार होने वाली है, क्योंकि जब तेल कंपनियां कहती हैं कि उन्हें हर दिन 1,000 करोड़ का नुकसान कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद हो रहा है, तब उन्होंने पहली बार जब 15 मई को दाम बढ़ाया तब भी कहा गया कि 750 करोड़ का घाटा हर दिन जारी है। ऐसा करते करते 7 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है, जिसके बाद अब 100 रुपए के पार तेल की कीमत पहुंची है। तो क्या आगे ये और बढ़ेगा? क्या किश्तों में आती तेल की महंगाई अभी फिर नई किश्त में मिल सकती है? सवाल की वजह वित्त मंत्री का बयान।
1: दिल्ली में पेट्रोल अब 102 रुपए पार, लखनऊ में 101 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर मिलने लगा, भोपाल में पहले ही 100 पार था, अब 114 रुपए से ज्यादा हर लीटर पर दाम चुकाना है, चंडीगढ़ में 105 रुपए, रायपुर में 107 रुपए के पार पेट्रोल का दाम, शिमला में 102 रुपए 51 पैसे खर्च करेंगे तो पेट्रोल मिलेगा, मोगा में 105 रुपए दीजिएगा, करनाल में 102 रुपए देना होगा, सीकर वाले तो 114 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं, बेंगलुरु में 110 रुपए का पेट्रोल भराना पड़ता है, चेन्नई में 107 रुपए के पार कीमत हो चुकी है। मतलब आपको ये बताना है कि अब देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त पेट्रोल भराना है तो 100 रुपया कम से कम खर्च करना ही होगा। 100 रुपए पार अब की बार ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हल्के हल्के आया है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए बढ़ा, 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे दाम बढ़ा, 23 मई को पेट्रोल में 90 पैसे, डीजल में 91 पैसे का इजाफा हुआ, 25 मई को पेट्रोल तुरंत फिर 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए महंगा हुआ। 10 दिन में 4 बार पेट्रोल 7.38 रुपए, डीजल 7.53 रुपए महंगा हुआ। बस इसीलिए शुरुआत में चलो ठीक है, सह लेंगे, महंगाई कहने वाला आम आदमी अब 10 दिन में 7 रुपए से ज्यादा हर लीटर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद चिंता में डूबने लगा है।
2: महंगाई इतनी है कुछ कहने की नहीं, पेट्रोल बंदा जितनी सैलरी नहीं उतनी तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क्या फायदा उस चीज का? इससे बड़े तो मन करता है कभी गाड़ी खड़ी कर दो।
3: उनका क्या है, बड़े लोगों का बड़े गरीब बंदा ही मरता है ना हर चीज में। सिलेंडर पैसे बढ़ गए, इसलिए बढ़ गए, हर महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है।
4: सरासर बेईमानी ही बोलूंगा मैं, क्योंकि आम पब्लिक जो है उनको इस तरीके से आप खिलवाड़ कर रहे हैं सीधा सीधा।
5: ये प्यार प्यार से चपेट मार रहे, कभी ये बढ़ा दे, कभी ये तो पता ही था बढ़ाना, और आगे बढ़ाएंगे, और भी बढ़ाएंगे।
1: जनता को अब महंगाई का झटका धीरे धीरे पेट्रोल डीजल पर लगा है। तब सरकार कहती है कि हमने तो एक्साइज ड्यूटी घटाकर पहले ही बड़े झटके से रोका था, वरना तो जो आज 10 दिन में 4 बार दाम बढ़ने पर सवाल करते हैं वो बहुत पहले ही तेल की कीमतों में शौक पा जाते।
6: मोर देन 1,00,000 एनुअली दिस ईयर गिवन टू द एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन, हैड वी नॉट थैंक यू गिवन दैट रिडक्शन एट दैट टाइम, इवन एट दैट टाइम 10 रुपीस वुड हैव बीन द इंक्रीज एट दैट टाइम इटसेल्फ।
1: 10 रुपए दाम बढ़ने से पहले रोका तो क्या अभी दाम और बढ़ सकते हैं? कहे कि अभी तो 7.5 रुपए के आसपास ही महंगाई तेल में आई, और अगर फिर जल्द ही कीमत तेल की बढ़ी तो जनता क्या कहेगी, कैसे चलेगी?
7: अपने के लिए बहुत बेकार हुआ है कि आप आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
8: असर तो ऐसा पड़ रहा है कि अभी कह ही नहीं सकते कि इस महीने में कितनी दफे बढ़ेगा, इसलिए परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए, यहाँ ऊपर से नहीं समझ में आ रही, ना यहाँ किसी को समझ में आ रही।
9: महीने में 3-4 बढ़ गया, अभी सुनने में आ रहा है 4-5 रुपए और बढ़ने वाला है, तो ये सर गलत है। आम आदमी के ऊपर जो उसकी इनकम है, इतनी इनकम नहीं, और आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही, तो बहुत खराब चीज है।
1: 15 मई को जब पहली बार तेल का दाम बढ़ा था, याद करिए क्या हुआ था। दूध के दाम 1-1 करके सब कंपनियों ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। मुंबई में ब्रेड बड़ा पाव तक महंगा हो गया, ट्रक वाले किराया बढ़ाने, ऑटो टैक्सी वाले फेयर बढ़ाने की मांग करने लगे थे। अब तो 10 दिन में पेट्रोल 7.38 रुपए, डीजल 7.53 रुपए, CNG 4 रुपए तक महंगी हो चुकी है। तो क्या महंगाई सिर्फ तेल भराने में नहीं, बल्कि तेल के जरिए आपके घर तक आने वाली हर चीज की बढ़ेगी, मतलब सब्जी, खाने पीने का सामान, दवाई, राशन, सब कुछ, जिसकी ढुलाई ट्रक से होती है।
10: आम वर्ग पे बहुत ज्यादा बुरा हाल है इसका। ये जो पेट्रोल और डीजल की दिनों दिन कीमतें बढ़ रही है ना, इसके कारण आम वर्ग
11: डीजल को 100 रुपए के पार पहुंचा देगी। अब जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये कीमतें बढ़ रही हैं, उसको देखकर आम आदमी का जो हौसला है वो भी डगमगा रहा है, और सबसे बढ़कर इस बात को लेकर कि कहां पर जाकर ये रुकेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। केंद्र सरकार कहती है कि उनसे पहले ही एक्साइज ड्यूटी घटाकर तभी 10 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ने से रोका। राज्य कहते हैं उनकी कमाई का यही जरिया है, तो क्या जनता के बच्चों की पढ़ाई के मोर्चे पर भी जूझती है? एक तरफ NTA है जिसने नीट की परीक्षा कराई, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, 21 जून को फिर एग्जाम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहीं जो NTA के चीफ स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये कहने लगे कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल लीक हुए, तो उनसे क्या ही उम्मीद करें, जहां केमिस्ट्री का सारा सवाल, बायोलॉजी के 90 सवाल और दावा है कि फिजिक्स तक के सवाल लीक थे, वहां अगर NTA काम लीक को लेकर इस तरह की बात कहें। NTA जो CUET का इम्तिहान कराता है, हफ्तों पहले डेटशीट उसने जारी की, कल अचानक कहा कि 28 मई को बकरीद की वजह से उस दिन का पेपर आगे कराएंगे। 27 या 28 में एक दिन बकरीद होगी, ये सबको पता था। इन दो तारीख से अलग पहले से पेपर की तारीख NTA सेट नहीं कर पाया, ये बताता है कि कहीं ना कहीं चूक पूरी व्यवस्था में है। जैसे CBSE ने 12वीं का इम्तिहान कराया, कॉपी जांची तो दावा किया कि पारदर्शी तरीके से जांच हुई, लेकिन अब सारी पोल पट्टी खुल रही है, दावा हो रहा है कि धुंधली कॉपी स्कैन करके जांच की गई, जिससे बच्चों को उनके हक का पूरा नंबर तक नहीं मिल पाया।
12: 4 दिन तक वेबसाइट नहीं चली उसकी, फिर वेबसाइट चली तो फिर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है।
13: एक तो वेबसाइट चल नहीं रही थी, और मैंने काफी बच्चों से मतलब उनसे

0: ایکسپیرینس لیا تو انہوں نے بتایا کہ جو شیٹس ہیں وہ غلط بھی ہیں,
1: جن کا کلیئر ان کے بلینک پیج کر رکھے ہیں, مطلب جس پہ لکھ رکھا, جن کا کلیئر ان کے بلینک پیج کر رکھے ہیں مطلب جس پہ لکھ رکھا انہوں نے, اس پہ نمبر نہیں بلینک ہے.
2: یہ کیونکہ جن سنستھاؤں پر بھروسہ کر کے ہر پریوار اپنے بچوں کو جیون کے کٹھن سے کٹھن امتحان میں بیٹھاتا ہے, جن پریکشاؤں کی تیاری میں ایک بچہ کھانا پینا بھول جاتا ہے, دن رات یاد نہیں رکھتا, ماتا پتا منت منوتی سے لے کر خود بچے کے ساتھ پریکشا کی تیاری میں جٹتے ہیں, اگر وہاں کاپی جانچنے کی جگہ مذاق ہوگا تو خبردار کرنا ضروری ہے. اسی لیے آج سی بی ایس سی یعنی سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کو خبردار کرنا ضروری ہے. اس بار سی بی ایس سی نے 12ویں کے 17 لاکھ سے زیادہ چھاتر چھاتراؤں کی کاپیاں او ایس ایم یعنی آن اسکرین مارکنگ سسٹم سے جانچی ہیں. دعویٰ ہوا کہ قریب 1 کروڑ کاپیوں کے لگ بھگ 32 کروڑ پنے اسکین کر کے اس بار سی بی ایس سی نے آن اسکرین مارکنگ سسٹم سے جانچا ہے. لیکن جب رزلٹ آنے کے بعد 12ویں میں بہت سے بچوں کو الگ الگ وشے میں ان کی امید سے بہت کم نمبر آئے, سی بی ایس سی نے دوبارہ کاپی جانچنے کی پرکریا شروع کی, تب تو مانو بچوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. دعویٰ ہونے لگا کہ آن اسکرین مارکنگ سسٹم میں دھندلی کاپی جانچ دی گئی, جو کاپی اسکین کر کے اپنی چھاتر مانگ رہے ہیں اس کی جگہ کسی اور کی کاپی آ رہی ہے, اسکیننگ ٹھیک سے سسٹم پر نہیں ہوئی تو ڈائیگرام صحیح ہونے پر بھی نمبر نہیں ملے, کاپی جانچنے کے لیے آن لائن فیس بھرنے کے باوجود اسٹیٹس پینڈنگ دکھاتا رہا. حالت یہ ہو گئی کہ سی بی ایس سی کو 12ویں کے چھاتروں کے لیے اسکین کی ہوئی آنسر شیٹ حاصل کرنے کی تاریخ 3 بار بڑھانی پڑی. ایسا سسٹم سی بی ایس سی کا سست ملا کہ اس سسٹم کو ہی سانس لینے لائق بنانے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس کی مدد لی جانے لگی.
3: ٹوڈے آئی ایم ہیئر ان چنئی ایز ڈائریکٹر آئی آئی ٹی مدراس ٹو لک ان ٹو دا ٹیکنیکل گلیچ. آئی آئی ٹی کانپور اینڈ آئی آئی ٹی چنئی آئی آئی ٹی مدراس ول لک ان ٹو دا ٹیکنیکل گلیچ فیس بائی CBSE portal, but today it is functioning smoothly. Those who are applied for the revaluation, they will get a scan copy. After that, the further development will take place. We look into that. This we have taken it seriously. Government is looking it into in detail. And I am confident with the guidance of IIT Madras and IIT Kanpur, it will be resolved.
2: IIT Madras aur IIT Kanpur ki madad se سی بی ایس سی کی کاپی جانچ کا پورٹل صحیح کراتی سرکاری شکشا ویوستھا نے کتنا بنٹا دھار کر دیا, کتنی پاردرشتا سے کاپی جانچی, اس کا ثبوت ملنے لگا ہے جو بہت ڈراؤنا ہے. ویدانت سے ملیے گا, 12ویں کے چھاتر ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر ہمت دکھائی ہے, خود اپنے ساتھ جو بیتا ہے, جو سی بی ایس سی نے کیا دھرا ہے اسے بتایا ہے. ویدانت نے پہلے سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں سی بی ایس سی کلاس 12th کا اسٹوڈینٹ ہوں, فزکس میں اچانک بہت کم نمبر آنے کے بعد ہم نے سی بی ایس سی ری ایویلویشن پروسیس کے ذریعے اپنی آنسر شیٹ کی فوٹو کاپی کے لیے اپلائی کیا, ہمیں کاپی مل گئی اور میں ٹوٹ گیا ہوں کیونکہ سی بی ایس سی نے جو فزکس آنسر شیٹ اپلوڈ کی وہ میری نہیں ہے.
4: تو فرینڈز میرے پاس یہ سی بی ایس سی سے میل آیا ہے فار دا ری ایویلویشن شیٹس دیٹ آئی اپلائیڈ فار. تو اگر میں کمپیوٹر سائنس کی شیٹ کھولتا ہوں, لک ایٹ مائی ہینڈ رائٹنگ, دس از مائی ٹرو ہینڈ رائٹنگ. اب ہم انگلش کی شیٹ کھولتے ہیں. I scored 92 marks in English. Sorry. یہ دیکھیے اس میں یہ ہینڈ رائٹنگ ہے میری, تو ہمیں پتا ہے یہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے. دین اب چلتے ہیں ہم فزکس پر. فزکس میں کیونکہ میرے مارکس کم آئے تھے اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ, دیٹ از وائی اپلائڈ فار فوٹو کاپی آف دا آنسر شیٹ. بٹ جب میں فزکس کی شیٹ کھولی تو آئی واز شاکڈ, بیکاز یہ دیکھیے فرسٹ شیٹ پر میرا رول نمبر ہے, یہ میری رائٹنگ ہے, آئی کین آئیڈینٹیفائی. بٹ جب میں نیچے جاتا ہوں تو یہ میری آنسر شیٹ ہی نہیں ہے, بیکاز دس از کلیئرلی ناٹ مائی ہینڈ رائٹنگ. یہ مجھے بھی پتا ہے, اور اگر کسی کو پروف بھی کرنا ہو تو وہ ان دونوں آنسر شیٹ سے ٹیلی کر سکتا ہے, بیکاز ان دونوں آنسر شیٹ میں آئیڈینٹیکل ہینڈ رائٹنگ ہے, اٹ از آف دا سیم پرسن. بٹ جب آپ اس پہ جاتے ہو تو یو کین کلیئرلی سی اٹ از کلیئرلی ناٹ مائی آنسر شیٹ. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ غلطی کس کی ہے کہ ہم لوگ اپنی پورے سال محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد پیپر دے کر آتے ہیں اور آپ میری آنسر شیٹ کسی اور کے ساتھ ایکسچینج کر دیتے ہو. میرے نمبر کہاں ہیں؟ جو میں نے محنت کری, میں نے لکھا, وہ کہاں ہیں؟ I was expecting very good marks and I got only 50%.
2: वेदांत के मामले में तो अब CBSE कहती है कि जांच करेंगे, गलत नहीं होने देंगे, लेकिन वेदांत जैसे बहुत सारे बच्चे सिर्फ आरोप ये नहीं कि री इवेल्युएशन में बोर्ड ने किसी और की फिजिक्स कॉपी बच्चों को भेज दी, आरोप ये भी कि रिपीट आंसर के नाम पर सही जवाब पर भी नंबर नहीं दिया। दावा है कि जो मेन कॉपी के साथ सप्लीमेंट्री यानी बी कॉपी बच्चों ने भरी वो स्कैन करके जांच में मिली ही नहीं। आरोप ये भी कि धुंधली स्कैनिंग बच्चों की कॉपी की होने से सही जवाब पर गलत नंबर दिया गया। आज तक संवाददाता ऐसे ही बच्चों से मिलते हैं जिनको लगता है कि CBSE ने उनके साथ ऑन स्क्रीन मार्किंग के नाम पर सिवाय धोखा देने के कुछ नहीं किया, जिस व्यवस्था को सटीक बताया वही फेल निकली।
0: वो जो शीट्स हैं वो ब्लर हैं, और रीएवैल्यूएशन के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई भी करता है, हम सोचेंगे हम करेंगे, तब भी उसमें ब्लर शीट्स हैं और उतने नंबर नहीं देंगे अगर टू द पॉइंट आंसर नहीं है, अगर एक वर्ड भी मिसिंग है तो उसके भी वो नंबर काट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लीनियंसी दिखाएं।
5: मैं तो काफी एक्सपेक्ट कर रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैंने उनकी शीट्स भी मंगाई है, मैंने पैसे भी दिए पर मेरे को मिली नहीं। मैं देख रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, CBSE ने उनके कुछ पेजेस ब्लैंक मार्क करे हुए जबकि उन्होंने आंसर लिखे हुए हैं।
6: बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने पूछा भी कई लोगों से, तो उनका भी यही कि किसी की शीट ब्लर है, किसी के कुछ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस बार हम लोगों को।
7: उसमें ब्लैंक पेज अभी भी ऑन स्क्रीन पे दिखा रहा था, मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने आंसर लिखने के बावजूद भी ना उन्होंने बहुत से स्टेप कटिंग में करके अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो उन्होंने 1.5 नंबर दिए हैं।
8: मैं अपने 2 सब्जेक्ट के लिए कर रहा था, मैथ्स एंड अकाउंटेंसी, जिसकी शीट मेरे को नहीं मिली है
9: अभी तक। आपको आपकी शीट नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे CBSE को बतौर विद्यार्थी?
8: CBSE से बस यही कहूंगा, इफ आपने OSM को चेकिंग को इंट्रोड्यूस करा, ये सारी चीजें करी, तो प्लीज आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करते इस चीज पे ताकि हम लोगों के फ्यूचर के साथ इतनी बड़ी दिक्कत क्रिएट ना होती।
2: अब हम आपको सीधे एक बड़ी गवाही सुनवाते हैं जिससे सुनकर साफ हो जाएगा कि CBSE ने इस बार जिस सिस्टम से 12वीं के बच्चों की कॉपी जांची है उसमें पूरा खिलवाड़ हुआ है। ये गवाही उन टीचर ने दी जो खुद इस कॉपी जांचने की व्यवस्था का हिस्सा रहे। वो आज तक पर दावा करते हैं कि नई मूल्यांकन प्रणाली जल्दबाजी में लागू की गई थी, किसी को ट्रेनिंग तक पर्याप्त नहीं दी गई थी।
9: OSM देखा गया, लाया गया, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाया गया, बतौर टीचर आपका एक्सपीरियंस कैसा था?
10: बतौर टीचर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो CBSE ने ये जो ऑनलाइन चेकिंग का जो सिस्टम किया बहुत जल्दी में किया, एटलीस्ट कम से कम 6-7 महीने होने चाहिए थे। बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग भी, सबको ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज थी जिसको बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाए। फिर जो एप्लीकेंट्स हैं, बच्चे जो एग्ज़ाम ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनके मार्क्स भी उनसे कम आए, क्योंकि चेकिंग के दौरान पहले होता था स्टेप मार्किंग, मैनुअली चेक करते थे, तो स्टेप मार्किंग के भी यहाँ पे बच्चों को मार्क्स मिल जाते थे, बट इस बार चेकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सीट के ब्लर होने की थी। अब मान लीजिए फिजिक्स में कोई बच्चा कुछ लिख रहा है, कोई डायग्राम बना रहा है, अब डायग्राम क्लियर नहीं है, लेवलिंग सही नहीं है हो रही है, तो फिर उसमें एग्जामिनर को मार्क्स देने में बहुत परेशानी आ रही थी। पहले क्या होता था, स्टेप मार्किंग में टीचर मार्क्स दे देता था, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर ऐसे करके है, 5 स्टेप्स का सही 2.5 नंबर मिल गए, आधे नंबर लास्ट में उसने छोटी मोटी गलती की तो उसको भी लोग मैनिपुलेट करके मार्क्स दे ही देते थे, बट अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो टोटल फीड है। दूसरी बात क्या है कि हर टीचर को CBSE शुरू से ही आंसर शीट देती है और वो NCERT मार्क होता है। अब जो बच्चा इस बार NCERT के अकॉर्डिंग में लिखता है उसके सारे स्टेटमेंट सारे फिगर्स मिलते हैं, तो कंप्यूटर उसे ले रहा है और उसको मार्क्स मिल जा रहे हैं, और बच्चे ने मान लिया कि सही लिख रहा है लेकिन वो NCERT के अप टू नहीं है, तो उसमें वहाँ पर कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स आई है जिससे बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, सबने यही बोला है कि सर लिखा तो हमने सही है बट क्या NCERT के अकॉर्डिंग में थोड़ा नहीं लिखा हमने, तो हमारे मार्क्स नीचे आए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है ना सर, वो ये रही है कि जो सीटें ब्लर हुई हैं ना, जिसको चेक करने में बहुत परेशानी हुई है।
9: कोई इसकी टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी गई हो, बताया गया?
10: बिल्कुल दी गई थी, लेकिन ट्रेनिंग का जो पीरियड था 4 या 5 मैक्सिमम 1 हफ्ते का था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको समझने में टाइम लगा, और बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाए।
2: आम आदमी के हक की तीसरी खबर से आपको अब खबरदार करते हैं। प्रधानमंत्री ने याद करिए क्या कहा था, कहा था कि विदेश मत जाइए, देश में घूमिए। आम आदमी वैसे भी विदेश जाने की ताकत नहीं रखता, तो वो महीनों पैसे बचाता है, तब पत्नी बच्चों के साथ कहीं आसपास घूमने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन फिर उसी जनता को असुरक्षा लापरवाही हादसों के आगे जूझना पड़ता है, या तो जान का संकट आता है या जान ही चली जाती।
11: एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
2: लेकिन जब देश में ही आम आदमी घूमने निकलता है तो क्या होता है? तीन तस्वीरें देख लीजिए। आगरा में बेटे को घुमाने निकले पिता के सामने उनका बेटा जिप लाइन से गिरकर दम तोड़ देता है। गुलमर्ग में केबल कार में छुट्टी का लुत्फ उठाते 148 सैलानी बीच हवा में फंस जाते हैं, लटक जाते हैं, सेना के ऑपरेशन के बाद उन्हें बचाया जाता है। और फिर पहाड़ चाहे उत्तराखंड का हो या हिमाचल प्रदेश का, उत्तर भारत के सैलानी अगर पहुंच जाएं छुट्टी मनाने तो घंटों का उन्हें सिर्फ जाम मिलता है। तो क्या आम आदमी घूमने भी जाएंगे तो हादसों के भरोसे उन्हें रखा जाएगा? चुभता सवाल आगरा की घटना के बाद उठा है, जहां फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी पंकज अग्रवाल 16 साल के बेटे कुणाल को ताजगंज चौपाटी पर घुमाने लाते हैं। जिस बेटे को माता पिता मुस्कुराते हुए एडवेंचर करते देखते हैं, कुछ ही सेकंड बाद वही बेटा उनकी आंखों के सामने 45 फीट नीचे गिर गया, क्योंकि जिप लाइन पर आगे बढ़ते ही पुली का लॉक अचानक खुल गया, कुणाल नीचे आ गया।
12: तो बच्चे ने कहा मैं इसको झूलना चाहता हूँ, तो मैंने चल ले ले टिकट, मैं झूले आना। अब झूले पे जैसे ही चढ़ा है वो हवा में, जैसे ही आया वो नीचे गिर गया है।
13: बताते हैं कि जिप लाइन में जैसे ही वो सवार हुआ है 10 मीटर ही आगे बढ़ा होगा, स्विच लॉक खुल गया।
12: हाँ, 10 मीटर भी नहीं बढ़ा, ज्यादा 2-3 मीटर बढ़ा होगा, सो ही गिर गया है वो।
13: फूड चौपाटी में जो एम्यूजमेंट पार्क है उसमें किस तरह से लापरवाही से 16 साल के किशोर की मौत हुई है, उसने सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस समय आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर है और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां से मैं आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। किस तरह से ये जो आप देख सकते हैं करीब 45 फीट की हाइट पर यहां से जो जिप लाइन होती है, जो किशोर है कुणाल अग्रवाल जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो यहीं से जैसे ही वो आगे बढ़ता है और जो आपको रस्सियों का जाल दिख रहा है उस पर गिरता है।
2: कुणाल की जान इसलिए गई क्योंकि कुछ भी नया खोलकर उससे विकास की रोशनी बताने वाली सरकार और सरकारी व्यवस्था कभी ये जांचते ही नहीं कि जनता के लिए एडवेंचर का जिम्मा जिसे दिया है वो सुरक्षा मानकों पर उसे संभालने लायक, चलाने लायक है या नहीं।
14: जांच में प्रथम दृष्टि ये चीजें निकल कर के आई जो लोग रोप रहे के कैलिबर का हमने से ये घटना पारित हुई है। बॉडी को जो है पोस्टमार्टम भेज के लिए जो है मोर्चरी भेज दिया गया है, पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, परिवारिक जनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों जो सेफ्टी इंचार्ज और जो चौपाटी मैनेजर है उसको हिरासत में ले लिया गया है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
2: असल में वीवीआईपी की सिक्योरिटी की चिंता करते करते हर जवाबदेह ये भूल गया कि आम आदमी भी है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं लोगों पर है जिनकी सैलरी जनता के पैसे से ही आती है। इसीलिए कभी जिप लाइन से गिरकर, कभी झूला टूट जाने से हंसते खेलते आम आदमी जान गंवाने के लिए मजबूर होता है।
15: और अब आपको हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे रोपवे गुलमर्ग गोंडोला में फंसे सैलानियों की खबर से खबरदार करते हैं, जहां तकनीकी खराबी आ गई। दोपहर 12 बजे रोपवे के सभी कैबिन अचानक रुक गए। इनमें 300 से ज्यादा पर्यटक बैठे थे, सभी बीच हवा में फंस गए। इन्हें बचाने के लिए सेना लगी। सेना के अनुसार हवा में 65 केबिन फंसे थे। एक केबिन में अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं। शाम 7 बजे तक 167 लोगों को रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे निकाला जा चुका है। कुछ कैबिन 500 फीट पर थे। 25 कैबिन्स में अभी भी लोग फंसे होने का दावा है। इनमें कई महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी हैं। अधिकारियों के अनुसार सभी यात्रियों को निकालने में और समय लग सकता है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। अब तक किसी के घायल होने की हालांकि खबर नहीं है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
16: SDRF ने अपना रोल अदा किया है, जो लोकल वहां के गाइड थे उन्होंने अपना, और पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, और इसलिए अब सारे सेफ हैं और सारे वहां से काफी जो टूरिस्ट थे वो निकल भी आए हैं। कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो अब नीचे, क्योंकि बड़ा स्लिपरी है, मैं खुद भी जब वहां गया तो काफी कीचड़ है और आप लोगों ने भी देखा होगा टैरन बड़ा वो है, कीचड़ वाला है, पैदल चलना पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक। लोग पैदल आ रहे हैं फेस फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। तो लिहाजा सबसे बड़ी यही है कि उस मालिक, उस रब का शुक्रिया कि सारे लोग बचाव हो गए, और कोई, क्योंकि कहीं हार्ट पेशेंट भी होते हैं, कोई अस्थमा पेशेंट भी होते हैं, लेकिन ऐसा कोई वहां नौबत नहीं आई और सारों का बचाव हो गया और ऑपरेशन अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है।
15: अब आपको बंगाल के चुनाव नतीजों से देश की राजनीति में आ रहे बदलाव से खबरदार करते हैं। डायमंड हार्बर की फालता सीट से बीजेपी को 1,00,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी की इस जीत के बीच ममता बनर्जी ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही। सवाल यह है कि हार के बाद क्या ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन के सहारे हैं?
17: The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. Yes. And I would like to end by saying, thoda sabar rakhiye aur kursi ka piti bandh lijiye. Mausam bigadne wala hai.
15: बीजेपी की 240 सीटें आने पर तंज कसने वाले अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी के दिन फिर गए हैं। तृणमूल कांग्रेस राज्य में चुनाव हारने के बाद अब उनकी लोकसभा सीट डायमंड हार्बर की विधानसभा से बुरी तरह हार गई। पार्टी प्रत्याशी जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई। इससे ममता बनर्जी की मुसीबत दोहरी होती जा रही है। एक तरफ पार्टी में टूट का खतरा बढ़ रहा है तो वहीं भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।
18: तृणमूल कांग्रेस की सेकेंड इन कमांड और तथा एमपी डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी के घर पे इस वक्त पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त जो खबर हम लोग को मिल रहा है कि ये जो घर है 188A शांति निकेतन बिल्डिंग यानी कि 188A हरीश मुखर्जी रोड, यहीं पे इस वक्त पुलिस की जो है कि टीम पहुंची है।
15: पश्चिम बंगाल के चुनाव ने सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया बल्कि विपक्ष की राजनीति को भी हिला दिया है।
19: कितना जेल बनाओगे आप? बनाओ। हम देखने चाहता है देश भर कितना जेल है। आप जितना अत्याचार बंगाल में करेंगे इतना आपको नुकसान दिल्ली में होगा। कि अभी आप बंगाल से फ्री हो गया, आपने मेरे को वोट लूट लिया जबरदस्ती।
15: पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी नए सिरे से बीजेपी पर आक्रामक होती है। नए जोश के साथ खबरदार करने को बीजेपी को तैयार है। सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए वोट चोरी करने का आरोप लगाया। दावा किया कि करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी के पक्ष में आए नतीजों को पलट दिया गया है। ममता बनर्जी कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो तृणमूल कांग्रेस को 220 से 230 सीटें मिल जाती। ममता बनर्जी ने अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि आप भवानीपुर में कैसे जीते हैं, मैं आपको ये अदालत पे बताऊंगी। ममता बनर्जी ने लिखा है कि अगर शुभेंदु में हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाएं, हमें ईवीएम रिपोर्ट चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर 2011, 2016, 2021 के चुनाव निष्पक्ष थे तो ममता अचानक अब सवाल क्यों उठाती है?
19: कि आप हमारा 2,250 पार्टी वर्कर को आपने अरेस्ट किया, आपने हमारा 2,250 पार्टी ऑफिस को लूट किया।
15: ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन निर्वाचन क्षेत्रों में कानूनी उपायों का सहारा लेगी जहां चुनाव प्रक्रिया के संचालन को लेकर सवाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सियासी संदेश ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर दिया है।
19: हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फास्ट वीक को जून में बैठने का कोशिश करेंगे सबको साथ बातचीत करके और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए व्हेयरएवर वी हैव टू गो वी आर रेडी टू गो।
15: तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की याद आ गई। सवाल है कि इंडिया गठबंधन को लेकर ममता की इस अप्रत्याशित सक्रियता के पीछे उनकी कौन सी राजनीतिक मजबूरी या रणनीति है? क्या इसकी वजह अभिषेक बनर्जी पर बढ़ती सख्ती है?
18: इस वक्त अभिषेक बनर्जी जो है वो ये जो घर है उनका, यही घर पे वो रहते थे। इससे पहले यही घर के सामने काफी सारे सिक्योरिटीज रहती थी, उनको जेट प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि जेट प्लस कैटेगरी है नहीं और सत्ता परिवर्तन होते ही इसको उठा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त बात आ रही है कि कहीं पे ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो 7 दिन की नोटिस थी वो नोटिस आज खत्म हुई, यानी कि सोमवार को खत्म होती है। और इसी नोटिस के बारे में कुछ पूछताछ या कुछ बातचीत करने के लिए पुलिस पहुंचा है या नहीं, या इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए पहुंचा है या नहीं, यही सबसे बड़ी प्रश्न इस वक्त उठता है।
2: एक तरफ ममता बनर्जी के भतीजे पर कार्रवाई का डर है, वहीं हार के बाद टीएमसी के टूटने का भी डर। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने 12-7 संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। काकोली घोष ने इस्तीफे की चिट्ठी में लिखा है,
20: मैं हमारी नेता ममता बनर्जी से आग्रह करती हूं कि वो टीएमसी के पुराने नेताओं को अपने साथ ले जाएं ताकि पार्टी की छवि सुधर सके। मुझे नहीं लगता कि नई एजेंसियां कड़ी मेहनत कर पाएंगी। अगर किसी ने विनाश की जड़ में काम किया तो वो वही संगठन है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
2: काकोली घोष का यह बयान राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक को लेकर बताया जाता है, जिस पर उन्होंने पार्टी में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाए जाने के बाद से काकोली के सुर बदले हुए। काकोली को इसके बाद केंद्र की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या तृणमूल कांग्रेस में काकोली घोष के दिन गिनती के ही बचे हैं?
21: जमीनी हकीकत से ये काफी दूर है और जमीनी हकीकत इंसान से, लोगों से, लोकतंत्र में हर मतदाता से जो तालमेल होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इससे ये लोग कोई मतलब ही नहीं रखते। ये अपने ख्याल से काम किए जा रहे हैं और सिर्फ वो नहीं, ये काम करते करते इतना जो वर्कर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं।
2: साल 2011 के बाद पहली बार ममता बनर्जी राज्य की सत्ता से बाहर हुई है। बंगाल की सत्ता हाथ से जाने के बाद ममता बनर्जी के सामने पार्टी को तो बचाने की चुनौती है ही, अपनी राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक वजूद को बचाने का भी सवाल है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन की छत्र छाया में आने के अलावा शायद ममता के पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प था नहीं।
13: आईपैक को लेकर भी टीएमसी के जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं, टीएमसी में असंतोष पनप रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को टूटने से बचाना है, फिर से मजबूत करना है, तो दूसरी ओर दिल्ली में इंडिया अलायंस को फिर से एक्टिव करना है, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और उससे पहले ये सब कोशिशें करने के लिए ममता बनर्जी के पास चुनौती दोहरी है।
15: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जहां कानूनी लड़ाई की बात कह रही हैं, वहीं शुभेंदु सरकार ने बंगाल के सिंडिकेट के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कोलकाता से लेकर हुगली तक लगातार बुलडोजर कार्रवाई करके दावा है आम लोगों की उन जमीनों से कब्जा हटाया जा रहा है जिन पर टीएमसी के नेताओं ने कब्जा कर रखा था।
22: छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा।
2: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी से बदलाव की तस्वीर बता रही है, जिसमें तृणमूल के स्थानीय पार्षद के करीबी को स्थानीय व्यापारियों से रंगदारी मांगना महंगा पड़ गया। आरोप लगने के बाद सड़क पर रंगदारी मांगने वाले को घसीट कर पीटा गया, उसकी गिरफ्तारी हुई। कथित तौर पर कटमनी मांगने वाले को जनता ने खबरदार कर दिया। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद शहर शहर बुलडोजर चल रहा। कोलकाता, हुगली, आसनसोल में दावा है प्रशासन ने जबरदस्ती कब्जा करके बने टीएमसी के दफ्तरों को बुलडोजर से गिरा दिया। कोलकाता के बेलाघाटा का मातपुकुर इलाका, यहां टीएमसी के एक ऑफिस को ध्वस्त किए जाने के बाद तनाव फैल गया। आरोप है कि साल 2011 में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद बेलेघाटा के मातपुकुर में स्थानीय निवासी झरना कुंडू के घर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। जमीन मालिक का दावा है कि जमीन पहले एक क्लब बनाने के नाम पर ली गई, लेकिन रातों रात इसे टीएमसी के कार्यालय में बदल दिया गया।
23: हम अभी जहां पर खड़े हुए हैं उस ये जो जगह है, इस जगह में भी आज ही बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलाया गया जहां पर वो था तृणमूल कांग्रेस का एक पार्टी ऑफिस। यहाँ पे 2 मंजिला पार्टी ऑफिस था तृणमूल कांग्रेस का, जिसको पिछले 11 साल से ये जो जमीन है, उन जमीन के ऊपर जो जमीन मालिक है उनको उनसे ये जमीन हड़प कर यहाँ पे ये 2 मंजिला तृणमूल का पार्टी ऑफिस बनाया गया था।
2: स्थानीय सूत्रों के अनुसार जमीन मालिक कई वर्षों से अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दावा है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। 4 मई के बाद सरकार बदली तो हालात बदल गए। जमीन मालिक ने स्थानीय बीजेपी नेताओं से संपर्क किया और अपनी संपत्ति वापस लेने की गुहार लगाई। शनिवार को बिलघाटा के वार्ड नंबर 57 के इस इलाके में स्थानीय बीजेपी नेताओं की मदद से निजी स्वामित्व वाली जमीन मालिक को वापस सौंप दी गई। बाद में मालिक के अनुरोध पर तृणमूल के नियंत्रण वाली जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किए गए पार्टी कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त भी कर दिया गया।
23: चार तारीख के बाद जब सत्ता के बदल हुआ उसके बाद ही इस पार्टी ऑफिस पे गेट पे जो भगवा रंग था वो भगवा रंग भी किया गया था, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ता ने वो यहाँ पे मौजूद होके इस जगह को यहाँ पे साफ किया और इस जगह का जो मालिक है उनके हाथों में सौंप दिया गया।
2: कोलकाता की तरह आसनसोल में बुलडोजर एक्शन पिछले हफ्ते से चल रहा। आरोप है कि टीएमसी के नेता ने सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर ही कब्जा कर लिया, लेकिन सरकार बदलने के बाद टीएमसी काउंसलर के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया। आसनसोल में हफ्ते भर में आधा दर्जन टीएमसी कार्यालय तोड़े गए, जिन्हें लेकर दावा है कि वो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके बनाए गए। सेल अधिकारियों का कहना है कि ढांचा हटाने के लिए उनकी तरफ से टीएमसी नेता को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्हें सरकार बदलने पर अपनी जमीन वापस मिली। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध ढांचे को ध्वस्त करके सेल की जमीन वापस ली गई।
0: जा कोर्चे सरकार भलो उन्नयन कोर्चे करुक आमादेर कोनो ओर मध्ये बलार दरकार नहीं। आमी जाय उन्नयन करबे तार संगे आछि, तार संगे थाकबो।
2: अब ये तस्वीर देखिए जो हुगली के उत्तर पारा शहर की। यहाँ पर मौजूदा विधायक ने खुद खड़े होकर बुलडोजर से टीएमसी के पार्टी कार्यालय को ढहा दिया। आरोप है कि टीएमसी का ये ऑफिस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना। इस अवैध ऑफिस से टीएमसी नेता न सिर्फ पार्टी दफ्तर चलाते थे बल्कि घर बनाने के लिए जरूरी बजरी गिट्टी भी बेचने का कारोबार करते थे। बीजेपी का दावा है कि इस तरह कटमनी का यह सिंडिकेट ममता राज में पूरे राज्य में फैलता रहा, जिसे उखाड़ फेंकने का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है। बंगाल में बुलडोजर एक्शन 12 मई को कोलकाता के तिंजाला में चमड़े की एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद शुरू हुआ, जहां अवैध फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद तिलजला में कई और अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया और देखते ही देखते पूरे राज्य में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया।
15: और अब आपको उस विवाद से खबरदार करते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता को गुस्से से भर दिया है। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली कराने का आदेश सरकार ने दिया है। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर कल सुनवाई होगी। सवाल यह है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी कई जिमखाना क्लब की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ये देखेगी कि वहां पर तय समझौते का पालन हो रहा है या फिर नहीं।
2: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
1: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
2: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है, जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं। फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
3: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
2: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
4: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
2: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से ₹44 करोड़ से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
15: और अब खबरदार में इस वक्त ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। त्विशा शर्मा केस में आरोपी और त्विशा के पति समर्थ को पुलिस लेकर उसके घर पहुंची है। आगे की जांच के लिए समर्थ सिंह को लेकर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। गिरफ्तारी के बाद से समर्थ सिंह पुलिस रिमांड में है और पुलिस उन सभी जगहों पर ले जाकर उन सभी जो अभी तक सबूत हासिल हैं उन सबको लेकर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: कूल फैंस से घर को सजाएं।
2: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
1: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: GK Max.
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: GK Max. Best putty.
4: JK Wall Max.
2: Best paint.
5: JK Max.
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
3: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
4: आगे आगे
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
7: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
6: आप कैसे कर लेते हो?
8: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
9: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
10: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं
9: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
14: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
15: है। भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, anybody can dream.
14: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
16: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind.
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: Character, the taste of success.
21: Like I said before, we better own the sins.
3: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
22: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो, जीतो।
23: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
24: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
23: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है.
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे.
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: सीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है, गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान करकर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है।
6: ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी बैंकों में तेहरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका समझौते के शुरुआती चरण में ही ईरान की कुछ ब्लॉक की गई संपत्ति

0: नियुक्तियों को जारी करने पर सहमत नहीं होता तब तक किसी अंतिम समझौते की संभावना नहीं है। आरोप ये भी है कि अमेरिका बातचीत के दौरान लगातार अपना रुख बदल रहा है और मुख्य शर्तों में अड़चन पैदा कर रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, अमेरिका ने बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा है कि वह समझौते में जल्दबाजी ना करें। होर्मुज को लेकर भी ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सुरक्षा सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि होर्मुज प्रबंधन ईरान का कानूनी अधिकार है।
1: محاصره دریایی رو که تا حالا صبر کردیم و بهتون حمله نکردیم محاصره دریایی رو میشکنیم اما مهمتر از این بهتون عرض میکنم ممکنه ما از انتیتی خارج بشیم میدونید این تهدید یعنی چی؟ که اگر ما از انتیتی خارج شدیم چه بلایی به سر شما میاد؟
0: ईरान ने अपना यह संदेश पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के उन देशों तक भी पहुंचा दिया गया है जो बैक चैनल कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ पुराने के अनुभवों को देखते हुए केवल कागजी गारंटी पर्याप्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर की, जहां आज से हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस काबा की तरफ मुंह करके दुनिया के करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, आज उसकी सुरक्षा के लिए सऊदी अरब को 9,500 करोड़ रुपए का अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ा है। मक्का में सऊदी अरब के हजारों सैनिकों की, टैंकों की, हेलीकॉप्टर्स की, लड़ाकू विमानों की वैसी ही परेड हुई है जैसी युद्ध क्षेत्र में होती है। बड़ा सवाल यह है कि जो सऊदी अरब चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, वहां मक्का को आखिर खतरा किससे है? असल में मक्का को यह खतरा किसी दूसरे धर्म से नहीं, बल्कि यमन के कट्टरपंथी हूती विद्रोहियों और ईरान से है। यह असल में मिडिल ईस्ट के दो बड़े देशों के बीच सच्चा इस्लामिक राष्ट्र बनने के वर्चस्व की जंग है, जिसमें आज इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल निशाने पर आ चुका है। इसके बाद आपको हमारे देश के सिस्टम का ब्लैक और व्हाइट सच दिखाएंगे। भारत में बकरीद से ठीक पहले खुले में नमाज और कुर्बानी को लेकर बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की कि जब देश का कानून धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर है, तो राजनीतिक पार्टियां कहीं इतनी सख्त और कहीं इतनी नरम क्यों है। एक तरफ बीजेपी शासित राज्य है जहां कड़े नियम और पाबंदियां हैं, दूसरी तरफ विपक्षी दलों के राज्य हैं जहां सख्ती नहीं बल्कि छुट्टियों की सौगात भी है। आखिर यह अंतर क्यों? दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसे तमाम मुस्लिम देशों में खुले में कुर्बानी पर भारी जुर्माना और सख्त पाबंदी है, वहां इसे कोई मुस्लिम विरोधी नहीं कहता, तो फिर हमारे देश में कानून पर वोट बैंक का चश्मा क्यों चढ़ा दिया जाता है? आखिर में आपको बताएंगे कि क्या देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हो सकती है? पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है और लगभग 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है, जिसका असर महंगाई के रूप में नजर आने लगा है। अब लोगों को लगता है कि ये वृद्धि यही नहीं रुकने वाली, अभी कीमतों में और भी इजाफा होगा। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस काबा की तरफ मुंह करके दुनिया के करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उस काबा को किससे खतरा है। आज सऊदी अरब में हज का पहला दिन था, जिसके लिए मक्का शहर के चारों तरफ सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। इनमें अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत $1 बिलियन यानी 9,500 करोड़ रुपए मानी जाती है। यह तैनाती भी तब हुई है जब इस्लाम धर्म में मक्का के पवित्र क्षेत्र को हरम माना गया है। हरम का मतलब ऐसी भूमि से होता है जहां कुछ चीजें पूर्ण रूप से वर्जित या निषिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए मक्का शहर में खून खराबा नहीं हो सकता, युद्ध नहीं हो सकता, हथियार नहीं लाए जा सकते, लोगों को डराया धमकाया नहीं जा सकता। यहां तक कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मक्का में पेड़ पौधे काटने को भी गलत माना गया है। लेकिन फिर भी यहां सऊदी अरब की सरकार को एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सऊदी अरब को लगता है कि मक्का में हज की यात्रा के दौरान मिसाइल और ड्रोन से हमले हो सकते हैं और इसमें काबा को भी निशाना बनाया जा सकता है। और यह डर भी तब है जब सऊदी अरब चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन में 99% आबादी मुसलमानों की है, ओमान में 95%, यूएई में 77%, कतर में 79%, कुवैत में 76%, इराक में 97%, जॉर्डन में भी 97% और इजिप्ट यानी मिस्र में मुस्लिम आबादी 90% से अधिक है। और ये देश केवल मुस्लिम बहुल नहीं है, बल्कि इन देशों ने इस्लाम को अपना राजकीय धर्म माना है, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि जो सऊदी अरब चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा है, वहां मक्का को आखिर किससे खतरा हो सकता है। देखिए,

0: क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि मक्का को खतरा किसी दूसरे धर्म के लोगों से नहीं बल्कि मक्का को खतरा उन मुसलमानों से है जिन्हें सऊदी अरब कट्टरपंथी मानता है? इनमें पहला देश है ईरान, दूसरा है ईरान का प्रॉक्सी संगठन हूती, जिसे सऊदी अरब की सरकार अपना दुश्मन मानती है। और ऐसा नहीं है कि हूती पर इससे पहले मक्का के खिलाफ साजिश के आरोप नहीं लगे। जून 2017 में एक फिदायीन आतंकी काबा की पवित्र मस्जिद में आत्मघाती हमला करना चाहता था, जिसे सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने एक बिल्डिंग में घेर लिया था। और ये आतंकी एक मुसलमान था और इसकी मदद करने वाले 5 लोग भी इस्लाम धर्म को मानते थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना भी उस वक्त हुई थी जब सऊदी अरब 2016 में ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती पर यह आरोप लगा चुका था कि उसने मक्का पर मिसाइलें दागने की कोशिश की है। और सिर्फ 2016 में ही ऐसे आरोप नहीं लगे, 2019 में भी हूती पर यही आरोप लगा कि उसने मक्का को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें फिर से सऊदी अरब की तरफ दागी है। अब ये देखिए कि हूती कौन है। हूती एक विद्रोही संगठन है जिसने यमन के आधे भूभाग पर कब्जा किया हुआ है। वो सऊदी अरब से इसीलिए नफरत करता है क्योंकि सऊदी अरब यमन की उस सरकार का समर्थन करता है जो हूती के खिलाफ है, और यही चीज हूती को सऊदी अरब का दुश्मन बनाती है। और क्योंकि सऊदी अरब से ईरान की दुश्मनी है, इसीलिए ईरान हूती को हथियार और ट्रेनिंग देता है। लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि हूती के लड़ाके किसी और धर्म को नहीं मानते, वो इस्लाम धर्म को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी उस पर बार बार यह आरोप लगता है कि वो मक्का पर हमला करना चाहता है। और ये बात किसी को समझ नहीं आती कि हूती इस्लाम धर्म को मानते हुए मक्का के खिलाफ क्यों है। तो इसके पीछे एक ऐसा धर्म युद्ध है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मिडल ईस्ट में मुस्लिम देशों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि इनमें से कौन सा देश सच्चा इस्लामिक राष्ट्र है और कौन सा देश केवल इसका दिखावा करता है। सऊदी अरब कहता है कि मक्का और मदीना उसके देश में है, इसीलिए सच्चा मुस्लिम राष्ट्र वो है। ईरान कहता है उसके यहां अल्लाह के नुमाइंदों का शासन है, इसीलिए सच्चा मुस्लिम राष्ट्र वो है। ये लड़ाई पिछले लगभग 5 दशकों से चल रही है, जिसमें ईरान ने हमेशा से यह कहा है कि जिन देशों में सुल्तानों के परिवार का राज है वो खुद को मुस्लिम देश कहने का ढोंग करते हैं, क्योंकि कोई भी देश तब तक मुस्लिम नहीं बन सकता जब तक कि वहां अल्लाह का शासन न हो। अब ये चीज ईरान ने अपने देश में लागू करके भी दिखाई और सुप्रीम लीडर को अल्लाह का नुमाइंदा बताया, जिसने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और जॉर्डन जैसे देशों को असहज किया। असहज इसीलिए किया क्योंकि इन देशों में राज परिवारों का शासन था। इन देशों को लगा कि अगर ईरान की तरह उनके यहां भी अल्लाह के शासन की मांग होने लगी तो यहां के राज परिवारों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। इसी वजह से ये देश ईरान के दुश्मन बन गए और ईरान मिडल ईस्ट में अलग थलग हो गया। लेकिन ईरान ने खुद को सच्चा मुस्लिम देश बताने के लिए ऐसे संगठन भी बनाए जिनसे मुसलमानों में इन देशों की साख और विश्वसनीयता गिराई जा सके, और यही चीज सऊदी अरब भी करता है। आज भी अगर सऊदी अरब हूती पर मक्का को निशाना बनाने का आरोप लगाता है तो इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरब यह दिखाना चाहता है कि ईरान एक सच्चा मुस्लिम देश नहीं है, क्योंकि वो मक्का को खत्म करना चाहता है। जबकि ईरान यह साबित करना चाहता है कि मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, लेकिन सऊदी अरब एक दिखावटी मुस्लिम देश है। और सोचिए, इस पूरे टकराव में मक्का जैसा पवित्र शहर निशाने पर आ गया है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। नटशेल में कहें तो बाहर से देखने पर मुस्लिम देशों का भाईचारा अटूट नजर आता है, लेकिन भीतर से देखने पर इसी भाईचारे में कई दरारें साफ दिखाई पड़ती हैं। कुछ उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। जब सीरिया में गृह युद्ध के कारण 55 लाख मुसलमानों को अपना देश छोड़ना पड़ा, तब कोई बड़ा मुस्लिम देश इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सीरिया के विस्थापित मुसलमानों ने जान बचाने के लिए जब तुर्की, लेबनन, जॉर्डन का रुख किया, तब इन देशों ने भी इन सीरियाई मुसलमानों पर कड़े और सख्त नियम लागू किए और कई मुसलमानों को डिपोर्ट भी कर दिया। इसके बाद जब अफगानिस्तान में युद्ध के कारण 48 लाख मुसलमान विस्थापित हुए, तो इन मुसलमानों की भी किसी मुस्लिम देश ने मदद नहीं की। जो मुसलमान किसी तरह जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचे, उन्हें भी इस्लाम धर्म का ठेकेदार बनने वाले पाकिस्तान ने डिपोर्ट कर दिया, और तब पाकिस्तान को इस्लाम धर्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। और फिर यही दक्षिणी सूडान में हुआ, यही इराक में हुआ, यही यमन में हुआ, और यही फिलिस्तीन में हुआ। फिलिस्तीन के गाजा में 20 लाख लोग रहते थे, जिन्हें युद्ध के दौरान अगर 56 मुस्लिम देशों में शरण मिलती तो इनकी जान बच सकती थी। ऐसा करने पर हर मुस्लिम देश को केवल 35 से 36 हजार फिलिस्तीनी मुसलमानों को अपने यहां शरण देनी होती, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। और मुस्लिम देशों ने गाजा के मुसलमानों के साथ हमदर्दी तो दिखाई लेकिन अपने यहां शरण नहीं दी। और इस मुस्लिम भाईचारे का सच दुनिया ने उस वक्त भी देखा जब रमजान के महीने में ईरान ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर हजारों मिसाइलें दागी और इसमें कई लोगों की जानें गई। कहने का मतलब केवल इतना है कि कुछ कट्टरपंथी ये सोचते हैं कि अगर सब जगह मुस्लिम आबादी फैल जाए तो उनके विवाद और टकराव रहेंगे ही नहीं, और इसके लिए ये लोग गजवाए हिंद और खुरासान जैसी साजिश को गढ़ते हैं। लेकिन मक्का में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती और मुस्लिम देशों के बीच हितों का टकराव बताता है कि जहां सिर्फ मुसलमानों का राज है उन देशों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। यहां आप मक्का शहर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए जिन्हें हजारों सैनिक वहां परेड करते हुए दिख रहे हैं, अपने साथ ये सवाल छोड़ रहे हैं कि मक्का में आखिर युद्ध भूमि जैसी परिस्थितियां क्यों नजर आ रही हैं।
1: استاذن سموكم الكريم هي بدل العرض العسكري امرك سيد

0: आगे बढ़ते हैं और बात भारत की करते हैं। भारत में 28 मई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और इससे पहले एक बार फिर हमारे देश में कुर्बानी और खुले में नमाज के नियम को लेकर बहस शुरू हुई। बहस ये है कि जानवरों की कुर्बानी को लेकर बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी शासित राज्यों के कानून अलग अलग क्यों दिखते हैं। जैसे बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है, लेकिन कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसी कोई सियासत नहीं हो रही। बीजेपी शासित पश्चिम बंगाल में बकरीद की छुट्टियों में कटौती की गई है, लेकिन कांग्रेस शासित केरलम में बकरीद के लिए 2 दिनों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसी तरह बीजेपी शासित दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में गाय या गोवंश की कुर्बानी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन विपक्षी दलों के राज्यों में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। और इससे हमें एक चीज आईने की तरह साफ नजर आती है, वो चीज ये है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां खुले में नमाज, खुले में कुर्बानी को लेकर बहुत सख्ती है, इसके पीछे कानून का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां इस पर कोई मुद्दा नहीं बन रहा। और ये अंतर न केवल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह स्पष्ट नजर आता है, बल्कि इस अंतर से ये सवाल भी पैदा होता है कि हमारे देश में कानून की आंखों पर अगर वोट बैंक का चश्मा पहना दिया जाएगा तो लॉ ऑफ द लैंड क्या होगा। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब यह है कि जो कानून धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर है और सबके लिए एक समान है, वो कानून राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में सख्त और नरम है। जैसे अलग अलग राज्यों में एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है, लेकिन इन्हें लागू करने की प्रभावशीलता हर राज्य में अलग है, जिसकी वजह से इन कानूनों का को लागू करने में भी विवाद होता है। इसे आप मुस्लिम देशों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे सऊदी अरब में जानवरों की कुर्बानी लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों या निर्धारित स्थानों पर ही होती है, लेकिन वहां इस सख्ती को कोई मुस्लिम विरोधी नहीं कहता। यूएई में भी खुले में कुर्बानी को लेकर कड़े नियम हैं, और अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। कतर में भी सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती और वहां सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि कतर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कुवैत और बहरीन में भी निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होती है, जबकि तुर्की में तो सरकार खुद तय करती है कि किन जगहों पर कुर्बानी हो सकती है, और वहां सड़क या सार्वजनिक इलाकों में जानवर काटने पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन तुर्की में भी कोई नहीं कहता कि यह नियम मुसलमानों के विरुद्ध है, और यह सूची बहुत लंबी है। कहने का मतलब केवल इतना कि जब मुस्लिम देशों में इन कानूनों का पालन हो सकता है तो धर्मनिरपेक्ष भारत में इन्हीं कानूनों पर इतनी बहस, इतना विवाद क्यों होता है। हमें लगता है कि यह शायद इसीलिए होता है क्योंकि हमारे देश में सरकारें कानून के हिसाब से कम, वोट बैंक के हिसाब से ज्यादा काम करती हैं, और हर राज्य और राजनीतिक पार्टी की सरकार में होता है।
1: अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे।
2: सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है, और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स को दोहराना हो कि क्योंकि आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो उसमें आपकी कमी दिख रही है। बट दीज रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉट जस्ट फॉर उत्तर प्रदेश, पूरे देश में ही कि पब्लिकली स्लॉटर अलाउड नहीं है और वो अलाउ होना भी नहीं चाहिए।
4: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी।
0: आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि जैसे होली के त्योहार पर बिना पानी के सूखी होली मनाने के लिए कहा जाता है और दीपावली पर ग्रीन दिवाली मनाने की सलाह दी जाती है, ठीक उसी तरह से अब मुसलमानों को वर्चुअल बकरीद मनानी चाहिए, जिसमें लोग असली में जानवरों की कुर्बानी न देकर कंप्यूटर पर वर्चुअल जानवरों की कुर्बानी दें। सुनिए।
5: मोड़े आमचे दिवा होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। ती सल्ले त्यांना काय देत नाहीत, हा हिम्मत इकडच्या काही पर्यावरण वाल्यांना त्यांना ते सल्ले देण्याची.
0: और अब हम आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं और क्या पेट्रोल प्रति लीटर 25 रुपए तक महंगा हो सकता है. भारत ने ईरान युद्ध शुरू होने के 76 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था. इसकी खूब चर्चा भी हुई, लेकिन इसी महीने 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के 11 दिन बाद 15 मई को पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ा दी गई. आज 25 मई को इन्हीं कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ है और पिछले 10 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल 7.35 रुपए और 1 लीटर डीजल 7.53 रुपए महंगा हो चुका है. अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो देश के जिन 5 राज्यों में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है उनमें आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जबकि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरलम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी टॉप 5 में आते हैं. अब ये कीमतें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया 2.8% बढ़ जाता है. और यहां तो केवल पिछले 10 दिनों में ये कीमतें 7 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिससे महंगाई का बढ़ना निश्चित है. क्यों, इसे भी समझिए. माल ढुलाई का मतलब यह होता है कि आपके शहर और इलाके में जो सब्जियां, फल या रोजमर्रा का दूसरा सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है उसकी लागत यानी कॉस्ट अब पहले के मुकाबले 2.8% तक बढ़ सकती है. इससे महंगाई में अच्छा खासा इजाफा होगा जो आम लोगों की जेब पर बुरा असर डालेगा. अब यहां एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि जब सरकार ने युद्ध के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी तो अब सीज फायर के दौरान ये कीमतें बार बार क्यों बढ़ रही हैं? तो आंकड़े बताते हैं कि सरकार पर तेल की कीमतें बढ़ाने का दबाव उसी दिन से था जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी. युद्ध से पहले फरवरी महीने में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें $69 थी, लेकिन मार्च में यही कीमतें $113.49 प्रति बैरल हो गई. ये कीमतें हम आपको इंडियन क्रूड बास्केट के हिसाब से बता रहे हैं. इसका मतलब यह होता है कि भारत जिन अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीदता है उन सब तेल का औसत दाम मार्च महीने में कितना था और उससे पहले फरवरी महीने में कितना था. अब जैसा कि हमने आपको बताया, मार्च महीने में कच्चा तेल $69 से बढ़कर $113.49 प्रति बैरल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. मार्च के बाद अप्रैल में भी कच्चे तेल की कीमतें लगभग इतनी ही $114 प्रति बैरल रही और तब भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए. और सरकार इस दबाव को लगातार सहती रही, लेकिन इस महीने जब कच्चा तेल मार्च और अप्रैल के मुकाबले थोड़ा सस्ता हुआ और 22 मई को ये इंडियन क्रूड बास्केट में $106 प्रति बैरल पर दर्ज हुआ, तब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार नहीं बल्कि 4 बार बढ़ा दी. ऐसा शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि मार्च और अप्रैल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे. तेल की कीमतें चुनाव के मुद्दों को प्रभावित भी कर सकती थी. अब इस सवाल पर आते हैं कि सरकार एक बार में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ा रहे और ये कीमतें लगातार बढ़ क्यों नहीं. तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंडियन क्रूड बास्केट. भारत सिर्फ एक देश से कच्चा तेल खरीदकर उससे पेट्रोल और डीजल नहीं बनाता, इसकी जगह हम खाड़ी देशों से भी तेल खरीदते हैं. यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और वेनेजुएला से भी तेल खरीदते हैं और इसके बाद इन सभी तेलों को मिलाकर पेट्रोल डीजल की एक औसत कीमत निकाली जाती है. अब युद्ध से पहले होता यह था कि हमारी इंडियन क्रूड बास्केट में 79% हिस्सेदारी खाड़ी देशों के तेल की होती थी, जबकि केवल 21% हिस्सेदारी ब्रेंट क्रूड की होती थी जो यूरोपीय देशों से आता है. लेकिन युद्ध के बाद यह स्थिति पूरी तरह पलट गई. अब हमारे कच्चे तेल में ब्रेंट क्रूड की हिस्सेदारी 61% है, जबकि खाड़ी देशों के तेल की हिस्सेदारी केवल 39% है और इसी वजह से तेल की कीमतें बार बार बढ़ रही हैं. और भी सरल शब्दों में कहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति लगभग ठप हो गई है और इसके कारण हमें महंगा ब्रेंट क्रूड खरीदना पड़ रहा है. और क्योंकि हम महंगा ब्रेंट क्रूड खरीद रहे हैं इसीलिए सरकार को कच्चे तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं. अब इस सवाल पर आते हैं कि ये कीमतें प्रति लीटर कितना बढ़ सकती हैं. इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 4 साल पीछे चलना होगा. 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब 5 महीने तक इंडियन क्रूड बास्केट में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत $100 के पार रही थी और 5 महीने तक ऐसा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर ₹10 की वृद्धि हुई थी। यानी पिछली बार से तुलना करें तो मौजूदा परिस्थिति में इस बार पेट्रोल डीजल कम से कम ₹12 महंगा हो सकता है और अगर तेल आपूर्ति 1 साल तक प्रभावित रहती है तो इस हिसाब से प्रति लीटर कीमतें ₹25 तक भी बढ़ सकती हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें जब संकट काल में बढ़ाई जाती हैं तो बढ़ी हुई कीमतों को धीरे धीरे वापस भी लिया जाता है। जैसे 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल ₹10 महंगा हुआ, बाद में अगले 2 साल में यही कीमतें ₹10 कम भी की गई। और ऐसा नहीं है कि ये 2022 में ही हुआ, जुलाई 2008 में इंडियन क्रूड बास्केट में जब 1 बैरल कच्चा तेल $132 तक पहुंच गया था तब यूपीए की सरकार ने 1 लीटर पेट्रोल के दाम ₹45.52 से बढ़ाकर ₹50.62 कर दिए थे। लेकिन जब यही कच्चा तेल कुछ महीने बाद $43 पर आ गया तो यूपीए की सरकार ने पहले तो कीमतें कम नहीं की लेकिन 2009 के लोकसभा चुनावों से एन पहले प्रति लीटर पेट्रोल ₹10 तक सस्ता कर दिया। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चुनावी सियासत बहुत पहले से होती रही है और हर सरकार में तेल की कीमतों पर ये चीजें की गई हैं। हालांकि यहां हम एक और बात को जोड़ना चाहते हैं और वो ये है कि तेल कंपनियों से सवाल कौन पूछेगा। आपको यही बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल इसीलिए महंगा हो रहा है क्योंकि तेल कंपनियों को घाटा उठाना पड़ रहा है। लेकिन आज जो नए आंकड़े आए हैं वो एक दूसरी कहानी बयां करते हैं। चौथी तिमाही में यानी इस साल जनवरी से मार्च महीने के बीच तेल कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में 41% की वृद्धि हुई है। फिर से सुन लीजिए, जनवरी से मार्च महीने के बीच तेल कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 41% बढ़ा, जबकि इसमें मार्च का महीना पूरी तरह से युद्ध के हवाले रहा था। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 11,377 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, भारत पेट्रोलियम को 3,191 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 4,901 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो कुल मिलाकर 19,470 करोड़ रुपए होता है। और यहां बात सिर्फ पिछली तिमाही के मुनाफे की नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन ऑयल ने 2022 से 2025 के बीच 97,625 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। भारत पेट्रोलियम ने भी इन्हीं 4 सालों में 65,122 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 48,114 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ONGC ने भी इन 4 सालों में पेट्रोल डीजल की बिक्री से 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। और सोचिए, इतना मुनाफा जब इन तेल कंपनियों ने कमाया तो उस वक्त तेल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन आज जब कच्चा तेल महंगा होने से इन्हें घाटा हो रहा है तो इन तेल कंपनियों ने प्रति लीटर ₹7 से ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। और यही है तेल का पूरा खेल।
6: देश की आम जनता पर एक बार फिर महंगाई का ऐसा बम फूटा है जिसने हर घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। महज 10 दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने चौथी बार जनता की जेब काट ली है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाहाकार है, क्योंकि डीजल महंगा होने का मतलब है आपकी थाली की सब्जी से लेकर दूध, ब्रेड और दवाइयों तक सब कुछ महंगा होगा। ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल की ये तेजी पूरी इकोनॉमी को पटरी से उतार देगी।
7: दाम तो बढ़ रहे हैं, जनता पे बोझ बढ़ रहा है अपने यहाँ पे, और जनता काफी परेशान है इन सब चीजों से।
8: बढ़ने से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी।
9: दिमाग खराब हो रहा है डेली,
10: बहुत परेशान है सर। रेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा।
11: इतनी महंगाई में इंसान, आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता।
12: बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर बहुत भार पड़ गई।
6: पेट्रोल पंप पर लगी ये कतारें सिर्फ ईंधन भरवाने वालों की नहीं है बल्कि देश के उस आम आदमी की है जो लगातार बढ़ती कीमतों से त्रस्त है। तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में जो किया है उसने देश को महंगाई के एक बड़े खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और 4 बार की बढ़ोतरी में ईंधन की कीमतें ₹7 प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस चौतरफा मार का नतीजा ये हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। अब दिल्ली वालों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए ₹102.12 और डीजल के लिए ₹95.20 खर्च करने पड़ रहे हैं।
13: कमाएंगे क्या, पेट्रोल डालेंगे क्या, और लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते, इतना नहीं कमा पाते, 1000 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है।
14: वैट कम करेंगे तो रेट कम होगा
15: सर, कोई दिक्कत नहीं, कष्ट है दिक्कत है सर, मतलब देश को कोई दिक्कत नहीं।
6: अगर आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर असर पड़ता है तो आप गलत हैं। ईंधन की ये आग सीधे आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है। 15 मई को जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ी उसका असर 24 घंटे के भीतर दिखने लगा। अमूल और मदर डेयरी जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने पैकेज दूध के दाम बढ़ा दिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ब्रेड की कीमतें बढ़ गई और अब टैक्सी यूनियनों ने भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
16: अरे तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है, तो जब तो वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अर्निंग नहीं हो रही बराबर।
17: एक दिन दो रुपए बढ़े, फिर एक एक करके डेली बढ़ रहे हैं और इससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं।
18: जो अपने यहाँ पेट्रोल डीजल है ही नहीं है तो बढ़ेगा ही जब बाहर से आएगा तो।
19: पूरे वर्ल्ड में ऊर्जा संकट है और ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए इन परिस्थितियों का सामना हम लोग कर सकते हैं।
6: भारत की इकोनॉमी ट्रकों के पहियों पर चलती है और इन पहियों की ताकत है डीजल, लेकिन अब परिवहन उद्योग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी AITWU ने साफ चेतावनी दी है कि इस कमरतोड़ महंगाई में गाड़ियों का संचालन नामुमकिन होता जा रहा है। यही वजह है कि एसोसिएशन ने 20 मई को देश भर में फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर यानी FAF लागू कर दिया है। समझिए ये गणित कितना खतरनाक है। एक ट्रक को चलाने की कुल लागत में 65% हिस्सा अकेले डीजल का होता है। ट्रांसपोर्टर्स के नए नियम के मुताबिक डीजल की कीमत में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी पर माल ढुलाई का किराया अपने आप 0.65% बढ़ जाएगा। यानी अब तक जो तेल 7 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है उसने माल ढुलाई की लागत को करीब 5% तक बढ़ा दिया है। अगर ये दाम 10 रुपए बढ़े तो सीधा 6.5% की बढ़ोतरी तय है।
20: सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है, मिडिल क्लास को मार के रख दिया है क्या? छोटी छोटी फैमिली वाले जो कम सैलरी में काम करते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ।
21: इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, जो फॉरेन कंट्री के अंदर चल रहा है बहुत चल रहा है, जो देश के देश में उपलब्ध है उसमें तो नहीं होता कोई प्रॉब्लम।
6: माल ढुलाई महंगी होने का सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में हर वो सामान महंगा होने जा रहा है जो ट्रकों के जरिए गोदामों और दुकानों तक पहुंचता है। सब्जियां, फल, दूध, दवाइयां और रोजमर्रा के सामान तो महंगे होंगे ही, साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी सीमेंट, सरिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी भी महंगी हो जाएगी। कंपनियों की बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत का पूरा बोझ आखिर में देश के आम उपभोक्ता की जेब पर ही ट्रांसफर किया जाएगा।
22: जनता के जेब से पैसा निकल रहा है, जनता परेशान हो रही है।
23: आम पब्लिक पे जो भजन पड़ रहा है ना वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखाता है कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखाता है।
24: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह नहीं, पता नहीं सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए, यही नहीं मालूम पड़ा ना न्यूज पे ना उस पे, कोई यही नहीं रहा, हम तो लोग परेशान हो ही रहे ना।
6: यानी तेल का ये खेल सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है, ये देश के हर नागरिक की थाली और जेब को खाली करने का नया जरिया बन चुका है।
0: सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि अभी तो तेल महंगा हुआ है, आगे कुछ दिन में बंद तक हो जाएगा इसका मिलना। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में इस जानकारी से बेचैनी बढ़ गई होगी, लेकिन आज ही संसदीय समिति की बैठक में भारत सरकार ने बताया है कि अब भी हमारे पास 78 दिनों का कच्चा तेल रिजर्व में बचा हुआ है जो लगभग 2.5 महीने के बराबर है। यहां आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों पर GST का भी एक आईना देखना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें तभी GST के दायरे में आ सकती हैं जब इसके लिए GST काउंसिल में कुल वेटेड वोट का 75% समर्थन मिले, और यह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सिर्फ बीजेपी और उसके सहयोगी दल ऐसा चाह लें तो विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि कुल वेटेड वोट में अभी केंद्र सरकार के वोट का वेटेड 1/3 यानी 33.33% है, जबकि सभी राज्यों के वोट मिलाकर 2/3 यानी 66.67% वेटेज रखते हैं। अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें और ये सभी सरकारें इसके लिए तैयार हो जाएं तो जीएसटी काउंसिल में इस प्रस्ताव को 75% जरूरी समर्थन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहां सवाल ये भी है कि क्या सरकारें ऐसा करने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि अगर सरकारें तेल पर टैक्स कम करती हैं तो उन्हें मुफ्त योजनाओं पर भी अपना खर्च घटाना होगा। और सोचिए क्या हमारे देश में लोग इसके लिए तैयार होंगे कि उन्हें सरकार से जो मासिक आर्थिक सहयोग मिल रहा है वो बंद हो जाए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि चीन से खाली हाथ लौटा अमेरिका भारत से क्या चाहता है और राष्ट्रपति ट्रंप भारत से क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन पहले अमेरिका की आजादी के 250वें साल पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ये एक कूटनीतिक इवेंट होना था जिसमें शिष्टाचार के तौर पर बारी बारी सबको स्टेज पर आकर संबोधन देना था, लेकिन इस इवेंट के दौरान सर्जियो गोर ने अचानक सभी मेहमानों को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा दिया और उनसे स्पीकर फोन पर बात की। इस फोन कॉल के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं और भारत मुश्किल वक्त में अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है।
1: And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi.
2: Thank you, sir.
0: ट्रंप के फोन कॉल और सर्जियो गोर के इस कदम को एक अलग तरह की कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सर्जियो गोर भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, काफी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। टैरिफ के मुद्दे पर जब भारत और अमेरिकी संबंधों में खटास आई थी तब दोनों देशों के संबंधों को ठीक करने के लिए सर्जियो गोर काफी एक्टिव दिखे थे। ट्रंप के फोन कॉल के बाद मार्को रूबियो और एस जयशंकर ने भी भारत और अमेरिका की दोस्ती को मजबूत बनाने की बात दोहराई और फिर इसके बाद संगीतकार ए आर रहमान की टीम ने जय हो गाने पर परफॉर्म किया।

0: The list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. The
1: Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests.
2: अब ये देखिए कि चीन से खाली हाथ लौटा अमेरिका भारत से क्या चाहता है। पहला, अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया में चीन के बढ़ते असर के खिलाफ एक मजबूत काउंटर बैलेंस बने, यानी अमेरिका हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। दूसरा, अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार बनाकर चीन पर अपनी निर्भरता को घटाना चाहता है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। तीसरा, अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा अमेरिकी हथियार, ड्रोन, एयर डिफेंस, हाईटेक सैन्य सिस्टम खरीदे और दोनों देशों की सेनाएं मिलकर चीन के खिलाफ सामरिक तालमेल भी बढ़ाएं। चौथा, अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत धीरे धीरे रूस पर अपनी रक्षा और ऊर्जा निर्भरता कम करे, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद वॉशिंगटन इस दिशा में ज्यादा दबाव बना रहा है। हालांकि भारत ने कहा है कि जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट प्राथमिकता है, वैसे ही भारत के लिए इंडिया फर्स्ट है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है कि भारत को लोकतांत्रिक शक्ति के वैश्विक चेहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि दुनिया को यह संदेश जाए कि पश्चिमी देशों के साथ खड़ा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और उभरता हुआ शक्ति केंद्र भारत है, ताकि चीन के मॉडल के मुकाबले एक वैकल्पिक वैश्विक नैरेटिव बनाया जा सके। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप भारत को साथ लेकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों को एक बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों को इसराइल के साथ अब अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड इसराइल, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके तहत मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश इसराइल को मान्यता देकर उसके खिलाफ अपनी दुश्मनी को भुलाकर आपसी सहयोग बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें अभी एक मिडल ईस्ट से यूएई और बहरीन और उत्तर अफ्रीका से मोरक्को ही इसमें शामिल हुए हैं और इन तीनों मुस्लिम देशों ने इसराइल को मान्यता दी, उसके साथ रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। दुनिया के कई मुस्लिम देश इसराइल को यहूदी देश के तौर पर अपना पारंपरिक दुश्मन मानते हैं, इसीलिए वो इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध भी नहीं रखते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे देशों को ईरान के साथ समझौते का इसराइल के साथ समझौते का हिस्सा बनने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने की शर्त रखी है और ईरान को भी इस समझौते में शामिल होने का न्योता दिया है। अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि मुस्लिम देशों द्वारा इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी जाएगी, जिससे यहूदी और मुस्लिम देशों के बीच दुश्मनी खत्म मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की यह शर्त पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान भी इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार तो फिलिस्तीन के मामले में इसराइल का विरोध करती आई है। अमेरिकी डॉलर पाने के चक्कर में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने में लगा हुआ है, लेकिन इसराइल को मान्यता देने की शर्त रखकर ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। अब हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार पिछले 15 सालों से पोषित हो रहे भ्रष्टाचार, घुसपैठ और नेता अपराधी नेक्सस को खत्म करने में लगी हुई है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों में ममता राज में शेर बनकर घूमने वाले अपराधियों, घुसपैठियों, नियमों को ताक पर रखने वालों को सीधा किया जा रहा है, जिन मुद्दों को ममता बनर्जी बीजेपी सरकार का एजेंडा बताकर खारिज कर देती थी, उन्हीं मुद्दों पर बंगाल की बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है। ममता बनर्जी के 15 सालों के कार्यकाल में बंगाल की जनता को चुनाव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद हिंसा का उपहार दिया जाता था, फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो या पंचायत इलेक्शन। उनके राज में ही महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विभत्स संदेश खाली केस को स्थानीय समस्या बताकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कहा गया। और सिर्फ यही नहीं, इस अपराध में शामिल टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बचाने के भी प्रयास हुए थे। आरजीकार मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस को ममता सरकार एक सामान्य मामला बताने में बिजी रही और बंगाल की जनता के गुस्से को भी पूरी तरीके से नकार दिया। ममता बनर्जी सरकार में नेताओं और अपराधियों के सिंडिकेट राज और कट मनी कल्चर को स्थानीय टैक्स व्यवस्था जैसा बना दिया गया था। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी नेता होना या टीएमसी नेता का पिछलग्गू होना असीमित शक्ति पाने का केंद्र बताया जाता था और अमूमन ये शक्तियां जमीन पर कब्जे, रंगदारी, राजनीतिक हत्याएं और महिलाओं के शोषण का लाइसेंस हुआ करती थी। लेकिन पिछले 15 दिनों में बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने इन्हीं शक्तियों पर प्रहार करने का दावा किया है। पिछले 15 दिनों में कई बड़े फैसले और एक्शन लिए गए, जैसे सबसे पहले टीएमसी के नाम पर गुंडई करने वालों की कच्छा बनियान परेड निकाली जा रही है। ये वीडियो हावड़ा में डॉन कहे जाने वाले आकाश सिंह की है। इनके बारे में कहा जाता था कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन सरकार बदली तो दबंगई कपड़ों की तरह उतारी गई। बंगाल पुलिस ने जनता के अंदर इसका खौफ खत्म करने के मकसद से पूरे बाजार में घुमाया, और ये एक बार नहीं बल्कि दो बार दो अलग अलग तरीकों से किया गया। पहली बार क्राइम रिक्रिएशन के लिए ले जाते वक्त दाढ़ी और सर के बाल के साथ परेड निकाली गई, दूसरी बार सर गंजा करके दाढ़ी मुंडवा कर परेड निकाली गई। ममता राज में आकाश सिंह हावड़ा का एक ऐसा अपराधी था जो अपने आकाओं के लिए रंगदारी और कट मनी वसूलता था। आकाश सिंह पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने, करीब 20 बम फेंकने के आरोप थे। हावड़ा में ही पुलिस ने एक ट्रैफिक होमगार्ड को तोलाबाजी यानी अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किया और वैसी ही परेड निकाली गई जैसी आकाश सिंह की निकाली गई थी। शाहीन मुल्ला नाम का यह ट्रैफिक होमगार्ड हावड़ा के सांकरेल की विधायक प्रिया पाल का करीबी बताया जाता है। इस पर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली के आरोप हैं। ये दोनों मामले बताते हैं कि बंगाल की बीजेपी सरकार ने टीएमसी राज के अपराधियों को उनकी जगह दिखानी शुरू की है। लगभग हर दिन अपराधियों पर हो रही कार्रवाई की तस्वीरें आ रही हैं और कार्रवाई केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि अवैध कब्जे छुड़वाने के लिए भी बड़ा एक्शन हो रहा है। आसनसोल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर टीएमसी के एक काउंसलर ने कब्जा कर लिया था। इस अवैध कब्जे पर बाकायदा तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस बनाया गया था। पिछली सरकार में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी इस छोटे से ऑफिस पर उंगली उठा दे, लेकिन जैसे ही राज्य में बीजेपी सरकार आई इस अवैध टीएमसी ऑफिस पर उंगली नहीं बल्कि बुलडोजर का पंजा चला। बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में बंगाल को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया था। कार्यकाल के 15 दिनों में ही जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसने लोगों का भरोसा जगाने का दावा है और इस भरोसे की एक और झलक फालता सीट पर हुई रीपोलिंग के नतीजों में भी दिखी।

0: भालता सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने शानदार जीत दर्ज की है। भालता वही विधानसभा सीट है जिस पर बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए ईवीएम के बटन को टेप से चिपका दिया गया था ताकि किसी भी वोटर को कमल का निशान तक न दिखाई दे। इस सीट पर हुई पिछली वोटिंग में आरोप लगा था कि कई बूथों पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थक मतदाताओं को डरा धमका कर वोट मांग रहे थे। अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर पर भी आरोप लगे थे कि वो मतदाताओं को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दे रहे थे, लेकिन इस सीट पर हुए पुनर्मतदान में सारा डर और सारी धमकियां हवा हो गईं। नतीजा ये रहा कि बीजेपी उम्मीदवार ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। फालता सीट पर 2,36,444 मतदाता हैं और रिपोलिंग में 88% वोटिंग हुई। इनमें से करीब 71% वोट बीजेपी को, 19% सीपीएम को, 5% कांग्रेस और करीब 4% वोट टीएमसी को मिले हैं। पहले ये माना जा रहा था कि फालता सीट पर लड़ाई बीजेपी और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच है। इसकी वजह ये थी कि फालता सीट पर 33% आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन नतीजों ने टीएमसी को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया और इस जीत ने दिखाया कि मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी उम्मीदवार पर भरोसा किया।
1: आज समझ में आ रहे हैं, बंगाल भी देख रहे और भारत भी देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा वोट में 7,00,000 के ऊपर वोट से किस तरह से जीते थे, आज वो स्पष्ट हो गया है। और जो पुष्पा बोल रहे थे कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा झुकते झुकते पता नहीं चूहा का बिल में घुस गया। तो हम लोग पुलिस में खबर दिए है कि पुष्पा निरुद्देश है, पुष्पा को नहीं मिल रहा है, तो किसी पुष्पा का दरकार नहीं है।
0: इस जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन ले लिया है। शुभेंदु सरकार ने डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी है।
2: मैदानी इलाकों में सूर्य देवता इस वक्त रौद्र रूप में है। लू के थपेड़े झेल रहे लोग राहत की तलाश में पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़े हैं, लेकिन अफसोस सुकून की ये तलाश अब एक बड़े सरदर्द में बदल चुकी है। तस्वीरें गवाह हैं कि पहाड़ों पर इस वक्त कुदरत के नजारे कम, वाहनों की कतारें ज्यादा दिख रही हैं। शिमला मनाली से लेकर नैनीताल तक हर खूबसूरत मोड़ पर कई किलोमीटर लंबा महाजाम लगा है। हालात ये हैं कि सैलानी वादियों की ठंडी हवा खाने के बजाय अपनी ही गाड़ियों में कैद होकर उबल रहे हैं। पहाड़ों पर आए इस टूरिस्ट ब्लास्ट की तस्वीरें डराने वाली हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए।
0: आसमान से बरसती आग और 50 डिग्री को छूता पारा, उत्तर भारत इस वक्त जल रहा है। आलम यह है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट आई तो उसमें से 99 शहर अकेले हमारे हिंदुस्तान के हैं। इस जानलेवा तपिश से बचने के लिए मैदानी इलाकों के लोग अब पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ठहरिए, सुहाने मौसम की चाहत में निकले इन सैलानियों को क्या पता था कि पहाड़ों पर उनका स्वागत कुदरत की वादियों से नहीं बल्कि गाड़ियों के अंतहीन सैलाब से होगा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक इस वक्त पहाड़ों पर ट्रैफिक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। शुरू करते हैं उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल से। वीकेंड आते ही मैदानी इलाकों के सैलानियों का ऐसा रेला उमड़ा कि नैनीताल के पैर उखड़ गए। माल रोड पर पैर रखने की जगह नहीं है। दिन भर गाड़ियों की लंबी कतारें रेंगती रहीं, जो सैलानी सुकून से झील में बोटिंग करना चाहते थे उन्हें वहां भी भारी भीड़ की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नैनीताल के बाद हरिद्वार का हाल देखिए। गंगा दशहरा का पावन स्नान, ऊपर से वीकेंड और साथ में चार धाम यात्रा का दबाव, नतीजा हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर गाड़ियों का ऐसा मेला लगा कि गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गईं। भीषण और तपती गर्मी के बीच श्रद्धालु अपनी गाड़ियों में कैद हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का ये ड्रोन शॉट देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ गाड़ियों की छतें दिखेंगी। मनाली जाने वाले रास्ते इस वक्त जाम के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।
2: ब्लैक एंड व्हाइट में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते।
5: विक्रम
4: हिंट
6: बड़े आराम से

उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री में उबल रहा है। मध्य प्रदेश का खजुराहो 47.4 डिग्री में तप रहा है। महाराष्ट्र का वर्धा 47.2 डिग्री में झुलस रहा है। हरियाणा का रोहतक 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है। पंजाब के बठिंडा पर 46.6 डिग्री का कहर टूट रहा है। इस सुपर और नीनो इफेक्ट ने ऐसी मुसीबत कायम करके रखी है कि पूरी दुनिया के टॉप 50 गर्म शहरों में सारे के सारे हिंदुस्तान

किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल भी शतक के करीब। वित्त मंत्री ने बताया युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके चुपके काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर केंद्र से मांगा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बिताएंगे रात, 29 को भुज, 5 को त्रिपुरा और 15 जून को बंगाल बॉर्डर का करेंगे दौरा। इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए सतर्क केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की निगरानी समेत सभी तैयारियों की समीक्षा। ईरान अमेरिका में समझौते के प्रयास के बीच ट्रंप की बड़ी कोशिश, अरब देशों के मुस्लिम नेताओं से की बात, इसराइल को मान्यता देने वाले अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज हम आपको दस्तक में दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जबकि बंगाल और महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी और गाय की कुर्बानी को लेकर सरकारें सख्त निर्देश जारी कर चुकी हैं। बकरीद में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, और इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा। आइए आपको दिखाएं कुर्बानी पर कोहराम।
3: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम। सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। ना सड़क पर नमाज, ना खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
4: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?
3: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग। बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार? 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
5: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
3: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
6: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है। अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है। अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
3: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
7: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं। तो अयोध्या है, काशी है, नैमिसारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्तिपीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
3: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं। जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
8: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
3: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है। इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
9: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
10: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
11: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए। गंभीर चिंतन का समय है, लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
12: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
13: ऐसे होगा हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
3: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
13: नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रहिए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
14: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
3: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
15: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
12: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
2: गाय को लेकर पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है हंगामा और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गो हत्या पर सख्त चेतावनी जारी की।
3: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
16: प्रचुर भीड़ होती, प्रचुर।
17: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी, इसी वजह से डर के मारे कोई गायें लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
3: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
18: मुस्लिम भाई के जो अनुरोध करूंगा, अपनारा गोरु किनबेन ना, गोरु अपनारा किने कुर्बानी देवेन ना, आमरा दोबो ना, एते शुद्ध आमादेर असुविधा हय ना अन्य कारो असुविधा हय सेटा देखार विषय आछे। एते जदि आमरा कुर्बानी गोरु दिया बंध करी তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
3: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
19: कुर्बानी হচ্ছে নিয়ম মেনে হচ্ছে এবং সবকিছু শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে, ঠিক নিয়ম মেনে হবে, ওপেনলি হবে না, কোনো ভাবে চতুর্দিকে ড্রেনে রক্ত ছড়াবে না।
20: কুরবানি তো হোগাই, কুরবানি কোই মানা করেগা ও ভি নেই শুনেগা, ও কুরবানি সত্তা মে আয়ে শুভেন্দু ঠিক হ্যায় লোগো কো উনকো পাস ভোট ডালা ও সরকার চালায়েগি, লেকিন মেরা 1400 সাল সে পহলে সে এক কুরবানি হোকে আ রাই, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
3: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
21: मको का ही लगना चाहिए और मको का ही कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
22: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है, और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
3: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: गाना सुना आपने दिलजीत का, फैन होंगे आप, तो आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है। जी हाँ, पंजाब के मशहूर गायक एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया तो दिलजीत की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आइए आपको दिखाएं कि आखिर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी किसने दी और ये धमकी कहां से आई है।
1: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाथ सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
2: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गाँव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को, गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है। हालांकि इससे क्यों कोई दहशत फैलाना चाहता है या सच में कोई ब्लास्ट करना चाहता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे ही आज सुबह जेनिफर सेनोटे के नाम से ईमेल आई बम से भरी धमकी की, इस ईमेल के बाद प्रशासन हरकत में आया।
1: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
3: भारतीय जनता पार्टी किस तरह डराया गया, किस तरह के मैनेजर गोलियां चलाने घर के उत्ते ताकि दहशत का माहौल बना के उन्होंने बीजेपी शामिल किया जाए। जो पंजाब की आवाज आ, जो साड़ी पंजाबीयत की आवाज आ, जो दुनिया के अंदर जानी जाती है कि दलजीत दोसांझ उन्होंने डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी शामिल करना चाहती है।
1: आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल चुनाव है, उससे पहले पंजाब में राजनीति भी जमकर हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी धमकियों को भी बीजेपी से जोड़ रही है। लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी दिलजीत दोसांझ को धमकियां मिल चुकी हैं। सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग हो चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग का दावा किया। आज तक ब्यूरो।
0: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं, अब होगा महायुद्ध। आप देखते रहिए दस्तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है. लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली.
10: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है.
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे.
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स.
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
14: JK Wall Max.
13: Best paint?
14: JK Max.
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: आगे आगे
8: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
11: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
2: विक्रम, एक हिंट तो देते।
12: विक्रम!
2: हिंट
11: बड़े आराम से।
13: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
16: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होम दिस सिंस।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: हर कोई ये कह देता है, अरे ये नहीं खाइए, ये नहीं खाना, ये छोड़ना पड़ेगा, मैं मीठा छोड़ दूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। किसी को किडनी डैमेज था तो डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो या आप कम खाओ, वहां से ये तोड़ मरोड़ के ये बन गया कि प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है। प्रोटीन चाहिए बालों को भी, जो इतना हम प्रोटीन के अगेंस्ट है ना, बालों को भी प्रोटीन चाहिए। प्रॉब्लम खाने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उसके एक्सेस में। पोर्शन मेक्स पॉइजन।

0: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी।
1: बकरीद के नाम पर मजहबी राजनीति किस हद तक पहुंच जाती है ये आप हुमायूं कबीर के इस बयान को सुनकर समझ सकते हैं। इस शख्स के नाम में ही कबीर है, सोच में मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार सख्ती करने पर आमादा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है। नए निर्देश के मुताबिक किसी गाय या भैंस की तभी हत्या की जा सकती है जब उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो पशु शारीरिक रूप से अक्षम हो। इसके अलावा पशुओं को खुले में मारने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर अमल कर रही है। चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी वो कहते रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदुओं का ही वोट मिलता है। शुभेंदु सरकार का एक नया आदेश देखिए, जिसमें कहा गया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन 28 मई को छुट्टी रहेगी। पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी। जैसे जैसे बकरीद करीब आ रही है, तीखे बयानों में भी तेजी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे की सलाह है कि मुसलमानों को भी ड्राई होली की तरह वर्चुअल बकरीद मनाना चाहिए।
2: मोड़े आमचे दिवा होली आले, होलीचा सण आला, दिवाळी आले तर परिवार अनुपूरक होली मनवा, ड्राई होली मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा, कापू नका बकरी।
1: बकरीद को लेकर हलचल दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
3: बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती है। अदालत से इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने की गुहार लगाई गई है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities. An American delegation was recently in India. We hope to realize the potential of cooperation in the nuclear domain, and I also raised with Secretary some issues, regulatory issues we have on the American side.
5: But there are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them. Which is what adds the finishing touches on the importance of this strategic alliance. As we have a strategic alliance between the United States and India, it's a strategic alliance between two countries that have global influence and the ability to influence global events. And that distinguishes it from other relationships.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल भी शतक के करीब। वित्त मंत्री ने बताया युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने लिखी राज्यों को चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। गृह मंत्री का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बताएंगे रात। 29 मई को भुज, जून 5 को त्रिपुरा और 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बुलाई बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की निगरानी समेत सभी तैयारियों की समीक्षा। और ईरान अमेरिका में समझौते के प्रयास के बीच ट्रंप की बड़ी कोशिश, अरब देशों के मुस्लिम नेताओं से बात की, इसराइल को मान्यता देने वाले अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब हम ईरान और अमेरिका युद्ध की बात करेंगे, जी हाँ, दोनों देशों के बीच अभी तक कोई डील नहीं हो पा रही है। अब ट्रंप ने एक तरफ तो कहा है कि वो ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, जबकि मुश्तबा खामनेई ने यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि उनकी शर्तों के बगैर कोई शांति समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले समझौते की आलोचना करने वाले नेताओं पर नाराजगी व्यक्त की है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने यह कहकर हलचल मचा दी कि सभी मुस्लिम देश इसराइल से रिश्ते सुधारें, सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। देखिए,
3: ईरान और अमेरिका में डील अटकी, अब महायुद्ध होगा। ट्रंप का फिर से यूटर्न, बोले समझौते में कोई जल्दबाजी नहीं। ट्रंप ने क्यों कहा मुस्लिम देश इसराइल से रिश्ते सुधारें? ट्रंप के दिमाग में क्या है? मुश्तबा ने मैसेज क्लियर कर दिया। डील पर मुश्तबा का सीधा संदेश, ईरान की शर्तों पर ही समझौता। ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? जब से ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग छिड़ी है, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, 7 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं हो पा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिश पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। 24 घंटे में कूटनीति की बाजी पलट गई है। अमेरिका ईरान डील शनिवार को पक्की थी, लेकिन रविवार को उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरी वक्त पर डील क्यों अटक गई। लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया ऐलान सुनते हैं। जी हाँ, ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तमीम बिन हमद अल थानी, आसिम मुनीर, रजब तैयब एर्दोगन, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्दुल्ला द्वितीय और हमद बिन ईसा अल खलीफा समेत कई नेताओं से बातचीत की। और अब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए अब जरूरी है कि ये सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। यूएई और बहरीन पहले से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं। कुछ देशों के पास शामिल न होने की एक दो वजह हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर देशों को इस समझौते के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ट्रंप का मैसेज क्लियर है कि इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करें। उन्होंने जिन देशों का नाम लिया उनमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन शामिल हैं। अब ट्रंप के इस ऐलान से पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब सवाल ये है कि ट्रंप के कहने पर क्या पाकिस्तान अब्राहम समझौते पर साइन करेगा, यानी इसराइल को मान्यता देगा। ट्रंप के दिमाग में क्या है, क्या अमेरिका कोई नया प्लान बना रहा है। ईरान युद्ध से दुनिया में उथल पुथल मची, अब आगे क्या होगा। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन से तीन सबसे बड़े विवाद हैं जिनके चलते ये अमेरिका और ईरान में महाडील आखिरी वक्त पर अटक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच किन बातों पर मतभेद करे और सब बीच किन बातों पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। पहला मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, फोर्डो और नतान जैसे परमाणु ठिकानों को खत्म करे और संवर्धित यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंप दे। लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि परमाणु तकनीक उसका संप्रभु अधिकार है और वो किसी कीमत पर अपना यूरेनियम नहीं देगा। दूसरा बड़ा विवाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका पूरी तरह मुफ्त आवाजाही चाहता है। वही ईरान कह रहा है कि संचालन और नियंत्रण पर उसका अधिकार बना रहेगा। दुश्मन देशों के जहाजों पर रोक और टोल लगाने का अधिकार भी उसके पास होना चाहिए। तीसरा मुद्दा, प्रतिबंध और फ्रीज संपत्ति। ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटे, विदेशों में फंसी अरबों डॉलर की संपत्ति तुरंत रिलीज हो और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मिले। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि पहले परमाणु शर्तें पूरी हों उसके बाद ही राहत मिलेगी।
4: Still work in progress. As I said, you know, we thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
3: यानी दोनों देश समझौते की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भरोसे की कमी और राष्ट्रीय हितों की टकराहट के कारण डील अब भी अधर में लटकी हुई है। इस वक्त अमेरिका ईरान डील को लेकर सबसे बड़ी और बेहद सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय खबर सीधे ईरान से आई है। अमेरिका के साथ होने वाली महाडील के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नियंत्रण वाले सबसे प्रमुख अखबार कायहान ने अपने फ्रंट पेज पर बेहद आक्रामक तेवर दिखाए हैं। अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए अखबार ने मुख्य हेडलाइन में साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई भी शांति समझौता केवल और केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई की सभी शर्तों का पूरी तरह सम्मान किया जाएगा। अखबार ने युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान की लक्ष्मण रेखा यानी रेड लाइंस को साफ तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है, जिसके तहत ईरान ने अपनी चार बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है परमाणु क्षेत्र में ईरान की तरक्की और उपलब्धियों की पूरी सुरक्षा। दूसरी शर्त, युद्ध के नुकसान के लिए हर्जाना और मुआवजा। तीसरी सबसे बड़ी शर्त, पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र से अमेरिकी सेना की मुकम्मल वापसी। और चौथी शर्त, सभी मोर्चों पर एक साथ पूर्ण युद्ध विराम लागू करना है। इस अखबार ने एक और बेहद तीखी हेडलाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप का ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के आत्मसमर्पण के साथ ही खत्म होगा। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महाडील को लेकर कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान के प्रभावशाली नेता और वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद तल्ख लहजे में सीधी चेतावनी दे दी है। रिजाई ने साफ लफ्जों में कहा है कि सैन्य युद्ध के दौरान ईरान की रणनीति आंख के बदले आंख की थी और अब इस युद्ध में उसकी नीति एक्शन के बदले एक्शन की होगी। ईरानी नेता ने दुनिया से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खोखले दावों और झांसों पर भरोसा न करे, क्योंकि इस समय वक्त अमेरिका के खिलाफ चल रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव, ताकत या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए रिजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका वाकई समझौता चाहता है तो उसे बराबरी पर आकर सम्मानजनक बातचीत करनी होगी। आज तक ब्यूरो।
0: आइए हम आपको हमारे संवाददाता रोहित शर्मा के पास ले चलते हैं। रोहित, ट्रंप ने कहा है कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो खामनेई का दावा है कि समझौता तभी संभव है जब उनकी शर्तों का सम्मान होगा। अब रोहित, दोनों की इन बातों के बाद आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं?
5: देखिए, संभावनाएं तो यही है कि जब तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा मुझे लगता है कि उनकी दो मांगे रही है, पहली मांगे रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ईरान नहीं बना सकता, दूसरी जो यूरेनियम है जो जमा किया हुआ है ईरान के पास, जो एनरिच किया हुआ है, उसे ईरान को छोड़ना होगा। ईरान में ऐसा लगता है कि यू नो देयर आर जो काफी लोग हैं जो निगोशिएट कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ, वो आई थिंक एक मिक्स्ड मैसेजिंग देते हैं। और इसका जिक्र प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके, उन्होंने कहा था कि वहां पे कभी आईआरजीसी के जो कमांडर्स है वो एक पोजीशन रखते हैं और जो मॉडरेट लीडरशिप है वो एक अलग पोजीशन रखते हैं। तो आई थिंक हमें क्लासिक एक मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है ईरानियन लीडरशिप में, जो हमेशा एक बार बात आती है कि चलो हम कुछ निगोशिएट करेंगे, अब कुछ सीज फायर हो सकता है, एक डील हो सकती है, और उसके बाद जैसे ही कुछ होने वाला होता है ईरान जो है अपने हाथ पीछे ले लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये जो चेतावनी आई है, जो उन्होंने पोस्ट की है, उससे क्लियर लगता है कि उनका पेशेंस जो है वो खत्म होते जा रहा है। इनफैक्ट कल जब सेक्रेटरी मार्को रूबियो से भी हमने बात की थी, उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर ईरान ये जो दो शर्तें हैं इसको नहीं मानता है तो फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरे ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेशन फ्यूरी को फिर से स्टार्ट करना। तो बहुत आई थिंक क्रिटिकल सिनारियो में और क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है नेगोशिएशन। अगर ईरान अभी भी इन डिमांड्स को लेकर अपनी स्थिति क्लियर नहीं करता है तो बिल्कुल ये संभावना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से ऑपरेशन फ्यूरी का आगाज कर दें।
0: और आइए अब बात करते हैं ट्रंप के, जिनके विदेश मंत्री इस समय भारत की यात्रा पर हैं। मार्को रूबियो जहां भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं ट्रंप भारत से भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप की टैरिफ और पाकिस्तान परस्त नीति को देखते हुए अमेरिका पर विश्वास करना एक्सपर्ट्स को बेहद खतरनाक लग रहा है।
6: Relationship. It's a strategic alliance. You know, we have a lot of alliances around the world. We have a lot of countries we deal with, but we have a handful of really important strategic alliances, and India is one of them.
7: आज तक से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री भारत की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है।
8: I have to say my favorite field marshal from Pakistan.
7: जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ करते रहे हो, क्या उन पर भारत भरोसा कर सकता है?
9: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody.
7: जो डोनाल्ड ट्रंप फायदे के लिए चीन को लेकर नीति बदलते दिखते रहे हों, क्या वो भारत के भरोसे के लायक हैं?
10: The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan.
7: दशकों की मेहनत के बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हुए, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप नाम की आंधी ने हिला कर रख दिया। इसके बावजूद अब ट्रंप एक बार फिर चाहते हैं कि भारत उन पर भरोसा करे।
9: We've never been closer to India, and India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here.
7: तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका पर एतबार करे, लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है? ट्रंप के बयानों और हरकतों की वजह से अमेरिका को लेकर भारतीयों का भरोसा हिला है। इसीलिए जब अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उनकी इस यात्रा से रिश्ते एक बार फिर मजबूत होंगे।
11: In the modern era, you go online and there are people saying all kinds of crazy stuff online. I don't even know if they're real people or who they are.
7: डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर अमेरिकी पॉडकास्टर माइकल सेविज के एक पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्ट साझा की थी, जिसमें भारत को अपमानजनक रूप से हेल होल यानी नरक कहा गया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई। यही वजह है कि मार्क रूबियो को ट्रंप की इस हरकत पर बार बार सफाई देनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि क्या ये काफी है?
11: President loves India. He said it last night. The president's a big fan of India, a big fan of Prime Minister Modi. I wouldn't be here if the president didn't want me to be here.
7: अमेरिकी विदेश मंत्री की तरह भारत में ट्रंप की इन हरकतों के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये भरोसा दिलाने में लगे हैं कि अमेरिका भारत का सम्मान करता है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में खटास की सबसे बड़ी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिनके टैरिफ को लेकर दिए बयान आज भी भारतीय भूले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम भी भारतीयों को रास नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह ट्रंप ने सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की, उनकी इस हरकत को भारतीय भूले नहीं। इसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने लगातार पाकिस्तान के नेताओं की तारीफ की, उसे ईरान युद्ध में मध्यस्थ बताया, इससे भारत ने यह संदेश दिया कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान को फिर महत्व देने लगी है।
12: पाकिस्तान has been great. They've been so good. If the deal is signed in Islamabad, I might go.
7: इसके बाद ट्रंप चीन पहुंचे, जहां जिनपिंग की जिस तरह से ट्रंप ने खुशामद की, उससे अमेरिका को लेकर सवाल उठा कि ट्रंप सरकार एशिया में आगे क्या रणनीति अपनाने वाली है और चीन के साथ उसके रिश्तों की दिशा क्या होगी।
13: चीन और अमेरिका का रिश्ता शानदार रहा है। जब समस्याएं आई तब हमने मिलकर उनका समाधान निकाला। बहुत लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब कोई समस्या आती थी तो मैं आपको फोन करता था और हम उसे बहुत जल्दी सुलझा लेते थे। चीन और अमेरिका का भविष्य एक साथ शानदार होगा। चीन का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपने शानदार काम किया है। मैं ये बात सभी से कहता हूं कि आप एक महान नेता हैं।
7: डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से नाटो से लेकर यूरोपीय देश उनकी नहीं सुन रहे। ईरान युद्ध ने खाड़ी के अरब देशों की आंखें अमेरिका को लेकर खोल दी। चीन की दादागिरी के आगे अमेरिका सहमा हुआ है। ताइवान को लेकर ट्रंप की नीति ने दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक को चिंता में डाला है। कनाडा, मेक्सिको जैसे पुराने सहयोगी और पड़ोसियों से भी अमेरिका की नहीं बन रही। ऐसे वक्त में अमेरिका की कोशिश भारत को साथ लेने की है, इसीलिए भारत पर ट्रंप के सुर बदले हुए हैं। सवाल है कि क्या सीमा पार आतंक को लेकर अमेरिका की नीति पाकिस्तान पर बदलेगी।
4: India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played in as a mediator and a facilitator in the Iran situation, I never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different.
7: लेकिन आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कितना भरोसा किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
6: So many areas of overlap that we care about, that India cares about. We're here really just to continue to build upon that relationship because in every new era there are new opportunities and new challenges that emerge.
7: Donald Trump ke aane ke baad America par duniya ka bharosa ghata hai, lekin Bharat ki chunauti ye hai. Trump naam ki aandhi aise waqt mein aayi jab hamara sabse bada padosi na sirf America par bhari padta dikh raha hai balki Bharat ke sabse bharosemand desh Rus ki bhi Cheen par nirbharta pehle se kai guna zyada badh gayi. इसलिए सिवाय खुद के भारत इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है।
0: एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, मध्य प्रदेश भोपाल की ट्रिशा शर्मा केस में सीबीआई ने यह केस अब अपने हाथ में ले लिया है। एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस से। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। मतलब यह हुआ कि ट्रिशा शर्मा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, अब इस बात की जांच सीबीआई करेगी। हालांकि भोपाल पुलिस ने तो ये कह दिया था, पुलिस कमिश्नर भोपाल ने भी ये कह दिया था कि ट्रिशा शर्मा ने आत्महत्या की है। दोबारा पोस्टमार्टम भी होगा, ये पहले तय हो चुका है। अदालत ने आदेश दे दिया है, दिल्ली एम्स की टीम जाएगी, वो दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। शव को सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन अब केस सीबीआई के पास, एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
5: इस हफ्ते का मंगलवार आ रहा है तो 7 दिन पुरानी ये तस्वीरें दोबारा याद आ गई हैं। पिछले हफ्ते बड़े मंगलवार को लखनऊ में अखिलेश यादव भंडारे का प्रसाद बांटते नजर आए थे। हिंदू आस्था को सार्वजनिक करने की समाजवादी परिवार की ऐसी तस्वीरें राजनीति में एक तरह से दुर्लभ है और इसीलिए जहां एक और सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव यूपी में 2027 के चुनाव के पहले मुस्लिम वोटों के समीकरणों के साथ बीजेपी के हिंदुत्व को रोकने का दांव चल रहे हैं। यहां ये भी सनद रहे कि बड़े मंगलवार पर भंडारे का प्रसाद बांटने के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने अपने पीडीए कार्ड पर ऑडिट वाला दांव चला था जिसमें उन्होंने जातीय भेदभाव का आरोप दोहराया था।
6: अगर वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव डिसीजन लेता है, लैपटॉप बांटता है, एक्सप्रेसवे बनवाता है, डायल 100 बनवाता है या अन्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है तो उसका आवाज गंगा जल से धुलवाया जाता है।
5: ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्ती को ये कहकर चुनौती दी है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है। उधर योगी आदित्यनाथ बकरीद पर सड़क पर नमाज को रोकने के लिए बेहद मुस्तैद दिखते हैं। पिछले हफ्ते सड़क पर नमाज को लेकर योगी का ये बयान सुर्खियों में था।
7: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे।
5: इस बयान के बाद रविवार को कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन को योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाएंगे। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। बकरीद पर प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
8: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे।
9: देश का रहने वाला हिंदू मुसलमान वो एक दूसरे की आस्था का भी सम्मान करता है, उनकी परंपराओं का भी सम्मान करता है, उनके त्यौहार, उनकी पूजा पाठ का भी और नमाज का भी सम्मान करता है। ये जितने बयान आते हैं चुनाव के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है इसलिए आते हैं।
5: बकरीद आएगी और बीत जाएगी, लेकिन ये राजनीति लंबे समय तक सुलगती रहेगी।

हिंदुत्व ने बीजेपी को लगातार चुनावी सफलताएं दी हैं। ऐसे में विपक्ष की चुनौती यही है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कैसे फ्लॉप किया जा सके। आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बिताएंगे रात, 29 को भुज, 5 जून को त्रिपुरा और 15 जून को जाएंगे बंगाल बॉर्डर। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए सतर्क, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बुलाई बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की निगरानी समेत तैयारियों की समीक्षा। कृष्णा मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, पुलिस से लिया केस, आरोपी समर्थ को घर ले जाकर पुलिस ने जुटाए सबूत।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मौत से 4 घंटे पहले ट्रिशा भोपाल में अपने ससुराल के करीब एक ब्यूटी पार्लर में गई थी। ब्यूटी पार्लर में वो करीब 3 घंटे तक रुकी। यहां वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके बाद वो अपने घर लौटती है, लेकिन घर लौटने के 4 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रिशा की मौत के अगले ही दिन ट्रिशा की जद रही सास 5 वकीलों को उसी ब्यूटी पार्लर में भेजकर वहां के सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें मंगवा लेती है। अब सवाल यह है कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा कौन सा राज छुपा था।
1: हमने इस केस का खुद ही संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि एक राय बन गई थी कि गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज है, इसलिए जांच सही ढंग से नहीं होगी।
2: सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये भी सही है कि जज रही ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह की वजह से ही सचमुच कम से कम अब तक तो इस मामले की जांच जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई। जांच में बरती गई लापरवाही के 5 जिंदा सबूत सबके सामने हैं। ये 5 सबूत हैं। क्राइम सीन पर पुलिस की लापरवाही, जल्दबाजी में गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत, 15 दिनों तक गिरिबाला सिंह से पुलिस की कोई पूछताछ नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीसीटीवी फुटेज ले जाने के बावजूद पुलिस का जांच न करना, समर्थ सिंह को ढूंढने की गंभीर कोशिश न करना। अब आइए आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना क्यों सही है कि गिरिबाला सिंह के पूर्व जज होने की वजह से ये राय बनी कि जांच सही ढंग से नहीं हो रही है। यह गिरिबाला सिंह का घर है और यह उसी घर के छत की तस्वीर है जिस छत पर 12 मई की रात ट्रिशा की मौत हुई थी। इस छत और यहाँ रखे सामान को देखकर यह साफ पता चलता है कि इस जगह को एक जिम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तस्वीर में आपको जमीन पर ट्रिशा की चप्पल भी पड़ी दिखाई देगी, लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें इलास्टिक का वो फंदा भी नजर आ रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसी फंदे से ट्रिशा ने खुदकुशी की थी। छत से नीचे रबड़ जैसे दिखने वाले रिंग के 2 टायर आपको लटके हुए नजर आ रहे होंगे। इन दोनों ही रिंग के साथ इलास्टिक की 2 रस्सियां भी अब भी लटकी हुई है। बाई तरफ की रस्सी बिल्कुल सीधी है और लगभग जमीन से टकरा रही है, लेकिन दाहिनी तरफ की इलास्टिक की रस्सी सीधी नहीं बल्कि उसका एक सिरा छोटा और एक सिरा बड़ा है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि दाहिनी तरफ वाले रिंग से ही लटकती इलास्टिक की रस्सी का फंदा बना होगा। तस्वीर में छत पर या यूं कहें कि इस क्राइम सीन पर 2 लोग भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर से ये भी साफ है कि ये तस्वीर रात के अंधेरे की नहीं बल्कि दिन के उजाले की है। अब रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिशा की मौत रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान हुई, पर कमाल देखिए, रात को पुलिस छत पर इस क्राइम सीन पर पहुंची। जाहिर है पूछताछ में पुलिस को ये बताया गया होगा कि किस फंदे से ट्रिशा को घरवालों ने उतारा था, लेकिन पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, 12 घंटे निकल गए, फिर भी पुलिस को यह ख्याल ही नहीं आया कि जिस फंदे से ट्रिशा की मौत हुई है उस पर लिगेचर मार्क के अलावा उंगलियों के निशान और दूसरे कई सबूत हो सकते हैं। उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, पर पुलिस ऐसा करती नहीं। ट्रिशा की मौत के बाद 13 मई को कहीं जाकर पुलिस फंदेनुमा इस सबूत को अपने साथ ले जाती है। क्या यह अनजाने में हुई भोपाल पुलिस की गलती थी या जज रही गिरिबाला सिंह का खौफ? सचमुच जांच को लेकर लोगों की राय गलत नहीं बन रही थी मिलोट? आप ही बताएं। 12 मई को ट्रिशा की मौत होती है, 13 मई को पोस्टमार्टम होता है, 14 मई को गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचती है, और कमाल ये कि कोर्ट पहुंचने के 24 घंटे के अंदर अंदर 15 मई को उन्हें अग्रिम जमानत भी मिल जाती है। गिरिबाला सिंह अगर जज की कुर्सी पर न बैठी होती तो क्या इतनी जल्दी ये सब कुछ हो पाता? क्या किसी आम इंसान को अग्रिम जमानत की इतनी जल्दी ऐसी सहूलियत मिल पाती? फिर जांच को लेकर लोगों की राय गलत कहाँ थी? हमारी छोड़ी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वकील और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तक गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो अर्जी लगाते हैं उसमें भी उन्होंने ठीक यही बात कही है। जांच ढंग से नहीं होगी ये राय कैसे गलत है, जबकि ट्रिशा की मौत के 15 दिन बाद भी जज रही सास से पुलिस पूछताछ तक नहीं कर पाई? गिरिबाला सिंह को अदालत ने अग्रिम जमानत दी, यानी उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, पर पूछताछ पर तो कोई रोक नहीं थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि पिछले 15 दिनों में भोपाल पुलिस गिरिबाला सिंह से एक बार भी पूछताछ नहीं कर पाई। हालांकि इस मजबूरी के बारे में जब भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि पुलिस की तरफ से एक नहीं बल्कि तीन तीन बार गिरिबाला सिंह के घर पर उन्हें पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के संबंध में नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस वालों के सामने हाजिर नहीं हुई, न ही वो जांच में सहयोग कर रही है।
3: नहीं, हमने तीन नोटिस दिए हैं और क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आज हमने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में लगाया है।
2: गिरिबाला सिंह को लेकर भोपाल पुलिस की ये मेहरबानी तब है जब इन्हीं गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू टूषा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को उस ब्यूटी पार्लर से धोखे से सीसीटीवी फुटेज मंगाने के लिए कुल 5 वकीलों को भेजा था, जिस ब्यूटी पार्लर में मौत से महज चंद घंटे पहले टूषा गई थी। इतना ही नहीं, जज रही यही गिरिबाला सिंह 13 मई को ब्यूटी पार्लर में फोन कर बाकायदा टूषा की जानकारी ले रही थी। सीसीटीवी की ये तस्वीर उसी 12 मई की शाम की है जिस 12 मई की रात टूषा की मौत हुई थी। इस कुर्सी पर बैठी ये टूषा ही जो इस वक्त हेड मसाज करा रही है।
4: मुझे पता चला जब गिरिबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि टूषा कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है, मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि टूषा कब आई और कब गई।
5: ये कब कॉल आया था आपके पास?
4: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है।
5: 13।
4: फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम टूषा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी इतने बजे गई थी, फिर मैम ने मुझसे मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, टूषा मैम ठीक तो है ना, तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है।
5: आपको भरोसा हुआ?
4: नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे मैंने उनसे पूछा, जो फुटेज लेने के लिए आए थे
5: कौन लोग थे वो?
4: उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे।
5: अच्छा,
4: मतलब एडवोकेट वाले के, हाँ, उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे, और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को, मैडम आई थी गई थी तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी, तो मैंने बोला दिखाया उनको, फिर उसके बाद उनने फुटेज ली।
2: बहू की मौत हो चुकी है, लाश उस वक्त भी भोपाल एम्स के मुर्दा घर में पड़ी थी, तब तक बेटा समर्थ फरार हो चुका था। अब ऐसी सूरत में गिरिबाला सिंह को आखिर उस ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज की क्या जरूरत पड़ गई, जिसे हासिल करने के लिए काले कोट में उन्होंने 5 लोगों को ब्यूटी पार्लर भेजा था। हालांकि इस बात को भी 12 दिन बीत चुके हैं, जज रही गिरिबाला सिंह टूषा की मौत के अगले ही दिन ब्यूटी पार्लर से फुटेज मंगवा भी चुकी है, लेकिन कमाल भोपाल पुलिस जो अब तक पूछताछ के नाम पर ही सही एक बार भी इस ब्यूटी पार्लर तक नहीं गई।
5: पुलिस वैसे आई कि नहीं अभी तक आपके पास सीसीटीवी?
4: पुलिस तो नहीं आई
5: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं आई?
4: नहीं, कोई नहीं आया।
2: वो तो अब मीडिया की बदौलत भोपाल पुलिस तक इस ब्यूटी पार्लर की कहानी पहुंची, तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि गिरिबाला सिंह पार्लर से सीसीटीवी फुटेज ले जा चुकी। इसी के बाद अब पुलिस जागी और कह रही है कि वो इसकी भी जांच करेगी।
3: नहीं, वो तो देखो जो मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेलेवेंट होगा उन सब चीजों के बारे में हम अपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
2: दरअसल 12 मई को टूषा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक इसी ब्यूटी पार्लर में थी। यह ब्यूटी पार्लर भोपाल में टूषा के घर से बिल्कुल करीब है, इसलिए वो घर से पैदल ही यहाँ तक आई थी।
4: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
5: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
4: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
5: अच्छा, पास में ही घर है उनका?
4: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
5: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं।
5: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
4: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उनने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उनने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
6: ट्रिशा की शादी 5 महीने पहले हुई थी, दिसंबर 2025 में, यानी पिछले 5 महीने से ट्रिशा भोपाल में अपने ससुराल में थी। ससुराल आने के बाद से ट्रिशा इसी ब्यूटी पार्लर में जाया करती।
4: वो मेरी रेगुलर कस्टमर थी जब से वो भोपाल आई थी, उसके बाद से वो यहाँ आते रहती थी। 5 या 6 विजिट हुई थी उनकी यहाँ पे।
5: कितने अंतराल में वो आ जाती थी पार्लर में, विजिट कर लेती थी? महीने, एक महीना, कुछ दिन?
4: यदि उनकी दिसंबर में शादी हुई है और ये जून में है, तो यदि वो 5 बार आई है तो आप ये लगा सकते हैं कि हर महीने आई होंगी वो।
5: अच्छा, क्या हुआ, क्या था उस दिन, आप थोड़ा बता पाए अगर हमारे दर्शकों तो, कि ब्यूटी पार्लर में वो आई थी तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ यहाँ उन्होंने क्या क्या किया था?
4: वो आई थी और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्होंने
5: पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस भर बैठी या कहीं और?
4: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
5: ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप, इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
4: हाँ, इस चेयर जी, हेड ऑयल मसाज कराई
5: जी।
4: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
5: ये मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं, ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर
4: पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था,
5: वो वाली चेयर।
4: जी जी जी।
6: 12 मई को जब ट्रिशा ब्यूटी पार्लर आई और करीब 3 घंटे तक यहाँ रहने के बाद वो वापस घर गई, तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल थी। पार्लर में सभी से हंसकर बातें कर रही थी। उसे देखकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से जाने के अगले 4 घंटे के अंदर अंदर वो खुदकुशी भी कर सकती है।
4: जैसे कि लास्ट टाइम जब वो पेडिक्योर करा रहे थे तब भी उनने स्टाफ को बोला कि आज मैं नहीं कराती हूँ पेडिक्योर, क्योंकि मेरे पैर बहुत गंदे हैं, तो मैं घर से पैर धो के आऊंगी उसके बाद पेडिक्योर कराऊंगी। तो
5: ये कब की बात है?
4: ये लास्ट जब पेडिक्योर हुआ था
5: 12 मई को।
4: 12 मई को जब वो पेडिक्योर कराने आए थे तो उनने बोला कि जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर उनने बच्चों ने बोला कि मतलब मेरे स्टाफ ने बोला कि नहीं मैम कोई बात नहीं हो जाएगा। फिर उन लोगों ने यहाँ पे बैठ के पेडिक्योर किया, उन्होंने बैठ के अपने खुद से मसाज लेते हुए पेडिक्योर करवाया।
5: इस बीच में अब ब्यूटी पार्लर संचालिका भी सामने आई है जहाँ मौत से चंद घंटों पहले ट्रिशा ने तकरीबन 3 घंटे बिताए थे। उसने दावा किया है कि ट्रिशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को गिरिबाला सिंह ने उसे फोन किया था और उससे ट्रिशा से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी थी, मसलन ट्रिशा पार्लर में कब आई, उसने कितने घंटे पार्लर में बिताए और उसने इन सर्विसेज का भुगतान नगद या फिर UPI कैसे किया था। ब्यूटी पार्लर संचालिका का दावा है कि गिरिबाला सिंह के फोन कटने के कुछ ही देर बाद 3 वकील भी उस ब्यूटी पार्लर में पहुंचे और ट्रिशा से जुड़ी तमाम जानकारियां और सबूत भी देखे। सवाल अब उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि गिरिबाला सिंह ने मौत के अगले ही दिन इस ब्यूटी पार्लर संचालिका को न केवल फोन किया बल्कि वहां पर 3 वकील भी भेज दिए।
6: ब्यूटी पार्लर से घर आने के बाद ट्रिशा समर्थ के साथ कुछ देर पार्क में टहलती है, फिर घर में सभी के साथ खाना खाती है, इसके बाद कुछ देर टीवी देखती है, और आखिर में रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान छत पर उसकी लाश मिलती है। मतलब दोपहर से शाम तक और शाम से रात 10 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। ट्विशा ने अपनी माँ से फोन पर बात भी की थी, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा की मौत हो गई। बस इन्हीं आखिरी पलों की 2-4 घंटे की जांच होनी थी जिससे सारा सच सामने आ जाता, मगर भोपाल पुलिस ये कर नहीं पाई, या शायद गिरिवाला की जज की कुर्सी के खौफ ने उसे जानबूझकर ऐसा करने नहीं दिया। अगर भोपाल पुलिस पहले दिन से अपना काम ईमानदारी से करती तो आज यूं ये केस उसके हाथ से लेकर सीबीआई को सौंपने की न जरूरत पड़ती, न भोपाल पुलिस की यूं रुसवाई होती। हालांकि भोपाल के पुलिस कमिश्नर अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि 2 दिन बाद FIR दर्ज कर उन्होंने कोई गलती की।
3: देखो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे। इस तरह के केसेस में जांच में समय लगता है। हमने तो 2 दिन के बाद ही FIR कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो CBI की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं।
7: आखिरकार त्विशा मौत की जांच CBI को सौंपने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस तरीके से इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस की कार्रवाई थी उसे देखते हुए शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि जिस फंदे को पोस्टमार्टम से पहले पुलिस को एम्स प्रबंधन को सौंप देना चाहिए था वो पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया। ऐसे कई सारे सवाल थे जिसे लेकर के त्विशा के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर आरोप लगाए और पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने CBI को जांच के लिए अनुशंसा कर दी है। इस मामले में CBI की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच जल्द ही CBI शुरू भी करने वाली है।
6: जांच को लेकर लोगों की राय कैसे गलत हो सकती है, जबकि खुद भोपाल की एक निचली अदालत के पास ये सबूत मौजूद है कि ट्विशा की मौत की रात से लेकर अगले दिन यानी 13 मई की दोपहर तक जज रही गिरिवाला सिंह ने शहर के न जाने कितने ही ताकतवर लोगों को फोन घुमा दिया, जिनमें एक आध तो खुद जज भी थे। इस सिलसिले में भी ट्विशा के घर वालों ने बाकायदा पुलिस को एक शिकायत दी, पर यह शिकायत अब भी सिर्फ जांच का एक पार्ट है। इस पर जांच शुरू नहीं हुई है, ये हम नहीं कह रहे, खुद कमिश्नर साहब कह रहे।
3: वो फैमिली मेंबर ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें इन बातों का जिक्र है, तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया है, तो जो भी रेलेवेंट चीज होंगी उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।
6: दिल्ली से अनिशा माथुर और संजय शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। ट्विशा और उसकी माँ के बीच चैट पर हुई बातचीत से साफ पता चलता है कि ट्विशा ससुराल में रहना नहीं चाहती थी। वो कई बार अपनी माँ से कह चुकी थी कि उसे ससुराल में नहीं रहना बल्कि घर लौटना है, लेकिन हर बार माँ ने उसे समझा कर रोक दिया। सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी तब भारत के सॉलिसिटर जनरल ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि लाश से बेहतर है तलाक। बाकी सब छोड़िए, ट्विशा का पति पूरे 10 दिनों तक फरार रहा, उसी मध्य प्रदेश में छुपा रहा, राज्य से बाहर भी नहीं गया, फिर भी भोपाल पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। आखिर में भी उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा बल्कि उसने खुद ही जबलपुर कोर्ट में सरेंडर किया। अब इसे लेकर भी अगर लोगों की ये राय बनती है कि पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रही थी तो क्या गलत राय। खैर, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद ये कबूल किया है कि उसने ट्विशा की मौत के मामले का खुद से इसलिए संज्ञान लिया क्योंकि इसमें आरोपी जज रह चुकी एक सास थी और लोगों को लग रहा था कि इसीलिए जांच सही नहीं हो रही, यानी मामला न्यायपालिका का था। अब सवाल यह है कि ट्विशा के इस पूरे केस से सिर्फ जज को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि गिरिवाला सिंह एक आम सास है और पुलिस सही से अपना काम नहीं कर रही, तो भी क्या? ऐसी सूरत में इतने सारे केसों के बोझ से दबी देश की सबसे बड़ी अदालत इसी तरह खुद से इस केस का संज्ञान लेती? इसका जवाब तो पता नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट में इसी केस की दलील के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बहुत बड़ी बात कह डाली। ये बात देश के हर उन माँ बाप के लिए है जिनकी बेटियां हैं। तुषार मेहता ने अंग्रेजी में कहा, बेटर टू हैव डिवोर्स डॉटर, मुर्दा बेटे से कहीं बेहतर है तलाकशुदा बेटे, लाश से बेहतर तलाक। दिल्ली से अनिशा माथुर और संजय शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो वारदात फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: भोपाल की टुषा शर्मा की मौत की जांच जारी है, कानूनी लड़ाई चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब टुषा के परिवार को जल्द इंसाफ की उम्मीद जगी है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई फौरन इस केस को अपने हाथ में ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो मीडिया से बात न करें और जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें।
1: हम पुराने बिंदुओं को कनेक्ट करें तो टुषा शर्मा ने पहले भी अपने घर वालों को बताया था कि वो मुश्किल में है और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जब अपराध का एंगल है तो उसकी जांच भी उसी तरह से होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो सच्चाई जल्दी और सटीक ढंग से सामने आने की उम्मीद लगती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि एक तो इंटरव्यू ना चलाएं, दूसरा कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, जिसके सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही बता दिया था कि सरकार ने मन बना लिया है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और अब इस पर मुहर भी लग गई।
0: सुप्रीम कोर्ट ने टुषा के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, साथ ही कहा न्यायपालिका के दखल के आरोपों के चलते शीर्ष अदालत को इस केस में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। एक दिन पहले ही टुषा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद पुलिस की टीम फिर से गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गई है। पुलिस टीम ने उस जगह का मुआयना किया जहां टुषा शर्मा का फंदे से लटका शव मिला था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टुषा की सास गिरिबाला पर कई गंभीर आरोप लगाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह कई नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई। केस में बहुत मुश्किल से गिरिबाला सिंह का बयान दर्ज कराया जा सका। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह का फोन जब्त करने में भी काफी दिक्कत हुई। बड़ा आरोप लगाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरिबाला सिंह ने अपने बयानों से टुषा की छवि को खराब किया।
1: मां की हालत ठीक नहीं होने की वजह से वहां पर उसके व्यवहार और बर्ताव को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके पीछे और क्या वजह रही है ये तो गिरिबाला सिंह ही बताएंगी और पुलिस जांच एजेंसी वहां से उसकी कॉपी कैसे बरामद करती है सीसीटीवी फुटेज की, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
0: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ सीबीआई की टीम केस की जांच के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है। जांच एजेंसी एक एक सबूतों की पड़ताल करेगी। टुषा के परिवार के आरोपों का सच जल्द ही सामने लाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान, आज राजस्थान के बीकानेर में बिताएंगे रात, 29 को भुज, 5 जून को त्रिपुरा और 15 जून को जाएंगे बंगाल बॉर्डर। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए सतर्क, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बुलाई बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की निगरानी समेत तैयारियों की समीक्षा। पेशामोत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, पुलिस से लिया केस, आरोपी समर्थ को घर ले जाकर पुलिस ने जुटाए सबूत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर बजा बिगुल, विधान परिषद के 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। विधान परिषद चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान, बीजेपी शिवसेना एनसीपी के बीच 17 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश। पश्चिम एशिया के तनाव के कारण ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच पैनिक बाइंग के चलते डीजल की बिक्री 52%, पेट्रोल की 23% बढ़ी। नीट पेपर लीक केस में दिल्ली कोर्ट में आरोपियों की पेशी, पुणे से गिरफ्तार केमिस्ट्री टीचर कुलकर्णी की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ी। आरोपी मनीषा की भी सीबीआई ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी की, पूछताछ के बाद 6 दिन की हिरासत में मनीषा। नागपुर में कार डेकोरेशन की दुकान में इलेक्ट्रिक डीपी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से 5-6 कारें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के जालना में बैंक के एटीएम में लगी आग, लाखों का नुकसान। गुजरात के साबरकांठा में मैदान में भयंकर आग, ग्रामीणों ने मेहनत के बाद पाया काबू। केरला के हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी में अचानक आग लगी, 3 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर दुर्घटना, बाल बाल बचे पर्यटक सीसीटीवी में कैद। मुंबई मरीन ड्राइव पर नाकेबंदी के दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचला, चालक गिरफ्तार। राजकोट में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 महिलाओं की मौत, 25 घायल, 62 थे सवार। सूरत में तिरुपति मार्केट में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे पर हमला किया सीसीटीवी में कैद। महसाणा के मोतीपुरा के पास भीषण सड़क हादसा, 2 की दर्दनाक मौत। डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह फरहान अख्तर में विवाद, एक्टर पर शूटिंग शुरू होने से पहले 10 दिन पहले फिल्म छोड़ने का आरोप। रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की डॉन 3 को छोड़ना पड़ा महंगा, शिकायत के बाद इंडस्ट्री में बैन। रणवीर कपूर की रामायण पार्ट 1 की बदल सकती है रिलीज डेट, दावा, फिल्म इस वर्ष दिवाली से 1 हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को रिलीज। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय नए जॉनर में एलियन से भिड़ेंगे, समुख से करेंगे हॉलीवुड स्टाइल फिक्शन में एंट्री। 56 फिल्मों के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, करण जौहर हुए इमोशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद आज अभिनेता रणवीर सिंह के बैन तक पहुंच गया। डॉन 3 कंट्रोवर्सी को लेकर रणवीर के फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने रणवीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सने एम्प्लॉयज के सामने उठा दिया और इसीलिए FWICE ने रणवीर के बायकॉट का ऐलान कर दिया। फरहान अपने नुकसान के एवज में रणवीर सिंह से 45 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग रहे हैं। वहीं रणवीर ने बयान जारी करके आपसी रिश्तों का हवाला देते हुए बताया कि वो विवाद में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। बैन के बावजूद रणवीर ने कहा कि वो चाहते हैं कि डॉन 3 सुपर डुपर हिट हो।
2: पहले अमिताभ बच्चन की डॉन ने देश दुनिया में तहलका मचाया,
3: 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे।
2: उसके बाद डॉन का रीमेक बना और डॉन 2 में शाहरुख ने बताया कैसे डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही
3: है। मैं हूं डॉन, डॉन मौत से खेलना जिंदगी है मेरी। जीतना ही मेरा काम है।
2: लेकिन डॉन 3 में रणवीर सिंह अपना दमदार अभिनय दुनिया को दिखा पाते उससे पहले ही फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच विवाद हो गया। डॉन 3 कंट्रोवर्सी को लेकर रणवीर के फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज के सामने उठाया तो FWICE ने रणवीर पर बैन लगा दिया।
4: इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन जो है उसके पास फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवारी ने कंप्लेंट फाइल की। फरहान अख्तर जो हमारे मेंबर है इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के कि रणवीर सिंह के खिलाफ सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया। तो जैसे ही वो हमारे पास आए तो हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज की, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, सारे पेपर्स देखे और उसके बाद जो है हमने रणवीर सिंह को 3 नोटिसेस दिए। हर 10 दिन के बाद हमने उनको इनवाइट किया और 3 बार रिमाइंडर भी भेजा लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। चूंकि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला हमने डिसाइड किया आपस में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, हमारी जो डिसीजन है फेडरेशन की वो हम इंडस्ट्री को बरकरार करते हैं। जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की तो हमें एक मेल आया रणवीर सिंह का कि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठता इसमें कि आप इस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। तो हमने समझ लिया तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज हमारी एसोसिएशन जो फेडरेशन जो है हमने ये कॉल लिया आपस में बैठ के कि हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे।
2: डॉन 3 को लेकर पूरा विवाद क्या था अब उसे भी समझ लीजिए। अगस्त 2023 में ऐलान किया था कि रणवीर सिंह फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म डॉन 3 में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू होनी थी लेकिन शूटिंग शुरू होने से 15 दिन पहले रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे पहले ये दावे किए जा रहे थे कि रणवीर सिंह स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे और उन्होंने उसमें बदलाव की मांग की थी लेकिन स्क्रिप्ट में बदलाव किए जाने के बाद भी उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि धुरंधर की अपार सफलता के बाद रणवीर फिल्म चुनने को लेकर बेहद संजीदा हो गए हैं लेकिन रणवीर के फिल्म छोड़ने से फरहान और उनके प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट को भारी नुकसान हुआ। जब मामला नहीं सुलझा तो फरहान ने रणवीर से फिल्म के प्री प्रोडक्शन में आए 45 करोड़ के खर्च को हर्जाने के तौर पर भुगतान करने की मांग की। फरहान ने FWICE में शिकायत दर्ज कराई लेकिन रणवीर सिंह ने उनकी नोटिसों का भी जवाब नहीं दिया जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज ने उनके बायकॉट का ऐलान कर दिया।
5: फरहान अख्तर की अगर बात माने तो ये 45 करोड़ जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इसकी भरपाई करें। रणवीर सिंह की अपनी डेफिनेटली कुछ रीजंस हो सकते हैं इस ये फिल्म नहीं करने के लिए और इसलिए वो जो FWICE का क्लेम है कि हमने 3 बार उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया पर वो नहीं आए और अब वो चाहते हैं कि जब तक रणवीर सिंह आकर उनसे सामना सामनी बैठकर मीटिंग नहीं करेंगे ये बैन जो है वो जारी रहेगा। और FWICE की माने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि म्यूचुअली शायद फरहान अख्तर और रणवीर सिंह जब साथ आए तो डिसीजन लेकर वो मॉनेटरी जो ये क्लेम है वो शायद कम हो जाए, शायद वो आपसे इतने पैसे ना ले, शायद कोई और सोल्यूशन निकल जाए बट जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक ये बात जो है वो यही अटकी रहेगी।
2: इधर रणवीर सिंह की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि डॉन 3 से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के दौरान रणवीर सिंह ने जानबूझकर चुप्पी साधने का फैसला किया है क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातचीत और आपसी रिश्ते गरिमा सम्मान और समझदारी के साथ ही सबसे अच्छे तरीके से निभाए जाते हैं। रणवीर इस फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के लिए गहरा सम्मान और सद्भावना रखते हैं और पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि डॉन 3 बड़ी हिट साबित हो। वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज पूरी इंडस्ट्री से अपील कर रही है कि वो रणवीर सिंह के साथ काम ना करें।
4: हमने अपील भी किया साथ साथ नॉन कॉपरेशन के साथ साथ कि एक जॉइंट मीटिंग होके इस चीज को का सलूशन ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि हम वेरी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर ये किस्सा ये इशू नॉन सोल्यूबल रहा और ये आगे बढ़ा तो हमारी इंडस्ट्री डूम करेगी। ये शुरुआत है इंडस्ट्री को बर्बाद होने का। कल को कोई भी लास्ट मोमेंट पे निकलेगा और फिल्म जो बंद हो जाएगी और जिसने इन्वेस्ट किया पैसे वो बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे यकीन है, हम फेडरेशन को यकीन है कि हम इसका सलूशन मिलेगा, सब बैठेंगे, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस हो गया है और मुझे इस बात का बात की उम्मीद यकीन है कि रणवीर जो कि बहुत बड़ा स्टार है हमारी इंडस्ट्री का, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके वजह से लोग थिएटरों में आए, इज एन आइकन ऑफ द इंडस्ट्री, सो कोई पर्सनल एनिमिटी किसी के साथ नहीं है, ये इशू बहुत बड़ा है।
2: खबर है कि धुरंधर ने जिस तरह कमाई के मामले में कई कीर्तिमान बनाए हैं, उसके बाद रणवीर का दखल स्क्रिप्ट में ज्यादा बढ़ गया था, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और मामला रणवीर सिंह के बॉयकॉट तक पहुंच गया।
5: प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को रणवीर सिंह के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रणवीर सिंह पूरी इंडस्ट्री की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये पूरे मामले में जो ये डॉन 3 की कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो उन्होंने कोई बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि वो इस मामले में बात करके इस सिचुएशन को जो है इंसल्ट करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही महत्व सिचुएशन है और ये प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच की बात है और इसमें वो साइलेंस जो है वो उनका सबसे बड़ा जवाब रहेगा और वो बहुत रिस्पेक्टफुली ये सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, ना कि मीडिया में आकर कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं और इसे एक तमाशा बनाना चाहते हैं।
0: महाराष्ट्र में MLC चुनाव है, क्या इसीलिए महायुति में तनाव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 17 सीटों पर दावे की होड़ है, जहां बीजेपी 7 से सीधा 12 सीटों पर हक व्यक्त कर रही है, तो शिवसेना 5 सीटों के बाद 7 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। NCP भी 3 सीट लेने को बेकरार है। आज मुख्यमंत्री फडणवीस ने मीडिया से कहा कि मंथन जारी है, लेकिन भरोसा रखिए जल्द ही आपसी बातचीत से हम सब ठीक कर लेंगे।
6: भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है, आज से नामांकन भी शुरू हो गए, लेकिन सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई। MLC की इन 17 सीटों पर बीजेपी के पास 7, शिवसेना के पास 5, NCP के पास 3 और कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपने दबदबे का फायदा उठाते हुए 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मजबूती से 7 सीटों की मांग कर रही है, जबकि सुनेत्रा पवार की NCP कम से कम 3 सीटों की उम्मीद कर रही है, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का अहम निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। इधर CM फडणवीस ने महायुति में प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच गठबंधन में दरार की खबरों को खारिज करते हुए जल्द समाधान निकलने का भरोसा जताया है।
7: असा है कि आमची चर्चा त्या संदर्भात चाललेली आहे, साधारणपणे शिवसेनेसोबत नाशिक आणि संभाजीनगर या 2 जागांवर आमची चर्चा चाललेली आहे, राष्ट्रवादी सोबत पुणे या जागेबद्दल चर्चा चाललेली आहे, आम्ही एकत्रित बसून यातला मार्ग काढू, अजून मार्ग निघाला नाही पण मला विश्वास आहे की मार्ग निघेल।
6: सियासी गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि NCP और सुनेत्रा पवार अपने बेटे जय पवार को MLC चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि NCP ने ऐसी खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि NCP से किसी समर्पित जमीनी कार्यकर्ता को ही मौका मिलेगा।
8: नहीं, जय पवार जी के बारे में जो अभी न्यूज आई है वो बिल्कुल गलत है। जय पवार कोई इस विधान परिषद के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करने वाले है, उसमें हमारा खास करके पुणे जिले में जो स्थानीय स्वराज्य संस्था का निवडणूक है उसमें जय पवार नहीं रहेंगे, उसमें वहां का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा रूट स्तर पर काम करने वाला कोई कार्यकर्ता उसमें रहेगा। और रही बात जगहों के बंटवारे के बारे में, ये हमारे हाईकमांड और तीनों पार्टी के आलाकमान बैठ के इसके बारे में फैसला लेंगे और जल्द ही ये फैसला हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है इसमें ये आपको जल्द ही पता चलेगा।
6: इस बीच विपक्ष सत्ताधारी गठबंधन पर तंज कस रहा है। NCP शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी, शिवसेना और NCP नेताओं को अपनी टिकट पर 2029 विधानसभा चुनाव लड़ाने की योजना बना रही है।
9: नजर तो आने वाले ये इस इलेक्शन में जो सीटें हैं उस सीटों में भी और सीटों से अपने लोगों को कैसे अपन चुनाव लड़वा सकते हैं, इसके लिए बीजेपी का ध्यान तो डेफिनेटली है ही, लेकिन जिस तरीके की ये 18 पोस्ट के लिए जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर ध्यान उन्होंने रखा है, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो जो MLAs अभी एकनाथ शिंदे साहब के साथ है और अजीत दादा के पक्ष के साथ है। आगे जाके वो अपने उम्मीदवार कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं एमएलए इलेक्शन के लिए उनके ऊपर भी ध्यान है। इसलिए भाजपा एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष को और अजीत दादा के पक्ष को धीरे धीरे खा डालेगी, खत्म कर देगी और 29 वाला इलेक्शन खुद के बल पे वहां पे लड़ेगी। ये बीजेपी की स्टाइल है, बीजेपी का वो पॉलिसी है और बीजेपी कभी भी दूसरों को बड़ा नहीं करती, खुद ही वहां पे बड़ा होने की कोशिश करती।
10: सवाल है कि क्या नंबर गेम के हिसाब से शिंदे को बीजेपी के सामने एक बार फिर समझौता करना पड़ेगा? क्या सुनीता पवार भी बीजेपी के दबदबे के आगे सीटों की मांग को लेकर सरेंडर कर देंगी? और क्या बीजेपी समय रहते महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर समाधान निकाल लेगी?
11: महाराष्ट्र में विधान परिषद के 17 सीटों के चुनाव के लिए बिगुल फूंकते ही महायुति गठबंधन में दरार सामने नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी 12 सीटों पर अड़ी हुई है, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीटों की मांग को लेकर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्द ही सुलह का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन अब नामांकन अर्जी दाखिल करने तक ये देखना होगा कि इस गठबंधन के शीर्ष नेता इकट्ठा आकर बातचीत कर इस मसले को सुलझाते हैं या तो ये और गहरा होता नजर आता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: खबर सीबीएसई आंसर शीट में बदलाव की। एक छात्र वेदांत को स्क्रूटनी के दौरान गलत कॉपी भेज दी गई थी, जिस पर अब सीबीआई ने अपनी गलती मान ली है। सीबीएसई ने अपनी गलती मान लीजिए और सीबीएसई ने गलती के बाद छात्र से संपर्क किया और उसे सही आंसर शीट दी है। तो सीबीएसई ने अपनी यह गलती मांगी है और एक छात्र वेदांत जिसको गलत कॉपी भेज दी गई थी, उस पर अब सीबीएसई ने यह कहा और उसे सही आंसर शीट दे दी गई। लगातार 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बम फूट गया। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ढुलाई महंगी हो गई और इसीलिए हर चीज की कीमत बढ़ रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी मिडिल ईस्ट के युद्ध के बाद बाकी देशों की तुलना में भारत में बेहद कम बढ़ोतरी से अपनी पीठ ठोक रही है। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं। भुजबल ने तेल कंपनियों से जमाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की भी अपील की।

0: आम पब्लिक पे जो भजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए दो रुपए बहुत मायने रखा था।
1: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही।
2: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मुज संकट का ऐसा कहर है कि दो महीने बाद भी बारूद याद की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए, 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे, 23 मई को पेट्रोल 90 पैसे, डीजल 91 पैसे, 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे, यानी 10 दिनों के अंदर 4 बार में पेट्रोल 7 रुपए 38 पैसे, डीजल 7 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया।
3: क्या कहेंगे, बढ़ता ही रहा, जो अपने यहाँ पेट्रोल डीजल है ही नहीं है तो बढ़ेगा ही जब बाहर से आएगा तो।
4: क्या सरकार चाहती क्या है, मिडिल क्लास को मार के रख दिया है क्या? छोटी छोटी फैमिली वाले जो कम सैलरी में काम करते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ? 15 दिन के अंदर 3 बार पैसे बढ़ाने, ये कोई सही बात थोड़ी है।
5: पूरे वर्ल्ड में ऊर्जा संकट है और ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए इन परिस्थितियों का सामना हम लोग कर सकते हैं।
6: अपना टैक्स तो घटाते नहीं, पेट्रोल डीजल पे आधा तो उनका टैक्स ही है। अब लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे, पब्लिक को क्यों चूस रही है?
7: पब्लिक पे असर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी, जो गुड एंड सर्विसेज है सभी कॉस्ट बढ़ेगी।
2: आवाम हकलान है कि जब जंग में दाम नहीं बढ़े तो सीज फायर के बीच हर तीसरे चौथे दिन दाम क्यों बढ़ रहे हैं?
8: ये तिल तिल करके, तड़पा तड़पा के, आम आदमी को बेइज्जत कर करके कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए, क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से?
9: पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं? पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%।
2: कांग्रेस नेता गिना रहे हैं कि जंग से पहले एक चौथी तिमाही में तेल कंपनियों का मुनाफा 41% बढ़कर 19,470 करोड़ रुपए था, तो हजारों करोड़ रुपए महीने की कमाई करने वाली तेल कंपनियां और सरकार अब धीरे धीरे तेल की कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं?
10: जैसे पिछले 2-3 साल में ऐसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जितने भी रहा, हमारे देश का उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि सब उनके अपने अपने स्तर पर देश के लिए कंट्रीब्यूट करके अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे हैं। ऐसे ही हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए हम आगे बढ़ते जाना चाहिए।
11: 42% मुनाफा इनके फोर्थ क्वार्टर में इनको मिला है, तो जो उनका मुनाफा मिल रहा है, जो इतने समय से रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे, सस्ते में खरीद रहे थे, उसका कोई भी फायदा जनता को नहीं पहुंचाया गया, लगातार उस पर प्रॉफिट कमाया गया। और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है। ये अनफॉर्चुनेट है और दिखा रहा है कि सरकार

0: सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान रिसीव किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र की बेटी आहाना भावुक नजर आई। धर्मेंद्र सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के टी थॉमस का कम्युनिस्ट नेता, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन समेत पांच को पद्म विभूषण, एक्टर आर माधवन, रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पुनिया समेत 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

उत्तर प्रदेश का बांदा 48.2 डिग्री में उबल रहा है। मध्य प्रदेश का खजुराहो 47.4 डिग्री में तप रहा है। महाराष्ट्र का वर्धा 47.2 डिग्री में झुलस रहा है। हरियाणा का रोहतक 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है। पंजाब के बठिंडा पर 46.6 डिग्री का कहर टूट रहा है। इस सुपर और नीनो इफेक्ट ने ऐसी मुसीबत कायम करके रखी है कि पूरी दुनिया के टॉप 50 गर्म शहरों में सारे के सारे हिंदुस्तान के हैं। और इस आसमानी आफत का कहर जो सूबा सबसे ज्यादा उठा रहा है वो उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ के बांदा जिले में गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। वाराणसी, बांदा और अयोध्या जैसे शहरों में तापमान 42 से 48.2 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है और नतीजा ये है कि गर्मी और लू की चपेट में आकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद औसतन 300 से 400 तक बढ़ गई है। इधर राजधानी दिल्ली में इस 45 डिग्री की भीषण गर्मी में जगह जगह पानी की परेशानी नजर आ रही है। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी के 10 ब्लॉक में हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं बताती हैं कि पानी की किल्लत के कारण वो दफ्तर जाकर स्नान तक कर रही हैं। लोगों की शिकायत है कि यहाँ 250 से 300 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसी ही तस्वीर सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन में दिख रही है, जहाँ वार्ड नंबर 219 से लेकर GTB एनक्लेव तक में कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग खाली बाल्टियां और बोतलें हाथ में लेकर जल बोर्ड कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय विधायक का साथ भी उन्हें मिला। दरअसल 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रही दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके कारण दिल्ली जल बोर्ड के 2 सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वजीराबाद और चंद्रावल में है, वहां से पानी सप्लाई काफी कम हो गई। इसके कारण मध्य, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की लगभग 2.5 करोड़ आबादी के लिए रोजाना 473 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड रोज 380 करोड़ लीटर पानी ही दे पाता है, क्योंकि दिल्ली को हरियाणा के मुन्नत नहर के जरिए

232 करोड़ लीटर, गंगा नदी से 96 करोड़ लीटर, भाखड़ा नांगल से 84 करोड़ लीटर और भूगर्भ जल करीब 51 करोड़ लीटर पानी ही रोज मिल पाता है। इसमें भी भीषण गर्मी के कारण हर जगह जलस्तर नीचे जाने के कारण पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार कह चुकी है कि किसी इलाके में पानी की कमी नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होगी, लेकिन जमीनी हालात और घरों में पानी के खाली डब्बे सरकारी दावों को पंचर कर रही है। हालात ये हैं कि देवली के अलावा संगम विहार, दक्षिणपुरी, आम्बेडकर नगर, खानपुर, तिगड़ी, मदनगीर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, कालकाजी के कुछ हिस्से, बदरपुर बॉर्डर के आसपास की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है और ये पहली बार नहीं है। इन इलाकों को वाटर स्ट्रेस जोन कहा जाता है। सरकार का कहना कुछ भी हो, लोगों के सामने पानी का संकट बड़ा है और उनकी निर्भरता पानी के टैंकरों पर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल वो भी उपलब्ध नहीं है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। पेशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे का अंतिम दिन नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मंत्री हो रहे हैं शामिल। क्वाड की बैठक में मुख्य एजेंडे में पश्चिम एशिया का संकट, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स टेक्नोलॉजी में सहयोग पर मुद्दे। मार्को रूबियो ने कहा, भारत हमेशा पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर चिंतित। पीयूष गोयल कनाडा में व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। व्यापार निवेश वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा टोरंटो में जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरे का प्लान। राजस्थान के बीकानेर में पहुंचे शाह, डीएम एसपी के साथ मंथन। 29 को अमित शाह जाएंगे भुज, 5 जून को त्रिपुरा बॉर्डर, 16 जून को बंगाल बॉर्डर के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में संसदीय स्थायी समिति की बैठक। पश्चिम एशिया संकट के चलते समुद्री व्यापार, नौवहन, नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा। निर्मला सीतारमण ने युद्ध का बताया साइड इफेक्ट, कहा युद्ध के कारण सप्लाई चेन पर पड़ा असर, महंगाई बढ़ी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर वित्त मंत्री का बयान, 3F यानी ईंधन, फर्टिलाइजर, फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा पर फोकस करने की बात कही। बोली सीतारमण, वित्त मंत्री बोली, ईंधन पर टैक्स घटाने से सरकार को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर नेता प्रतिपक्ष राहुल का सरकार पर कटाक्ष, सरकार चुपके चुपके से काट रही है जनता की जेब। देश में इबोला को लेकर हाई अलर्ट, नड्डा बोले इबोला वायरस से निपटने की तैयारियां पूरी, समीक्षा की। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित परीक्षा कराने के लिए चिट्ठी लिखी। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र एनडीए को नोटिस भेजा, मांगा जवाब। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र पर साधा निशाना, एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बताया, पीएम मोदी, धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। केजरीवाल ने 12वीं के मूल्यांकन में गड़बड़ी, नीट परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र पर हमला बोला, कहा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के लायक नहीं। केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, ओएसएम प्रोसेस खत्म करने की मांग की, बोले सीबीएसई मूल्यांकन में गड़बड़ी से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के इस्तीफा देने वाले बागी विधायक टीवी के नेता से मिले, विजय की बैठक में सभी शामिल हुए। तमिलनाडु सरकार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल, टीएस अनबू एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त। कोलकाता में सीएम शुभेंदु ने दूसरी बार लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। सॉल्ट लेक में मार्केट में रंगदारी के आरोप के बाद टीएमसी विधायक की पिटाई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईएएस नीलम मीणा पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त, मनोज कुमार अग्रवाल बने मुख्य सचिव। पेशा केस में कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल पहुंची सीबीआई, एफआईआर दर्ज की। रिटायर्ड जज सास को हाईकोर्ट का नोटिस, परिजनों के वकील बोले जांच में सहयोग नहीं कर रही है रिटायर्ड जज। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को वीवीआईपी इलाके में मिला बंगला, दिल्ली में कामराज लेन स्थित बंगला नंबर 6 आवंटित। पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जमानत पर चल रहे आप पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा की फिर बड़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी का मिला समन। जंतर मंतर पर 2024 में प्रदर्शन करने के मामले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा दोषी करार, सजा पर 5 जून को होगी बहस। बकरीद को लेकर वक्फ बोर्ड ने जारी किए निर्देश, खुले में कुर्बानी न करें, सभी की भावनाओं का सम्मान करें। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर बजा बिगुल, विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बीच 17 सीटों पर सहमति का प्रयास। महाराष्ट्र में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण ईंधन की कमी की अफवाह के बीच पैनिक बाइंग के चलते डीजल की बिक्री 52%, पेट्रोल 23% बढ़ा। नीट पेपर लीक में दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों की पुणे पेशी की, पुणे से गिरफ्तार केमिस्ट्री टीचर कुलकर्णी की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए और बढ़ी। आरोपी मनीषा को भी सीबीआई ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और उसके बाद 6 दिन की हिरासत में भेजा।
राष्ट्रपति ने 2026 के लिए पद्म पुरस्कार वितरित किए, 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया। भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में सिनेमा, संगीत, थिएटर की मशहूर हस्तियां सम्मानित, धर्मेंद्र का पुरस्कार लेते समय भावुक हुई हेमा मालिनी। भारतीय महिला क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर पद्मश्री से सम्मानित, बेहद खुश दिखी हरमनप्रीत। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी पद्मश्री, अलगोजा वादन को दी है ग्लोबल पहचान। भारत सरकार ने 131 पद्म सम्मानों की घोषणा की, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के सभी प्रमुख मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, भीषण गर्मी और नौतपा को देखते हुए बंद किया गया था। अब बिना वीआईपी पास के भक्त पूरे परिसर के कर पाएंगे दर्शन, भक्तों में नई व्यवस्था को लेकर उत्साह। अयोध्या में राम दरबार की स्थापना की पहली वर्षगांठ के उत्सव की तैयारियां, 23 धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण, 3,500 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। बद्रीनाथ यात्रा चरम पर 31 दिन में 5,84,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगा दशहरा पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भागवत कथा का आयोजन। मां गंगा के अवतरण दिवस पर गंगोत्री धाम में आस्था का संगम, मंदिर से गंगा घाट तक निकाली गई शोभा यात्रा। अधिक मास में मथुरा की बरसाना में होली का रंग, श्रीजी मंदिर परिसर में रंग राधा नाम की गूंज। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को राहत देंगे एसी हेलमेट, थर्मोकूलिंग टेक्नोलॉजी से बने। उत्तराखंड में चमोली में बदला मौसम का मिजाज, जोशीमठ में भारी बारिश के बाद हेमकुट साहिब में बर्फबारी। लद्दाख जुजिला में मई में जमकर बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर, तापमान गिरा। बर्फबारी के कारण लद्दाख श्रीनगर सड़क मार्ग बाधित, प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटवाई और खोला गया। अगले एक हफ्ते जोजिला में जमकर गिरेगी बर्फ, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में फिर से बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग के अनुसार 26-27 मई को लू चलेगी। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कर रहे हैं मनाली का रुख, 15,000 से अधिक वाहन पहुंचे मनाली। प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री के पार, हीटवेव से जनजीवन प्रभावित। यूपी के अररिया में 46 डिग्री के पार तापमान, गर्मी से बेहाल लोग, मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी। लखीसराय के सदर अस्पताल में बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए 8 बेड का एसी वार्ड तैयार किया गया, लोगों को सलाह दी गई घरों में रहें। राजस्थान में अगले 3-4 दिन मौसम बेहद शुष्क और गर्म रहेगा, 27 मई तक तापमान 46 डिग्री तक जा सकता है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को गर्मी के कारण से वीरान देखा गया, पलामू में 44 डिग्री के तापमान पार हुआ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे में तकनीकी खराबी से हड़कंप, 300 पर्यटक फंसे, कड़ी मेहनत के बाद बचाया गया। टिहरी गढ़वाल के जंगलों में आग लगी, 14 हेक्टेयर वन क्षेत्र चपेट में आया। झारखंड के पाकुड़ में रेलवे की हाईटेंशन तार की चपेट में आकर डंपर जला, चालक ने कूद कर बचाई जान। भोपाल में सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में भीषण आग लगी, 2 बाइक भी जलकर खाक। झांसी में लग्जरी बस में आग लगी, 30 यात्रियों की जान बची। नागपुर में कार डेकोरेट करने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 6 कारें जलकर राख हुई, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के जालना में बैंक के एटीएम में आग लग गई, लाखों का नुकसान। साबरकांठा के मैदान में भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद बुझाई गई। खेड़ा में हॉस्पिटल के आईसीयू के एसी में आग लग गई, 3 मरीजों को सुरक्षित बचाया गया। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर दुर्घटना हुई, बाल बाल बचे पर्यटक। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नाकाबंदी के दौरान मर्सिडीज ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, चालक गिरफ्तार। राजकोट में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 महिलाओं की मौत, 25 घायल। सूरत में तिरुपति मार्केट में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। हैदराबाद में 200 की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वीडियो पोस्ट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने पकड़ा। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, 20 फीट गिरे, दोनों की स्थिति गंभीर। कानपुर में मामूली बाइक टक्कर को लेकर विवाद, सरेआम पिता पुत्र की चाकू और हेलमेट से पीट पीट कर हत्या। भोपाल में नशे में धुत युवकों ने 20 सड़क मचाया उत्पात, तेज रफ्तार कार से परेशान किया। पटना में 20 सड़क पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में झड़प, दुकानदार ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बागेश्वर में पर्यटक टैक्सी चालक में मारपीट, मामूली बात को लेकर विवाद, जमकर भिड़े दोनों।
आरा में दर्दनाक सड़क हादसा, ड्यूटी पर लौट रहे स्पेशल ब्रांच में तैनात पुलिस वाले को बस ने कुचला, हुई मौत। फिल्म डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह फरहान अख्तर में विवाद हुआ, 10 दिन पहले फिल्म छोड़ने का रणवीर पर आरोप। रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की डॉन 3 छोड़ना पड़ा महंगा, FWICA ने लगाया बैन। रणबीर कपूर के रामायण पार्ट 1 की बदल सकती है रिलीज डेट, 30 अक्टूबर को अब हो सकती है रिलीज। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय नए जॉनर में, अब एलियन से भिड़ते हुए समुख से करेंगे एंट्री। 46 फिल्मों के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, करण जौहर हुए इमोशनल।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर की, जहां आज से हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस काबा की तरफ मुंह करके दुनिया के करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, आज उसकी सुरक्षा के लिए सऊदी अरब को 9,500 करोड़ रुपए का अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ा है। मक्का में सऊदी अरब के हजारों सैनिकों की, टैंकों की, हेलीकॉप्टर्स की, लड़ाकू विमानों की वैसी ही परेड हुई है जैसी युद्ध क्षेत्र में होती है। बड़ा सवाल यह है कि जो सऊदी अरब चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, वहां मक्का को आखिर खतरा किससे है? असल में मक्का को यह खतरा किसी दूसरे धर्म से नहीं, बल्कि यमन के कट्टरपंथी हूती विद्रोहियों और ईरान से है। यह असल में मिडल ईस्ट के दो बड़े देशों के बीच सच्चा इस्लामिक राष्ट्र बनने के वर्चस्व की जंग है, जिसमें आज इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल निशाने पर आ चुका है। इसके बाद आपको हमारे देश के सिस्टम का ब्लैक और व्हाइट सच दिखाएंगे। भारत में बकरीद से ठीक पहले खुले में नमाज और कुर्बानी को लेकर बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की कि जब देश का कानून धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर है, तो राजनीतिक पार्टियां कहीं इतनी सख्त और कहीं इतनी नरम क्यों हैं? एक तरफ बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां कड़े नियम और पाबंदियां हैं, दूसरी तरफ विपक्षी दलों के राज्य हैं, जहां सख्ती नहीं बल्कि छुट्टियों की सौगात भी है। आखिर ये अंतर क्यों? दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसे तमाम मुस्लिम देशों में खुले में कुर्बानी पर भारी जुर्माना और सख्त पाबंदी है, वहां इसे कोई मुस्लिम विरोधी नहीं कहता, तो फिर हमारे देश में कानून पर वोट बैंक का चश्मा क्यों चढ़ा दिया जाता है? आखिर में आपको बताएंगे कि क्या देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हो सकती है? पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है और लगभग 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है, जिसका असर महंगाई के रूप में नजर आने लगा है। अब लोगों को लगता है कि ये वृद्धि यहीं नहीं रुकने वाली, अभी कीमतों में और भी इजाफा होगा। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस काबा की तरफ मुंह करके दुनिया के करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उस काबा को किससे खतरा है? आज सऊदी अरब में हज का पहला दिन था, जिसके लिए मक्का शहर के चारों तरफ सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। इनमें अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत $1 बिलियन यानी 9,500 करोड़ रुपए मानी जाती है। यह तैनाती भी तब हुई है जब इस्लाम धर्म में मक्का के पवित्र क्षेत्र को हरम माना गया है। हरम का मतलब ऐसी भूमि से होता है जहां कुछ चीजें पूर्ण रूप से वर्जित या निषिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए मक्का शहर में खून खराबा नहीं हो सकता, युद्ध नहीं हो सकता, हथियार नहीं लाए जा सकते, लोगों को डराया धमकाया नहीं जा सकता। यहां तक कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मक्का में पेड़ पौधे काटने को भी गलत माना गया है। लेकिन फिर भी यहां सऊदी अरब की सरकार को एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सऊदी अरब को लगता है कि मक्का में हज की यात्रा के दौरान मिसाइल और ड्रोन से हमले हो सकते हैं और इसमें काबा को भी निशाना बनाया जा सकता है। और यह डर भी तब है जब सऊदी अरब चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन में 99% आबादी मुसलमानों की है, ओमान में 95%, यूएई में 77%, कतर में 79%, कुवैत में 76%, इराक में 97%, जॉर्डन में भी 97% और इजिप्ट यानी मिस्र में मुस्लिम आबादी 90% से अधिक है। और ये देश केवल मुस्लिम बहुल नहीं है, बल्कि इन देशों ने इस्लाम को अपना राजकीय धर्म माना है, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि जो सऊदी अरब चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा है, वहां मक्का को आखिर किससे खतरा हो सकता है? देखिए,

0: क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि मक्का को खतरा किसी दूसरे धर्म के लोगों से नहीं बल्कि मक्का को खतरा उन मुसलमानों से है जिन्हें सऊदी अरब कट्टरपंथी मानता है। इनमें पहला देश है ईरान, दूसरा है ईरान का प्रॉक्सी संगठन हूती जिसे सऊदी अरब की सरकार अपना दुश्मन मानती है। और ऐसा नहीं है कि हूती पर इससे पहले मक्का के खिलाफ साजिश के आरोप नहीं लगे। जून 2017 में एक फिदायीन आतंकी काबा की पवित्र मस्जिद में आत्मघाती हमला करना चाहता था जिसे सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने एक बिल्डिंग में घेर लिया था और ये आतंकी एक मुसलमान था और इसकी मदद करने वाले 5 लोग भी इस्लाम धर्म को मानते थे जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था। ये घटना भी उस वक्त हुई थी जब सऊदी अरब 2016 में ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती पर यह आरोप लगा चुका था कि उसने मक्का पर मिसाइलें दागने की कोशिश की है। और सिर्फ 2016 में ही ऐसे आरोप नहीं लगे, 2019 में भी हूती पर यही आरोप लगा कि उसने मक्का को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें फिर से सऊदी अरब की तरफ दागी है। अब ये देखिए कि हूती कौन है। हूती एक विद्रोही संगठन है जिसने यमन के आधे भूभाग पर कब्जा किया हुआ है। वो सऊदी अरब से इसीलिए नफरत करता है क्योंकि सऊदी अरब यमन की उस सरकार का समर्थन करता है जो हूती के खिलाफ है, और यही चीज हूती को सऊदी अरब का दुश्मन बनाती है। और क्योंकि सऊदी अरब से ईरान की दुश्मनी है इसीलिए ईरान हूती को हथियार और ट्रेनिंग देता है। लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि हूती के लड़ाके किसी और धर्म को नहीं मानते, वो इस्लाम धर्म को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी उस पर बार बार यह आरोप लगता है कि वो मक्का पर हमला करना चाहता है। और ये बात किसी को समझ नहीं आती कि हूती इस्लाम धर्म को मानते हुए मक्का के खिलाफ क्यों है। तो इसके पीछे एक ऐसा धर्म युद्ध है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मिडल ईस्ट में मुस्लिम देशों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि इनमें से कौन सा देश सच्चा इस्लामिक राष्ट्र है और कौन सा देश केवल इसका दिखावा करता है। सऊदी अरब कहता है कि मक्का और मदीना उसके देश में है इसीलिए सच्चा मुस्लिम राष्ट्र वो है। ईरान कहता है उसके यहां अल्लाह के नुमाइंदों का शासन है इसीलिए सच्चा मुस्लिम और कौन सा देश केवल इसका दिखावा करता है। सऊदी अरब कहता है कि मक्का और मदीना उसके देश में है इसीलिए सच्चा मुस्लिम राष्ट्र वो है। ईरान कहता है उसके यहां अल्लाह के नुमाइंदों का शासन है इसीलिए सच्चा मुस्लिम राष्ट्र वो है। यह लड़ाई पिछले लगभग 5 दशकों से चल रही है जिसमें ईरान ने हमेशा से यह कहा है कि जिन देशों में सुल्तानों के परिवार का राज है वो खुद को मुस्लिम देश कहने का ढोंग करते हैं क्योंकि कोई भी देश तब तक मुस्लिम नहीं बन सकता जब तक कि वहां अल्लाह का शासन न हो। अब ये चीज ईरान ने अपने देश में लागू करके भी दिखाई और सुप्रीम लीडर को अल्लाह का नुमाइंदा बताया जिसने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और जॉर्डन जैसे देशों को असहज किया। असहज इसीलिए किया क्योंकि इन देशों में राज परिवारों का शासन था। इन देशों को लगा कि अगर ईरान की तरह उनके यहां भी अल्लाह के शासन की मांग होने लगी तो यहां के राज परिवारों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। इसी वजह से ये देश ईरान के दुश्मन बन गए और ईरान मिडल ईस्ट में अलग थलग हो गया। लेकिन ईरान ने खुद को सच्चा मुस्लिम देश बताने के लिए ऐसे संगठन भी बनाए जिनसे मुसलमानों में इन देशों की साख और विश्वसनीयता गिराई जा सके, और यही चीज सऊदी अरब भी करता है। आज भी अगर सऊदी अरब हूती पर मक्का को निशाना बनाने का आरोप लगाता है तो इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरब यह दिखाना चाहता है कि ईरान एक सच्चा मुस्लिम देश नहीं है क्योंकि वो मक्का को खत्म करना चाहता है, जबकि ईरान यह साबित करना चाहता है कि मक्का और मदीना सऊदी अरब में है लेकिन सऊदी अरब एक दिखावटी मुस्लिम देश है। और सोचिए इस पूरे टकराव में मक्का जैसा पवित्र शहर निशाने पर आ गया है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। नटशेल में कहें तो बाहर से देखने पर मुस्लिम देशों का भाईचारा अटूट नजर आता है लेकिन भीतर से देखने पर इसी भाईचारे में कई दरारें साफ दिखाई पड़ती हैं। कुछ उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। जब सीरिया में गृह युद्ध के कारण 55 लाख मुसलमानों को अपना देश छोड़ना पड़ा तब कोई बड़ा मुस्लिम देश इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सीरिया के विस्थापित मुसलमानों ने जान बचाने के लिए जब तुर्की, लेबनन, जॉर्डन का रुख किया तब इन देशों ने भी इन सीरियाई मुसलमानों पर कड़े और सख्त नियम लागू किए और कई मुसलमानों को डिपोर्ट भी कर दिया। इसके बाद जब अफगानिस्तान में युद्ध के कारण 48 लाख मुसलमान विस्थापित हुए तो इन मुसलमानों की भी किसी मुस्लिम देश ने मदद नहीं की। जो मुसलमान किसी तरह जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचे उन्हें भी इस्लाम धर्म का ठेकेदार बनने वाले पाकिस्तान ने डिपोर्ट कर दिया और तब पाकिस्तान को इस्लाम धर्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। और फिर यही दक्षिणी सूडान में हुआ यही इराक में हुआ, यही यमन में हुआ और यही फिलिस्तीन में हुआ। फिलिस्तीन के गाजा में 20 लाख लोग रहते थे, जिन्हें युद्ध के दौरान अगर 56 मुस्लिम देशों में शरण मिलती तो इनकी जान बच सकती थी। ऐसा करने पर हर मुस्लिम देश को केवल 35,000 से 36,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों को अपने यहां शरण देनी होती, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। और मुस्लिम देशों ने गाजा के मुसलमानों के साथ हमदर्दी तो दिखाई, लेकिन अपने यहां शरण नहीं दी। और इस मुस्लिम भाईचारे का सच दुनिया ने उस वक्त भी देखा जब रमजान के महीने में ईरान ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर हजारों मिसाइलें दागी और इसमें कई लोगों की जाने गई। कहने का मतलब केवल इतना है कि कुछ कट्टरपंथी ये सोचते हैं कि अगर सब जगह मुस्लिम आबादी फैल जाए तो उनके विवाद और टकराव रहेंगे ही नहीं, और इसके लिए ये लोग गजवाए हिंद और खुरासान जैसी साजिश को गढ़ते हैं। लेकिन मक्का में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती और मुस्लिम देशों के बीच हितों का टकराव बताता है कि जहां सिर्फ मुसलमानों का राज है उन देशों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। यहां आप मक्का शहर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए, जिन्हें हजारों सैनिक वहां परेड करते हुए दिख रहे हैं, अपने साथ ये सवाल छोड़ रहे हैं कि मक्का में आखिर युद्ध भूमि जैसी परिस्थितियां क्यों नजर आ रही हैं।
1: السادة سموكم الكريم هي بدل العرض العسكري أمرك سيد

0: आगे बढ़ते हैं और बात भारत की करते हैं। भारत में 28 मई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और इससे पहले एक बार फिर हमारे देश में कुर्बानी और खुले में नमाज के नियम को लेकर बहस शुरू हुई। बहस ये है कि जानवरों की कुर्बानी को लेकर बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी शासित राज्यों के कानून अलग अलग क्यों दिखते हैं। जैसे बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है, लेकिन कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसी कोई सियासत नहीं हो रही। बीजेपी शासित पश्चिम बंगाल में बकरीद की छुट्टियों में कटौती की गई है, लेकिन कांग्रेस शासित केरलम में बकरीद के लिए 2 दिनों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसी तरह बीजेपी शासित दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों में गाय या गोवंश की कुर्बानी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन विपक्षी दलों के राज्यों में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और इससे हमें एक चीज आईने की तरह साफ नजर आती है, वो चीज ये है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां खुले में नमाज, खुले में कुर्बानी को लेकर बहुत सख्ती है, इसके पीछे कानून का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां इस पर कोई मुद्दा नहीं बन रहा। और ये अंतर न केवल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह स्पष्ट नजर आता है, बल्कि इस अंतर से ये सवाल भी पैदा होता है कि हमारे देश में कानून की आंखों पर अगर वोट बैंक का चश्मा पहना दिया जाएगा तो लॉ ऑफ द लैंड क्या होगा। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब यह है कि जो कानून धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर है और सबके लिए एक समान है, वो कानून राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में सख्त और नरम है। जैसे अलग अलग राज्यों में एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है, लेकिन इन्हें लागू करने की प्रभावशीलता हर राज्य में अलग है, जिसकी वजह से इन कानूनों का को लागू करने में भी विवाद होता है। इसे आप मुस्लिम देशों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे सऊदी अरब में जानवरों की कुर्बानी लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों या निर्धारित स्थानों पर ही होती है, लेकिन वहां इस सख्ती को कोई मुस्लिम विरोधी नहीं कहता। यूएई में भी खुले में कुर्बानी को लेकर कड़े नियम हैं, और अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। कतर में भी सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, और वहां सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि कतर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कुवैत और बहरीन में भी निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होती है, जबकि तुर्की में तो सरकार खुद तय करती है कि किन जगहों पर कुर्बानी हो सकती है, और वहां सड़क या सार्वजनिक इलाकों में जानवर काटने पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन तुर्की में भी कोई नहीं कहता कि यह नियम मुसलमानों के विरुद्ध है, और यह सूची बहुत लंबी है। कहने का मतलब केवल इतना कि जब मुस्लिम देशों में इन कानूनों का पालन हो सकता है तो धर्मनिरपेक्ष भारत में इन्हीं कानूनों पर इतनी बहस, इतना विवाद क्यों होता है। हमें लगता है कि यह शायद इसीलिए होता है क्योंकि हमारे देश में सरकारें कानून के हिसाब से कम, वोट बैंक के हिसाब से ज्यादा काम करती हैं, और हर राज्य और राजनीतिक पार्टी की सरकार में होता है।
1: अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे।
2: सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है, और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी।
0: आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि जैसे होली के त्योहार पर बिना पानी के सूखी होली मनाने के लिए कहा जाता है और दीपावली पर ग्रीन दिवाली मनाने की सलाह दी जाती है, ठीक उसी तरह से अब मुसलमानों को वर्चुअल बकरीद मनानी चाहिए, जिसमें लोग असली में जानवरों की कुर्बानी न देकर कंप्यूटर पर वर्चुअल जानवरों की कुर्बानी दें। सुनिए।
4: मोड़े आमचे दिवा होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। ती सल्ले त्यांना काय देत नाहीत? हा हिम्मत इकडच्या काही पर्यावरणवाल्यांना त्यांना ते सल्ले देण्याची?
0: और अब हम आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं और क्या पेट्रोल प्रति लीटर 25 रुपए तक महंगा हो सकता है। भारत ने ईरान युद्ध शुरू होने के 76 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था, इसकी खूब चर्चा भी हुई। लेकिन इसी महीने 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के 11 दिन बाद 15 मई को पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ा दी गई। आज 25 मई को इन्हीं कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ है और पिछले 10 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल 7.35 रुपए और 1 लीटर डीजल 7.53 रुपए महंगा हो चुका है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो देश के जिन 5 राज्यों में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है उनमें आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जबकि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरलम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी टॉप 5 में आते हैं। अब ये कीमतें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया 2.8% बढ़ जाता है। और यहां तो केवल पिछले 10 दिनों में ये कीमतें 7 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिससे महंगाई का बढ़ना निश्चित है। क्यों, इसे भी समझिए। माल ढुलाई का मतलब यह होता है कि आपके शहर और इलाके में जो सब्जियां, फल या रोजमर्रा का दूसरा सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है उसकी लागत यानी कॉस्ट अब पहले के मुकाबले 2.8% तक बढ़ सकती है। इससे महंगाई में अच्छा खासा इजाफा होगा जो आम लोगों की जेब पर बुरा असर डालेगा। अब यहां एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि जब सरकार ने युद्ध के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी तो अब सीज फायर के दौरान ये कीमतें बार बार क्यों बढ़ रही हैं? तो आंकड़े बताते हैं कि सरकार पर तेल की कीमतें बढ़ाने का दबाव उसी दिन से था जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी। युद्ध से पहले फरवरी महीने में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें $69 थी, लेकिन मार्च में यही कीमतें $113.49 प्रति बैरल हो गई। ये कीमतें हम आपको इंडियन क्रूड बास्केट के हिसाब से बता रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि भारत जिन अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीदता है उन सब तेल का औसत दाम मार्च महीने में कितना था और उससे पहले फरवरी महीने में कितना था। अब जैसा कि हमने आपको बताया, मार्च महीने में कच्चा तेल $69 से बढ़कर $113.49 प्रति बैरल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। मार्च के बाद अप्रैल में भी कच्चे तेल की कीमतें लगभग इतनी ही $114 प्रति बैरल रही और तब भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। और सरकार इस दबाव को लगातार सहती रही, लेकिन इस महीने जब कच्चा तेल मार्च और अप्रैल के मुकाबले थोड़ा सस्ता हुआ और 22 मई को ये इंडियन क्रूड बास्केट में $106 प्रति बैरल पर दर्ज हुआ, तब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार नहीं बल्कि 4 बार बढ़ा दी। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि मार्च और अप्रैल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, तेल की कीमतें चुनाव के मुद्दों को प्रभावित भी कर सकती थी। अब इस सवाल पर आते हैं कि सरकार एक बार में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ा रहे और ये कीमतें लगातार बढ़ क्यों नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंडियन क्रूड बास्केट। भारत सिर्फ एक देश से कच्चा तेल खरीदकर उससे पेट्रोल और डीजल नहीं बनाता, इसकी जगह हम खाड़ी देशों से भी तेल खरीदते हैं। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और वेनेजुएला से भी तेल खरीदते हैं और इसके बाद इन सभी तेलों को मिलाकर पेट्रोल डीजल की एक औसत कीमत निकाली जाती है। अब युद्ध से पहले होता यह था कि हमारी इंडियन क्रूड बास्केट में 79% हिस्सेदारी खाड़ी देशों के तेल की होती थी, जबकि केवल 21% हिस्सेदारी ब्रेंट क्रूड की होती थी जो यूरोपीय देशों से आता है। लेकिन युद्ध के बाद यह स्थिति पूरी तरह पलट गई। अब हमारे कच्चे तेल में ब्रेंट क्रूड की हिस्सेदारी 61% है, जबकि खाड़ी देशों के तेल की हिस्सेदारी केवल 39% है और इसी वजह से तेल की कीमतें बार बार बढ़ रही हैं। और भी सरल शब्दों में कहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति लगभग ठप हो गई है और इसके कारण हमें महंगा ब्रेंट क्रूड खरीदना पड़ रहा है। और क्योंकि हम महंगा ब्रेंट क्रूड खरीद रहे हैं इसीलिए सरकार को कच्चे तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि ये कीमतें प्रति लीटर कितना बढ़ सकती हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 4 साल पीछे चलना होगा। 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब 5 महीने तक इंडियन क्रूड बास्केट में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $100 के पार रही थी और 5 महीने तक ऐसा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 10 रुपए की वृद्धि हुई थी। यानी पिछली बार से तुलना करें तो मौजूदा परिस्थिति में इस बार पेट्रोल डीजल कम से कम 12 रुपए महंगा हो सकता है, और अगर तेल आपूर्ति एक साल तक प्रभावित रहती है तो इस हिसाब से प्रति लीटर कीमतें 25 रुपए तक भी बढ़ सकती हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें जब संकट काल में बढ़ाई जाती हैं तो बढ़ी हुई कीमतों को धीरे धीरे वापस भी लिया जाता है। जैसे 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल 10 रुपए महंगा हुआ, बाद में अगले दो साल में यही कीमतें 10 रुपए कम भी की गई। और ऐसा नहीं है कि यह 2022 में ही हुआ, जुलाई 2008 में इंडियन क्रूड बास्केट में जब एक बैरल कच्चा तेल $132 तक पहुंच गया था, तब यूपीए की सरकार ने एक लीटर पेट्रोल के दाम 45.52 रुपए से बढ़ाकर 50.62 रुपए कर दिए थे। लेकिन जब यही कच्चा तेल कुछ महीने बाद $43 पर आ गया तो यूपीए की सरकार ने पहले तो कीमतें कम नहीं की, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनावों से एन पहले प्रति लीटर पेट्रोल 10 रुपए तक सस्ता कर दिया। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चुनावी सियासत बहुत पहले से होती रही है और हर सरकार में तेल की कीमतों पर ये चीजें की गई हैं। हालांकि यहां हम एक और बात को जोड़ना चाहते हैं, और वो ये है कि तेल कंपनियों से सवाल कौन पूछेगा। आपको यही बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल इसीलिए महंगा हो रहा है क्योंकि तेल कंपनियों को घाटा उठाना पड़ रहा है। लेकिन आज जो नए आंकड़े आए हैं वो एक दूसरी कहानी बयां करते हैं। चौथी तिमाही में यानी इस साल जनवरी से मार्च महीने के बीच तेल कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में 41% की वृद्धि हुई है। फिर से सुन लीजिए, जनवरी से मार्च महीने के बीच तेल कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 41% बढ़ा, जबकि इसमें मार्च का महीना पूरी तरह से युद्ध के हवाले रहा था। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 11,377 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, भारत पेट्रोलियम को 3,191 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 4,901 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो कुल मिलाकर 19,470 करोड़ रुपए होता है। और यहां बात सिर्फ पिछली तिमाही के मुनाफे की नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन ऑयल ने 2022 से 2025 के बीच 97,625 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। भारत पेट्रोलियम ने भी इन्हीं चार सालों में 65,122 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 48,114 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और ONGC ने भी इन चार सालों में पेट्रोल डीजल की बिक्री से 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। और सोचिए, इतना मुनाफा जब इन तेल कंपनियों ने कमाया तो उस वक्त तेल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन आज जब कच्चा तेल महंगा होने से इन्हें घाटा हो रहा है तो इन तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 7 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। और यही है तेल का पूरा खेल।
5: देश की आम जनता पर एक बार फिर महंगाई का ऐसा बम फूटा है जिसने हर घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। महज 10 दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने चौथी बार जनता की जेब काटी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाहाकार है, क्योंकि डीजल महंगा होने का मतलब है आपकी थाली की सब्जी से लेकर दूध, ब्रेड और दवाइयों तक सब कुछ महंगा होगा। ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल की ये तेजी पूरी इकोनॉमी को पटरी से उतार देगी।
6: दाम तो बढ़ रहे हैं, जनता पे बोझ बढ़ रहा है अपने यहाँ पे, और जनता काफी परेशान है इन सब चीजों से।
7: बढ़ने से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी।
8: दिमाग खराब हो रहा डेली,
9: बहुत परेशान है सर। रेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा।
10: इतनी महंगाई में इंसान, आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता।
11: बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर बहुत मार पड़ गई।
5: पेट्रोल पंप पर लगी ये कतारें सिर्फ ईंधन भरवाने वालों की नहीं है बल्कि देश के उस आम आदमी की है जो लगातार बढ़ती कीमतों से त्रस्त है। तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में जो किया है उसने देश को महंगाई के एक बड़े खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, और चार बार की बढ़ोतरी में ईंधन की कीमतें 7 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस चौतरफा मार का नतीजा ये हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। अब दिल्ली वालों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102.12 रुपए और डीजल के लिए 95.20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
12: कमाएंगे क्या, पेट्रोल डालेंगे क्या, और लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते, इतना नहीं कमा पाते। 1,000 रुपए कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है।
13: वैट कम करेंगे तो रेट कम होगा
14: सर। कोई दिक्कत नहीं, कष्ट है, दिक्कत है सर, मतलब देश को कोई दिक्कत।
5: अगर आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर असर पड़ता है तो आप गलत हैं। ईंधन की ये आग सीधे आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है। 15 मई को जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ी उसका असर 24 घंटे के भीतर दिखने लगा। अमूल और मदर डेयरी जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने पैकेज दूध के दाम बढ़ा दिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ब्रेड की कीमतें बढ़ गई और अब टैक्सी यूनियनों ने भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
15: अरे तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। तो जब तो वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहा है तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर।
16: एक दिन दो रुपए बढ़े फिर एक एक करके डेली बढ़ रहे हैं और इससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं।
17: जो अपने यहाँ पेट्रोल डीजल है ही नहीं है तो बढ़ेगा ही जब बाहर से आएगा तो।
18: पूरे वर्ल्ड में ऊर्जा संकट है और ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए इन परिस्थितियों का सामना हम लोग कर सकते हैं।
5: भारत की इकोनॉमी ट्रकों के पहियों पर चलती है और इन पहियों की ताकत है डीजल। लेकिन अब परिवहन उद्योग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी AITWU ने साफ चेतावनी दी है कि इस कमरतोड़ महंगाई में गाड़ियों का संचालन नामुमकिन होता जा रहा है। यही वजह है कि एसोसिएशन ने 20 मई को देश भर में फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर यानी FAF लागू कर दिया है। समझिए ये गणित कितना खतरनाक है। एक ट्रक को चलाने की कुल लागत में 65% हिस्सा अकेले डीजल का होता है। ट्रांसपोर्टर्स के नए नियम के मुताबिक डीजल की कीमत में हर एक रुपए की बढ़ोतरी पर माल ढुलाई का किराया अपने आप 0.65% बढ़ जाएगा। यानी अब तक जो तेल 7 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है उसने माल ढुलाई की लागत को करीब 5% तक बढ़ा दिया है। अगर ये दाम 10 रुपए बढ़े तो सीधा 6.5% की बढ़ोतरी तय है।
19: सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। मिडिल क्लास को मार के रख दिया है क्या? छोटी छोटी फैमिली वाले जो कम सैलरी में काम करते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ।
20: इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। जो फॉरेन कंट्री के अंदर चल रहा है बहुत चल रहा है, ठीक, जो देश में उपलब्ध है उसमें तो नहीं होता कोई प्रॉब्लम।
5: माल ढुलाई महंगी होने का सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में हर वो सामान महंगा होने जा रहा है जो ट्रकों के जरिए गोदामों और दुकानों तक पहुंचता है। सब्जियां, फल, दूध, दवाइयां और रोजमर्रा के सामान तो महंगे होंगे ही, साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी सीमेंट, सरिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी भी महंगी हो जाएगी। कंपनियों की बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत का पूरा बोझ आखिर में देश के आम उपभोक्ता की जेब पर ही ट्रांसफर किया जाएगा।
21: जनता के जेब से पैसा निकल रहा है, जनता परेशान हो रही है।
22: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखाता है कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखाता है।
23: परेशानी तो इतनी हो रही है कुछ कह रही है, पता नहीं सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए, यही नहीं मालूम पड़ा ना न्यूज पे ना उस पे, कोई दे ही नहीं रहा। हम तो लोग परेशान हो ही रहे ना।
5: यानी तेल का ये खेल सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है, ये देश के हर नागरिक की थाली और जेब को खाली करने का नया जरिया बन चुका है।
0: सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि अभी तो तेल महंगा हुआ है, आगे कुछ दिन में बंद तक हो जाएगा इसका मिलना। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में इस जानकारी से बेचैनी बढ़ गई होगी, लेकिन आज ही संसदीय समिति की बैठक में भारत सरकार ने बताया है कि अब भी हमारे पास 78 दिनों का कच्चा तेल रिजर्व में बचा हुआ है जो लगभग 2.5 महीने के बराबर है। यहां आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों पर GST का भी एक आईना देखना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें तभी GST के दायरे में आ सकती हैं जब इसके लिए GST काउंसिल में कुल वेटेड वोट का 75% समर्थन मिले, और यह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सिर्फ बीजेपी और उसके सहयोगी दल ऐसा चाह लें तो विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि कुल वेटेड वोट में अभी केंद्र सरकार के वोट का वेटेड 1/3 यानी 33.33% है, जबकि सभी राज्यों के वोट मिलाकर 2/3 यानी 66.67% वेटेज रखते हैं। अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें और ये सभी सरकारें इसके लिए तैयार हो जाएं तो जीएसटी काउंसिल में इस प्रस्ताव को 75% जरूरी समर्थन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहां सवाल ये भी है कि क्या सरकारें ऐसा करने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि अगर सरकारें तेल पर टैक्स कम करती हैं तो उन्हें मुफ्त योजनाओं पर भी अपना खर्च घटाना होगा। और सोचिए क्या हमारे देश में लोग इसके लिए तैयार होंगे कि उन्हें सरकार से जो मासिक आर्थिक सहयोग मिल रहा है वो बंद हो जाए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि चीन से खाली हाथ लौटा अमेरिका भारत से क्या चाहता है और राष्ट्रपति ट्रंप भारत से क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन पहले अमेरिका की आजादी के 250वें साल पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। ये एक कूटनीतिक इवेंट होना था जिसमें शिष्टाचार के तौर पर बारी बारी सबको स्टेज पर आकर संबोधन देना था, लेकिन इस इवेंट के दौरान सर्जियो गोर ने अचानक सभी मेहमानों को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा दिया और उनसे स्पीकर फोन पर बात की। इस फोन कॉल के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं और भारत मुश्किल वक्त में अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है।
1: And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi.
2: Thank you, sir.
0: Trump ke phone call aur Sergio Gore ke is kadam ko ek alag tarah ki kootniti ke taur par dekha ja raha hai. सर्जियो गोर भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। काफी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। टैरिफ के मुद्दे पर जब भारत और अमेरिकी संबंधों में खटास आई थी तब दोनों देशों के संबंधों को ठीक करने के लिए सर्जियो गोर काफी एक्टिव दिखे थे। ट्रंप के फोन कॉल के बाद मार्को रूबियो और एस जयशंकर ने भी भारत और अमेरिका की दोस्ती को मजबूत बनाने की बात दोहराई और फिर इसके बाद संगीतकार ए आर रहमान की टीम ने जय हो गाने पर परफॉर्म किया।

0: The list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world.
1: Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests.
2: अब ये देखिए कि चीन से खाली हाथ लौटा अमेरिका भारत से क्या चाहता है। पहला, अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया में चीन के बढ़ते असर के खिलाफ एक मजबूत काउंटर बैलेंस बने, यानी अमेरिका हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। दूसरा, अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार बनाकर चीन पर अपनी निर्भरता को घटाना चाहता है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। तीसरा, अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा अमेरिकी हथियार, ड्रोन, एयर डिफेंस, हाईटेक सैन्य सिस्टम खरीदे और दोनों देशों की सेनाएं मिलकर चीन के खिलाफ सामरिक तालमेल भी बढ़ाएं। चौथा, अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत धीरे धीरे रूस पर अपनी रक्षा और ऊर्जा निर्भरता कम करे, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद वॉशिंगटन इस दिशा में ज्यादा दबाव बना रहा है। हालांकि भारत ने कहा है कि जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट प्राथमिकता है, वैसे ही भारत के लिए इंडिया फर्स्ट है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है कि भारत को लोकतांत्रिक शक्ति के वैश्विक चेहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि दुनिया को यह संदेश जाए कि पश्चिमी देशों के साथ खड़ा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और उभरता हुआ शक्ति केंद्र भारत है, ताकि चीन के मॉडल के मुकाबले एक वैकल्पिक वैश्विक नैरेटिव बनाया जा सके। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप भारत को साथ लेकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों को एक बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों को इसराइल के साथ अब अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड इसराइल, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके तहत मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश इसराइल को मान्यता देकर उसके खिलाफ अपनी दुश्मनी को भुलाकर आपसी सहयोग बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें अभी एक मिडल ईस्ट से यूएई और बहरीन और उत्तर अफ्रीका से मोरक्को ही इसमें शामिल हुए हैं और इन तीनों मुस्लिम देशों ने इसराइल को मान्यता दी, उसके साथ रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। दुनिया के कई मुस्लिम देश इसराइल को यहूदी देश के तौर पर अपना पारंपरिक दुश्मन मानते हैं, इसीलिए वो इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध भी नहीं रखते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे देशों को ईरान के साथ समझौते का इसराइल के साथ समझौते का हिस्सा बनने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने की शर्त रखी है और ईरान को भी इस समझौते में शामिल होने का न्योता दिया है। अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि मुस्लिम देशों द्वारा इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी जाएगी, जिससे यहूदी और मुस्लिम देशों के बीच दुश्मनी खत्म मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की यह शर्त पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान भी इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार तो फिलिस्तीन के मामले में इसराइल का विरोध करती आई है। अमेरिकी डॉलर पाने के चक्कर में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने में लगा हुआ है, लेकिन इसराइल को मान्यता देने की शर्त रखकर ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। अब हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार पिछले 15 सालों से पोषित हो रहे भ्रष्टाचार, घुसपैठ और नेता अपराधी नेक्सस को खत्म करने में लगी हुई है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों में ममता राज में शेर बनकर घूमने वाले अपराधियों, घुसपैठियों, नियमों को ताक पर रखने वालों को सीधा किया जा रहा है, जिन मुद्दों को ममता बनर्जी बीजेपी सरकार का एजेंडा बताकर खारिज कर देती थी, उन्हीं मुद्दों पर बंगाल की बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है। ममता बनर्जी के 15 सालों के कार्यकाल में बंगाल की जनता को चुनाव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद हिंसा का उपहार दिया जाता था, फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो या पंचायत इलेक्शन। उनके राज में ही महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विभत्स संदेश खाली केस को स्थानीय समस्या बताकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कहा गया। और सिर्फ यही नहीं, इस अपराध में शामिल टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बचाने के भी प्रयास हुए थे। आरजीकार मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस को ममता सरकार एक सामान्य मामला बताने में बिजी रही और बंगाल की जनता के गुस्से को भी

0: हर दिन अपराधियों पर हो रही कार्रवाई की तस्वीरें आ रही हैं और कार्रवाई केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि अवैध कब्जे छुड़वाने के लिए भी बड़ा एक्शन हो रहा है। आसनसोल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर टीएमसी के एक काउंसलर ने कब्जा कर लिया था। इस अवैध कब्जे पर बाकायदा तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस बनाया गया था। पिछली सरकार में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी इस छोटे से ऑफिस पर उंगली उठा दे, लेकिन जैसे ही राज्य में बीजेपी सरकार आई इस अवैध टीएमसी ऑफिस पर उंगली नहीं बल्कि बुलडोजर का पंजा चला। बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में बंगाल को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया था। कार्यकाल के 15 दिनों में ही जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसने लोगों का भरोसा जगाने का दावा है और इस भरोसे की एक और झलक फालता सीट पर हुई रीपोलिंग के नतीजों में भी दिखी।
1: फालता सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने शानदार जीत दर्ज की है। फालता वही विधानसभा सीट है जिस पर बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए ईवीएम के बटन को टेप से चिपका दिया गया था ताकि किसी भी वोटर को कमल का निशान तक न दिखाई दे। इस सीट पर हुई पिछली वोटिंग में आरोप लगा था कि कई बूथों पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थक मतदाताओं को डरा धमका कर वोट मांग रहे थे। अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर पर भी आरोप लगे थे कि वो मतदाताओं को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दे रहे थे, लेकिन इस सीट पर हुए पुनर्मतदान में सारा डर और सारी धमकियां हवा हो गईं। नतीजा ये रहा कि बीजेपी उम्मीदवार ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। फालता सीट पर 2,36,444 मतदाता हैं और रिपोलिंग में 88% वोटिंग हुई। इनमें से करीब 71% वोट बीजेपी को, 19% सीपीएम को, 5% कांग्रेस और करीब 4% वोट टीएमसी को मिले हैं। पहले ये माना जा रहा था कि फालता सीट पर लड़ाई बीजेपी और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच है। इसकी वजह ये थी कि फालता सीट पर 33% आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन नतीजों ने टीएमसी को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया और इस जीत ने दिखाया कि मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी उम्मीदवार पर भरोसा किया।
2: आज समझ में आ रहे हैं, बंगाल भी देख रहे और भारत भी देख रहे कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा वोट में 7,00,000 के ऊपर वोट से किस तरह से जीते थे, आज वो स्पष्ट हो गया है। और जो पुष्पा बोल रहे थे कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा झुकते झुकते पता नहीं चूहा का बिल में घुस गया। तो हम लोग पुलिस में खबर दिए है कि पुष्पा निरुद्देश है, पुष्पा को नहीं मिल रहा है, तो किसी पुष्पा का दरकार नहीं है।
1: इस जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन ले लिया है। शुभेंदु सरकार ने डिटेक्ट डिलीट एंड रिपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी है।
0: मैदानी इलाकों में सूर्य देवता इस वक्त रौद्र रूप में है। लू के थपेड़े झेल रहे लोग राहत की तलाश में पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़े हैं, लेकिन अफसोस सुकून की ये तलाश अब एक बड़े सरदर्द में बदल चुकी है। तस्वीरें गवाह हैं कि पहाड़ों पर इस वक्त कुदरत के नजारे कम, वाहनों की कतारें ज्यादा दिख रही हैं। शिमला मनाली से लेकर नैनीताल तक हर खूबसूरत मोड़ पर कई किलोमीटर लंबा महाजाम लगा है। हालात ये हैं कि सैलानी वादियों की ठंडी हवा खाने के बजाय अपनी ही गाड़ियों में कैद होकर उबल रहे हैं। पहाड़ों पर आए इस टूरिस्ट ब्लास्ट की तस्वीरें डराने वाली हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए।
1: आसमान से बरसती आग और 50 डिग्री को छूता पारा, उत्तर भारत इस वक्त जल रहा है। आलम यह है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट आई तो उसमें से 99 शहर अकेले हमारे हिंदुस्तान के हैं। इस जानलेवा तपिश से बचने के लिए मैदानी इलाकों के लोग अब पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ठहरिए, सुहाने मौसम की चाहत में निकले इन सैलानियों को क्या पता था कि पहाड़ों पर उनका स्वागत कुदरत की वादियों से नहीं बल्कि गाड़ियों के अंतहीन सैलाब से होगा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक इस वक्त पहाड़ों पर ट्रैफिक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। शुरू करते हैं उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल से। वीकेंड आते ही मैदानी इलाकों के सैलानियों का ऐसा रेला उमड़ा कि नैनीताल के पैर उखड़ गए। माल रोड पर पैर रखने की जगह नहीं है। दिन भर गाड़ियों की लंबी कतारें रेंगती रहीं जो सैलानी सुकून से झील में बोटिंग करना चाहते थे।

0: वहां भी भारी भीड़ की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नैनीताल के बाद हरिद्वार का हाल देखिए। गंगा दशहरा का पावन स्नान, ऊपर से वीकेंड और साथ में चार धाम यात्रा का दबाव, नतीजा हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर गाड़ियों का ऐसा मेला लगा कि गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गईं। भीषण और तपती गर्मी के बीच श्रद्धालु अपनी गाड़ियों में कैद हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का ये ड्रोन शॉट देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ गाड़ियों की छतें दिखेंगी। मनाली जाने वाले रास्ते इस वक्त जाम के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। ब्रेक के आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आज तक।

0: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी। सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी। अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम। सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। ना सड़क पर नमाज, ना खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग। बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार? 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाए, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है। अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी। हिंदू महासभा ऐलान करती है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं। तो अयोध्या है, काशी है, नैमिषारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहाँ पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए, ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए, जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है। क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है, इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, चार चार गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्योहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को न भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, न किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, न नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
2: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
2: नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
11: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
12: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
13: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे, अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसी वजह से डर के मारे कोई गाय लाने को तैयार नहीं है, पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
14: मुस्लिम भाई दर के जो अनुरोध करूँ, अपना गोरु किन बिन्ना, गोरु अपना किने कुर्बानी दे बिन्ना, अमरा दो बोना, ये तो शुद्ध आमादर असुविधा है ना उन्नो कारो असुविधा है, সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
1: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
15: কুরবানি হচ্ছে, নিয়মে নেই হচ্ছে এবং সবকিছু শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে, ঠিক নিয়ম মেনে হবে, ওপেনলি হবে না, কোনো ভাবে চতুর্দিকে ড্রেনে রক্ত ছড়াবে না।
16: কুরবানি তো হোগাই, কুরবানি কই মানা করেগা ও ভি নেই শুনেগা, ও কুরবানি সত্তা মে আয়ে শুভেন্দু ঠিক হ্যায়, লোগো কো উনকো পাস ভোট ডালা, ও সরকার চালায়েগি, লেকিন মেরা 1400 সাল সে পহলে সে এক কুরবানি হোকে আ রাই, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
17: मको का ही लगना चाहिए और मको का कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
18: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
1: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
19: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
20: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
21: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
1: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
22: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
1: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
23: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
24: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
25: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
1: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया, तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
1: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
26: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
1: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
27: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
1: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए, सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
1: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
28: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
1: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो।
0: उराई, अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
2: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
3: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें, और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कह रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है, और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
2: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है, जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं। फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
4: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
2: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से इस सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
5: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
2: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से ₹44 करोड़ से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना कि मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया। दलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
1: दलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
6: पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ का गांव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
1: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। त्रिशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। ना सड़क पर नमाज, ना खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा।
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार। 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है, अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिसारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्ति पीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है। इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो। 4-4 गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को न भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, न किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, न नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
11: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
11: नियंत्रित कर लो,
12: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
13: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
14: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
15: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी है, इसी वजह से डर के मारे कोई गायें लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हां, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
16: मुस्लिम भाई दर का जो अनुरोध करूंगा, अपनारा गोरु किनबेन ना, গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
1: আর আব উসকা আসার পশু বাজারোঁ পর দিখ রাহা হ্যায়। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
17: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सब कुछ शांतिपूर्ण भावे होबे, ठीक नियम मेने होबे, ओपनली होबे ना, कोनो भावे चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
18: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
19: मको का ही लगना चाहिए और मको का कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है। किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
20: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
2: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
21: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक 2-2 रुपए करके इकट्ठा भी ऐसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
22: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
23: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है, पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
2: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
24: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन remains positive and resilient even today.
2: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
25: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
26: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
27: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
2: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया, तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
2: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
28: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
2: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
29: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं, दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
2: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए, सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
2: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
3: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
2: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो
0: उराई। अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
4: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
5: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
4: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है, जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं। फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
6: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
4: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
7: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
4: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहां से चले गए लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना

0: जितने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
1: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
2: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
3: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गाँव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
2: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। त्रिशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। न सड़क पर नमाज, न खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा।
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार। 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है, अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम हैं, वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिसारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्ति पीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है। क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए। गंभीर चिंतन का समय है लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
11: ऐसे होगा हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
11: नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रहिए, हम उसको रोकेंगे नहीं लेकिन सड़क पर नहीं, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
12: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
13: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
14: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी, इसी वजह से डर के मारे कोई गायें लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
15: मुस्लिम भाई के जो अनुरोध करोगे, अपना गोरु किन बिन्ना, गोरु अपनारा किने कुर्बानी देवें ना, हमारा दोबो ना, ये शुद्ध हमारे असुविधा है ना अन्य कारो असुविधा है से देखार विषय आछे। ये जो कुरबानी गोरु दिया बंद करी
1: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
16: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सब कुछ शांतिपूर्ण भावे हबे, ठीक नियम मेने हबे, ओपनली हबे ना, चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
17: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
18: मकों का ही लगना चाहिए और मकों का कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
19: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
1: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
20: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
21: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
22: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
1: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
23: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन। वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
1: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
24: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
25: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
26: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है। उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
1: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया, तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
1: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
27: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
1: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
28: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
1: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए, सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
1: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
2: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
1: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो
0: उराई। अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
3: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
4: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
3: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है। जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं, फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
5: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
3: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
6: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
3: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन 1,000 रुपए सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाया। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
7: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
8: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गाँव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
7: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। त्रिशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। ना सड़क पर नमाज, ना खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार? 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाए, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है, अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम हैं, वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिसारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्ति पीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए, ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए, जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है। इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो। 4-4 गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
11: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
11: नियंत्रित कर लो,
12: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
13: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
14: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
15: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी, इसी वजह से डर के मारे कोई गायें लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हां, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
16: मुस्लिम भाई दर के अनुरोध करूंगा, अपना गोरु किन बिन्ना গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
1: আর আব উসকা আসার পশু বাজারো পর দিখ রাহা হ্যায়। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
17: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सब कुछ शांतिपूर्ण भावे होबे, ठीक नियम मेने होबे, ओपनली होबे ना, कोनो भावे चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
18: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी एक कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
19: मकोका ही लगना चाहिए और मकोका की कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
20: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
2: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
21: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
22: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
23: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
2: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
24: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन। वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
2: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
25: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
26: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
27: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है। उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
2: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया, तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
2: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
28: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा?
2: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
29: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
2: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए। सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
2: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
3: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
2: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो
0: उराई। अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
4: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
5: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें। और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
4: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है। जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं, फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
6: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
4: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
7: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
4: Gymkhana Club के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है, तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने ना आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल।

0: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
1: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गांव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
0: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.

0: राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। त्रिशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। न सड़क पर नमाज, न खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा।
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी, तो मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार। 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है, अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है, सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिषारण्य है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है, तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं। जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है। क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए। गंभीर चिंतन का समय है लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
11: ऐसे होगा हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं,
11: नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रहिए, हम उसको रोकेंगे नहीं लेकिन सड़क पर नहीं, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
12: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
13: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
14: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी। इसी वजह से डर के मारे कोई गाय लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
15: मुस्लिम भाई दर के जो अनुरोध करूंगा, अपनारा गोरु किनबेन ना। গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
1: আর আব উসকা আসার পশু বাজারো পর দিখ রাহা হ্যায়। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
16: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सब कुछ शांतिपूर्ण भावे होबे, ठीक नियम मेने होबे, ओपनली होबे ना, कोनो भावे चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
17: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
18: मको का ही लगना चाहिए और मको का कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है। किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
19: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
1: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
20: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
21: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
22: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
1: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
23: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन। वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन remains positive and resilient even today.
1: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
24: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
25: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
26: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
1: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया, तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
1: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
27: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
1: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
28: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
1: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए, सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
1: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
2: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
1: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो
0: उराई। अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल ये भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
3: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
4: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
3: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है। जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं, फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
5: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
3: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
6: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
3: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन 1,000 रुपए सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
1: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना। 12 मिनट पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
7: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गाँव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
1: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। त्रिशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। न सड़क पर नमाज, न खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार? 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें, सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी, अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाए, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे, किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे, अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है, अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम हैं, वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिसारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्ति पीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए, ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए, जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है। इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो। 4-4 गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है, लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
11: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
11: नियंत्रित कर लो,
12: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
13: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
14: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
15: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी है, इसी वजह से डर के मारे कोई गायें लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
16: मुस्लिम भाई के जो अनुरोध करूंगा, अपना गोरु किन बेन ना, गोरु अपनारा किने कुर्बानी देवें ना, अमरा दोबो ना, एते शुद्ध आमादर असुविधा है ना अन्य कारो असुविधा है सेटा देखार विषय आछे। एते जदि अमरा कुर्बानी गोरु दिया बंध करी ताहले आमादर अर्थनैतिक दिक दिए अमरा स्वावलम्बी हब बोले मने करी।
1: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
17: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सबकिछु शांतिपूर्ण भावे हबे, ठीक नियम मेने हबे, ओपेनली हबे ना, कोनो भावे चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
18: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी एक कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
19: मकों का ही लगना चाहिए और मकों का कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
20: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
2: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
21: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
22: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
23: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं। सुबह पैसे लेके निकलो, शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
2: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
24: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन। वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
2: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
25: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
26: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
27: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है। उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
2: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया, तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
2: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
28: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा?
2: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
29: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
2: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए। सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
2: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
3: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
2: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो
0: उराई। अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
4: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
5: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें। और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
4: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है। जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं, फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
6: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
4: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए। लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
7: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
4: Gymkhana Club के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है, तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने ना आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
2: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें,

0: में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
1: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गांव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
0: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज

किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। प्रीशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत।

0: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी। सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी। अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम। सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। ना सड़क पर नमाज, ना खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग। बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार? 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है। अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिषारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहाँ पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चल रही है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है। क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है, इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने योगी आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, चार चार गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
2: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
2: नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
11: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
12: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
13: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे, अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसी वजह से डर के मारे कोई गाय लाने को तैयार नहीं है, पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
14: মুসলিম ভাইদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না, গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হওয়া বলে মনে করি।
1: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
15: कुर्बानी होच्छे नियम में नहीं होच्छे एवं सब कुछ शांतिपूर्ण भावे होबे, ठीक नियम में होबे, ओपनली होबे ना, कोनो भावे चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
16: कुर्बानी तो होगा, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
17: मको का ही लगना चाहिए और मको का ही कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
18: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
1: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
19: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए दो रुपए बहुत मायने रखा था।
20: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
21: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है, पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को एक घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
22: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
23: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
22: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं, वही मामले पर सियासत तेज है।
24: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
25: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
26: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
22: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
22: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
27: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
22: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
28: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं, दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
22: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए, सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
22: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
29: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
22: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो।
0: उराई, अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
2: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
3: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें, और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है, और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
2: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है, जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं। फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती।
4: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
2: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से इस सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
5: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
2: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है, तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से ₹44 करोड़ से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही, तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
22: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
6: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गांव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
22: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। त्रिशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। न सड़क पर नमाज, न खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा।
1: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार। 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाए, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
1: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
4: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है, अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
1: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
5: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिसारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्ति पीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
1: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है, तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
6: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
1: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है, इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
7: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
8: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे,
9: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
11: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
1: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
11: नियंत्रित कर लो,
12: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
13: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
1: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
14: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
0: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
1: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
15: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी, इसी वजह से डर के मारे कोई गायें लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
1: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी ना दे।
16: मुस्लिम भाई का जो अनुरोध करूंगा, अपना गोरु किन बिन्ना गोरु अपनारा किने कुरबानी देवें ना, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
1: আর আব উসকা আসার পশু বাজারো পর দিখ রাহা হ্যায়। মুসলমান গায় খরিদনে সে বচ রহে হ্যায় আর পশু পালক পরেশান হো রহে হ্যায়, লেকিন পশ্চিম বঙ্গাল কি সরকার আপনে স্ট্যান্ড পর কায়েম হ্যায়।
17: কুরবানি হচ্ছে নিয়ম মেনেই হচ্ছে এবং সবকিছু শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে, ঠিক নিয়ম মেনে হবে, ওপেনলি হবে না, কোনোভাবে চতুর্দিকে ড্রেনে রক্ত ছড়াবে না।
18: কুরবানি তো হোগাই, কুরবানি কই মানা করেগা ও ভি নেই শুনেগা, ও কুরবানি সত্তা মে আয়ে শুভেন্দু ঠিক হ্যায়, লোগো কো উনকো পাস ভোট ডালা ও সরকার চালায়েগি, লেকিন মেরা 1400 সাল সে পহলে সে এক কুরবানি होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
19: मकोका ही लगना चाहिए और मकोका कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
20: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
1: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की बंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
2: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
21: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
22: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
23: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
2: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
24: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन remains positive and resilient even today.
2: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
25: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
26: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
27: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
2: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया, तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
2: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
28: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
2: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
29: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं, दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
2: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए, सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
2: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
3: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
2: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो
0: उराई। अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
4: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
5: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें। और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
4: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है। जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं, फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
6: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
4: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
7: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
4: Gymkhana Club के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है, तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिम खाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिम खाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिम खाना क्लब को आजादी मिलेगी।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लुधियाना कि मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
8: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी

0: ठिकाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
1: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गांव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को, गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
0: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा, डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप, सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। पेशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
1: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। ना सड़क पर नमाज, ना खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
2: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?

0: کی قربانی پر سخت چیتاونی, تو مسلمانوں کی نئی مانگ, بولے مسلمان گائے کو راشٹریہ پشو کیوں نہیں گھوشت کرتی سرکار. 28 مئی کو بقرعید ہے اور اب قربانی کو لے کر کوہرام مچنا شروع ہو گیا ہے. جی ہاں, یو پی کے سی ایم یوگی نے آرڈر جاری کر دیے ہیں. بقرعید کو لے کر مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے سخت گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے سپشٹ کیا ہے کہ تہواروں کے دوران شانتی اور سوہارد بنائے رکھیں. سارجنک ستھلوں پر یعنی کھلے میں قربانی کی انومتی نہیں ہے. پرتبندھت پشوؤں کی قربانی پر زیرو ٹالرنس کی نیتی اپنائی جائے گی. نیم نہ ماننے والوں کے خلاف کٹورتم کاروائی ہوگی. سڑک جام کر نماز پڑھنے کی انومتی بالکل نہیں ہوگی. اویدھ سلاٹر ہاؤس اور کھلے میں ماس بیچنے والوں کے خلاف تتکال کڑی کاروائی کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں.
1: بقرعید کا تیوہار لوگ ودھیوت طریقے سے منائے, کوئی نئی پرمپرا شروع نہ کی جائے, کسی بھی استھتی میں قانون ویوستھا نہ بگڑنے پائے. کسی کو بھی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سڑکوں کو گھیر کر کے نماز ادا کرے اور لوگوں کے لیے سمسیائیں کھڑی کرے. کسی کو بھی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کھلے میں قربانی کرے. اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے گا تو نشچت طور پر قانون کا ڈنڈا پوری کٹورتا سے چلے گا. اور اویدھ سلاٹر ہاؤس پر آج پوری طرح سے نگاہیں رکھی گئی ہیں کہ کہیں بھی کوئی اویدھ طریقے سے سلاٹر ہاؤس چلتا ہوا پایا گیا تو قانون کا ڈنڈا پوری کٹورتا سے کام کرے گا.
0: قربانی کو لے کر سی ایم یوگی کا آرڈر آتے ہی ہندو سنگٹھنوں نے بھی مسلمانوں کو کھلے میں قربانی پر چیتاونی دینا شروع کر دیا ہے.
2: مسلموں کا تہوار بقرعید کیا آیا, پورے دیش میں ماحول ڈسٹرب ہونے لگا. بھائی تہوار مناؤ, بلی دو, لیکن سرکار کی گائیڈ لائن کے انترگت کار کریے. اب دیش کا بہت سنکھیک بھی تیار ہو گیا ہے. اگر آپ اس کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاؤ گے تو وہ بھی آپ کا ورودھ کرے گا. سرکار اپنا کام کرے گی. ہندو مہا سبھا اعلان کرتی ہے, اگر کسی بھی سارجنک استھل پر, کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ بلی دو گے, بلی کراؤ گے, تو اس بلی کا جواب ہندو مہا سبھا سور کو کٹوا کر دے گی. بلی دینی ہے صحیح استھان پہ دیجیے, انیتھا سور کٹے گا تو آپ کی بھاونائیں بھی تکلیف دے ہوں گی.
0: تو کئی سادھو سنتوں نے مانگ کی ہے کہ جہاں ایشور کے دھام ہیں وہاں مسلمان صرف عید منائیں, قربانی نہ کریں.
3: بقرعید کے موقع پہ بہت سے بچے ایسے ہیں جانوروں کے کاٹے جاتے ہیں. تو ایودھیا ہے, کاسی ہے, نیمی سارن ہے, ورنداون ہے, متھرا ہے, دوادش شکتی پیٹھ ہے, جہاں جہاں بھگوان کے دھام ہیں, جگن ناتھ, دوارکا, رامیشورم, تو ایسے جگہ سب سے بڑی بات ہے کہ کسی بھی جانور کی بلی نہ دی جائے.
0: جبکہ کئی جگہوں پر پیس کمیٹی میٹنگ بلائی گئی ہے. تصویریں یو پی کے جھانسی کی ہیں جہاں پولیس نے دونوں سمودائے کے لوگوں کو بلایا اور سمجھایا کہ کیسے قربانی کو لے کر ساودھانی برتنی ہے.
4: پولیس پرشاسن کی اور سے جو پبلک ہے سبھی کو ان کو اسپشٹ روپ سے بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی یہ 3 دنوں تک اس میں قربانی بھی چلنی ہے تو قربانی کے جو اوشیش ہیں انہیں صحیح طریقے سے باہر رکھا جائے تاکہ جب نگر نگم کی گاڑی آئے تو ان کو کچرے کے روپ میں وہ اٹھا کر لے جائیں, ان کو کہیں اویوستھت روپ میں نہ پھینکا جائے جس سے کہ کوئی کتا وغیرہ آدمی وہاں سے اٹھا کر لے جائے اور اویوستھا کا ماحول بنے. ایسی استھتی نہ بننے کے لیے سمجھایا گیا ہے لوگوں کو.
0: بقرعید کے مد نظر سی ایم یوگی نے گائیڈ لائنز جاری کی تو وپکش نے سی ایم یوگی کے ساتھ ساتھ کیندر سرکار کو بھی لپیٹے میں لے لیا. اب وپکش کہہ رہا ہے مہنگائی سے دھیان بھٹکانے کے لیے سرکار نفرت والے مدوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. کیونکہ یو پی میں 2027 میں چناؤ ہیں, اس لیے وپکش یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب بھی چناؤ آتا ہے تو بی جے پی اسی طرح کے مدے اچھالتی ہے.
5: منچ پر سوامی ویویکانند نے کہا تھا, گرو سے کہو ہم ہندو ہیں.
6: مسلمانوں نے طے کر لیا کہ ہم گائے کی قربانی نہیں کریں گے, اب اپنے بھائیوں کی آستھا کا سمان کریں گے,
7: چاہے وہ تیل ہو, چاہے وہ گیس کا سلینڈر ہو, چاہے سبزی ہو. چار چار گنا دام بڑھ گئے, گمبھیر چنتن کا سمے ہے, لیکن سرکار کیول اور کیول دھیان مدرسوں پر بلڈوزر چلاؤ, سڑک پر نماز نہ پڑھو. کوئی مسلمان سڑک پر نماز نہیں پڑھے گا, لیکن ان کا دھیان صرف اس طرف لگا کر کے ان گمبھیر وشے سے دھیان ہٹا رہے ہیں.
8: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को न भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, न किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, न नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
9: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
0: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
9: नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
10: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
0: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
11: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
8: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
12: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
0: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
13: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे, अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसी वजह से डर के मारे कोई गायें लाने को तैयार नहीं है, पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
0: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी ना दे।
14: मुस्लिम भाई के जो अनुरोध करूंगा, अपना गोरु किन बिन्ना গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেবো না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
0: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
4: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सबकिछु शांतिपूर्ण भावे हबे, ठीक नियम मेने हबे, ओपेनली हबे ना, कोनो भावे चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
11: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
0: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
15: मको का ही लगना चाहिए और मको का कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है। किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
16: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
0: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की बंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
12: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
0: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
17: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
18: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
19: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
0: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
20: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन रिमेन्स पॉजिटिव एंड रिसीलियंट इवन टुडे।
0: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं, वही मामले पर सियासत तेज है।
21: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है
1: लेकिन भारत में तेल की कीमत में एक रुपए का इजाफा नहीं होता है।
21: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
22: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
23: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
12: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
23: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
24: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा?
23: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
25: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
23: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
12: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए। सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
23: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
26: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
23: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो।
12: उराई, अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
27: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
28: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें।
2: और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है, और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
27: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है, जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं। फिर भी से लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
3: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
27: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से इस सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
5: एनी फेथ एंड ट्रस्ट इन द कमेटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट प्रेजेंट व्हिच इज रन व्हिच इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकॉज दोज पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर ऑल गवर्नमेंट अपॉइंटीज एंड ऑब्वियसली दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। शुड दे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे विल बी ऑब्वियसली चेंज्ड और रिमूव्ड। अंडर द सर्कमस्टेंसेस द क्लब हैज डिसाइडेड दैट वी गॉट टू टेक अप द केस आवरसेल्फ्स।
27: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने ना आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन 1000 रुपए सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से 44 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
12: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
6: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
4: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गांव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
6: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
12: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
7: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर्स।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: किश्तों में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल ने पार किया सैकड़ा डीजल शतक के पास। वित्त मंत्री ने कहा युद्ध का साइड इफेक्ट, विपक्ष का आरोप सरकार चुपके से काट रही है जनता की जेब। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सख्त, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए भंग करने पर केंद्र से मांगा जवाब। अमित शाह का सीमावर्ती दौरे का प्लान, आज बीकानेर इलाके में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। 29 को भुज का दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल बॉर्डर का दौरा। इबोला वायरस खतरे को देखते हुए केंद्र सतर्क, जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक, स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट्स की समीक्षा। त्रिशा मौत में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, भोपाल पुलिस से लिया केस, समर्थ को घर ले जाकर जुटाए सबूत। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा है। यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जबकि बंगाल महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी, गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बकरीद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस हैं और चुनौती भी, अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा तो एक्शन तगड़ा होगा।
2: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। न सड़क पर नमाज, न खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
3: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा।
2: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमान